0: स्वर रंजनी कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे श्री वरुण कुमार पाल का राग नट भैरव में गिटार वादन। आपके साथ है तबले पर संगत की अब्दुल रहमान ने। स्वर रंजनी कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। नमस्कार। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। प्रातः 6 बजने को हैं। अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी एजेंसियों को घुसपैठ को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2026 का उद्घाटन करते हुए श्री शाह ने कहा कि विभिन्न राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं SOP को तैयार करने के लिए बहु एजेंसी केंद्र MAC मंचों पर उपलब्ध सूचनाओं का AI आधारित विश्लेषण किया जाना चाहिए। आतंकवाद और कट्टरपंथ से निपटने के लिए श्री शाह ने गृह मंत्रालय की प्रहार योजना के कार्यान्वयन के लिए प्रशिक्षण भगोड़ों को वापस लाकर और अनुपस्थिति में सुनवाई के प्रावधानों का उपयोग करके मुकदमों में तेजी लाने और गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम UAPA मामलों की जांच करते समय व्यापक और एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने पर बल दिया। 2 दिन का यह सम्मेलन हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित किया जा रहा है। इसमें देश भर से 850 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में एक राजपत्र अधिसूचना जारी की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने संवाददाताओं को बताया कि लगभग 2,03,000 आवेदकों में से अब तक 23,000 लोगों को पात्र घोषित कर नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वांग यी के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौर की वार्ता में शामिल होंगे। श्री डोभाल और श्री वांग सीमा मुद्दे के साथ साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से शुरू होने वाली कनाडा और अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य द्विपक्षीय आर्थिक और वित्तीय साझेदारियों को मजबूत करना, निवेश संबंधों को गहरा करना और साझा वैश्विक आर्थिक प्राथमिकताओं पर सहयोग को आगे बढ़ाना है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के भेज्जी थाना क्षेत्र में माओवादियों के एक ठिकाने से सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक बरामद किए हैं। आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों से मिली जानकारी के आधार पर जिला सुरक्षा बल, जिला रिजर्व गार्ड और बस्तर लड़ाकों ने कल भंडारपदर और मुनुरुकोंडा के वन और पहाड़ी क्षेत्रों में संयुक्त तलाशी अभियान चलाया। भारतीय जनता पार्टी पंजाब विधानसभा चुनाव में सभी 117 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ेगी। भाजपा के महासचिव संगठन BL संतोष ने पटियाला में कहा कि पंजाब बदलाव के लिए तैयार है और पार्टी चुनाव जीतकर राज्य में सरकार बनाएगी। श्री संतोष पंजाब के 2 दिन के दौरे पर हैं। मिजोरम विधानसभा का 2 दिन का मॉनसून सत्र आज से शुरू होगा। सत्र के दौरान कई विधायी और सरकारी कामकाज से संबंधित कई विषयों पर चर्चा होगी। 2 दिन का यह सत्र बुधवार को समाप्त होगा। सरकार ने गेहूं के आटे और

रघुनाथ दुबे की आवाज़ में आपने ये भजन सुना। सीरियसली आज का जो दिन है वो आज का दिन समर्पित होता है बजरंग बली के नाम, यानी कि मंगलवार को हम बजरंग बली की आराधना करते हैं और उनका जो हम पर हमारा जो उन पर विश्वास है और उनका जो हम पर हाथ है वो इसी तरीके से हमेशा आशीर्वाद के लिए बना रहे और हम हमेशा उनकी उनसे प्रार्थना करते रहें। लेकिन फ़िलहाल अब इस कार्यक्रम में वंदना में हम बढ़ चुके हैं आगे, यानी कि अंतिम भजन की ओर। और ये भजन नहीं, ये एक शब्द है जिसे आवाज़ दी है प्रोफेसर दर्शन सिंह रागी ने। तो चलिए सुनते हैं ये शब्द।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम चिंतन, जिसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी के विचार।

बड़ी कृपा की भगवान ने कि हमें मानव का शरीर प्रदान किया, मोशन हो गया, हम जीव जंतुओं से ईश्वर की सर्वोत्तम कृति मानव बन गई। इतना ही नहीं, ईश्वर ने जीव को सभी सुविधाएं सोचने समझने की शक्ति दी, उसे असीम ज्ञान से पूरित शास्त्र, वेद, वेदांग, श्रुति, स्मृतियाँ, गीता, रामायण आदि न जाने कितने सारे ग्रंथ उसकी शंका समाधान हेतु उपलब्ध करा दिए। साथ ही उसका मार्गदर्शन करने के लिए समय समय पर साधु संत फकीर गुरुजन भी भेजे। आवश्यकता पड़ने पर स्वयं भी मानव का अवतार लेकर उसकी सहायता के लिए, धर्म रक्षण के लिए आए। और उनकी इस अपार कृपा का उद्देश्य मानव को, जीव मात्र को लौकिक झंझटों में रहते हुए भी उसे छुट्टी पाने के लिए, उनसे मुक्ति पाने के लिए प्रेरित और उत्साहित करना होता है। मेरी संतानें, मेरा अंश आनंदित हो जाएं, बस यही ईश्वर चाहता है। जीव यदि उद्धार चाहता है तो उसे विषयों को विष के समान त्यागना होगा। अर्जुन को संबोधित करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, विषयों का सेवन ही नहीं, उनका चिंतन भी बड़ा घातक होता है। जीव को आनंद के लिए अपनी वासनाओं से सावधान रहना होगा, जीतना होगा अपने मन एवं चंचलता को। अरे, ये मन कुछ नहीं मात्र संकल्पों विकल्पों का भंडार है। आप संकल्प विकल्प करना छोड़ दीजिए और आप एकदम शांत और आनंदित, तो संकल्प विकल्प का स्रोत क्या है? ये आती है हमारी इच्छाओं से। हमारी अशांति का कारण ये इच्छाएं हैं। यदि इन्हें समाप्त नहीं कर सकते तो उन्हें ईश्वर की ओर मोड़ दो। हमारी आसक्ति मात्र ईश्वर में हो जाए तो वह आसक्ति न होकर भक्ति बन जाएगी और हम अपने उद्गम से ईश्वर से जुड़ जाएंगे। तेरा स्वामी परम पिता तो आतुर है तुझसे मिलने के लिए, तेरे कल्याण करने के लिए। बस यदि देरी है तो तेरी ओर से ही है। वो कहता है, जो मेरी शरण में आ जाए मैं उसे उसी समय साधुता प्रदान कर देता हूँ। फिर वह जन्म जन्मांतर तक शाश्वत शांति प्राप्त कर लेता है, फिर उसका नाश नहीं होता। अरे प्रारब्ध, जिसे तूने स्वयं अपनी कर्मों द्वारा सृजित किया है, अकाट्य है, तुझे अपना प्रारब्ध भोगना ही होगा। अतः उसे रोकर नहीं, हंसते हंसते भोग और सत्कर्म करके, निष्काम कर्म कर, फिर बंधेगा नहीं, मुक्त होगा, शांति पाएगा। कर्म करते हुए उसमें आसक्त मत हो तो कर्म फल व्याप्त नहीं होंगे। जीवन के मुक्ति मार्ग में अहंकार किसी भी प्रकार का हो घातक है, यही मनुष्य का विकास नहीं होने देता। अतः अहंकार का त्याग करो। मिथ्याचरण अर्थात हम जो हैं वह न दिखाकर अपने को वह दिखाने की कोशिश करें जो हम नहीं हैं, मिथ्याचरण है। मिथ्याचारी बनकर हम दूसरों की अपेक्षा स्वयं को धोखा दे रहे हैं। अतः मिथ्याचरण का तुरंत त्याग हो। हे मानव, यदि आनंद चाहता है तो वह तुझे बाहर नहीं अपने भीतर ही मिलेगा। आनंद जीव का अपना स्वरूप है, इसे अपने आनंद को कैसे प्राप्त करें यही धर्मशास्त्र सिखाती हैं। दूध मक्खन में है किंतु दिखाई नहीं देता, युक्ति से निकाला जाता है। इसी प्रकार आनंद भी जीव को स्वभाव से ही प्राप्त है, किंतु इसे प्रत्यक्ष रूप से पाने के लिए विशेष कला की आवश्यकता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशी, स्व माया बस रही गोसाई, बंध्यो कीर मरक कट की नाई। ईश्वर का अंश होते हुए भी माया के आवरण में फंसकर इस नाशवान शरीर को ही मैं मान बैठा हूँ कि फिर इसी के अनुसार मैं आचरण करता हूँ तथा ईश्वर से हटकर अपनी अलग सत्ता बना लेता हूँ।

0: केवल भ्रम की ही तो सत्ता है, वह ही एकमात्र है, एक अकेला है, दूसरे की गुंजाइश ही नहीं है। एक ही था, एक ही है और एक ही रहेगा। अपने आप को उससे अलग मानकर जीव दुख पाता है, अतः वह स्वयं भी अपने दुखों का कारण है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, कि दाना खास में मिलकर गुले गुलजार होता है।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन, जिसमें आपने सुना गोस्वामी तुलसीदास जी के विचार। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं श्री रामचरित मानस अयोध्या कांड भाग 28।

संतान के आसन्न विरह में तड़पते सिर धुनते राजा दशरथ ने पुत्र वधु को अनेक प्रकार से वनगमन से विमुख करने की चेष्टा की। संकोचवश सीता ने प्रतिवाद नहीं किया, किंतु उनका मन श्री राम के चरणों में अनुरक्त था, अतः उन्हें पति को छोड़कर घर में रहना श्रेयस्कर नहीं लगा और न ही वनगमन भयावह लगा। कैकेयी ने तमक्कर मुनियों के वस्त्र, माला, मेखला आदि और कमंडलु राम के आगे रख दिए और कोमल वाणी से कहा, हे रघुवीर, राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो। प्रेम के वश में दुर्बल हृदय वाले राजा शील और स्नेह नहीं छोड़ सकते। उनके पुण्य, यश और परलोक भले ही बिगड़ जाएं, वे तुम्हें वन जाने को भी नहीं कहेंगे। ऐसा विचार कर जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। माता कैकेयी की सीख श्री राम को भली लगी, किंतु राजा दशरथ को ये वचन वाण की भांति लगे और वो मूर्छित हो गए। लोग व्याकुल हैं, किसी को सोच नहीं पड़ता कि वे क्या कहें। श्री राम मुनि का वेश धारण कर माता पिता के सम्मुख शीश नवाकर चल पड़े। राजमहल से निकलकर वे कुलगुरु वशिष्ठ के द्वार पर आ खड़े हुए। वहां ब्राह्मणों तथा याचकों की टोली को वर्षासन देकर उन्होंने दास दासियों को गुरु को सौंपा और हाथ जोड़कर कुलगुरु से प्रार्थना की कि वे माता पिता और पालक की भांति उनकी देखरेख करें। अयोध्या वासियों से उनकी प्रार्थना थी कि वे माता पिता को किसी भांति का कष्ट न होने दें।

0: सीमा विवाद संबद्ध विषये विशेष प्रतिनिधीनां वार्तायाः पञ्चविंशतितमे चरणे भागं ग्रहीष्यति। ह्यः वार्ताहर सम्मेलने विशेष प्रतिनिधीनां वार्ताम् उद्घोषयन् चीनदेशस्य विदेश मन्त्रालयस्य प्रवक्ता लिन जियान उक्तवान् यत् डोभालः वांग यी च सीमा विवादस्य अतिरिक्तम् अन्येषु विषयेषु अपि गहन चर्चां करिष्यतः। हॉकी क्रीडायां नीदरलैंड देशस्य एम्स्टेलविन नगरे आयोजिते FIH इत्यस्य विश्वचषकस्य पूल क्रीडायां भारतीय पुरुष दलं अर्जेंटीना दलेन पराजितम् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा राजनयिकों से अपनी पोस्टिंग वाले देशों में जमीनी स्तर पर जुड़ने और स्थानीय समुदायों के साथ भारत के संबंधों को प्रगाढ़ करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में 2025 बैच के भारतीय विदेश सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत में श्री मोदी ने उन्हें पारंपरिक राजनयिक दायरों से आगे बढ़कर अपने संबंधों का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित किया। श्री मोदी ने प्रशिक्षु अधिकारियों को भारत की सभ्यतागत शक्तियों को प्रौद्योगिकी, नवाचार और प्रभावी संचार के साथ जोड़कर भारत की वैश्विक भागीदारी और मजबूत करने के लिए प्रेरित किया। प्रधानमंत्री ने प्रशिक्षु अधिकारियों से भारत के वैश्विक आर्थिक संबंधों को गति देने में प्रेरक की भूमिका निभाने का आह्वान किया। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी एजेंसियों को घुसपैठ रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। श्री शाह ने कल नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2026 का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि विभिन्न राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं को तैयार करने के लिए सूचनाओं का AI आधारित विश्लेषण किया जाना चाहिए। आतंकवाद और कट्टरपंथ से निपटने के लिए श्री शाह ने गृह मंत्रालय की प्रहार योजना के कार्यान्वयन पर बल दिया। दो दिन की इस सम्मेलन में देश भर से 850 से अधिक प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में एक राजपत्र अधिसूचना जारी की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने संवाददाताओं को बताया कि लगभग 2,03,000 आवेदकों में से अब तक 23,000 लोगों को पात्र घोषित कर नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी पंजाब विधानसभा चुनावों में सभी 117 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। भाजपा महासचिव BL संतोष ने पटियाला में कहा कि पंजाब बदलाव के लिए तैयार है और पार्टी चुनाव जीतकर राज्य में सरकार बनाएगी। श्री संतोष पंजाब के दो दिन के दौरे पर हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वांग यी के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौर की वार्ता में शामिल होंगे। श्री डोभाल और श्री वांग सीमा मुद्दे के साथ साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से शुरू होने वाली कनाडा और अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य द्विपक्षीय आर्थिक और वित्तीय साझेदारियों को मजबूत करना, निवेश संबंधों को प्रगाढ़ करना और साझा वैश्विक आर्थिक प्राथमिकताओं पर सहयोग को आगे बढ़ाना है। टोरंटो में अपनी यात्रा के दौरान श्रीमती सीतारामन कनाडा के वित्त और राष्ट्रीय राजस्व मंत्री फ्रांसवा फिलिप शोपानियो के साथ आर्थिक और वित्तीय संवाद में भाग लेंगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल एक वर्चुअल बैठक में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अधिकारियों के साथ उभरती प्राथमिकताओं और रणनीतियों पर चर्चा की। श्री जोशी ने बताया कि चर्चा में खेलो इंडिया अभियान भी शामिल था। इसमें शिक्षण संस्थानों में खेलों को बढ़ावा देने, विद्यार्थियों की व्यापक भागीदारी प्रोत्साहित करने और युवाओं में खेल प्रतिभाओं को निखारने पर बल दिया गया। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में माओवादियों के एक ठिकाने से सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक बरामद किए हैं। आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों से मिली जानकारी के आधार पर जिला सुरक्षा बल, जिला रिजर्व गार्ड और बस्तर लड़ाकों ने कल भंडारपदर और मुरुकोंडा के वन और पहाड़ी क्षेत्रों में संयुक्त तलाशी अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान SLR, राइफल, बीजल लॉन्चर और थूथन लोडिंग बंदूक

0: Durum wheat categories from prohibited to free. West Bengal government will form a new disaster response force called Arjun Bahini by recruiting Agniveers to deal with emergencies. Chief Minister Subhendu Adhikari said the force will become operational in September. In men's cricket, centuries by Dhruv Jurel and Devdutt Padikkal powered India to a hefty 503-9 declared in the first innings against host Sri Lanka on a rain-disrupted second day of the second and final test in Colombo yesterday. Today, Sri Lanka would resume the first innings at the overnight score of 8-2 in reply to India's 503-9. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम संगीतिका, जिसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे निधि धवन द्वारा श्याम भजन। साथी कलाकार रहेंगे सरोद पर दानिश असलम, सितार पर अकील अहमद, हारमोनियम पर संगत जाकिर धौलपुरी की और तबले पर पशुपतिनाथ मिश्रा।

श्याम भजन, सहयोगी कलाकार थे सरोद पर दानिश असलम, सितार वादन अकील अहमद का, हारमोनियम पर जाकिर धौलपुरी और तबले पर पशुपति नाथ। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग।

नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हैं इंद्रप्रस्थ चैनल के साथ। कार्यक्रम है गीतों भरी गुड मॉर्निंग और मैं हूं आपकी दोस्त आरती गौड़। और हमेशा की तरह आपके लिए लेकर बहुत सारे खजाने आई हूं। एक खूबसूरत सी कहानी, छोटी सी प्यारी सी, जो आपको एक सीख देगी और उसके साथ ही बेहतरीन नगमे जिन्हें सुनकर आपका मूड बन जाएगा और आज का जो दिन है, जो ये सुबह है, ये और भी सुहानी हो जाएगी। फिलहाल आप इस गीत को सुनिए जिसमें आप विश कर रहे हैं कि चांद तारे तोड़ लाऊं और सब कुछ पा जाऊं। ये सारी जो तमन्नाएं होती हैं ना, ये हम सब की भी होती हैं, लेकिन इन्हें पाने के लिए बहुत कुछ करना भी पड़ता है। तो फिलहाल भगवान से तो मांगते रहिए, लेकिन खुद भी आपको बहुत कुछ करना है और वो कैसे करना है वो भी मैं आपको अभी बताऊंगी।

जी हाँ दोस्तों, ख्वाब तो हम सबके छोटे छोटे से ही होते हैं, लेकिन वो छोटे छोटे से ख्वाब भी पूरे करने के लिए ना आपको बड़ी सारी मेहनत करनी पड़ती है। अब सोचिए कि एक जो छोटा सा बीज होता है, उसे एक विशाल पेड़ बनने के लिए सबसे पहले उस अंधेरी शांत मिट्टी के सुरक्षा घेरे को तोड़ना पड़ता है। जब तक बीज मिट्टी के अंदर सेफ और कंफर्टेबल रहता है, तब तक तो वो सिर्फ एक बीज होता है। लेकिन जिस दिन वो ज़मीन की परतों को चीर कर बाहर आता है ना, वो धूप, हवा, बारिश सभी का सामना करता है, और फिर वही बीज एक दिन एक छायादार पेड़ बन जाता है। ठीक वैसे ही हमारा जो कंफर्ट जोन होता है, वो भी उसी मिट्टी की तरह होता है। जब तक आप अपने कंफर्ट जोन के अंदर हैं, आप सुरक्षित तो ज़रूर महसूस करेंगे, लेकिन वहाँ कोई ग्रोथ नहीं होगी। अगर आपको अपनी असली ताकत पहचाननी है, तो सबसे पहले तो आपको उस ग्रोथ को पाने के लिए उस सुरक्षा घेरे को तोड़ना होगा और उससे बाहर आना होगा। इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि ज़िंदगी में आप अपनी मंजिल तक पहुँचें, तो ये बैठे बैठे नहीं पहुँचेंगे। उसके लिए आपको बहुत कुछ करना होगा। और आपको यही लगता है कि अगर हर चीज़ रिस्क लेने में अगर आप डरते हैं, तो फिर आगे बढ़ने के बारे में भी भूल जाइए, क्योंकि रिस्क तो कदम कदम पर उठाना ही पड़ता है, अगर आपको कुछ पाना है तो।

दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कंफर्ट जोन की, जिसके अंदर रहकर हमें बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन ये भी बात सच है कि जब तक हम उस कंफर्ट जोन के अंदर रहते हैं, हम बहुत कुछ नहीं पा सकते। फिलहाल आपको एक कहानी सुनाती हूँ, और इस कहानी को सुनने के बाद आपको ज़रूर समझ में आएगा कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलना क्यों ज़रूरी है। अगर आपको कुछ पाना है, ज़िंदगी में कुछ बनना है और इस दुनिया को पहचानना है तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक बाज के दो छोटे बच्चे थे। एक राजा जो था, वो उन दोनों को अपने महल में ले आया। उनके पालन पोषण के लिए उसने एक बेहतरीन, जो पक्षी प्रशिक्षक होते हैं, ट्रेनर होते हैं, उनको सौंप दिया उन दोनों बच्चों को। कुछ महीनों बाद राजा ने देखा कि उनमें से एक बाज जो है वो नीले आसमान में बहुत ऊंचाई पर उड़ रहा है, लेकिन दूसरा बाज अपनी डाल से केवल कुछ फीट ऊपर उड़ता और वापस उसी डाल पर आके बैठ जाता। राजा ने कई पंडितों और वैद्यों को बुलवाया, लेकिन कोई भी उस दूसरे बाज को उड़ना सिखा ही नहीं पा रहा था। अंत में राजा ने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो भी इस बाज को ऊंचा उड़ना सिखाएगा, उसे मैं बड़ा इनाम दूंगा। अगले ही दिन राजा ने देखा कि दोनों बाज आसमान की ऊंचाइयों को छू रहे थे। राजा ने आश्चर्यचकित होकर उस व्यक्ति को दरबार में बुलवाया जिसने वो चमत्कार किया था। और पता है वो व्यक्ति कौन था? बहुत ही साधारण सा व्यक्ति था। वो एक किसान था। राजा ने उससे पूछा कि जो काम बड़े बड़े ज्ञानी नहीं कर सके, वो तुमने कैसे किया? ये बात उस व्यक्ति ने बताई, लेकिन ये बात जानने के लिए पहले आपको एक खूबसूरत सा गीत भी सुनना होगा, और इस गीत के बाद इस कहानी को बढ़ाएंगे हम आगे।

दोस्तों, मैं आपको सुना रही थी दो बाज के पक्षियों की बाज पक्षियों की कहानी, जिनमें से एक ने तो उड़ना सीख लिया था, लेकिन जो दूसरा था वो अभी भी एक डाल पर जाकर बैठ जाता था। थोड़ा सा उड़ता और डाल पर बैठ जाता, और उसको सिखाने के लिए राज्य में ढिंढोरा पिटवाया था राजा ने। और फिर एक किसान, एक साधारण सा किसान आया और उसने ये करके दिखा दिया। पर पता है उसने ये कैसे किया? किसान ने राजा से ये कहा कि महाराज, मैंने कोई जादू नहीं किया, मैंने बस वही डाल काट दी जिस पर बैठने की आदत इस बाज को लग चुकी थी। जब उसके पास बैठने का कोई सहारा ही नहीं बचा तो उसने अपने पंख फैलाए और उड़ना शुरू कर दिया। कुछ समझ में आया दोस्तों? जी हाँ, अक्सर हम भी यही होते हैं कि एक रिस्क लेने के डर से हम पाना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कदम नहीं उठाना चाहते, बढ़ना नहीं चाहते, लेकिन मुसीबतें जो हैं वो

सोच समझ कर आपकी ज़िंदगी में नहीं आती, इनविटेशन देकर आपकी ज़िंदगी में नहीं आती। और जब आपकी लाइफ में कोई मुश्किल आती है तो आप उसका सामना किस तरह से करते हैं, ये होता है कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। क्योंकि अगर आपने बुरे वक्त की तैयारी पहले से करके रखी है कि कल अगर मेरे साथ ये परेशानी आई तो मैं इस मुश्किल से हार मान के एक कोने में दुबक के बैठ जाऊंगा या बैठ जाऊंगी, या फिर मुझे डटकर इसका सामना करना है, बस इसी चीज़ को अगर आपने मन में बसा लिया और ये समझ लिया कि मुझे उस हालात में अपने आप को कैसे संभाल कर रखना है, कैसे अपने आप को मोटिवेट करना है और कैसे मुझे उस मुश्किल वक्त से निकल के बाहर आना है, जहाँ आपने ये समझा वहीं आपने अपने कंफर्ट जोन को त्याग दिया, और जहाँ आपने कंफर्ट जोन छोड़ा वहीं आपने एक रिस्क लिया, और रिस्क लेने के बाद कहीं ना कहीं आप पहुँचते हैं अपनी मंजिल की तरफ। हो सकता है बहुत आसानी से आपको कुछ भी ना मिले, बहुत कुछ आपको झेलना पड़े और कई बार आपके दिमाग में ये आए कि कहीं मैंने गलत फ़ैसला तो नहीं लिया, लेकिन फिर भी आप अपने उस फैसले पर आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि आपकी मेहनत जो है वो आपको कुछ दे या ना दे, लेकिन एक ऐसा अनुभव ज़रूर देकर जाएगी जो आपको बहुत सारी मुश्किलों से निकालने में आसान होगा। और इसीलिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। अगर वो बाज जो था वो उस डाल पर ही बैठा रहता तो शायद उड़ना कभी सीख नहीं पाता, ऊंचे आसमान को कभी देख नहीं पाता और कभी ये महसूस ही नहीं कर पाता कि आज़ादी क्या होती है। और आज़ादी को महसूस करने के लिए आपको एक सुरक्षा घेरे के बाहर आना बहुत ज़रूरी होता है, जहाँ पर बहुत सारी मुश्किलें भी आपका सामना कर रही होती हैं, लेकिन बहुत सारे अनुभव भी आपके लिए खड़े होते हैं।

दोस्तों, हम सब भी अक्सर अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी डाल को पकड़ कर बैठ जाते हैं। चाहे वो कोई पुरानी आदत हो, असफलता का डर हो या हमारा सुरक्षित कंफर्ट जोन। जब तक हम सहूलियत की डाल को नहीं काटेंगे, तब तक हमें अपनी असली क्षमता का पता कभी नहीं चलेगा। अपनी पंखों की ताकत का महसूस करना हम भूल जाएंगे, एहसास ही नहीं होगा। अपनी सीमाएं तोड़िए और आसमान छूने के लिए उड़ान भर लीजिए, क्योंकि यही आपको मंजिल तक पहुंचाएगा और यही आपको बताएगा कि आपके अंदर कितनी ताकत है कुछ कर दिखाने की।

दोस्तों, खुद से एक वादा कीजिए, अपनी सीमाओं को पुश कीजिए, एक नया कदम उठाइए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए, क्योंकि एक ही जगह रुका रुका तो पानी भी ख़राब हो जाता है। पानी को भी निरंतर बहते रहना पड़ता है, तभी वो दरिया से समंदर तक पहुंचता है। तो बस, आपको भी अगर समंदर बनना है तो आपको भी तालाब का पीछा तो छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि नदियों में जाने के बाद समंदर तक का रास्ता आप तय कर पाएंगे। फिलहाल आज के लिए काफ़ी सारी बातें मैंने आपको समझा दी हैं और आप कितना समझ पाए हैं ये हमें ज़रूर बताइएगा। लेकिन फिलहाल अपनी दोस्त आरती को इस कार्यक्रम से दीजिए इजाज़त, और अगले कुछ और कार्यक्रम आपके लिए आगे आने वाले हैं। लेकिन फिलहाल गीतों भरी गुड मॉर्निंग से मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए।

0: अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। श्रोताओं आइए अब सुनते हैं हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा राजनयिकों से पोस्टिंग वाले देशों में जमीनी स्तर पर जुड़ने और स्थानीय समुदायों के साथ भारत के संबंध प्रगाढ़ करने का आह्वान किया। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी एजेंसियों को घुसपैठ रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए। डिजिटल भुगतान क्रांति के अंतर्गत UPI के 10 वर्ष पूरे, डिजिटल लेनदेन में लगभग 13,000 गुना वृद्धि। सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों पर लगे निर्यात प्रतिबंध हटाए। भारतीय जनता पार्टी पंजाब विधानसभा चुनावों में सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज पेचिंग में भारत चीन सीमा मुद्दे पर चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ वार्ता करेंगे और कोलंबो में ध्रुव जुरेल और देवदत्त पडिक्कल के शतक से श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट में भारत की पकड़ मजबूत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा राजनयिकों से अपनी पोस्टिंग वाले देशों में जमीनी स्तर पर जुड़ने और स्थानीय समुदायों के साथ भारत के संबंधों को प्रगाढ़ करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में 2025 बैच के भारतीय विदेश सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत में श्री मोदी ने पारंपरिक राजनयिक दायरों से आगे बढ़कर अपने संबंधों का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने प्रशिक्षु अधिकारियों से कहा कि वे भारत की वैश्विक भागीदारी को और मजबूत करने के लिए देश की सभ्यगत खूबियों को तकनीकी, नवाचार और प्रभावी संचार के साथ जोड़े। प्रधानमंत्री ने प्रशिक्षु अधिकारियों से यह भी कहा कि वे दुनिया के साथ देश की आर्थिक भागीदारी को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाए। श्री मोदी ने प्रशिक्षु अधिकारियों से कहा कि वे भारत की सभ्यगत, सांस्कृतिक और भौगोलिक खूबियों को दुनिया के सामने लाकर भारत को एक आकर्षक वैश्विक पर्यटन स्थल बनाने की दिशा में काम करें। प्रशिक्षु अधिकारियों ने प्रशिक्षण और भारत दर्शन के अपने अनुभव प्रधानमंत्री मोदी से साझा किए। इस ग्रुप में भारतीय विदेश सेवा के 50 प्रशिक्षु अधिकारी शामिल थे जो देश भर के अलग अलग राज्यों और केंद्रीय शासित प्रदेशों से आए हैं। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने सभी सुरक्षा एजेंसियों को घुसपैठ रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। श्री शाह ने कल नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीतिक सम्मेलन का उद्घाटन किया। एक रिपोर्ट।
3: गृह मंत्री ने कहा कि विभिन्न राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं को तैयार करने के लिए सूचनाओं का AI आधारित विश्लेषण किया जाना चाहिए। सम्मेलन के पहले दिन राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा हुई। इनमें आतंकवाद विरोधी चुनौतियों का सामना करने, बहु एजेंसी केंद्र के माध्यम से खुफिया जानकारी के एकीकरण, विश्लेषण और संचालन, मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए एक रणनीतिक दस्तावेज, अवैध प्रवासियों का पता लगाकर उन्हें निर्वासित करने, साइबर अपराध से निपटने के लिए एक नीतिगत ढांचा और पाकिस्तान द्वारा परोक्ष युद्ध को लेकर चर्चा की गई। दो दिन के इस सम्मेलन में देश भर से 850 से अधिक प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि लगभग 2,03,000 आवेदकों में से अब तक 23,000 लोगों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि शेष आवेदनों पर शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने धार्मिक उत्पीड़न के कारण बांग्लादेश छोड़कर आए लोगों से नागरिकता के लिए आवेदन करने का आग्रह किया है। पश्चिम बंगाल सरकार आपात स्थिति से निपटने के लिए अग्निवीरों की भर्ती कर नए आपदा मोचन बल अर्जुन वाहिनी का गठन कर रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ये बल सितंबर से कार्य करना शुरू कर देगा। अब तक सैनिक बोर्ड के माध्यम से 200 कर्मियों का चयन किया जा चुका है। इनमें से 100 कोलकाता, 50 पहाड़ी क्षेत्रों और 50 समुद्र में तैनात किए जाएंगे। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI ने डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में बदलाव लाते हुए 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। ये भारत के डिजिटल भुगतान प्रणाली की रीढ़ बन गया है। 25 अगस्त 2016 को शुरू हुए UPI के लेनदेन की संख्या में लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर।

0: हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों पर लगे निर्यात प्रतिबंध हटा दिए हैं। इससे आटा, मैदा, सूजी और अन्य गेहूं आधारित उत्पादों के विदेशी निर्यात का रास्ता खुल जाएगा। विदेश व्यापार महानिदेशालय की अधिसूचना के अनुसार सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों के लिए निर्यात नीति में तत्काल प्रभाव से संशोधन किया है। महानिदेशालय की अधिसूचना में सरकार ने कुछ विशेष श्रेणियों के गेहूं और ड्यूरम गेहूं के निर्यात को प्रतिबंध से मुक्त घोषित कर दिया है। दिल्ली सरकार के खाद्य सुरक्षा विभाग ने त्योहारों के इस मौसम में निरीक्षण गतिविधियों को तेज कर दिया है। विभाग ने ओखला सब्जी मंडी में निरीक्षण के दौरान 500 किलोग्राम से अधिक मिलावटी पनीर नष्ट कर दिया और खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। विभाग ने पिछले 48 घंटों में दिल्ली के विभिन्न जिलों से खाद्य पदार्थों के 22 नमूने एकत्र किए और उन्हें विश्लेषण के लिए प्रयोगशालाओं में भेजा। भारतीय जनता पार्टी महासचिव बीएल संतोष ने पटियाला में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब विधानसभा चुनावों में सभी 117 सीट पर चुनाव लड़ेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पंजाब में विधानसभा चुनाव अगले वर्ष के शुरू में होने हैं।
1: बीजेपी के संगठन महासचिव श्री संतोष की ये घोषणा ऐसे समय में आई है जब भाजपा और शिरोमणि अकाली दल के बीच फिर से गठबंधन की संभावना को लेकर चर्चा तेज हो गई थी। उन्होंने कहा कि पंजाब बदलाव के लिए तैयार है और भाजपा भी बदलाव लाने के लिए पूरी तरह से तैयार है और राज्य में अगली सरकार बनाएगी। पंजाब के 2 दिन के दौरे पर आए श्री संतोष ने कल पटियाला और बठिंडा में संगठनात्मक बैठकें की। आज वे लुधियाना, जालंधर और अमृतसर में संगठनात्मक बैठकें करेंगे। इन बैठकों में पूरे पंजाब से पार्टी कार्यकर्ता और नेता आगामी चुनावों की रणनीति पर चर्चा करने के लिए आ रहे हैं। आज शाम अमृतसर में भी राज्य के महासचिवों के साथ एक अलग बैठक संभावित है। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: मिजोरम विधानसभा का 2 दिन का मॉनसून सत्र आज से शुरू होगा। सत्र के दौरान कई विधायी और सरकारी कामकाज से संबंधित कई विषयों पर चर्चा होगी। 2 दिन का ये सत्र बुधवार को सम्पन्न होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सर्वश्रेष्ठ लोगों की संगति में रहना और विद्वानों से सत्य पर चर्चा करना जीवन को समृद्ध बनाता है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज संस्कृत का एक उद्धरण साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जो लोग लोभ से मुक्त लोगों से मित्रता करते हैं वे कभी निराश नहीं होते। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज पेचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ भारत चीन सीमा विवाद पर वार्ता करेंगे। दोनों नेता अन्य द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। श्री डोभाल चीन के उपराष्ट्रपति हान झेंग से भी भेंट करेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कल 2 दिन की चीन यात्रा पर पेचिंग पहुंचे। डोभाल वांग की वार्ता से पहले विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता चीन के साथ अच्छे संबंधों के लिए एक पूर्व शर्त है। श्री डोभाल और श्री वांग दोनों ही सीमा वार्ता के लिए नामित विशेष प्रतिनिधि हैं। इसकी स्थापना 2003 में भारत चीन सीमा विवाद के व्यापक समाधान के लिए की गई थी। पिछले वर्ष अगस्त में चीन और भारत ने वार्ता के दौरान दोनों पक्षों ने सीमा के मुद्दों पर खुलकर और गहन विचार विमर्श किया और कई सामान्य सहमतियों पर पहुंचे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज कनाडा और अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य द्विपक्षीय आर्थिक संबंध और वित्तीय संबंध मजबूत करना है और साझा वैश्विक आर्थिक प्राथमिकताओं पर सहयोग बढ़ाना है। टोरंटो में यात्रा के दौरान श्रीमती सीतारामन कनाडा के वित्त और राष्ट्रीय राजस्व मंत्री के साथ आर्थिक और वित्तीय संवाद करेंगे। ये संवाद दोनों पक्षों को व्यापक आर्थिक विकास, वित्तीय क्षेत्र में सहयोग, द्विपक्षीय निवेश के अवसरों और साझा अंतर्राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगा। केरलम में आज उत्थरादम उत्सव मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि 10 दिन तक चलने वाला ओणम उत्सव का अंतिम दिन है।
2: उत्थरादम सिर्फ तिरुओणम से पहले का दिन ही नहीं है बल्कि ये त्योहार की तैयारियों और आखिरी समय की खरीदारी करने का भी दिन है। पारंपरिक उत्थरादा पाशिल ने राज्य के बाजारों में रौनक ला दी है। घरों को रंग बिरंगे ओड़ा पूक्कलम फूलों की रंगोली से सजाया जा रहा है और साथ ही कल परोसे जाने वाले पारंपरिक ओड़ा साध्या ओणम के खास भोज की तैयारियां भी चल रही है। पूरे केरलम में कल से ओणम और पर्यटन सप्ताह समारोह शुरू हो गए हैं। तिरुवनंतपुरम और कई जिलों में इन समारोह के अंतर्गत कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मिति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष।

0: से मैं सरफिरोजी।
1: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, पूर्वोत्तर भारत, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, तटीय कर्नाटक, केरलम और माही में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी राजस्थान, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और कर्नाटक में आज गरज चमक के साथ वर्षा की संभावना है। उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी में सक्रिय कम दबाव का असर राज्य के कई हिस्सों में महसूस किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
2: बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र अभी भी सक्रिय है और उड़ीसा में मौसम पर इसका असर बना हुआ है। आईएमडी का कहना है कि आज से बारिश कम हो जाएगी, लेकिन 30 अगस्त तक बारिश जारी रहने की उम्मीद है। आज सुबह तक 6 जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग और 16 जिलों के लिए येलो वार्निंग जारी की गई है। बाढ़ से प्रभावित भद्रक और जाजपुर में लगातार बारिश और जल भराव के कारण एहतियात के तौर पर कई संवेदनशील स्कूल आज बंद रखे गए हैं। इस बीच आखुआपदा में बैतरणी नदी अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हालांकि जलस्तर में गिरावट देखी जा रही है। हीराकुद बांध के और गेट खोले जाने के कारण महानदी का जलस्तर बढ़ रहा है। वहीं जलका नदी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: बिहार में गंगा और अन्य प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ने से पटना समेत कई जिलों में बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई है।
3: गंगा और इसकी सहायक नदियों के उफान से भागलपुर जिले के नवगछिया अनुमंडल के राघोपुर में रिंग बांध टूटने से बाढ़ का पानी गांव में फैल गया है। बेगूसराय जिले के झमटिया गांव के पास भी रिंग बांध करीब 30 फीट टूटने से कई पंचायतें बाढ़ से प्रभावित हैं। जल संसाधन विभाग की टीम बांधों की मरम्मत में जुटी है। इस बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण कर स्थिति का जायजा लिया है। मुख्यमंत्री ने प्रशासन को पूरी तत्परता के साथ राहत और बचाव कार्य संचालित करने के निर्देश दिए हैं। इधर गंगा के बढ़ते जलस्तर के बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आग्रह पर पश्चिम बंगाल सरकार ने फरक्का बैराज के सभी गेट खोल दिए हैं। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल एक वर्चुअल बैठक के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अधिकारियों के साथ उभरती प्राथमिकताओं और रणनीतियों पर चर्चा की। श्री जोशी ने बताया कि चर्चा में खेलो इंडिया अभियान भी शामिल था। कोलंबो में भारत की श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट में पकड़ मजबूत हो गई है। खेल के दूसरे दिन कल ध्रुव जुरेल और देवदत्त पड़िक्कल के शतक के बाद भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर समाप्त घोषित कर दी। जवाब में श्रीलंका ने पहली पारी में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट पर 8 रन बना लिए थे। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
4: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेवा तीर्थ में भारतीय विदेश सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत की खबर पर पंजाब केसरी ने लिखा है, राजनीतिक दायरे से आगे बढ़े डिप्लोमेट, तैनाती वाले देशों में जमीनी स्तर पर मजबूत जुड़ाव का आह्वान किया। जनसत्ता ने अभियान शीर्षक से लिखा है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय खेल दिवस से पहले युवाओं को करेंगे संबोधित, देश भर के युवा और खिलाड़ी अभियान में दिखेंगे एक साथ, आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी और अन्य संस्थान होंगे शामिल। दैनिक जागरण के अनुसार 20 राज्यों में फैला साइबर ठगी का नेटवर्क ध्वस्त, विदेश भेजते थे रकम, एक घंटे में 400 खातों में ट्रांसफर होती थी राशि। 27,850 करोड़ रुपए के लेन देन के सबूत मिले। जनसत्ता की सुर्खी है, मॉस्को में पुतिन से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर, व्यापार, ऊर्जा, उर्वरक और परमाणु सहयोग पर हुई बात। पत्र के अनुसार भारत और रूस के कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय आर्थिक संबंध मजबूत करने और सहयोग बढ़ाने की दिशा में काम करने के कारण जयशंकर और पुतिन की बैठक महत्वपूर्ण है। अमर उजाला का शीर्षक है, कांदा एक्सप्रेस आज पहुंचेगी दिल्ली, कल से 35 रुपए किलो मिलेगा प्याज। दैनिक भास्कर के अनुसार मरीज के ट्यूमर से बनेगी वैक्सीन, शरीर खुद कैंसर कोशिकाएं ढूंढकर मारेगा।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा राजनयिकों से पोस्टिंग वाले देशों में जमीनी स्तर पर जुड़ने और स्थानीय समुदायों के साथ भारत के संबंध प्रगाढ़ करने का आह्वान किया। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी एजेंसियों को घुसपैठ रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए। डिजिटल भुगतान क्रांति के अंतर्गत यूपीआई के 10 वर्ष पूरे, डिजिटल लेनदेन में लगभग 13,000 गुना वृद्धि। सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों पर लगे निर्यात प्रतिबंध हटाए। भारतीय जनता पार्टी पंजाब विधानसभा चुनावों में सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और कोलंबो में ध्रुव जुरेल और देवदत्त पड़िक्कल के शतक से श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में

0: भारत की पकड़ मजबूत। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय।

0: 78 लाख थे, जबकि 2025-26 में ये बढ़कर 24,162 करोड़ लेन देन पर पहुंच गए हैं। इस अरसे के दौरान लेन देन की मालियत भी 7,000 करोड़ रुपए से बढ़कर तकरीबन 314 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई। वजारत ने कहा है कि यूपीआई मुख्तलिफ मुल्कों में डिजिटल अदायगी के एक आलमी प्लेटफॉर्म के तौर पर भी उभरा है और सरेदस्त 11 मुल्कों में इसका इस्तेमाल हो रहा है। इनमें मुत्तहिद अरब इमारात, फ्रांस, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, सिंगापुर, मॉरिशियस, कतर, कंबोडिया, यूनान और मालदीव शामिल हैं। सरकार ने गेहूं के आटे और इससे तैयार होने वाली अशिया पर बरामदी बंदिशें हटा ली हैं। इस तरह आटा, मैदा, सूजी और आटे से तैयार होने वाली दीगर अशिया की बरामद की राह हमवार हो गई है। गैर मुल्की तिजारत से मुतालिक डायरेक्टोरेट जनरल की जानिब से जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक सरकार ने आटे और मुतालिक अशिया के लिए बरामदी पॉलिसी में तरमीम की है। इसका इतलाक फौरी तौर से होगा। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी पंजाब के आइंदा असेंबली इंतखाबात में सभी 117 असेंबली सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पटियाला में पहली जोनल मीटिंग से खिताब करते हुए बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी बीएल संतोष ने कहा कि पंजाब तब्दीली के लिए पूरी तरह तैयार है और पार्टी रियासत में इंतखाबात जीत कर हुकूमत तश्कील देगी। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: बीजेपी जनरल सेक्रेटरी की तरफ से ये ऐलान बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल के दरमियान इत्तेहाद के इम्कानात के ताल्लुक से जारी बातों के दौरान सामने आया है। जनाब संतोष ने कल पटियाला और भटिंडा में तंजीमी मीटिंगों की सदारत की। जनाब संतोष पंजाब के 2 दिन के दौरे पर हैं। आज वो लुधियाना, जालंधर और अमृतसर में मीटिंगें करेंगे। आइंदा इंतखाबात के लिए मुस्तकबिल की हिकमत अमली के बारे में बातचीत के लिए पार्टी कारकुनान और लीडर इन मीटिंगों में पहुँच रहे हैं। आज अमृतसर में रियासती जनरल सेक्रेटरियों के साथ एक अलहदा मीटिंग भी होनी है। जालंधर से राजेश बाली की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कलीम अहमद।
0: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल आज बीजिंग में भारत चीन सरहदी मामले पर चीन के वजीर खारजा वांग यी के साथ खसूसी नुमाइंदों की बातचीत में शिरकत करेंगे। ये इस तरह की 25वें दौर की बातचीत होगी। जनाब डोभाल चीन के 2 दिन के दौरे पर कल बीजिंग पहुंचे हैं। चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान लिंगजियान ने मीडिया ब्रीफिंग में खसूसी नुमाइंदों की बातचीत का ऐलान करते हुए कहा कि जनाब डोभाल और जनाब वांग यी सरहद के मामले पर तफसीली बातचीत के साथ साथ दीगर दो तरफा इलाकाई और बैन अलाक़वामी उमूर पर भी तबादले ख्याल करेंगे। मगरबी बंगाल सरकार एमरजेंसी सूरत हाल से निपटने के लिए अग्निवीरों को भर्ती करके कुदरती आफात की सूरत में काम करने वाली नई फोर्स अर्जुन वाहिनी तश्कील देगी। रियासत के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि ये फोर्स सितंबर से काम करने लगेगी। अब तक सैनिक बोर्ड के जरिए 200 एहलकारों का इंतखाब किया गया है। इनमें से 100 एहलकारों को कोलकाता में मुतय्यन किया जाएगा। बिहार में पटना और कई दीगर ज़िलों में सैलाब की सूरत हाल मजीद ख़राब हो गई है। दरियाए गंगा और दीगर बड़े दरियाओं में पानी की सतह में इजाफा हो रहा है। तुगयानी पर आए हुए गंगा दरिया से भागलपुर और बेगूसराय ज़िले में पुश्तों में शिगाफ पड़ने की वजह से सैकड़ों लोग मुतासिर हुए हैं। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: रियासत के बेगूसराय ज़िले में झमतिया गांव के नज़दीक पुश्ते में तकरीबन 30 फुट का शिगाव पड़ने की वजह से कई पंचायतों के दायरे में आने वाले इलाके मुतासिर हुए हैं। आबी वसाइल के महकमे की टीमें पुश्तों की मरम्मत के काम में लगी हुई हैं। उधर रियासत के वजीर आला सम्राट चौधरी ने सूरत हाल का जायजा लेने के लिए सैलाब से मुतासरा ज़िलों का फजाई सर्वे किया। उन्होंने इंतजामिया को यह हिदायत दी है कि वो तेजी के साथ राहत और बचाव कार्रवाई अंजाम दें। गंगा में पानी चढ़ने के तनाजुर में मगरबी बंगाल सरकार ने फरक्का बैराज के सभी फाटक खोल दिए हैं। बिहार के वजीर आला सम्राट चौधरी की दरखास्त पर ऐसा किया गया है। इससे बिहार में सैलाब की सूरत हाल को कंट्रोल करने में मदद मिलने की उम्मीद है। पटना से सविता पारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
0: उड़ीसा में आज बारिश की सूरत हाल कुछ बेहतर होने का इम्कान है। अगरचे खलीज बंगाल के ऊपर हवा के कम दबाव के हल्के का असर रियासत के कई हिस्सों में महसूस किया जा सकता है। रियासत के शिमाली साहिली ज़िलों में औसत बारिश का इम्कान है। इस दौरान हालिया मुसलसल बारिश के सबब दरियाओं में पानी की सतह में इजाफा होने के पेश नज़र सैलाब से मुतासर इलाकों में निगरानी की जा रही है। महकमे मौसमियात IMD ने 16 ज़िलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।

0: रियासत में इस माह की 30 तारीख तक बारिश जारी रहने का इम्कान है। तफसील हमारी नामा निगार से।
1: खलीज बंगाल के ऊपर हवा के कम दबाव के जेर असर उड़ीसा में मौसम में मुसलसल तब्दीली आ रही है। कई इलाकों में औसत बारिश और शुमाली उड़ीसा के साहली ज़िलों में बारिश का इम्कान है। 16 ज़िलों के लिए येलो वार्निंग जारी की गई है। लगातार बारिश और पानी जमा होने के मद्देनज़र एहतियात के तौर पर आज सैलाब से मुतासर भद्रक और जाजपुर में बड़ी तादाद में ऐसे स्कूल बंद हैं जो सैलाब से बुरी तरह मुतासर हो सकते हैं। इस दौरान अखुपाड़ा में बैतरनी दरिया अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। अगरचे इसके पानी की सतह में कुछ कमी आ रही है, सैलाब के खतरे वाले इलाकों में हुक्काम मुसलसल करीबी नज़र रखे हुए हैं। भुवनेश्वर से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कलीम अहमद।
0: भारतीय मौसमियात महकमे ने आज छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनज़र ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इधर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, मगरबी बंगाल के जैली हिमालयाई खित्ते, शिमाल मशरकी भारत, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, साहिली कर्नाटक, केरला और माहे में भी तेज़ बारिश होने का इम्कान है। केरलम में 10 रोज़ा ओनम त्यौहार से कबल आज उत्तरादम मनाया जा रहा है। रियासत में कल तिरुओनम के इस्तकबाल के लिए तैयारियां की जा रही हैं। आज के दिन लोग इस बड़े त्यौहार के लिए आखिरी तैयारियां मुकम्मल करते हैं और ख़रीदारी भी करते हैं। रिवायती उथराड़ा पाचिल की वजह से बाज़ारों और ख़रीदारी के मराकज़ पर लोग जश्न की आखिरी ख़रीदारियों में मसरूफ़ हैं। ओना पुक्कलम से घरों को सजाया जा रहा है और रिवायती ओना सदिया के लिए तैयारियां ज़ोरों पर हैं। अमेरिका के वजीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि ईरान पर नई बंदिशों का मकसद उसके मुमकिन माली ज़राए पर रोक लगाना है। उन्होंने मुल्कों को मुतनब्बे किया कि वो ईरान के साथ इक्तिसादी ताल्लुकात को ख़त्म करें वरना उन्हें इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। मर्दों के क्रिकेट में ध्रुव जुरेल और देवदत्त पटिगल की सेंचुरियों की बदौलत भारत ने कल कोलंबो में दूसरे और आखिरी टेस्ट के बारिश से मुतासिर दूसरे दिन मेज़बान श्रीलंका के खिलाफ अपनी पहली इनिंग्स 9 विकेट पर 503 रन बनाकर ख़त्म कर दी। ध्रुव जुरेल ने शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा करते हुए 115 रन बनाए। देवदत्त पटिगल ने कल शानदार 117 रन बनाकर इनिंग्स की मजबूत शुरुआत की थी। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं कलीम अहमद।
1: शुक्रिया कौनैन। दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा इनकलाब ने मॉस्को में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से डॉक्टर एस जय शंकर की मुलाकात से मुतालिक खबर को अहमियत के साथ शाये किया है। इस मुलाकात के दौरान भारत रूस ताल्लुकात को मुस्तहकम करने पर जोर दिया गया। साथ ही वजीर आजम नरेंद्र मोदी का खसूसी पैगाम भी उन तक पहुँचाया गया। अखबार की एक और अहम सुर्खी है, कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल वजीर खारजा वांग यी की दावत पर चीन पहुंचे, जहां वो 25वीं भारत चीन सरहदी मुजाकरात में शिरकत करेंगे। रोजनामा प्रताप की सुर्खी है, मुसाफिरों को पीने का साफ पानी मुहैया कराने के लिए रेलवे ने शुरू की सफाई मुहिम। इस हिकमत अमली के तहत पीने के पानी के पूरे निज़ाम की बार बार जाँच और सही तरीके से देखभाल पर जोर दिया गया है।
0: आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नौजवान सिफारतकारों पर जोर दिया है कि वो जिन मुल्कों में मुतय्यन हैं वहाँ सबसे निचली सतह पर मजबूत रबते कायम करें और मकामी लोगों के साथ भारत के रिश्ते को फ़रोग दें। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने सभी सिक्योरिटी एजेंसियों से कहा है कि वो दरअंदाजी के खिलाफ सख्त इकदाम करें। डिजिटल अदायगी के इनकलाब के तौर पर UPI को 10 साल मुकम्मल हो गए हैं और लेन देन के अतबार से तकरीबन 13,000 गुना का इजाफा हुआ है। सरकार ने गेहूं के आटे और इससे तैयार होने वाली अशिया पर बरामदी बंदिशें हटा ली हैं। बीजेपी आने वाले पंजाब असेंबली इंतखाबात में सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल आज बीजिंग में भारत चीन सरहदी मामले पर चीन के वजीर खारजा वांग यी के साथ खसूसी नुमाइंदों की बातचीत में शिरकत करेंगे। और मर्दों के क्रिकेट में कोलंबो में दूसरे और आखिरी टेस्ट मैच में भारत ने श्रीलंका के खिलाफ मजबूत पोजीशन हासिल कर ली है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है सुबह की 8:45 और पूरी 15 सेकंड। आइए सुनते हैं कार्यक्रम स्वर गंगा। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे भव्या सारस्वत द्वारा ध्रुपद गायन राग।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वर गंगा। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम में अभी आपने सुना भव्या सारस्वत द्वारा ध्रुपद गायन राग हिंडोल। सारंगी पर थे गुलाम अहमद और पखावज पर हरीश चंद्रपति। और श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम विज्ञान पत्रिका।
1: नमस्कार, विज्ञान पत्रिका के आज के इस अंक में आप सबका स्वागत है। विज्ञान हमें ये बताता है कि हमारी दुनिया कैसी है, जबकि कल्पना

हमें ये सोचने का अवसर देती है कि दुनिया कैसी हो सकती है, क्या क्या हो सकती है। जब विज्ञान और कल्पना का मेल हो जाए तो सृजन होता है विज्ञान कथा का, यानी साइंस फिक्शन का। अंतरिक्ष की अनंत यात्राएं, यहाँ पर जीवन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI, रोबोट, टाइम मशीन, भविष्य के शहर और मानव जीवन को बदलती तकनीक। विज्ञान कथाओं की दुनिया बड़ी रोमांचक है और बड़ी जिज्ञासा भरे हैं। विज्ञान के इस अद्भुत संसार

0: मौजूद हैं डॉक्टर वी के त्यागी जी, पूर्व वैज्ञानिक है, विज्ञान प्रसार डीएसटी एवं विज्ञान संचारक और विज्ञान संचार के क्षेत्र के आप विशेषज्ञ हैं। हम आपका स्टूडियो में स्वागत करते हैं। नमस्कार
1: नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद कमल जी।
0: डॉक्टर बी के त्यागी जी, अक्सर हम साइंस फिक्शन की बात करते हैं और कहते हैं कि विज्ञान की जो कथा है वो बड़ा व्यापक रूप है, तो इसे हम किस प्रकार से परिभाषित करेंगे कि आखिर विज्ञान कथा है क्या, साइंस फिक्शन आखिर है क्या?
1: देखिए, इसमें बहुत सारा लोगों का अलग अलग मत हो सकता है, लेकिन जो आज एक बात जो सब मानते हैं कि ये कि आज की तारीख में जो साइंस के सिद्धांत हैं, यानी कि जो साइंस प्रूव हो चुकी है, जो नियम बन चुके हैं, उनको आधार मान के अगर हम कोई कहानी कथा लिखते हैं और जिसमें कि ये कल्पना करी जा सकती है कि ये जो सिद्धांत है इसको अगर हम समाज की उपयोगिता के लिए इसका इस्तेमाल करें तो कैसे किया जा सकता है। और दूसरा ये कि मान लीजिए जहाँ तक अभी हम नहीं पहुँचे तो एक हमारी कल्पना जाती है कि ये कैसा होगा, तो उस कल्पना को करने के लिए जो आज जो जानकारी है उसको आधार मान के हम वो कल्पना कर सकते हैं, यानी कि फ्यूचर के बारे में हम एक खाका जो है वो खींच सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं एक बड़ी मतलब बहुत रोचक बात है कि जो सबसे पहली विज्ञान कथा 1883-84 के बीच लिखी गई थी, पंडित अंबिका दत्त व्यास जी ने लिखी थी, जिसमें उन्होंने कल्पना करी थी कि जो पृथ्वी का जो केंद्र है वो उसकी यात्रा का वृत्तांत है। अब सोचिए जरा, आज की तारीख में हॉलीवुड में बड़ी सारी फिल्में बनी है जर्नी टू द सेंटर ऑफ अर्थ करके और इस तरह की बहुत सारी। अब ये आप देखिए कम से कम कितनी पुरानी बात है। तो ये जो जानकारी थी पृथ्वी के बारे में कि पृथ्वी ऊपर से अंडे जैसी है, ये है वो है, उसको आधार मानते हुए वो उसके केंद्र में जाने की एक कल्पना कर रहे हैं। हालांकि क्योंकि जैसे जैसे हमारी जानकारी बढ़ती जाती है उस तरीके से हमारी कहानियों में वो जो बदलाव है, इम्प्रूवमेंट है, एक्यूरेसी ऑफ साइंटिफिक फैक्ट आता जाता है। तो कोई भी जो कथा है जो विज्ञान के तथ्यों पर आधारित है, विज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित है, उस टेक्नोलॉजी पर आधारित है जिससे आने वाले समय में कुछ बदलाव समाज में क्या होगा, अगर उसके प्रभाव के बारे में बात करती है, ये अच्छा होगा या बुरा होगा और उस टेक्निक के क्या क्या संभावित उपयोग हो सकते हैं, तो यहाँ पे एक कहीं की लेखक की कल्पना आती है कि वो सोचता है कि अगर ये साइंस को इस कल्पना के साथ मिला दिया जाए तो ये रिजल्ट होगा। और कभी कभी वो लेखक ने जो कल्पना करी उसको वैज्ञानिकों ने साकार किया है। उसका एग्जाम्पल स्टार वॉर्स एक फिल्म आई थी 70 के दशक में और उसके बाद एक ये चर्चा चली कि किस तरीके से एक शील्ड जो है देश के ऊपर बना ली जाए कि कोई भी जो मिसाइल है वो उसके अंदर ना आ सके, और इस पे काम हुआ।
0: डॉक्टर त्यागी जी, ये कल्पना की बात हुई, सोच की बात हुई, अगर हम इसे सपने की बात कर दें तो क्या ये भी एक साइंस फिक्शन का हिस्सा हो सकता है?
1: बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अगर आप मोटे तौर पर क्या कहते हैं कल्पना को, हम यही कहते हैं कि भाई क्या सपने देख रहा है, क्या ख्यालों में खोया हुआ है, तो ये एक हमारे मस्तिष्क की जर्नी है, लेकिन वो उसके सामने एक उस कल्पना में एक लिमिटेशन है कि वो उसकी कल्पना अपनी कल्पना के दायरे को जो वैज्ञानिक जगत की जो जानकारी है आज की तारीख में या जब वो लिख रहा है उस वक्त क्या जो साइंस है वो कहती है उसको आधार मानना बहुत जरूरी है।
0: जी डॉक्टर त्यागी जी, आपको याद आ रहा है कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने,
1: सपने बिल्कुल
0: तो ये
1: बिल्कुल
0: भी वो साइंस फिक्शन के तौर भी कह सकते हैं, उसमें कुछ अलग था, लेकिन इसमें
1: बिल्कुल
0: अगर हम प्रेरणा लेने की बात करें,
1: हाँ,
0: अगर इसे आपके गाइडेंस की बात करें तो उसको भी एक आधार मान सकते हैं ना।
1: बिल्कुल, क्योंकि देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एक हम टेक्निकली फर्क करते हैं जब एक विज्ञान कथा और एक विज्ञान गल्प, जो मतलब कि एक पूरी कल्पना होती है, जैसे परी लोक की कथा, तो अब परी उड़ रही है, अब आप देखिए कि वो क्या उस वेट जो आदमी का होता है, कितने पंख चाहिए, कितने बड़े चाहिए, हम एरोप्लेन बना, शायद परियों की कहानी सुन के हमें एरोप्लेन बनाने की जो ख्याल आया होगा, लेकिन इसको हम साइंस फिक्शन में नहीं लेंगे, कथा कह सकते हैं इसको,
0: जी
1: क्योंकि अगर हम पुराने उसमें जाएं, अपने स्क्रिप्चर्स देखें, उसमें बहुत सारे ऐसे चीजों का जिक्र है जो आज की तारीख में एक सच्चाई हो गई। तो कल्पना जो है हमें एक कहें कि वैज्ञानिकों को एक तरीके से मेंटल खुराक भी देती है कि अगर ये आदमी सोच सकता है तो इसको बनाया जाना है या इस सपने को साकार कैसे किया जाए। देखिए जब पक्षियों को आसमान में उड़ते हुए किसी वैज्ञानिक ने भी देखा होगा और उसके बहुत सारे जो कहें कि शुरुआती दौर में लोगों ने कोशिश करी और उसका रिजल्ट क्या है, आज हम देखते हैं कि हम अगर यात्रा करते हैं तो एरोप्लेन से जाते हैं, हालांकि उसके पीछे पूरा एक बहुत बड़ा साइंस है, एरोडायनेमिक्स का साइंस है, उसमें डिजाइन का साइंस है, उसमें मटेरियल का साइंस है और इलेक्ट्रॉनिक्स का साइंस है, तो वो बहुत सारी चीजें मिला के, लेकिन वो सेकेंडरी हुआ, पहले इसमें जो सबसे बड़ा रोल था वो कल्पनाशीलता का था। वैज्ञानिक भी जब आप कुछ नई डिस्कवरी इन्वेंशन करने की सोचता है, एक तो ये होता है कि सडनली वो इन्वेंशन हो गई या वो एक फाइंडिंग हो गई, एक होता है कि जब आप सोच समझ के कर रहे हैं तो पहले आप एक टारगेट फिक्स करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, तो वो आप

0: कल्पनाशीलता से ही करते हैं।
1: पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन के नाम से मशहूर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का एक कोट है, कोटेशन है कि सपने वे नहीं जो हम सोते समय देखते हैं, बल्कि सपने वे हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। यानी कि जो हम सपने देख रहे हैं और वो उस सपने के बाद में अगर हम उसको अगर एक कथा के रूप में विकसित करना चाहते हैं, उसको हकीकत का रंग देना चाहते हैं, तो कुछ ना कुछ उसमें अपनी जो सोच है वो डालना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा उसको, उसके बाद उसे चित्रित करना पड़ेगा। क्या कहना चाहेंगे?
0: बिल्कुल बिल्कुल, आप कल्पना करिए या जो सपना देखा है उसको जो साकार होगा वो खुली आंखों से होगा। उनका मकसद ये था कि यानी कि आपको अफोर्ड करना पड़ेगा, आपको जो प्रेजेंटली जो अवेलेबल साइंस है वो पढ़ना पड़ेगा और उसका किस तरीके से इस्तेमाल आप अपनी कल्पना को साकार करने के लिए कर सकते हैं वो अचीव आप कर सकते हैं। तो
1: जी
0: ये बहुत एक कहें कि बड़ी गूढ़ फिलोसफी उन्होंने इस बात में कही और आज तक वो इंस्पिरेशन है सभी बच्चों के
1: जी
0: लिए
1: जी
0: कि सपने जो हैं खुली आंखों से देखने हैं।
1: डॉक्टर त्यागी जी, तो क्या विज्ञान की जो कथाएं हैं वो वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है या फिर इसमें कल्पना की भूमिका, सोच की भूमिका अधिक होती है?
0: नहीं, इसमें जैसे हमने टाइम मशीन की बात करी, टाइम मशीन एक वैज्ञानिक सत्य है। टाइम जो है स्पीड के साथ और ग्रेविटी के साथ, वो कहते हैं ना टाइम डायलेशन की भी
1: जी
0: बात होती है, तो वो एक फैक्ट है। अभी तक उसको आधार मान के बड़ी सारी किताबें लिखी गई टाइम
1: रिसर्च
0: मशीन,
1: हुए हैं।
0: हाँ, और अभी तक वो डिसअप्रूव नहीं हो पाया। तो आज की साइंस अभी भी वही है और उसमें कल्पनाशीलता की बात हो रही है। और जैसे कि आप मान लीजिए टर्मिनेटर फिल्म आपने देखी होगी, टर्मिनेटर सीरीज का, कि एक फ्यूचर से एक बंदा आता है और वो दूसरा बंदा पास्ट में जाके चीजों को ठीक करता है, इस तरीके से बात हुई। तो वो कैसे पॉसिबल है? वो इसी सिद्धांत पे पॉसिबल है कि आप जो टाइम है वो उस थ्योरी के हिसाब से एक डायरेक्शन में चल रहा है और अल्टीमेट जो लिमिट है हमारे पास वो स्पीड ऑफ लाइट की है
1: जी
0: आज
1: जी
0: की तारीख में।
1: जी जी डॉक्टर त्यागी जी, तो क्या विज्ञान कथा जो लेखक हैं उन्हें संभावनाओं के भविष्य दृष्टा के रूप में देख सकते हैं, कह सकते हैं?
0: बिल्कुल, क्योंकि एक साइंस एक टूल है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ टेक्निक का, कि एक टेक्निक विकसित करी थी एमनियोसिंथेसिस, जिसमें वो वैज्ञानिकों के लिए कहें कि मेडिकल साइंस के लिए एक उस टाइम पे कहें कि पूरा एक आशीर्वाद की तरह आया था कि अगर कोई बच्चा गर्भ में पल रहा है तो उसमें कोई कंजीनियल डिफेक्ट तो नहीं है, ये जांचने के लिए वो टेक्निक का इस्तेमाल होता था। अब भारत जैसे देश में, क्योंकि समाज में टेक्नोलॉजी की जो यूटिलिटी होती है वो डिजास्टर भी पैदा कर
1: जी
0: सकती
1: हाँ
0: है,
1: जी
0: उसमें क्या हुआ कि हमारे यहाँ पे वो लोगों ने उस टेक्निक का इस्तेमाल करने लगा कि गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या लड़की है, इसलिए उस टेक्निक को बैन करना पड़ा। तो विज्ञान कथा ये भी बताती है कि
1: जी
0: एक टेक्नोलॉजी आई जिसमें आप ये कह रहे हो कि इसका फायदा ये होगा, जैसे कि हम ग्रीन रिवोल्यूशन की बात करते थे कि बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइजर डालो, पेस्टिसाइड डालो, उससे फायदा हुआ, लेकिन उसका लॉन्ग टर्म जो इम्प्लीकेशंस है वो उस टाइम पे हमने
1: अन्न का उत्पादन तो
0: बढ़ा
1: बढ़ा लिया,
0: लिया,
1: लेकिन
0: लेकिन
1: लॉन्ग टाइम में, लॉन्ग टर्म
0: मिट्टी
1: में
0: खराब कर
1: मिट्टी
0: ली,
1: खराब हो
0: पानी
1: गई।
0: खराब कर लिया,
1: जी
0: जिसके प्रभाव अभी नजर आ रहे हैं।
1: जी
0: तो ऐसा नहीं है कि ये बात पता नहीं थी, ये कहानी किस्सों में वैज्ञानिकों ने खूब इस बात को कहा था कि भाई हमें पता नहीं है लेकिन ऐसी संभावनाएं हो
1: हो
0: सकती हैं
1: सकती
0: जो
1: है।
0: आज हम देख रहे हैं कि उसका रिजल्ट हमारे को दिख रहा है, उसी
1: जी
0: तरीके से बात हो
1: जी
0: रही
1: जी
0: है।
1: जी
0: तो विज्ञान कथा जो है वो विज्ञान को लेके उसका क्या संभावनाएं अच्छी या बुरी हो सकती हैं वो दोनों पे हम बात करते हैं।
1: तो साइंस फिक्शन और फैंटेसी, इन दोनों में क्या डिफरेंस है?
0: मैंने बताया ना कि जो साइंस फिक्शन है वो प्योरली हमारे साइंटिफिक फैक्ट पे आधारित होगा, साइंटिफिक प्रिंसिपल पे आधारित होगा। फैंटेसी में आप एक एक लिवरेज ले सकते हो। मैं यहाँ पे मैंने शुरू में भी बात की थी चंद्रकांता का, हम उदाहरण ले सकते हैं चंद्रकांता, क्योंकि उसमें बड़ी सारी डिबेट है। कुछ लोग मानते नहीं ये पहला साइंस फिक्शन है क्योंकि इसमें जो तरीका बताया वो साइंटिफिक थिंकिंग को, वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देता है जिस तरीके से वो लिखी गई
1: लेकिन
0: है।
1: उसमें मॉरेलिटी भी थी।
0: मॉरेलिटी तो थी क्योंकि बिना साइंस एथिक्स के जो हम विज्ञान कथा लिखते हैं उसमें मॉरेलिटी और एथिक्स के बारे में हमेशा बात होती है, क्योंकि वो जो साइंस है या वो जो सिद्धांत है वो है किसके लिए? हमारे लिए है, हमसे समाज है। अगर उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है तो वो हमें उसी वक्त बता देना चाहिए कि जब वो टेक्निक आ रही है।
1: डॉक्टर त्यागी जी, अंतरिक्ष विज्ञान कथा हमेशा से लोगों के बीच में एक लोकप्रिय सब्जेक्ट रहा है, विषय रहा है। तो दूसरे ग्रहों पर जो मानव जीवन है, बस्तियां हैं, ऐसी कल्पना की जाती है, और उसमें भी अक्सर हम लोग सुनते हैं कि जो एलियन है वो एलियन की भी बात होती है। ये सब बातें हमें इतनी आकर्षित क्यों करती हैं?
0: देखिए, ये तो एक मानव स्वभाव है। जो उत्सुकता है, क्रियोसिटी है, बहुत सारे स्क्रिप्चर में लिखा गया है कि क्या मैं ब्रह्मांड में अकेला हूँ, और उसके बारे में अलग अलग कल्पनाएं हैं, मल्टीवर्स की बात की गई है जो कि हमारे पुराने स्क्रिप्चर में बड़ा अच्छा था, और आज हम बात भी कर रहे हैं कि यूनिवर्स एक नहीं है, मल्टीवर्स है, मतलब बहुत सारे हैं, और उसके ऊपर फिल्में भी बनी है, पैरेलल है कि आप अगर यहाँ पर हैं तो ऐसा ही और यूनिवर्स है, उसमें आपका हमशक्ल जैसा कोई बंदा हो सकता है, तो उसको लेके भी फिल्में बनी है। मान लीजिए ये अभी थ्योरी है, इट्स नॉट अ बिकम ए परफेक्ट लॉ, बट उसको आधार मान के, क्योंकि उसका भी बेसिस है मल्टीवर्स का, तो उसको लेके बहुत सारी फिल्में बनी है, क्योंकि जो विज्ञान कथाएं हैं वो सिर्फ प्रिंट मीडिया तक सीमित नहीं रही हैं, अभी हमारा जो फिल्में हैं वो हम देख रहे हैं कि बहुत सारी फिल्में उन सब्जेक्ट पे बन रही हैं, तो हम उस हिसाब से कहें कि उनको देखते हैं।
1: डॉक्टर त्यागी जी, जब फिल्मों की बात हो रही है तो बच्चों को जो कार्टून की जो फिल्में हैं, साइंस फिक्शन की जो फिल्में हैं, वो बड़ी पसंद आती हैं, और इसमें बच्चे कई बार क्या होते हैं, वायलेंट भी हो जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे?
0: देखिए, वो जो मार्वल जो सीरीज के बारे में आप बात कर रहे हैं, क्योंकि पहले वो कार्टून में आया और फिर उसको वो कर दिया, वो साइंस फिक्शन नहीं है, वो फैंटेसी है, बट फैंटेसी की एक अपनी वैल्यू है, वो आपके इमेजिनेशन को इंक्रीज करता है, और इमेजिनेशन भी बहुत जरूरी है ना, कल्पना नहीं करोगे तो उसको साकार करने का भी आइडिया नहीं आएगा।
1: बिल्कुल,
0: ये फिल्मों का रोल वही है कि वो आपकी थोड़ी इमेजिनेशन जो पावर है, जो मेंटल फैकल्टी है, उसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, क्योंकि वो एक कहीं की सीड की तरह काम करते हैं, और उसमें बहुत सारे आइडियाज जो है फिर निकल कर आते।
1: डॉक्टर त्यागी जी, बच्चों और युवाओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने में विज्ञान कथाओं की, साइंस फिक्शन की कितनी भूमिका रही है?
0: बहुत है, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस तरीके से अभी हम एक मल्टीमीडिया टाइप में जो कर रहे हैं, प्रिंट मीडिया, बच्चों में थोड़ा पढ़ने की जो कहें की हैबिट है थोड़ा कम होता जा रहा है, तो छोटी कथाएं जिसमें जो वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित हों, और जैसे अभी हम ये क्लोनिंग की बात करते हैं, तो क्लोनिंग को लेके अगर आप कई कोई क्लोन बना दें तो घर में किस तरह की दिक्कत आप हो सकती है, तो ये छोटे छोटे इंसिडेंट हैं जिसको बेस बना के उनको उसकी जो इम्प्लीकेशंस, विज्ञान की जो लिमिटेशंस हैं, कहाँ उसको जाना चाहिए, कहाँ बढ़ना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम समझा सकते हैं, क्योंकि हर एक टेक्नोलॉजी का समाज पे भी बहुत असर पड़ता है, अब वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये हमको विज्ञान कथाओं के जरिए पहले बता देना चाहिए, बच्चों को भी और बड़ों को भी।
1: डॉक्टर त्यागी जी, जब भी हम कल्पना की बात करते हैं, जब भी इस प्रकार की सोच की बात करते हैं, तो कहीं आपको नहीं लगता कि ये कुछ अंधविश्वास की बात होती है और रूढ़िवादी से बाहर निकलने की बात तो होती है?
0: अगर आप साइंस फिक्शन लिखेंगे तो वो आपको ये अंधविश्वास और रूढ़ियों से निकालेगा। हम साइंस में कॉज और इफेक्ट की जो थ्योरी है कि अगर कुछ प्रभाव है तो कारण होगा, कुछ कारण है तो उसका प्रभाव होगा, वो हम करते हैं, और उसका एक एक्सप्लेनेशन भी उस कथा में होता है।
1: तो क्या आप मानते हैं कि जो साहित्य है या फिल्में हैं, जो वेब सीरीज है, इस विज्ञान कथा को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा माध्यम है ये?
0: बिल्कुल, हमारे प्रोफेसर जैन नालीकर थे, उनकी बहुत सारी किताबें हैं साइंस फिक्शन, अगर इंडिया में नाम लें तो उनकी जो किताबें और कहानियां हैं वो एक एब्सोल्यूट विज्ञान कथाओं की जो टेस्ट है उस पे क्वालिफाई करती।
1: डॉक्टर त्यागी जी, ये जो हमारे श्रोता हैं विज्ञान कथाओं की दुनिया में जो प्रवेश करना चाहते हैं, आना चाहते हैं, लेखक बनना चाहते हैं, साइंस फिक्शन राइटर बनना चाहते हैं, उन्हें किस दृष्टिकोण के साथ उन्हें पढ़ना लिखना या देखना चाहिए?
0: सबसे पहले, क्योंकि आज की तारीख में हम देखें, जैसे कि हम आईटी रिवॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं और रोबोटिक्स की बात कर रहे हैं, तो ये सब्जेक्ट में क्या क्या रिसर्च हो रही है, क्या क्या इंफॉर्मेशन नॉलेज अवेलेबल है, उस नॉलेज और इन्फॉर्मेशन को लेके आप क्या कहानी बना सकते हैं कि उस टेक्नोलॉजी का, उस आउटकम का, उस विज्ञान का फ्यूचर में या अभी किस तरीके से यूज या मिसयूज हो सकता है, तो ये जब खाका आप बना लेते हैं तो डेफिनेटली आप एक अच्छी विज्ञान कथा लिख सकते हैं। उसमें अपना इमेजिनेशन डालिए, जो कि इमेजिनेशन की जो रीड होगी वो साइंटिफिक फैक्ट होगी।
1: डॉक्टर बी के त्यागी जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने इतनी सारी अपनी जानकारियां दी, हमसे चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: धन्यवाद, धन्यवाद कैमिल जी, धन्यवाद।
1: और इसी के साथ विज्ञान पत्रिका का आज का ये अंक यहीं संपन्न होता है। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा।
2: श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक।

0: अभी आप सुन रहे थे पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर पर 10 बजने को हैं। कुछ ही क्षणों में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा राजनयिकों से अपनी पोस्टिंग वाले देशों में जमीनी स्तर पर जुड़ाव को मजबूत बनाने और स्थानीय समुदायों के साथ भारत के संबंधों को प्रगाढ़ करने का आह्वान किया। नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में भारतीय विदेश सेवा के 2025 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत में श्री मोदी ने पारंपरिक राजनयिकों को दायरों से आगे बढ़कर अपने नेटवर्क का विस्तार करने और लोगों के साथ संपर्क बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। श्री मोदी ने प्रशिक्षु अधिकारियों को भारत की सभ्यतागत शक्तियों को प्रौद्योगिकी, नवाचार और प्रभावी संचार के साथ जोड़कर भारत की वैश्विक भागीदारी को मजबूत करने के लिए प्रेरित किया। प्रधानमंत्री ने प्रशिक्षु अधिकारियों से भारत के वैश्विक आर्थिक संबंधों को गति देने में प्रेरक भूमिका निभाने का आह्वान किया। उन्होंने

0: भारतीय दूतावासों की डिजिटल उपस्थिति को मजबूत करने के महत्व पर भी बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने सभी एजेंसियों को घुसपैठ रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। श्री शाह ने कल नई दिल्ली में नवे राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन का उद्घाटन किया। गृहमंत्री ने कहा कि विभिन्न राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं को तैयार करने के लिए सूचनाओं का AI आधारित विश्लेषण किया जाना चाहिए। आतंकवाद और कट्टरपंथ से निपटने के लिए श्री शाह ने गृह मंत्रालय की प्रहार योजना के कार्यान्वयन पर बल दिया। सम्मेलन के पहले दिन राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा हुई। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि लगभग 2,03,000 आवेदकों में से अब तक 23,000 लोगों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि शेष आवेदनों पर शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। पश्चिम बंगाल सरकार आपात स्थिति से निपटने के लिए अग्निवीरों की भर्ती कर नए आपदा मोचन बल अर्जुन वाहिनी का गठन कर रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि यह बल सितंबर से कार्य करना शुरू कर देगा। अब तक सैनिक बोर्ड के माध्यम से 200 कर्मियों का चयन किया जा चुका है। इनमें से 100 कोलकाता, 50 पहाड़ी क्षेत्रों और 50 समुद्र में तैनात किए जाएंगे। एकीकृत भुगतान प्रणाली UPI ने डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में बदलाव लाते हुए 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। यह भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली का आधार बन गया है। 25 अगस्त 2016 को शुरू हुए UPI के लेनदेन की संख्या में लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई है। सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों पर लगे निर्यात प्रतिबंध हटा लिए हैं, जिससे आटा, मैदा, सूजी और अन्य गेहूं आधारित उत्पादों के विदेशी निर्यात का रास्ता खुल गया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों के लिए निर्यात नीति में तत्काल प्रभाव से संशोधन किया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज पेचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ भारत चीन सीमा विवाद पर वार्ता करेंगे। दोनों नेता अन्य द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। श्री डोभाल चीन के उपराष्ट्रपति हान झेंग से भी भेंट करेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कल 2 दिन की चीन यात्रा पर पेचिंग पहुंचे। डोभाल वांग की वार्ता से पहले विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता चीन के साथ अच्छे संबंधों के लिए एक पूर्व शर्त है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज कनाडा और अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर रवाना होंगी। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य द्विपक्षीय आर्थिक और वित्तीय संबंध को मजबूत करना है। भाजपा के महासचिव BL संतोष ने पटियाला में कहा कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब विधानसभा चुनाव में सभी 117 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ेगी। श्री संतोष पंजाब के 2 दिन के दौरे पर हैं। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, पश्चिम बंगाल में तराई वाले क्षेत्रों, पूर्वोत्तर भारत, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, तटीय कर्नाटक, केरलम और माही में भी तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi has called upon young diplomats to build strong grassroots level engagement in their countries of posting and deepen India's connection with local communities. Interacting with the officer trainees of the 2025 batch of Indian Foreign Service IFS, at Seva Teerth, Mr. Modi encouraged the officer trainees to expand their networks beyond traditional diplomatic circles and deepen engagement with people. Mr. Modi encouraged the officer trainees to combine India's civilizational strengths with technology, innovation and effective communication to further strengthen India's global engagement. The Prime Minister also called upon the officer trainees to serve as catalytic agents for countries' economic engagement with the world. The Unified Payments Interface UPI has completed 10 years of transforming digital payments.

0: payment and has emerged as the backbone of India's digital payments ecosystem. The UPI, which was launched on 25th of August 2016, has surged almost 13,000-fold in transaction volume. We have a report from our correspondent.
1: The Finance Ministry said that the annual transaction volume expanded from just 1.78 crore transactions in 2016-17 to over 24,162 crore transactions in 2025-26. The transaction value also rose sharply from 7,000 crore to nearly 314 lakh crore during the same period. The ministry said that UPI has also emerged as a global platform for cross-border digital payments and is currently operational in 11 countries. These are United Arab Emirates, France, Bhutan, Sri Lanka, Nepal, Singapore, Mauritius, Qatar, Cambodia, Greece, and Maldives. UPI has emerged as one of the most successful pillars of India's digital public infrastructure, providing an interoperable real-time payment platform. Vishal Kumar, Akashvani, New Delhi.
0: Union Home Minister Amit Shah has directed all agencies to take strict measures against infiltration. Inaugurating the 9th National Security Strategies Conference 2026 in New Delhi, Mr. Shah directed that an AI-based analysis of information available on multi-agency center platforms should be done to create SOPs to counter various national security challenges. National Security Advisor Ajit Doval will hold 25th round of special representative talks with Chinese Foreign Minister Wang Yi on India-China boundary issue in Beijing today. The two leaders will have an in-depth discussion on the boundary question as well as other bilateral, regional and international issues. Mr. Doval will also call on China's Vice President Han Zheng during his visit. The National Security Advisor arrived in Beijing yesterday on a two-day visit to China. The flood situation has worsened in Patna and several other districts of Bihar due to the rising levels of the Ganga and other major rivers. With the Ganga continuing to swell, breaches in ring embankments in Bhagalpur and Begusarai districts have affected hundreds of people. The rising waters of the Ganga and its tributaries have led to breach in the ring embankment at Raghupur in the Nogatria subdivision of Bhagalpur district, causing flood waters to spread into the village. The U.S. Department of Homeland Security, DHS, has proposed a new $1,03,265 fee on top of existing costs for all H-1B CAP subject petitions, including those for advanced degree holders. According to the press release issued by DHS, the proposed fee would be paid at the time of filing and imposed on top of all other applicable fees on payments. The United States has imposed sanctions under Operation Economic Outcast on nearly 60 entities, individuals and vessels over their alleged links to Iran's military activities, procurement networks and petroleum and petrochemical trade. The India Meteorological Department, IMD, has issued an orange colour warning for heavy to very heavy rainfall over Chhattisgarh and Madhya Pradesh today. The Met Department has forecast heavy rainfall over Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand, Madhya Maharashtra, Vidarbha, Sub-Himalayan West Bengal, Northeast India, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal, Coastal Karnataka, Kerala and Mahi. And that is the end of this news bulletin.
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है. मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल. और आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं हमारे मोबाइल एप्लीकेशन AIR लाइव न्यूज़ 24x7 पर भी. और श्रोताओं, आप हमसे DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर भी कनेक्ट हो सकते हैं. स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक समय हुआ है सुबह के 10:10 और ठीक 25 सेकेंड. समय है आपकी पसंद के फिल्मी गीतों के कार्यक्रम आपकी फरमाइश का. और आज इस कार्यक्रम के साथ मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी. सभी श्रोताओं का, सभी सुनने वालों का आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है. प्रेम भरा नमस्कार मेरा स्वीकार करें आप सभी. आप सभी के ईमेल शामिल करने का मेरा पूरा प्रयास रहेगा. और अगर आपकी पसंद के गीत नहीं भी शामिल हो पाए तो आपके नाम शामिल करने का पूरा प्रयास रहेगा. लेकिन एक निवेदन भी करूंगा जो मैं प्रायः करता हूं दोस्तों, कि आप एक मेल भेजें ताकि सभी के नाम शामिल हो पाएँ. और एक मेल भेजेंगे तो ही समझ में आएगा कि आप कार्यक्रम सुन रहे हैं. कई मेल भेजने वाले कई बार होता है कार्यक्रम सुनते नहीं है या नाम ले लिया जाता है, उसके बाद भी उनका मेल भेजने का सिलसिला सिलसिला जारी रहता है, पता नहीं क्यों। आप एक बार भेज दीजिए और समय हम निकालेंगे, कोशिश करेंगे कि हर श्रोता का नाम शामिल हो पाए। तो शुरुआत करेंगे, उससे पहले एक छोटा सा संदेश आइए सुन लेते हैं।
3: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: जी, तो सतर्क रहिए, और ये अवेयरनेस, ये जागरूकता लगातार इसलिए प्रसारित की जा रही है क्योंकि जिस तरह से डिजिटल प्रौद्योगिकी, जिस तरह से हमारे एज में, हमारे इस दौर में लगातार तकनीकी का प्रभाव हमारे हर काम में, जीवन के हर दिन, हर मोड़ पर बढ़ता जा रहा है, उसी तरह से चुनौतियां भी बढ़ रही हैं। तो थोड़ी सावधानी बरतनी है और अपना काम अच्छे से करते रहना है। शुरुआत करते हैं, और आज एक बहुत ही लोकप्रिय अभिनेता राजीव कपूर के बारे में भी बात करेंगे। उनका संबंध है आज के दिन से, और आज उनकी जयंती है, जन्मदिन है। तो इस क्रम में हम बात करेंगे और उनकी भी, और साथ में बात करेंगे और भी गानों की और आपकी पसंद के गीतों की। लेकिन सबसे पहले, क्योंकि इस समय बारिश का मौसम है और काफ़ी अच्छी बरसात कुछ जगहों पर हो रही है, जबकि कुछ जगहों पर लोग बारिश के बादलों का इंतज़ार ही कर रहे हैं, शुरुआत करते हैं बहुत ही प्यारे से गीत, जो है किशोर कुमार के स्वर में, मंजिल फिल्म से इसे लिया है। योगेश गीतकार हैं और राहुल देव वर्मा ने संगीत तैयार किया है। और सुनने के लिए आप सभी श्रोताओं के ईमेल मिले हैं। अमरावती महाराष्ट्र से सिद्धार्थ गुंडा ने, अर्चना ताई गुंडा ने, हीरा मन शेंडे, प्रणय प्रसिद्धि प्रतिभा, और बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से जयपाल यादव, इंद्रपाल, राघवेंद्र, अरविंद, रागिनी, रिया, रेणु, दिव्यांशी, आराधना, रोनिका यादव और चंद्रेश गोहर, सुनील पाठक। राजगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल, परी, कृतिका, रमेश चंद्र डांगी, दुर्गाई सेलू से चंदू कुलकर्णी, हेमलता और सीआर कुलकर्णी, खरगोन मध्य प्रदेश से प्रवीण श्रीमाली और मीना श्रीमाली, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार।

आइए सुनते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे राजीव कपूर और कुछ और पर्सनालिटीज़ की जो आज के दिन से जुड़ी हुई हैं, और आपके ईमेल भी शामिल करेंगे। अगला जो गीत है वो लिया है हमने ब्लैकमेल फिल्म से किशोर कुमार के ही स्वर में, और सुनवाने के लिए जिन श्रोताओं के ईमेल मिले हैं उनके नाम इस गीत के बाद।

इस गीत के लिए आप सभी श्रोताओं के ईमेल हमें प्राप्त हुए। श्रोताओं, एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट, उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाणकर, सरिता, प्रिंस और एकांश गवाणकर, बदलापुर मुंबई से प्रणीता गवाणकर, सिद्धांत, अर्जुन गवाणकर और टुकटुक, नागपुर वैशाली से शैलेश गवाणकर, नागपुर से वैशाली शैलेश गवाणकर, एकांश, सुमित और ध्वनि गवाणकर, जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, तमन्ना भाटिया, इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे, ललिता, गणेश, कार्तिक, परी खर्चे और स्वाति प्रयाग चौधरी, बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, परदीन, सुहान, अरजान, अबान और अब्बास अबान अब्बासी। आप सभी की पसंद पर हमने ये गाना सुना और कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाएंगे अगला जो गाना वो है राम तेरी गंगा मैली है फिल्म से। और इस फिल्म में आपने अभिनय देखा था राजीव कपूर का। हिंदी सिनेमा में श्रोताओं इतिहास, हिंदी सिनेमा का जो इतिहास है उसमें कपूर परिवार का नाम एक ऐसी विरासत से जुड़ा है जिसने अभिनय के साथ साथ फिल्म निर्माण और निर्देशन को भी समृद्ध किया और इसी गौरवशाली परिवार की एक महत्वपूर्ण कड़ी थे राजीव कपूर। 25 अगस्त 1962 को जन्मे राजीव कपूर अभिनेता, निर्देशक, निर्माता राज कपूर के सबसे छोटे पुत्र थे। 1983 में फिल्म एक जान है हम से उन्होंने अपने अभिनय जीवन की शुरुआत की। इसके बाद आसमान, मेरा साथी, लावा, जबरदस्त, लवर बॉय और हम तो चले परदेश जैसी फिल्मों में उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। लेकिन राजीव कपूर के फिल्मी सफर की सबसे उल्लेखनीय पहचान बनी वर्ष 1985 की फिल्म राम तेरी गंगा मैली। अपने पिता राज कपूर के निर्देशन में बनी इस फिल्म में राजीव कपूर ने नरेंद्र यानी नरेन की भूमिका निभाई। ये उनके अभिनय जीवन की सबसे यादगार फिल्मों में गिनी जाती है और उस वर्ष की सर्वाधिक सफल भारतीय फिल्मों में रही।

ये जो गीत आपने सुना, इसके लिए आप सभी श्रोताओं के नाम ईमेल हमने शामिल किए। जालंधर पंजाब से संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत और कमल साहनी। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा। दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, चैतन्य मस्कीन और आशीष राजा। मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी, सौरव, साइना और निवान शर्मा। चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा, तथा पहाड़गंज मुल्तानी ठांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु नायक के। और दोस्तों, हम बात कर रहे हैं राजीव कपूर की। अभिनय के साथ साथ राजीव कपूर ने पर्दे के पीछे भी अपनी रचनात्मक प्रतिभा दिखाई। उन्होंने हिना, प्रेम ग्रंथ और आ अब लौट चलें जैसी फिल्मों के निर्माण से जुड़कर काम किया। 1996 में आई प्रेम ग्रंथ का उन्होंने निर्देशन भी किया था। राजीव कपूर की विरासत केवल उनके अभिनय तक सीमित नहीं रही, उन्होंने कपूर परिवार की उस रचनात्मक परंपरा को आगे बढ़ाया जिसमें कलाकार होना और सिनेमा की विभिन्न विधाओं को समझना दोनों साथ साथ चले। 9 फरवरी 2021 को 58 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ। वर्ष 2022 में उनकी अंतिम फिल्म तुलसीदास जूनियर उनके मरणोपरांत प्रदर्शित की गई। राजीव कपूर का फिल्मी सफर भले ही लंबा नहीं रहा, लेकिन राम तेरी गंगा मैली जैसी यादगार फिल्म और अभिनय से लेकर निर्देशन और निर्माण तक उनकी बहुआयामी प्रतिभा उन्हें हिंदी सिनेमा के इतिहास में एक स्थान देती है। और जब ये गीत चलता है तो निश्चित तौर पर उनका वो मासूम चेहरा, उनकी वो एक सधी हुई आवाज़ और सधा हुआ अभिनय हम सभी के सामने चित्रित होता है। हिना फिल्म का वो गाना आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की स्वर में, जो बहुत ही लोकप्रिय हुआ था और जिसमें इन्होंने पर्दे के पीछे से रचनात्मक भूमिका निभाई थी। और किन श्रोताओं की पसंद पर ये गाना सुन रहे हैं हम बताएंगे इस गीत के बाद।

इस गीत के लिए आप सभी श्रोताओं का ईमेल, आप सभी श्रोताओं के नाम हमने शामिल किए। जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, गर्वी और हिमाक्ष, साथ में ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साबिर राही, महराज जहां, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से आपने ईमेल किया, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह, और दतरंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती और विनीत वर्मा, रुद्र वर्मा। आप सभी की पसंद पर हमने एक गीत सुना और आगे चलते हैं कार्यक्रम का अगला गाना, बहुत ही प्यारा सा चांदनी फिल्म से ये हम आपको सुनवाते हैं,

दोस्तों, चांदनी फिल्म से ये गीत आपने सुना, लता मंगेशकर और बाबला के सुर में, आनंद बख्शी के बोल, शिव हरि का संगीत। मेरठ उत्तर प्रदेश से अनिल जैन, संयम जैन, मुस्कान और जीवम जैन की फरमाइश थी। साथ में फरमाइश आप सभी श्रोताओं की भी थी। उत्तम नगर दिल्ली से भानु प्रकाश, बोधराज खोरवाल, कमला रानी और गीतिका खोरवाल। गंज डुंडवारा से शमशुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अदनान खान, अनु खान। मलोट पंजाब से राज, मीना, योगेश और मैनी शर्मा। जलालाबाद पश्चिम से सुरेश गगनेजा, पूनम, विशाल, प्रिया दिशानी और निमिता आहूजा। एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट। भिलाई छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन। और झालावाड़ राजस्थान से राजेश कुमार, मेहरा, नंदकिशोर, विनोद, अर्जुन, दुर्गाशंकर, सिकंदर, राहुल, चंदू, देवराज, लक्ष्य और समस्त इनके परिवार के साथी, तो परिवार के सदस्य। तो अब अगला जो गाना है वो हम सुनते हैं साजन फिल्म से, जिसमें आवाज़ है कुमार सानू की, और बहुत ही प्यारा सा गीत। और आप जानते हैं साजन फिल्म अपने दौर की म्यूज़िकल यानी अपने गीत और संगीत की वजह से काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हुई थी, और इसमें जो मुख्य भूमिकाएं थीं वो भी काफ़ी चर्चित रहीं। तो आइए सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा नगमा।

कुमार सानू और अलका याग्निक के स्वर में अभी आपने साजन फिल्म का ये गीत सुना, और इस गीत के लिए आप सभी श्रोताओं की फरमाइश हमें मिली। परभणी महाराष्ट्र से रूपेश संघई, महेश प्रज्ञेश और प्रीतेश संघई तथा इनके परिवार के बाकी सदस्य भी सुनना चाहते थे ये गाना। अकली दीवान मध्य प्रदेश से रामलाल चंद्रवंशी, कृष्णा चंद्रवंशी और काजल मीनाक्षी, कृष्णा कॉलोनी हांसी से सुभाष योगी, सुशील योगी, बब्बू डब्लू, राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज का भी ईमेल हमें मिला इस गाने के लिए। और श्रोताओं, फिल्म संगीत का कार्यक्रम, आपकी पसंद के गानों का कार्यक्रम जारी है इंद्रप्रस्थ चैनल पर। आगे बढ़ें और अगला गीत सुनवाएं आपको, उससे पहले एक अति आवश्यक रक्तदान अपील आप सभी से। एक महिला मरीज के लिए 2 यूनिट रक्त की तत्काल आवश्यकता है। स्थान: धर्मशिला नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, धर्मशिला मार्ग, वसुंधरा एनक्लेव, दल्लूपुरा, न्यू दिल्ली में। निकटतम न्यू अशोकनगर मेट्रो स्टेशन है। अस्पताल के आसपास रहने वाले इच्छुक रक्तदाताओं से विनम्र अनुरोध है, आगे आकर रक्तदान कर मरीज की मदद करें। संपर्क करने के लिए आप इस नंबर पर डायल कर सकते हैं। फ़ोन नंबर है 8800 444 799। आपका रक्तदान किसी के जीवन की उम्मीद बन सकता है, तो अवश्य आप करें, या और भी लोगों को आप प्रेरित कर सकते हैं जो आसपास रह रहे हैं। अगर आप उस जगह पर उपलब्ध नहीं हैं तो औरों को भी ये संदेश हमारी तरफ से, आकाशवाणी की तरफ से आप ज़रूर पहुंचाएं, ताकि किसी मरीज की जान बच सके, उनकी सेहत ठीक हो सके। और आइए सुनते हैं अगला गाना कार्यक्रम का, जो है बेमिसाल फिल्म से, और बेमिसाल गाना भी है ये।

सुनना चाहते थे आप सभी श्रोता छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा, किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, मराठवाड़ा से सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत राजे, संचित वायाल, प्रथमेश देशमुख, प्रणाली देशमुख, सरवद और सानवी देशमुख तथा कल्पना देशमुख, नागपुर से अनिल कोल्हे, छाया कोल्हे और प्रियांश कोल्हे। और दोस्तों एक ईमेल हमें मिला है सत्यप्रकाश सनोठिया जी का रोहिणी से। उन्होंने कोई गीत नहीं लिखा है लेकिन बहुत ही अच्छी लाइनें उन्होंने लिखी हैं और मैं चाहता हूं कि वो आप सभी के साथ साझा करूं। आपके नाम प्रायः कार्यक्रमों में शामिल होते रहते हैं, कभी कुछ इस तरह की बातें अगर शेयर करें तो मुझे लगता है कि आपकी बातें अपनों तक और आपकी बातें श्रोताओं तक भी पहुँच पाएंगी। आकाश के मेरी राहों में बीते वो ज़माने आ जाएँ, मैं सामने उनके बैठा हूँ, मेरे दोस्त पुराने आ जाएँ, जो छोड़ चले तन्हा मुझको, मैं गीत उन्हीं के गाता हूँ, किसी रोज़ वो मेरी राहों पे मेरा दिल ही दुखाने आ जाएं। वो महफिलें अब भी याद मुझे, जहाँ हंसते रोते सजते थे, जो रूठ गए बेबात कभी, वो शिकवा ही जताने आ जाएं। तो बहुत ही सुंदर सत्यप्रकाश जी, आपने शब्द ये भावनाएं हमारे साथ साझा की और आपके माध्यम से मैंने उसे साझा किया बाकी श्रोताओं के साथ। कार्यक्रम का अगला और आखिरी नगमा बहुत ही प्यारा सा, जो श्रोताओं की पसंद पर ही है। आइए सुनते हैं पहले ये गीत, उसके बाद उन श्रोताओं के नाम जिनकी पसंद पर ये गीत आज के इस कार्यक्रम का हिस्सा बना।

0: वो सात दिन, इस फिल्म का गाना लता मंगेशकर शब्बीर कुमार की आवाज़ों में आप सुन रहे हैं। और सुनवाने के लिए आप सभी ने ईमेल किया, जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल और विलिस डिकेस्ट्रो, बाबरपुर बसना से चंपा देवांगन, राधेश्याम देवांगन, मोहाली पंजाब से बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा, श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता हिना हर्षित खुशी गोस्वामी, झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा रजत और मैंक भाटिया, और झारखंड से शिवा गोप, प्रेम गोप, कपिल, शिवांश, संगीता और लिपि तथा दीपाली गोप। आप सभी की पसंद पर ये गीत हमने सुना और इसके साथ ही आज का आपकी फरमाइश कार्यक्रम, आपकी पसंद के फिल्मी नगमों का कार्यक्रम अब संपन्न करने की अनुमति दीजिए। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, 11 बजने को है। अब आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई के 10 वर्ष पूरे होने पर कहा कि राष्ट्र की इस डिजिटल क्रांति पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूपीआई प्रणाली का शुरू होना भारत के डिजिटल भुगतान इतिहास का सबसे बड़ा निर्णायक क्षण रहा है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एक दशक पहले यूपीआई की शुरुआत हुई थी और ये भारत की डिजिटल भुगतान यात्रा में अब तक का सबसे निर्णायक फैसला साबित हुआ है। उन्होंने देशवासियों से यूपीआई के साथ अपने अनुभव साझा करने को कहा। 25 अगस्त 2016 को शुरू हुए यूपीआई के लेन देन की संख्या में लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने युवा राजनयिकों से विदेशों में नियुक्ति पर जमीनी स्तर पर जुड़ाव को मजबूत बनाने और स्थानीय समुदायों के साथ भारत के संबंधों को प्रगाढ़ करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में भारतीय विदेश सेवा के 2025 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत में श्री मोदी ने पारंपरिक राजनयिक दायरों से आगे बढ़कर अपने नेटवर्क का विस्तार करने और लोगों के साथ संपर्क बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री ने प्रशिक्षु अधिकारियों से कहा कि वे भारत की वैश्विक भागीदारी को और मजबूत करने के लिए देश की सभ्यगत खूबियों को तकनीकी नवाचार और प्रभावी संचार के साथ जोड़े। प्रधानमंत्री ने प्रशिक्षु अधिकारियों से यह भी कहा कि वे दुनिया के साथ देश की आर्थिक भागीदारी

0: बढ़ाने में अहम भूमिका निभाए। श्री मोदी ने प्रशिक्षु अधिकारियों से कहा कि वे भारत की सभ्यागत, सांस्कृतिक और भौगोलिक खूबियों को दुनिया के सामने लाकर भारत को एक आकर्षक वैश्विक पर्यटन स्थल बनाने की दिशा में काम करे। इस ग्रुप में भारतीय विदेश सेवा के 50 प्रशिक्षु अधिकारी शामिल थे। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने सभी एजेंसियों को घुसपैठ रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। श्री शाह ने कल नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन का उद्घाटन किया। गृह मंत्री ने कहा कि विभिन्न राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं को तैयार करने के लिए सूचनाओं का AI आधारित विश्लेषण किया जाना चाहिए। आतंकवाद और कट्टरपंथ से निपटने के लिए श्री शाह ने गृह मंत्रालय की प्रहार योजना के कार्यान्वयन पर बल दिया। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया है। गृह मंत्रालय ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि लगभग 2,03,000 आवेदकों में से अब तक 23,000 लोगों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि शेष आवेदनों पर शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज जापान के प्रमुख वित्तीय तथा निवेश संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता की। इसमें पूंजी प्रवाह और निवेश साझेदारी को मजबूत करने तथा भारत की विकास यात्रा में जापानी भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा की। इस दौरान भारत की आर्थिक संभावनाओं, उभरते निवेश अवसरों और जापानी संस्थागत निवेश को और सुगम बनाने के उपायों पर विचार विमर्श हुआ। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज पेचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ भारत चीन सीमा विवाद पर वार्ता करेंगे। दोनों नेता अन्य द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। श्री डोभाल चीन के उपराष्ट्रपति हांग झेंग से भी मुलाकात करेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कल 2 दिन की चीन यात्रा पर पेचिंग पहुंचे। श्री डोभाल और श्री वांग की वार्ता से पहले विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता चीन के साथ अच्छे संबंधों के लिए पूर्व शर्त है। वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल नई दिल्ली में ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स के वित्त मंत्री नतालियो डी व्हीटली से मुलाकात की। दोनों के बीच वित्तीय सेवाओं, डिजिटल बदलाव, निवेश को बढ़ावा देने और क्षमता निर्माण के क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज कनाडा और अमरीका की आधिकारिक यात्रा पर रवाना होंगी। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि इस यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय आर्थिक और वित्तीय संबंध मजबूत करना है। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में 3रे दिन का खेल जारी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। Prime Minister Narendra Modi has called upon young diplomats to build strong grassroots level engagement in the countries of posting and deepen India's connection with local communities. Interacting with the officer trainees of the 2025 batch of Indian Foreign Service IFS at Seva Tirth, Mr. Modi encouraged the officer trainees to expand their networks beyond traditional diplomatic circles and deepen engagement with people. Mr. Modi encouraged the officer trainees to combine India's civilizational strengths with technology, innovation, and effective communication to further strengthen India's global engagement. The Prime Minister also called upon the officer trainees to serve as catalytic agents for the country's economic engagement with the world. Union Home Minister Amit Shah has directed all agencies to take strict measures against infiltration. Inaugurating the 9th National Security Strategies Conference 2026 in New Delhi, Mr. Shah directed that an AI-based analysis of information available on multi-agency center MSC platforms should be done to create SOPs to counter various national security challenges. To effectively tackle terrorism and radicalization, Mr. Shah emphasized training for implementation of the Home Ministry's Prahar scheme, expediting trials by bringing back fugitives and utilizing trial in absentia provisions, and undertaking a comprehensive and integrated approach while investigating UAPA cases.

जगजीत सिंह और चित्रा सिंह के स्वर में अभी आपने ये गज़ल सुनी। और सबरस कार्यक्रम का अगली प्रस्तुति है वो है गुरदास मान के स्वर में।

सप्रेस कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, ये प्रस्तुति लालित्य मुंशा के स्वर में, और कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं फाल्गुनी पाठक का गाया ये गीत।

फाल्गुनी पाठक और साथियों की आवाज़ में अभी आप ये गीत सुन रहे थे, और इसके साथ ही आज का सबरस कार्यक्रम श्रोताओं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स पर आप हमारे प्रसारण सुन रहे हैं। DRM 810 किलोहर्ट्स पर भी आप हमसे कनेक्टेड हैं, और साथ ही आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे मोबाइल एप्लीकेशन AIR लाइव न्यूज़ 24x7 मोबाइल एप्लीकेशन पर। और इस समय स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक समय हुआ है सुबह के 11:30 और 30 सेकंड। ये समय है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम सुर मंजरी का। आज के इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सुनवा रहे हैं अनुजा झा का सितार पर बजाया राग मियां की तोड़ी।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम सुरमंजरी में अभी आप सुन रहे थे अनुजा झा का सितार पर बजाया राग मियां की तोड़ी। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम श्रोताओं और संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर पर 12 बजने को है। कुछ ही क्षणों में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई के 10 वर्ष पूरे होने पर कहा कि राष्ट्र की इस डिजिटल क्रांति पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूपीआई प्रणाली का शुरू होना भारत के डिजिटल भुगतान इतिहास का सबसे बड़ा निर्णायक क्षण रहा है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एक दशक पहले यूपीआई की शुरुआत हुई थी और यह भारत की डिजिटल भुगतान यात्रा में अब तक का सबसे निर्णायक फैसला साबित हुआ है। उन्होंने देशवासियों से यूपीआई के साथ अपने अनुभव साझा करने को कहा। 25 अगस्त 2016 को शुरू हुई यूपीआई के लेन देन की संख्या में लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि संसद किसी राजनीतिक दल की नहीं बल्कि भारत की जनता की है। एक अंग्रेजी दैनिक में आज प्रकाशित लेख में उन्होंने कहा कि सरकार ने महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और बातचीत के लिए कई प्रयास किए हैं। उन्होंने विपक्षी नेताओं पर चर्चा और बहस के लिए दिए गए प्रस्तावों को ठुकराने का आरोप लगाया। श्री रिजिजू ने संसद में बार बार हंगामा करने को लेकर विपक्षी दलों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि संविधान विपक्ष को सवाल पूछने, विरोध करने और मतदान करने का अधिकार देता है, लेकिन संसद की कार्यवाही बाधित करने का नहीं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और भारत चीन सीमा मामलों पर विशेष प्रतिनिधि अजीत डोभाल ने आज चीन के उपराष्ट्रपति हान चेंग से मुलाकात की। पेचिंग स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पर बताया कि 25वें दौर की विशेष प्रतिनिधि वार्ता से पहले दोनों पक्षों ने सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के तरीकों पर चर्चा की। दोनों देशों के नेताओं के बीच आर्थिक, राजनीतिक और बहुपक्षीय मंचों पर द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के उपायों पर भी विचार किया गया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज जापान के प्रमुख वित्तीय तथा निवेश संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता की। इसमें पूंजी

0: आभा और निवेश साझेदारी को मजबूत करने तथा भारत की विकास यात्रा में जापान की भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा की गई। इस दौरान भारत की आर्थिक संभावनाओं, उभरते निवेश अवसरों और जापानी संस्थागत निवेश को और सुगम बनाने के उपायों पर विचार विमर्श हुआ। वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल नई दिल्ली में ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स के वित्त मंत्री नतालियो डी वीटली से मुलाकात की। दोनों के बीच वित्तीय सेवाओं, डिजिटल बदलाव, निवेश को बढ़ावा देने और क्षमता निर्माण के क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा हुई। सरकार ने शुल्क मुक्त आयात की गई कच्ची चीनी के प्रसंस्करण और बिक्री की समय सीमा में बदलाव किया है। अब आयातकों को बिल ऑफ एंट्री दाखिल करने की तारीख से 2 महीने के भीतर कच्ची चीनी को सफ़ेद चीनी में बदलकर घरेलू बाजार में बेचना होगा। बिल ऑफ एंट्री वह घोषणा पत्र है जो आयातक विदेश से माल मंगाते समय सीमा शुल्क विभाग को देता है। इसमें माल की मात्रा, कीमत और उस पर लगने वाले कर की जानकारी होती है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने अगस्त की शुरुआत में जारी नियमों में संशोधन किया है। इन नियमों के तहत टैरिफ रेट कोटा योजना के अंतर्गत 10 लाख टन कच्ची चीनी के आयात की अनुमति दी गई थी। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, पूर्वोत्तर भारत, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आज लगातार दूसरे दिन तेज बारिश से कई इलाकों में जलभराव होने के कारण यातायात प्रभावित हुआ है। तेज बारिश के कारण दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। 18 उड़ानें आज रद्द करनी पड़ी जबकि 146 उड़ानें देरी से चल रही हैं। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में तीसरे दिन का खेल जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक श्रीलंका ने पहली पारी में 4 विकेट पर 130 रन बना लिए हैं। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज दोपहर के सत्र में मामूली गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। ताज़ा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 131 अंक गिरकर 77,238 पर आ गया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi hailed the decade-long success of service of Unified Payment Interface. In a social media post, Mr. Modi marked UPI as a major turning point in India's digital payments journey. Calling the countrymen to share their UPI experience, he stated that the sheer scale and reach of UPI is something every Indian must be proud of. The United Payments Interface UPI has completed 10 years of transforming digital payments and has emerged as the backbone of India's digital payments ecosystem. UPI, which was launched on the 25th of August 2016, has surged almost 13,000-fold in transaction volume. The Finance Ministry said the annual transaction volume expanded from just 1.78 crore transactions in 2016-17 to over 24,162 crore transactions in 2025-26. The National Security Advisor and Special Representative on the India-China boundary question, Ajit Doval, today called on Vice President of the People's Republic of China, Han Cheng. In a social media post, the Embassy of India in Beijing said prior to the 25th round of the Special Representative's talks today, both sides discussed ways to strengthen peace and tranquility in the border areas. They also discussed further to improve bilateral relations across economic, political and multilateral fora in accordance with the consensus reached between the leaders of the two countries. The government has lifted export restrictions on wheat flour and related products, opening the way for overseas shipments of atta, maida, semolina and other wheat-based products. According to the notification issued by the Directorate General of Foreign Trade, DGFT, the government has amended the export policy for wheat flour and related products with immediate effect. In a separate notification,

घर आंगन। कार्यक्रम घर आंगन में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ रेनू। तो कीजिए स्वीकार हमारा नमस्कार। आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर यानी 100.1 MHz पर, और साथ ही साथ आप हमें सुन सकते हैं आकाशवाणी के इंद्रप्रस्थ चैनल पर भी यानी 366.3 मीटर अर्थात 819 KHz पर। तो शुरू करते हैं अपनी बातें मुलाकातें। झमझम झमझम मेघ बरसते सावन के, छम छम छम गिरती बूंदें तरुओं से छन के, चम चम बिजली चमक रही रे उर में घन के, थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के।

जी, मौसम की इस खुशनुमा मौसम को बयां करता हुआ, जिसमें कि तन मन हमारा प्रफुल्लित है, तो इन्हीं भावनाओं को व्यक्त करता हुआ ये गीत आपने सुना। फिल्म थी बनारसी ठग और आवाज़ थी लता मंगेशकर की। और इसी के साथ बात करते हैं, जैसे कि रूठे सुजन मनाइए, जो रूठे 100 बार, रहीमन फिर पोइए, टूटे मुक्ता हार। इसमें रहीमदास कहते हैं कि यदि कोई आपका प्रिय सज्जन आपसे रूठ जाए, तो चाहे वो आपसे कई बार रूठे, 100 बार रूठे, उसे बार बार मना लीजिए। ठीक वैसे ही जैसे माला के कीमती मोती माला टूटने के बाद भी रख ली जाती है, और फिर उसे किसी धागे में पिरोकर सुंदर माला बना ली जाती है, वैसे ही होते हैं रिश्ते, जिन्हें संजो कर रखना हमारी जिम्मेदारी होती है। तो अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि आज का हमारा प्रश्न है रूठने मनाने पर, जो है हमारी जिंदगी का हिस्सा, रिश्तों की ताजगी, रिश्तों की मजबूती, और है रिश्तों की मिठास और अपनापन। तो आज आपको बताना है कि कहीं आप बात बात पर रूठते तो नहीं, या फिर मनाते ही रह जाते हैं, कोई आपसे जाता है रूठ, यानी आपको बताना है कि आप मनाते ज्यादा हैं या रूठते ज्यादा हैं। लिख भेजिए हमें fmgoldga@gmail.com पर, हमें है आपके प्यारे प्यारे मेल्स का इंतजार।

थोड़े शिकवे भी हों, थोड़ी शिकायत भी हो, तो मज़ा जीने का और भी आता है। ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ में, फिल्म थी आस का पंछी। और देखिए हमारे पास सबसे पहले जो मेल लिखते हैं नवीन भाटिया जी, उनका उनकी मेल आ चुकी है और ये लिखते हैं कि मनाते ज़्यादा हैं और कभी खुद रूठ जाएं तो जल्दी मान भी जाते हैं, बातचीत नहीं बंद करनी चाहिए। जी बहुत अच्छी बात आपने लिखी है कि कितना भी रूठे नाराज़ हों लेकिन बातचीत नहीं रुकनी चाहिए, क्योंकि बातचीत होती है तभी गलतफहमियाँ दूर होती हैं और तभी रिश्ते बनते हैं और अच्छे। और ये आपने लिखा है में, और इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा हम बात करते हैं अब प्रोग्राम में आगे कि आज है उत्तरायण यानी पहला ओणम। पूरे केरल और दुनिया भर में रह रहे मलयाली भाई बहनों को सबसे पहले उत्तरायण की ढेरों शुभकामनाएं। यूं तो ओणम 10 दिनों तक चलने वाला त्यौहार है लेकिन असली उत्सव की शुरुआत आज यानी 9वें दिन से होती है। इसे पहला ओणम भी कहते हैं। केरलम की हवाओं में केले के चिप्स की खुशबू, बाजारों में फूलों की बहार आप अपने आप ही बता देती है कि ओणम का खास दिन आ गया है। ओणम का ये त्यौहार क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे है एक खूबसूरत और पौराणिक कहानी भी। ये त्यौहार मुख्य रूप से दानवीर राजा महाबली के स्वागत

और अच्छी फसल के उल्लास में मनाया जाता है। राजा महाबली आज ही के दिन अपनी प्रजा से मिलने के लिए केरलम की पावन धरती पर कदम रखते हैं, और राजा के स्वागत की बात हो तो फिर उत्सव तो बन ही जाता है। आज अगर आप केरल के बाजारों में जाएं ना, तो आपको एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिलेगा। लोग अंतिम समय की खरीदारी के लिए भाग दौड़ कर रहे होते हैं। ताज़ी सब्जियां, पारंपरिक कसूर साड़ियां और फल, इस मज़ेदार भाग दौड़ को भी स्थानीय भाषा में कहते हैं उत्तरा द पच्चिल, यानी त्यौहार की वो मीठी हड़बड़ी जिसमें हर कोई डूबा हुआ है। इसके अलावा आज के दिन घरों के आंगन में बनाई जाती हैं फूलों की रंगोली यानी पुकलम, जो आज अपने सबसे भव्य रूप में दिखाई देती है, और बनता है पायसम। फिर आज रात भर जाग कर कल के महाभोज यानी ओणम संध्या की तैयारी होती है। तो बस अपनी तैयारियों को दीजिए अंतिम रूप और अपनों के साथ मुस्कुराइए और इस त्यौहार का आनंद लीजिए। तो फिर एक बार हमारी ओर से हैप्पी उत्तरादम।

लता और आशा की आवाज़ में आपने ये गीत सुना। फिल्म थी राजकुमार। और अब ये एक मेल हमारे पास और आ गई है उग्रसेन यादव की। और ये लिखते हैं कि मनाते ज़्यादा हैं। और भाई मनाते ज़्यादा हैं तो भाई ये तो बात अच्छी नहीं है। जो भी आपके मतलब जो भी रिश्ता है आपके भाई बहन का, दोस्त का, तो भाई वो भी ध्यान दे कि भाई आपको भी कभी मनाने के का एहसास

को भी हो जाए। और देखिए इसी बात पे मुझे एक शेर याद आया कि रूठने और मनाने के एहसास में है एक कैफो सुरूर, मैंने हमेशा उसे मनाया है, वो भी तो कभी मनाए मुझे। खैर अब दूसरा एक मेल है मेरे पास, ये है चरणदास जी लिखते हैं कि नमस्कार, और ये लिख रहे हैं कि दुखती रख पे आपने हाथ रख दिया, आज तक का रिकॉर्ड रहा है, मैं किसी से एक बार भी नहीं रूठा और मनाने में ज़िंदगी गुजर गई, कई बार पता ही नहीं चलता कि दूसरा किस कारण से नाराज़ है, अब तक तो प्रार्थना है कि कभी ना रूठे। तो भाई देखिए जो क्यों नहीं पता चलता, भाई आगे बढ़ के आप भी पूछ लीजिए कि वो क्यों नहीं, क्यों नाराज़ है आपसे या उसके मन में क्या है। देखिए अगर कोई नाराज़ है या कोई रिश्ता ऐसा घनिष्ठ है जिसमें कि अपने अपनों से ही नाराज़ हुआ जाता है, तो अगर आपसे कोई नाराज है तो आप ही आगे बढ़ के पूछ लीजिए कि भाई क्या बात है, और गलतफहमियां दूर कीजिए और फिर अपने रिश्ते को मतलब सामान्य कीजिए और संबंधों को मजबूत कीजिए। और इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए मैं बात कर रही हूँ आज राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़े की। आंखें ईश्वर की दी हुई सबसे बड़ी नेमत है, सबसे अनमोल तोहफा, इन आंखों के बिना ये खूबसूरत दुनिया एक कोरे कागज के सिवा कुछ भी नहीं। अपनों की खूब मुस्कुराहट, सुबह की पहली किरण और ढलती शाम, ये सावन की हरियाली, ये सब हम देख पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, क्योंकि हमारे पास हैं हमारी दो अनमोल आंखें। लेकिन जिनके पास ये नेमत नहीं होती, जो विवश हैं अपनी अंधेरी दुनिया में रहने के लिए, उनके जीवन को भी रोशन कर सकती हैं हमारी ये आंखें। यानी हम भले ही दुनिया से चले जाएं, हमारी आंखें फिर भी जीवित रहेंगी। जी हाँ, ये नेत्रदान से संभव है। इसीलिए हर साल 25 अगस्त से 8 सितंबर तक पूरे भारत में राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को नेत्रदान के प्रति जागरूक करना, समाज से जुड़ी गलतफहमियों को दूर करना और इस दुनिया से जाने के बाद लोगों को आंखें दान करने के लिए प्रेरित करना है। कॉर्नियल ब्लाइंडनेस यानी पुतली की खराबी के कारण लाखों लोग इस खूबसूरत दुनिया को देखने से महरूम हैं। कॉर्निया से जुड़ी अंधता को दूर करने के लिए भी इस पखवाड़े को मनाया जाता है। और देखिए नेत्रदान के लिए किसी भी उम्र, लिंग या ब्लड ग्रुप की बाध्यता नहीं होती। आपके जाने के बाद आपकी ये दो आंखें दो अलग अलग लोगों के सूने आंगन में उजाला कर सकती हैं। इसकी प्रक्रिया भी बहुत आसान है। आप NOTTO यानी कि राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन या फिर अंग पुनर्प्राप्ति एवं बैंकिंग संगठन यानी ORBO की सरकारी वेबसाइट पर घर बैठे ऑनलाइन डोनर कार्ड पा सकते हैं। और अगर आप इंटरनेट का उपयोग नहीं करना चाहते तो शहर के किसी भी सरकारी अस्पताल या मान्यता प्राप्त आई बैंक में जाकर डोनर कार्ड बनवा लें और उसे हमेशा अपने पास रखें। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है अपने परिवार से बात करना, उन्हें मानसिक रूप से तैयार करना आपकी जिम्मेदारी है। और आपके इस दुनिया से जाने के बाद 4 से 6 घंटे के भीतर आई बैंक को सूचित करना उनकी जिम्मेदारी। तो आइए इस राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़े पर रोशनी का एक नया सिलसिला शुरू करें, किसी की जिंदगी को उजाला करके।

अभी आपने रफ़ी को सुना, फिल्म थी चिराग। और अब मेरे सामने ये मेल है सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी की, जो शांति नगर सोनीपत से लिखते हैं। ये हमारे नियमित श्रोता हैं और आज अपने प्रश्न का जवाब देते हुए इन्होंने लिखा है कि सबसे बड़ी सीख अपनों से हार जाना तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। अपनों से क्या रूठना, कोई रूठा है तो उसे मना लेना। जी, बहुत अच्छी और गहरी बात आपने कही। रिश्तों को सजोने वाली और रिश्ता निभाने वाली यही बात है कि अगर अपनों से हार जाते हैं तो अपनों से हारना ही सबसे बड़ी जीत है। और कभी भी इसमें अहम नहीं आना चाहिए आड़े, क्योंकि अहम जो है वो रिश्तों में जो है खटास ला देता है, दूरियां पैदा कर देता है। तो जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है और कोई आपसे नाराज़ है, कोई रूठा है, तो उसे बिना देर किए, बिना वक्त गंवाए उसे ज़रूर मना लेना चाहिए। क्योंकि अगर तुम्हारी अना का सवाल है तो फिर हाथ बढ़ा के दोस्ती के लिए मैं ही बढ़ाता हूँ। ये बिल्कुल यही जो फलसफा है वो जीवन में उतारना चाहिए। और इसी तरह से आज बात करते हैं राखी, क्योंकि आने वाली है, देखिए भाई, और राखी में भी विशेष ध्यान रखिएगा कहीं आपके बहन भाई के रिश्तों में भी कोई नाराजगी ना आ जाए। तो गिफ्ट का इसमें बहुत अहम भूमिका होती है। तो आजकल हर तरफ मिठाइयों की दुकानें, रंग बिरंगी राखियाँ, यानी रक्षाबंधन बस आने ही वाला है। तो भाई बहन के इस पवित्र त्यौहार में यूँ तो भावनाएँ सर्वोपरि होती हैं, लेकिन फिर भी गिफ्ट की अपनी भूमिका है। जितनी अहमियत गिफ्ट की होती है, उतनी ही अहमियत होती है उसकी रैपिंग की। सुंदर रैपिंग उपहार पाने वाले के मन में उत्सुकता और खुशी को कई गुना बढ़ा देता है। ये दर्शाता है कि उपहार देने वाले के लिए आप कितने अहम हैं। गिफ्ट रैपिंग एक कला भी है। जब आप किसी को गिफ्ट देते हैं तो सामने वाले में वो जो उत्सुकता मतलब जो एक्साइटमेंट होता है ना, उसको उत्सुकता होती है कि अरे इसके अंदर क्या होगा। तो असली आनंद उसी में है, इस सस्पेंस में है। तो चलिए आज इस रक्षाबंधन पर कुछ कमाल के और अनोखे आइडियाज़ के साथ अपनी राखी को बनाते हैं कुछ खास। पहला आइडिया है बचपन की यादों का रैप। इस बार चमकीले प्लास्टिक पेपर की बजाय सिंपल वाइट या क्राफ्ट पेपर लेकर उस पर अपने भाई बहन के साथ बचपन की जो पुरानी तस्वीरें हैं ना, उनका एक छोटा सा कोलाज बनाकर प्रिंट कर लीजिए और फिर उस पर चिपका दीजिए। यकीन मानिए कि गिफ्ट मिलने से पहले ही ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर देंगी और भाई बहन के संबंधों को और मजबूत करेंगी, गाढ़ा करेंगी। फिर इसी तरह से दूसरा आइडिया है मौका।

राखी स्टाइल। इसमें राखी को सिंपल टिश्यू पेपर या किसी अच्छे फैब्रिक से रैप करके खूबसूरत मोटी रेशमी डोरी या पारंपरिक कलावे से बांध दीजिए, और डोरी के बीच में एक सुंदर सा गोटा पट्टी या फिर छोटा सा मोरपंख लगा दीजिए। ऐसा लगेगा जैसे गिफ्ट को ही राखी बांधी गई हो, एकदम ट्रेडिशनल लुक। और फिर है फुरोशिकी स्टाइल, ये एक जापानी स्टाइल है जहाँ कागज़ की जगह सुंदर सूती कपड़े का या स्कार्फ का इस्तेमाल किया जाता है गिफ्ट को बांधने में, यानी रैपिंग भी एक गिफ्ट बन जाती है। इसके लिए आप सबसे पहले जो घर में सुंदर कपड़े हों कोई, उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कई आइडियाज हैं, जैसे सादे कागज़ पर खुद स्केच पेन, वाटर कलर या थंब प्रिंट यानी अंगूठे के निशान से पोलका डॉट्स या दिल के सितारे बनाकर गिफ्ट पैक करना भी एक अच्छा आइडिया है। ये सामने वाले को ये एहसास कराता है कि आपके दिल में उसकी कितनी अहमियत है। जब आप किसी को गिफ्ट देते हैं तो उसमें शामिल होती हैं आपकी दुआएं, भावनाएं। तो इस बार गिफ्ट देने में दिखाइए अपनी क्रिएटिविटी और अपनी कला भी।

ये थी लता मंगेशकर, फिल्म थी आई मिलन की बेला। और अब बात हमारे देश, हमारी संस्कृति की एक वैश्विक उपलब्धि की। जी हाँ, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास स्थित ऐतिहासिक और पवित्र स्थल सारनाथ को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया है। अब सारनाथ भारत का 45वां और उत्तर प्रदेश का चौथा विश्व धरोहर स्थल बन गया है। यूनेस्को द्वारा दिया गया ये टैग मात्र टैग नहीं, ये सदियों पुरानी हमारी विरासत को पूरी दुनिया का सम्मान है। सारनाथ वो पवित्र भूमि है जहाँ ज्ञान की प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध ने

अपना पहला उपदेश दिया था, जिसे हम धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। जब आप वहाँ कदम रखते हैं तो धमेक स्तूप, चौखंडी स्तूप और सम्राट अशोक के सिंह स्तंभ को देखकर ऐसा लगता है मानो इतिहास साक्षात आपसे बातें कर रहा हो। यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर घोषित होने के बाद अब पूरी दुनिया के पर्यटक और इतिहास प्रेमी सारनाथ की इस भूमि, पवित्र भूमि में जाएंगे और शांति महसूस करने के लिए ये जाएंगे यहाँ पर, और बड़ी संख्या में जाएंगे। तो अब जब भी अवसर मिले, आप भी बनारस और सारनाथ के इस ऐतिहासिक स्थल को देखिए और अपनी सभ्यता और संस्कृति पर गर्व कीजिए।

और अभी आपने ये गीत सुना, आवाज़ थी लता मंगेशकर की और फिल्म चित्रलेखा। और ये हमारे सामने है एक और मेल, ये भी हमारे नियमित श्रोता हैं, गौरी शंकर नागलोई से। और ये लिखते हैं कि किसकी ज़रूरत कब पड़ जाए, इसलिए कोई गिला शिकवा नहीं रखना चाहिए और बातचीत करके उसको गलतफहमी को दूर करना चाहिए। समय कभी रुकता नहीं है। बिल्कुल सही बात आपने कही कि कभी भी जो है वो रिश्ते को इस तरह से नहीं छोड़ना चाहिए। अगर कोई नाराज़ है तो उसे बिना वक्त गंवाए बिल्कुल मना लेना चाहिए। और इसी के साथ ये लिख रही हैं, बुरारी से सिमरन बोल रही हूँ, ये कह रही हैं और लिख रही हैं कि रूठना भी उनसे होता है जिससे आप बहुत प्यार करते हैं, तो मनाने की भी ज़रूरत उसी को मनाना ज़रूरी होता है। बिल्कुल सही बात आपने कही कि, और एक शेर याद आ रहा है मुझे कि न जाने रूठ के बैठा है दिल का चैन कहाँ, मिले तो उसको कोई मेरा सलाम कहना। बिल्कुल सही बात है, जब कोई रूठ जाता है तो उससे बेचैनी खुद को भी होती है और खुद को भी लगता है कि कब ये रिश्ता फिर से सामान्य हो जाए। और क्योंकि रिश्तों में अगर भावनाएं हैं तो भावनाओं की यही बात है कि दूसरा अगर तकलीफ़ में है तो उससे फिर हमें भी तकलीफ़ होती है। और इसी के साथ मैं बात कर रही हूँ प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए कि इको प्रिंटिंग की बात, तो एक ऐसी कला है जो सिर्फ खूबसूरत नहीं है बल्कि हमारी धरती को मुस्कुराने की वजह देती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इको प्रिंटिंग की, जिसे तकनीकी भाषा में कॉन्टेक्ट बॉन्ड टेक्निकल डाइंग कहा जाता है। इको प्रिंटिंग प्रकृति के रंगों और डिज़ाइनों को सीधे कपड़े या कागज़ पर उतारने का ऐसा अनोखा जादू है जिसमें किसी भी तरह के हानिकारक केमिकल या सिंथेटिक रंगों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसमें हमारे आसपास मौजूद पेड़ पौधों की पत्तियां, फूल, छाल, बीज को कपड़े पर रखकर, लपेट कर और फिर भाप देकर उनका प्राकृतिक रंग और खूबसूरत आकार कपड़ों पर हूबहू छाप दिया जाता है। लेकिन इको प्रिंटिंग सिर्फ कपड़े पर पत्ती रख देना ही नहीं है, बल्कि ये है एक बेहद खूबसूरत रासायनिक प्रक्रिया। दरअसल पौधे की पत्ती, छाल और फूल में प्राकृतिक रूप से कुछ पिगमेंट और टैनिन पाए जाते हैं, और जब हम इन पत्तियों को कपड़े पर कसकर बांधते हैं और एक निश्चित तापमान पर भाप देते हैं तो वो टैनिन एक्टिवेट हो जाता है और कपड़े के रेशों के साथ एक स्थायी जैविक बंधन बना लेता है, जिससे वो रंग और पत्ती का आकार हमेशा के लिए कपड़े पर छप जाता है। आज पूरी दुनिया सस्टेनेबल फैशन यानी पर्यावरण के अनुकूल कपड़ों की मांग जो है वो कर रही है। लोग केमिकल वाले कपड़ों को छोड़कर ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ लौट रहे हैं। ऐसे में यदि आपको इको प्रिंटिंग आप सीखते हैं और तो घर बैठे एक बिजनेस शुरू करने का एक बेहतरीन मौका है। ये जरिया बन सकती हैं आपके कमाई का। तो इसमें बनती है ऑर्गेनिक साड़ियाँ, दुपट्टे, स्कार्फ, बेडशीट और कुशन कवर्स, ये भी बहुत कम लागत में। और इसके लिए आपको ना कोई महंगी मशीन की ज़रूरत नहीं होती। पत्तियाँ और फूल आपको प्रकृति से मुक्त मिल जाते हैं। बस आपको चाहिए सूती सिल्क या लेनिन जैसे प्राकृतिक कपड़े और थोड़ा सा हुनर। इको प्रिंटिंग की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये छपा हुआ इसका कपड़ा पूरी दुनिया में इकलौता होता है, यानी ये होता है यूनिक प्रोडक्ट, क्योंकि दो पत्तियां कभी एक जैसा छाप नहीं छोड़ती हैं। आप अपने इन यूनिक और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी अच्छे दामों पर बेच सकते हैं, यानी ग्लोबल मार्केट है आपका। तो आप अगर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना अपनी क्रिएटिविटी से एक शानदार करियर बनाना चाहते हैं तो इको प्रिंटिंग है आपके लिए बेहतरीन मौका। तो प्रकृति से जुड़िए, आत्मनिर्भर बनिए और अपनी कला से दुनिया को और भी खूबसूरत बनाइए।

झुक गया आसमान, इस फिल्म से अभी आपने सुना लता मंगेशकर को। और अब बात कर ली जाए कुछ मौसम की और मौसम में रखी जाने वाली सावधानियों की, क्योंकि आजकल के मौसम में नमी बढ़ जाती है, इसलिए संक्रमण बढ़ने का खतरा भी बहुत बढ़ जाता है, विशेषकर भोजन या पानी के दूषित होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में हमारी छोटी सी लापरवाही पेट और पाचन से जुड़ी कई समस्याओं का कारण बन सकती है, इसीलिए इस मौसम में खान पान की स्वच्छता पर विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। बाहर खुले में रखे खाद्य पदार्थ, कटे हुए फल, लंबे समय से रखा हुआ खाना और अस्वच्छ स्थानों पर तैयार किए हुए भोजन से बचना चाहिए। इन दिनों सड़क पर किनारे मिलने वाले खाद्य पदार्थों में भी से भी थोड़ी दूरी बनाकर रखी जानी चाहिए। और घर में भी आजकल कुछ विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर आप घर में बने हुए खाने में भी ध्यान रखेंगे तभी आपकी सेहत अच्छी रहेगी। सब्जियों को जो है वो अच्छी तरह से धोएं, पानी हमेशा सुरक्षित और साफ़ पानी पिएं। इस मौसम में इन्फेक्शन जो है वो पानी से ज़्यादा होने के खतरा बढ़ा रहता है, तो पानी उबाल कर या अच्छे फिल्टर का ही पिएं। हमेशा ताज़ा बना हुआ खाएं, बासी खाने से परहेज करें। रात का सुबह का बना हुआ रात में या रात का बना हुआ सुबह खाने से जो है वो सेहत ख़राब हो सकती है। और इस मौसम में बहुत अधिक तला भुना या गरिष्ठ भोजन भी नहीं खाना चाहिए, उससे भी बचना चाहिए। हल्का ताजा और संतुलित भोजन लेना ही बेहतर है। रात का खाना जितना हल्का और सुपाच्य होगा, सुबह आप उतने ही फ्रेश और एनर्जेटिक उठेंगे। तो इन दिनों चाय या काढ़े में अदरक, तुलसी, काली मिर्च और हल्दी का इस्तेमाल बढ़ा दीजिए, ये आपकी इम्यूनिटी को सुपर पावर कर देगा। साथ ही अच्छे स्वास्थ्य के लिए आजकल के मौसमी जो फल होते हैं उनको, सब्जियों को भी आहार में शामिल कीजिए पर्याप्त मात्रा में, लेकिन बहुत अच्छी तरह से धोकर साफ करके। और इन दिनों स्वाद के साथ साथ अपनी साफ सफाई और संतुलन को इसी तरह थाली का हिस्सा बनाइए और स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और कार्यक्रम हमारा सुनते रहिए और मौसम का आनंद भी लेते रहिए।

आंगन आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन। घर आंगन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई के 10 वर्ष पूरे होने पर कहा कि राष्ट्र की इस डिजिटल क्रांति पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूपीआई प्रणाली का शुरू होना भारत के डिजिटल भुगतान इतिहास का सबसे बड़ा निर्णायक क्षण रहा है। श्री मोदी ने देशवासियों से यूपीआई के साथ अपने अनुभव साझा करने को कहा। गृह मंत्री अमित शाह ने यूपीआई के 10 वर्ष पूरे होने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि डिजिटल इंडिया ने लोगों को तेज, आसान और सुरक्षित डिजिटल भुगतान की सुविधा दी है। 25 अगस्त 2016 को शुरू हुए यूपीआई के लेनदेन की संख्या में लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई है। एक रिपोर्ट।
1: यूपीआई भारत में डिजिटल भुगतान का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है और यह लोगों को बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाओं से जोड़ने में अहम भूमिका निभा रहा है। महज 10 वर्षों में यूपीआई ने भारत में डिजिटल भुगतान के तरीकों को पूरी तरह से बदल दिया है। इसके माध्यम से लेनदेन त्वरित, सरल और अधिक सुलभ हो गया है। यूपीआई की बड़े पैमाने पर तेज और भरोसेमंद सेवा को पूरी दुनिया में सराहा गया है, जिसके कारण आज यूपीआई प्रणाली को 11 देशों ने अपनाया है। इनमें फ्रांस, सिंगापुर, यूएई, श्रीलंका, भूटान और मॉरिशस जैसे देश शामिल हैं। आज दुनिया में होने वाले हर 2 रियल टाइम डिजिटल भुगतान लेन देन में से लगभग 1 भारत में होता है। दुनिया भर में होने वाले डिजिटल भुगतान लेन देन में यूपीआई की हिस्सेदारी लगभग 49% है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और आयकर रिटर्न जैसे संवेदनशील आंकड़ों तक निजी कंपनियों की पहुंच चिंताजनक है। न्यायालय ने कहा कि केंद्र सरकार को ऐसे सुरक्षा उपाय बनाने पर विचार करना चाहिए जिससे ऐसी जानकारी का दुरुपयोग न हो। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि संसद किसी राजनीतिक दल की नहीं बल्कि भारत की जनता की है। एक अंग्रेजी दैनिक में आज प्रकाशित लेख में उन्होंने कहा कि सरकार ने महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और बातचीत के लिए कई प्रयास किए हैं। उन्होंने विपक्षी नेताओं पर चर्चा और बहस के लिए दिए गए प्रस्तावों को ठुकराने का आरोप लगाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की संयुक्त अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने भारत रूस आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने पर जोर दिया। श्री जयशंकर ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चुनौतियों के बावजूद दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच

वस्तुओं का व्यापार 4 गुना से अधिक बढ़ा है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और भारत चीन सीमा मामलों पर विशेष प्रतिनिधि अजीत डोभाल ने आज चीन के उपराष्ट्रपति हांग चेंग से मुलाकात की। पेचिंग स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट पर बताया कि 25वें दौर की विशेष प्रतिनिधि वार्ता से पहले दोनों पक्षों ने सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के तरीकों पर चर्चा की। श्री डोभाल और श्री हान ने आर्थिक, राजनीतिक और बहुपक्षीय मंचों पर द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के उपायों पर भी विचार किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज जापान के प्रमुख वित्तीय तथा निवेश संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता की। इसमें पूंजी प्रवाह और निवेश साझेदारी को मजबूत करने तथा भारत की विकास यात्रा में जापानी भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा की गई। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज दोपहर के सत्र में मामूली गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 110 अंक गिरकर 77,259 पर और निफ्टी 68 अंक गिरकर 24,151 पर आ गया। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में तीसरे दिन का खेल बारिश के कारण रुका हुआ है। श्रीलंका ने भोजन अवकाश तक पहली पारी में 4 विकेट पर 130 रन बना लिए थे। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र में तेज बारिश का अनुमान लगाया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्र प्रेस चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर दिन के 1:10 हो रहे हैं और ये वक्त है प्रोग्राम एक ही फिल्म से का। तो स्वीकार कीजिए अपनी दोस्त राखी बैनर्जी का प्यार भरा नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आज के इस प्रोग्राम में। दोस्तों, पुरानी फिल्मों की यादों का पिटारा जब भी खुलता है, कुछ किरदार ऐसे निकल कर सामने आते हैं जिन्हें हम फिल्म के नाम से ज़्यादा उनके अंदाज से याद रखते हैं। और आज के फिल्म का किरदार भी कुछ ऐसा ही है। एक हाथ जेब में लड़खड़ाती हुई चाल, बोलने का अपना ही अलग अंदाज, लेकिन दिल दिल बिल्कुल साफ। जी हाँ श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं 1984 में आई फिल्म शराबी की। इसका निर्देशन और कहानी लिखा था प्रकाश मेहरा ने, निर्माता थे सत्येंद्र पाल, स्क्रीन प्ले लक्ष्मीकांत शर्मा ने लिखा और संवाद था कादर खान का। हॉलीवुड फिल्म अथूर की कहानी के मूल विचार को प्रकाश मेहरा ने शराबी फिल्म में पूरी तरह भारतीय दर्शकों और हिंदी कमर्शियल सिनेमा के हिसाब से ढाला गया था। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और सुनते हैं इसी फिल्म से एक बहुत ही प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रेस चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और आज की जो फिल्म है वो है हमारी फिल्म शराबी, और मैं आपके साथ हूँ आपकी दोस्त राखी बैनर्जी। श्रोताओं, बात करते हैं फिल्म के उन कलाकारों की जिन्होंने इस कहानी को पर्दे पर भी और ख़ास बना दिया। फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ जया प्रदा मुख्य भूमिका में थी, और दिलचस्प बात यह है कि शराबी जया प्रदा की अमिताभ बच्चन के साथ पहली फिल्म थी। इस फिल्म में बाल कलाकार मयूर भी

नजर आए थे। उन्होंने इससे पहले प्रकाश मेहरा की मुकद्दर का सिकंदर और लावारिस में अमिताभ बच्चन के किरदार बचपन का किरदार निभाया था, लेकिन शराबी में पहली बार उन्हें अमिताभ बच्चन के साथ बड़े पर्दे पर काम करने का मौका मिला। फिल्म में प्राण, ओम प्रकाश, दीपक परासर, रंजीत, ए के हंगल, मुकरी, सुरेश ओबराय और वीजू खोटे जैसे कई शानदार कलाकार भी अहम भूमिकाओं में

0: सीक्वेंस था जिसमें अमिताभ बच्चन ने खुद कोरियोग्राफ किया था। यानी शराबी में अमिताभ सिर्फ अभिनय ही नहीं कर रहे थे बल्कि कई जगहों पे अपने क्रिएटिव आइडियाज़ भी दे रहे थे। तो चलिए अब इसी फिल्म के उस दौर में उन यादगार गीतों की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले हम सुनेंगे एक छोटा सा संदेश।
1: दस लाख की लॉटरी मुझे,
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
3: आरबीआई कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से। श्रोताओं, हम बात करते हैं फिल्म की कहानी की। लेकिन एक बात है, जो इस फिल्म की कहानी जितनी आपको दिलचस्प दिखती है उतना ही दिलचस्प है इसके जन्म का, क्योंकि शराबी का आइडिया किसी कमरे में नहीं बल्कि हज़ारों फीट ऊपर आसमान में आया था। 1983 में एक वर्ल्ड टूर पर थे अमिताभ बच्चन, न्यूयॉर्क से वेस्ट इंडीज़ की फ़्लाइट में उनके साथ थे फिल्म मेकर प्रकाश मेहरा। बस उसी फ्लाइट में प्रकाश मेहरा ने अमिताभ से कहा कि एक फिल्म बनाते हैं एक पिता और बेटे के रिश्ते पर, जिसमें बेटा शराबी है। और सोचिए, हज़ारों फीट ऊपर उड़ते उड़ते फिल्म का बीज पड़ गया। और मज़ेदार बात ये थी कि जब वे लोग वापस लौटे तब तक प्रकाश मेहरा की फ़िल्म की स्क्रिप्ट तैयार हो चुकी थी। और शायद इसी सफ़र में जन्मी उस कहानी का सबसे खूबसूरत पहलू था एक ऐसे बेटे विकी कपूर की कहानी, जो एक अमीर बिगड़ा हुआ शराबी लड़का दिखाई देता है। लेकिन जैसे जैसे कहानी खुलती है उसके अंदर बैठा एक अकेला बच्चा भी दिखाई देने लगता है। एक ऐसा बच्चा जिसके पास दुनिया की हर खुशी थी, बड़ा घर, पैसा, गाड़ियाँ और ऐशो आराम, लेकिन जिस चीज़ की उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी वो उसके पास नहीं थी, उसके पिता का वक्त और प्यार। शराब के पीछे छिपा उसका अकेलापन, उसकी मस्ती के पीछे छिपा दर्द और पिता से प्यार पाने की उसकी अधूरी चाहत, यही इस कहानी की असली जान थी। और शायद यही वजह है कि ये फिल्म हमें हंसाते हंसाते अचानक भावुक कर देती है, क्योंकि असल कहानी शराब की नहीं, एक पिता और बेटे के बीच अधूरे रह गए रिश्ते की थी। और अब तो इस कहानी के साथ सुनते हैं फिल्म का एक बेहद लोकप्रिय गीत, इंतहा हो गई इंतज़ार की।

श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्र प्रेस चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और आज की जो फिल्म है वो है शराबी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं इस फिल्म के बारे में। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के अभिनय के साथ उनका एक अंदाज बहुत

मशहूर हुआ था। अगर आपने फिल्म देखी है तो शायद आपने एक चीज़ ज़रूर गौर की होगी कि अमिताभ बच्चन कई सीन्स में अपना बायां हाथ जेब में रखते हैं। लोगों को लगा क्या क्या स्टाइल है, लेकिन असलियत कुछ और थी। दरअसल फिल्म की शूटिंग के दौरान दिवाली के पटाखों से उनका बायां हाथ बुरी तरह जल गया था। हाथ की हालत बहुत ख़राब थी, लेकिन फिल्म की तारीख पहले से ही तय थी और अमिताभ नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से शूटिंग रुके, इसलिए उन्होंने शूटिंग जारी रखी और घायल हाथ को छिपाने के लिए उसे जेब में रखकर अपने सीन्स पूरे करने लगे। और कमाल देखिए, जो चीज़ मजबूरी में शुरू हुई वही पर्दे पर विकी कपूर का स्टाइल लगने लगा। अब अगर फिल्म की बात हो रही है और उसके गानों की बात ना हो तो ये तो हो ही नहीं सकता। फिल्म का गीत लिखा था खुद प्रकाश मेहरा ने और अनजान ने, संगीत दिया था बप्पी लाहिरी ने, और उन्होंने इस फिल्म में उन्होंने ये साबित कर दिया कि बप्पी दा सिर्फ डिस्को के बादशाह नहीं थे, वे मेलोडी और इमोशन में भी उतने ही कमाल के थे। फिल्म के गानों को आवाज़ दी थी किशोर कुमार, आशा भोसले और खुद अमिताभ बच्चन ने। फिल्म का संगीत दर्शकों के दिल में तो जगह बनाई ही थी, साथ ही फिल्म फेयर में भी अपनी पहचान बनाई। बप्पी लहरी को इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड मिला और मंजिलें अपनी जगह है गाने के लिए किशोर कुमार को अपना 7वां फिल्म फेयर बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला। तो चलिए चलते हैं और सुनते हैं इसी फिल्म का एक और गाना।

चूहे को पड़ गए जान के लाले, बोला मुझको कोई बचा ले। चूहा आगे पीछे बिल्ली, पीछे बिल्ली चूहा आगे, चूहा आगे पीछे बिल्ली, पीछे बिल्ली चूहा आगे, चूहा आगे पीछे बिल्ली, पीछे बिल्ली चूहा आगे। आ

0: जहाँ चार यार, जहाँ चार यार मिल जाए वहीं रात हो गुलजार, जहाँ चार यार।
1: श्रोताओं, इस वक्त आप सुन रहे हैं एक ही फिल्म से, और आज की जो फिल्म है वो है शराबी। ये फिल्म उस साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों की सूची

में सबसे आगे रही और बॉक्स ऑफिस पर भी हिट साबित हुई। लेकिन इसकी सफलता का सबसे मजबूत सबूत शायद ये है कि आज 4 दशक बाद भी अगर कोई कह दे कि मूछे हो तो नथु लाल जैसी, तो फिल्म देखने वाले तुरंत समझ जाते हैं कि बात किस फिल्म की हो रही है। यही किसी फिल्म की असली कामयाबी होती है, जब फिल्म थिएटर से उतर जाए लेकिन उसके किरदार और उसकी बातें लोगों को यादों से ना उतरे। तो दोस्तों, इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और आपके ढेर सारे जो मेल्स हैं वो हमारे पास आ गए हैं, तो हम उन मेल को भी पढ़ लेते हैं। ये है सुरसंगम रेडियो श्रोता ग्रुप वीरम गांव गुजरात से अजीत भावसागर, प्रमिला भावसागर, भावेश कुमार और उनके परिवार के सभी सदस्य, और ये हैं छत्तीसगढ़ पलियारी से प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा और यशस्वी वर्मा, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, दिशानी और निमित, संदीप मक्कड़, ज्योति भारत, कमल सहानी, पिंगावाला चौक जालंधर से, कबीर रेडियो श्रोता संघ बलौद छत्तीसगढ़ से देवशंकर, अजय देव तामोरिया और मास्टर अल कबीर, हीरामणि वर्मा दंतरेगी भाटापारा से, और मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़। और आगे चलते हैं और देखते हैं पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, श्रीमती दीपा, रिमझिम गुप्ता, ये है कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर, प्रशांत जगुताई, संचेत प्रथमेश, सर्वद हर्षिता, सानवी और प्रणाली, और शालीमार बाग से अशोक कुमार सहगल, बसाना से राधेश्याम और देवगन, बडिंगा खेड़ा पंजाब से मिंटू, पिंकी, लवली और आरती, बिहारी कॉलोनी शादरा से दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना, आशीष, डब्बू, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु खुराना, रिधान, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान, पूजा परिहार, और ये है डोला राणा जी नेहरू विहार दिल्ली से, गाँव फरासी जिला हिसार से राजकुमार ढूंडी, प्रमोद कुमार, और आगे चलते हैं गोवर्धन बिहारी कॉलोनी से हैं ये छत्तीसगढ़ चूरी लाइन से मोहम्मद खतीजा बेगम, मोहम्मद असफाक, आफरीन कौशर, मोहम्मद अल्ताफ, नीलोफर फातिमा और इन परिवार के सभी सदस्य, और ये है सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी और शांति मुखी, शांति नगर सोनीपत से। दोस्तों, एक बात मैं जाते जाते आपसे ज़रूर कहना चाहूँगी और बहुत सोचने वाली बात है। कभी कभी इंसान के पास दुनिया की हर चीज़ होती है, लेकिन अगर अपनों का प्यार ना हो तो सबसे भरी हुई ज़िंदगी भी कहीं ना कहीं खाली रह जाती है। फिल्म का वो गीत जैसे ज़िंदगी की भी एक बात कह जाता है, मंजिलें अपनी जगह हैं, रास्ते अपनी जगह। कभी कभी मंजिल से ज़्यादा हमें रास्ते याद रह जाते हैं, और फिल्मों के साथ भी शायद ऐसा ही होता है। कहानी ख़त्म हो जाती है, पर्दा गिर जाता है, लेकिन कुछ किरदार, कुछ धुने और कुछ यादें हमारे साथ रह जाती हैं। शराबी भी उन्हीं फिल्मों में से एक है। इसी के साथ आज के इस फिल्मी सफ़र को मैं यहीं विराम देती हूँ। मैं आपकी दोस्त राखी बैनर्जी आपसे अनुमति चाहूँगी, फिर मुलाकात होगी दिन के 2:30 पर एक ही कलाकार प्रोग्राम के साथ। लेकिन तब तक आप मुस्कुराते रहिए, गीत सुनते रहिए और फिल्म का ये आखिरी और खूबसूरत सा गीत ज़रूर सुनिएगा।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं असदुल्ला। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यूपीआई की कामयाबी की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि यूपीआई भारत की डिजिटल अदायगी के सफर का एक अहम मोड़ है। मरकज ने मुस्तहिक लोगों को शहरियत की सर्टिफिकेट जारी करने के लिए CAA के तहत सुनवाई शुरू करने की खातिर मगरबी बंगाल हुकूमत को इख्तियार दिया है। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल आज बीजिंग में भारत चीन के दरमियान सरहदी मामले पर चीन के वजीर खारजा वांग ई के साथ खसूसी नुमाइंदा बातचीत करेंगे। अमेरिका ने आला डिग्री याफ्ता अफराद समेत सभी H-1B वीज़ा के लिए फीस में $1,03,000 का इजाफा किया है। और टेस्ट क्रिकेट में कोलंबो में पहली इनिंग्स में श्रीलंका 5 विकेट के नुकसान पर 365 रन से पीछे है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने यूपीआई खिदमात की 10 साल की कामयाबी को सराहा है। सोशल मीडिया के एक पोस्ट में जनाब मोदी ने यूपीआई को भारत के डिजिटल अदायगी के सफर में एक अहम मोड़ करार दिया। हम वतनों से यूपीआई से मुतालिक अपने तजुर्बात को शेयर करने की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि यूपीआई की वसत और रसाई पर हर भारतीय शहरी को फख्र करना चाहिए। यूपीआई का आगाज 25 अगस्त 2016 को किया गया था, जिसके जरिए लेन देन में अब तकरीबन 13,000 गुना इजाफा हो गया है। वजारत खजाना ने कहा है कि सालाना लेन देन 2016-17 में महज 1,78,00,000 था, जो 2025-26 में बढ़कर 24,162 करोड़ से ज्यादा हो गया। इस मुद्दत के दौरान लेन देन की कदर 7,000 करोड़ से बढ़कर तकरीबन 314,00,000 करोड़ हो गई है। यूपीआई की आज ही के दिन 2016 में शुरुआत की गई थी। इसको आज 10 साल मुकम्मल हो गए हैं। इस इकदाम ने भारत में डिजिटल अदायगियों के मंजरनामे को बदल कर रख दिया। यूपीआई को हासिल हुए गैर मुतवक्के इजाफे और भरोसे की वजह से इसको पूरी दुनिया में भी पहचान मिली है। ये सिस्टम अब 11 मुल्कों में इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारी नामा निगार ने खबर दी है कि डिजिटल अदायगियों में इख्तिलाफ, इकतसादी शमूलियत में तरक्की और डिजिटल इकतसादी खिदमात तक बढ़ती हुई रसाई के दरमियान फासलों को कम करते हुए यूपीआई ने मुल्क के लोगों को बाइख्तियार बनाया। पेश है एक रिपोर्ट।
1: यूपीआई निज़ाम भारत के डिजिटल अदायगी के इको निज़ाम की एक मजबूत बुनियाद बनकर उभरा है। सिर्फ एक दहाई में यूपीआई ने मुल्क में डिजिटल अदायगियों को यकसर बदल कर रख दिया है, जिसके ज़रिए अदायगियाँ बर वक्त और आसान हो गई हैं। यूपीआई को हासिल हुए गैर मुतवक्के इजाफे और भरोसे की वजह से इसको पूरी दुनिया में भी पहचान मिली। सरदस्त 11 मुल्कों में इसका इस्तेमाल हो रहा है। इनमें मुत्तहदा अरब अमारात, फ्रांस, भूटान, श्रीलंका, सिंगापुर और मॉरिशस शामिल हैं। आज पूरी दुनिया में होने वाली हर 2 डिजिटल अदायगियों में से एक भारत में होती है। 2025 तक पूरी दुनिया की बरवक्त होने वाली अदायगी का 49% यूपीआई के जरिए हुआ है। दिल्ली से दीपेंद्र और आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं माजिद अली।
0: वजीर दाखिला अमित शाह ने यूपीआई के 10 साल मुकम्मल होने पर मुबारकबाद पेश की है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब शाह

इस बात को उजागर किया कि यूपीआई वज़ीर आज़म मोदी के उस नज़रिए की एक मिसाल है जो इख्तिरा के ज़रिए भारत की तरक्की की राह हमवार करता है। यूपीआई को दुनिया का सबसे बड़ा बरवक्त अदायगी का निज़ाम बताते हुए उन्होंने आवाम को तेज़ और आसान निज़ाम देने का सेहरा डिजिटल इंडिया के सर बांधा। बीजेपी ने 15 अगस्त को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के ज़रिए ऐलान करदा सप्तधारा को मुल्क की तरक्की का एक रोड मैप बताया है। आज नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बीजेपी के तर्जुमान डॉक्टर संबित पात्रा ने मैन्युफैक्चरिंग, ज़रात और डब्बाबंद गजाई अशिया की प्रोसेसिंग, टेक्नोलॉजी और इख्तरा, गति शक्ति, दिफा, ग्रीन और समंदरी मईशत और सकाफती ताकत समेत इन 7 अहम शोबों को उजागर किया। मरकज़ ने मगरबी बंगाल हुकूमत को शहरियत से मुतालिक तरमीमी कानून CEA के तहत समाअत करने और अहल दरख्वास्त गुजारों को शहरियत के सर्टिफिकेट जारी करने का इख्तियार दे दिया है। मरकजी वजारत दाखिले ने इस सिलसिले में गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वजीर आला सुविंदु अधिकारी ने नामा निगारों को बताया कि तकरीबन 2,30,000 दरख्वास्त गुजारों में से अब तक 23,000 अफराद को अहल करार देकर शहरियत के सर्टिफिकेट जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि बाकी दरख्वास्तों पर भी तेजी से कार्रवाई की जाएगी और सर्टिफिकेट मुतालिका जिला मजिस्ट्रेट्स के जरिए दिए जाएंगे। वजीर आला ने मजहब की बुनियाद पर हरासा किए जाने के बायस बांग्लादेश से फरार होकर आने वाले लोगों से अपील की है कि वो CAA के तहत शहरियत के लिए दरख्वास्त दें। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल आज बीजिंग में भारत चीन सरहदी मामले पर चीन के वजीर खारजा वांग यी के साथ खसूसी नुमाइंदों की बातचीत में शिरकत करेंगे। ये इस तरह की 25वीं दौर की बातचीत होगी। जनाब डोभाल चीन के 2 दिन के दौरे पर कल बीजिंग पहुंचे हैं। चीन की वजारती खारजा के तर्जुमान लिन जियान ने मीडिया ब्रीफिंग में खसूसी नुमाइंदों की बातचीत का ऐलान करते हुए कहा कि जनाब डोभाल और जनाब वांग यी सरहद के मामले पर तफसीली बातचीत के साथ साथ दीगर दो तरफा इलाकाई और बैन अक्वामी उमूर पर भी तबादले ख्याल करेंगे। कौमी सलामती के मुशीर और भारत चीन सरहदी मामले से मुतालिक खसूसी नुमाइंदे अजीत डोभाल ने आज चीन के नायब सदर हॉन्ग जिंग से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में बीजिंग में भारतीय सफारतखाने ने बताया कि आज खसूसी नुमाइंदों के मुजाकरात के 25वें दौर से कबल फरीकैन ने सरहदी इलाकों में अमन सुकून को मजबूत बनाने के तरीकों के बारे में तबादले ख्याल किया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। के वजीर पीयूष गोयल ने आज जापान के सरकर्दा माली इदारों के एग्जीक्यूटिव के साथ तबादले ख्याल किया ताकि तवील मुद्दती सरमायाकारी को फरोग और भारत जापान इकतसादी रिश्तों को मुस्तहकम किया जा सके। जनाब गोयल ने भारतीय मईशत की ताकत को उजागर किया और इस बात का जिक्र किया कि आलमी सतह पर गैर यकीनी सूरत हाल के बावजूद गुज़श्ता वर्ष भारत में 7.7% तरक्की रिकॉर्ड की गई। मुआसलात के मरकजी वजीर ज्योति आदित्य सिंधिया ने कहा है कि भारत के डिजिटल कनेक्टिविटी के सफर का तयन महज लोगों को जोड़ने से नहीं बल्कि ऐसे नेटवर्क को यकीनी बनाए जाने से होगा जो काबिल एतमाद, महफूज और मजबूत हो। नई दिल्ली में आज सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स CDOT के 43वें योम तासीस के मौके पर खिताब करते हुए जनाब सिंधिया ने मुल्क की टेलीकॉम सनत में तब्दीली के लिए CDOT के अहम किरदार को सराहा। अमेरिका के दाखिली सलामती के महकमे DHS ने आला डिग्री याफ्ता अफराद समेत H-1B वीज़ा की दरख्वास्त देने वाले सभी अफराद के लिए मौजूदा फीस के अलावा 1,03,265 अमरीकी डॉलर की नई फीस की तजवीज़ रखी है। DHS की जानिब से जारी की गई एक प्रेस रिलीज के मुताबिक मुजवजा फीस दरख्वास्त दिए जाने के वक्त अदा की जाएगी। DHS ने अंदाज़ा लगाया कि फीस से सालाना तकरीबन 8 अरब 80 करोड़ अमरीकी डॉलर हासिल होंगे। ईरान ने कहा है कि उसके पास 2 साल मंसूबा है जिसके ज़रिए वो अमरीकी वजीर खारजा स्कॉट बेसेंट की तरफ से ऐलान करदा अमरीकी बंदिशों का मुकाबला कर सकता है। बेसेंट ने बताया कि अमरीका ईरान के साथ इकतसादी रवाबित मुनक़ते कर देगा और उन ममालिक को अलग थलग कर देगा जो उसको इकतसादी मदद देना जारी रखे हुए हैं। वजीर ख़जाना के ऐलान के मुताबिक तेल से मुतालिक जहाजरानी, शहरी हवाबाजी, टेक्नोलॉजी, सोना और डिजिटल विरासत समेत 5 शोबों पर पाबंदियां लगाई गई हैं। ईरान के इक्तिसादियात के वजीर अली मदनीजादे ने बताया कि मुल्क ऐसे इकदामात के मुकाबले के लिए तैयार है। मर्दों के क्रिकेट में श्रीलंका और भारत के दरमियान कोलंबो में दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन का मैच मैदान गीला होने की वजह से रोक दिया गया है। श्रीलंका 373 रन से पीछे है। इससे पहले भारत ने 9 विकेट पर 533
3 रन बनाए। ध्रुव जुरेल ने अपनी दोहरी सेंचुरी बनाई। भारत

0: News, Ranchi.
1: In men's cricket, hosts Sri Lanka were 171 for 6 against India on the third day of the second test in Colombo when reports last came in. Sri Lanka is trailing by 332 runs. For India, Manav Sudhar took India's fifth wicket, dismissing captain Dhananjay De Silva for 8 runs. India looking for quick wickets to bowl out the hosts and enforce a follow-on. Now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi terms UPI as major turning point in India's digital payments journey, earns global recognition with operations across 11 countries. Centre empowers West Bengal government to conduct hearings under CAA to issue citizenship certificates to eligible applicants. National Security Advisor Ajit Doval to hold special representatives talks with Chinese Foreign Minister Wang Yi on India-China boundary issue in Beijing today. United States proposes additional $1.03 lakh fee for all H-1B cap subject petitions. And in Test cricket, Sri Lanka trailed by 332 runs, losing 6 wickets in the first innings at Colombo. With that, we end the midday news.
2: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई को भारत की डिजिटल भुगतान यात्रा में महत्वपूर्ण क्षण बताया। 11 देशों में शुरू होने के साथ यूपीआई को वैश्विक पहचान मिली। सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज पेइचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ भारत चीन सीमा विवाद पर वार्ता करेंगे। अमरीका ने तय सीमा के अंतर्गत सभी H-1B वीजा आवेदकों पर मौजूदा शुल्क के अतिरिक्त $1,03,000 का अतिरिक्त शुल्क लगाने का प्रस्ताव दिया। और कोलंबो में भारत के साथ अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन श्रीलंका ने पहली पारी में 7 विकेट पर 173 रन बनाए। श्रीलंका 330 रन से पीछे है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई के 10 वर्ष पूरे होने पर कहा है कि राष्ट्र की इस डिजिटल क्रांति पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूपीआई प्रणाली का शुरू होना भारत के डिजिटल भुगतान इतिहास का सबसे बड़ा निर्णायक क्षण रहा है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एक दशक पहले यूपीआई की शुरुआत हुई थी और ये भारत की डिजिटल भुगतान यात्रा में अब तक का सबसे निर्णायक फैसला साबित हुआ है। उन्होंने देशवासियों से यूपीआई के साथ अपने अनुभव साझा करने को कहा। गृह मंत्री अमित शाह ने यूपीआई के 10 वर्ष पूरे होने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि डिजिटल इंडिया ने लोगों को तेज, आसान और सुरक्षित डिजिटल भुगतान की सुविधा दी है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई की शुरुआत आज ही के दिन 2016 में हुई थी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यूपीआई के लेन देन की संख्या में लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई है।
3: यूपीआई भारत में डिजिटल भुगतान का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है और यह लोगों को बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाओं से जोड़ने में अहम भूमिका निभा रहा है। महज 10 वर्षों में यूपीआई ने भारत में डिजिटल भुगतान के तरीकों को पूरी तरह से बदल दिया है। इसके माध्यम से लेनदेन त्वरित, सरल और अधिक सुलभ हो गया है। यूपीआई की बड़े पैमाने पर तेज और भरोसेमंद सेवा को पूरी दुनिया में सराहा गया है, जिसके कारण आज यूपीआई प्रणाली को 11 देशों ने अपनाया है। इनमें फ्रांस, सिंगापुर, यूएई, श्रीलंका, भूटान और मॉरिशस जैसे देश शामिल हैं। आज दुनिया में होने वाले हर 2 रियल टाइम डिजिटल भुगतान लेन देन में से लगभग 1 भारत में होता है। दुनिया भर में होने वाले डिजिटल भुगतान लेन देन में यूपीआई की हिस्सेदारी लगभग 49% है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया है। गृह मंत्रालय की अधिसूचना के बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कल संवाददाताओं

को बताया कि करीब 2,30,000 आवेदकों में से अब तक 23,000 लोगों को पात्र मानते हुए नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि बाकी आवेदनों पर भी जल्द कार्रवाई की जाएगी और संबंधित जिला अधिकारियों के माध्यम से प्रमाण पत्र सौंपे जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बांग्लादेश से धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए लोगों से CAA के अंतर्गत नागरिकता के लिए आवेदन करने का आग्रह किया। संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शिवांग मिश्रा।

0: तेलंगाना, बिहार और दिल्ली में की गई। ये मामला पिछले वर्ष गुजरात में दर्ज किया गया था। आरोपियों ने कथित तौर पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान केंद्र सरकार की 54 वेबसाइटों पर बड़ी संख्या में फर्जी अनुरोध भेजकर उसे बाधित करने वाले साइबर हमले किए। इन हमलों में महत्वपूर्ण कंप्यूटर संसाधनों और सूचना बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया। ये समाचार हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज पेचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ भारत चीन सीमा विवाद पर वार्ता करेंगे। दोनों नेता अन्य द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। श्री डोभाल और श्री वांग की वार्ता से पहले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता चीन के साथ अच्छे संबंधों के लिए पूर्व शर्त है। इससे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और भारत चीन सीमा मामलों पर विशेष प्रतिनिधि अजीत डोभाल ने आज चीन के उपराष्ट्रपति हान चेंग से मुलाकात की। पेचिंग स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि 25वें दौर की विशेष प्रतिनिधि वार्ता से पहले दोनों पक्षों ने सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के तरीकों पर चर्चा की। श्री डोभाल और श्री हान ने आर्थिक, राजनीतिक और बहुपक्षीय मंचों पर द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के उपायों पर भी विचार किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज जापान के प्रमुख वित्तीय संस्थानों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में भारत में दीर्घकालिक निवेश बढ़ाने और भारत जापान आर्थिक संबंध मजबूत करने पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने रूस में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की संयुक्त अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने भारत रूस आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने पर जोर दिया। श्री जयशंकर ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चुनौतियों के बावजूद दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच वस्तुओं का व्यापार 4 गुना से अधिक बढ़ा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को देश में उत्पादन के लिए भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन में वृद्धि करना है।
1: तकनीक का हस्तांतरण एक महत्वपूर्ण कदम है जिससे देश की कंपनियों को ज्यादा भागीदारी का मौका मिलेगा। इससे वे जरूरी योग्यता प्रमाण पत्र और सरकारी नियमों का पालन करते हुए देश में ही इस तकनीक से रक्षा क्षेत्र से जुड़े उपकरणों का उत्पादन कर सकेंगे। इससे मिसाइल प्रणाली के विकास के बाद उसे बड़े स्तर पर औद्योगिक उत्पादन में लाना आसान होगा। यह भारतीय उद्योग की क्षमता का उपयोग करके उन्नत रक्षा प्रणालियों के विकास और निर्माण को बढ़ावा देने के DRDO के प्रयासों का दर्शाता है। इसका मुख्य उद्देश्य देश में रक्षा उपकरण तैयार करने की क्षमता को बढ़ाना, रक्षा उद्योग को मजबूत करना और भारतीय MSME कंपनियों तथा अन्य तकनीकी भागीदारों को इस उत्पादन श्रृंखला में शामिल करना है। दीपेंद्र कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारत की डिजिटल कनेक्टिविटी का मतलब केवल लोगों को जोड़ना नहीं बल्कि भरोसेमंद, सुरक्षित और मजबूत नेटवर्क तैयार करना भी है। नई दिल्ली में आज सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स C.DOT के 43वें स्थापना दिवस पर श्री सिंधिया ने दूरसंचार क्षेत्र में C.DOT की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की।
2: It will be defined by ensuring that connectivity and the networks that we evolve.
3: यह सुनिश्चित किया जाएगा कि हमारे द्वारा विकसित की जाने वाली कनेक्टिविटी और नेटवर्क विश्वसनीय, मजबूत और सबसे महत्वपूर्ण रूप से सुरक्षित हों। आज भारत अपनी विकास यात्रा पर आगे बढ़ रहा है और साथ ही C.DOT प्रयोगशाला से बाजार तक, अनुसंधान से विकास तक और फिर अपने विकसित उत्पादों के वैश्विक विपणन की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है।
0: नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में देश में कार्गो परिचालन में लगातार वृद्धि हुई है और इसकी मात्रा करीब 40% बढ़ी है।
4: Like to congratulate FedEx and Delhi GMR Airport.
5: मैं फेडेक्स और दिल्ली GMR एयरपोर्ट को दिल्ली हवाई अड्डे पर एक समर्पित एयर कार्गो सुविधा विकसित करने के लिए साझेदारी

0: करने पर बधाई देना चाहता हूं। पिछले कुछ वर्षों में कार्गो परिचालन में लगभग 40% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, इसलिए इसमें काफी संभावनाएं हैं और हमने सभी नेटवर्क में भी अच्छा बदलाव देखा है। इसी तरह विमानन क्षेत्र में भी हम देश भर में वैश्विक मानकों के अनुरूप एयर कार्गो सुविधाएं विकसित करना चाहते हैं।
1: वी वॉन्ट टू क्रिएट ग्लोबल स्टैंडर्ड एयर कार्गो फैसिलिटीज अक्रॉस द कंट्री।
2: एयर इंडिया की फुकेत दिल्ली उड़ान से जुड़ी घटना पर श्री नायडू ने कहा कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो मामले की छानबीन कर रहा है और इसकी प्रारंभिक रिपोर्ट जल्द आने की उम्मीद है। रक्षा उत्पादन विभाग के सचिव संजीव कुमार ने कहा है कि भारत का रक्षा विनिर्माण क्षेत्र ऐतिहासिक बदलाव के दौर से गुजर रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 में देश का रक्षा उत्पादन बढ़कर रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए हो गया, जो 2013-14 में 43,000 करोड़ रुपए था। नई दिल्ली में राष्ट्रीय एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री कुमार ने कहा कि देश में रक्षा विनिर्माण का तंत्र तेजी से विकसित हो रहा है। सरकार ने शुल्क मुक्त आयात की गई कच्ची चीनी के प्रसंस्करण और बिक्री की समय सीमा में बदलाव किया है। अब आयातकों को बिल ऑफ एंट्री दाखिल करने की तारीख से 2 महीने के भीतर कच्ची चीनी को सफ़ेद चीनी में बदलकर घरेलू बाजार में बेचना होगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि संसद किसी राजनीतिक दल की नहीं बल्कि भारत की जनता की है। एक अंग्रेजी दैनिक में आज प्रकाशित लेख में उन्होंने कहा कि सरकार ने महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और बातचीत के लिए कई प्रयास किए हैं। उन्होंने विपक्षी नेताओं पर चर्चा और बहस के लिए दिए गए प्रस्तावों को ठुकराने का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त को घोषित सप्तधारा को विकसित भारत बनाने का रोडमैप बताया है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा प्रवक्ता डॉ. संबित पात्रा ने कहा कि सप्तधारा में विनिर्माण शक्ति, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, प्रौद्योगिकी तथा नवाचार, गति शक्ति, रक्षा शक्ति, हरित और समुद्री अर्थव्यवस्था तथा सॉफ्ट पावर शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के गृह सुरक्षा विभाग ने H-1B वीज़ा की तय सीमा के अंतर्गत सभी आवेदनों पर मौजूदा शुल्कों के अतिरिक्त $1,03,000 का नया शुल्क प्रस्तावित किया है। इसमें उच्च डिग्री धारकों के आवेदन भी शामिल हैं। विभाग की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार प्रस्तावित शुल्क आवेदन दाखिल करते समय लिया जाएगा। विभाग के अनुसार H-1B वीज़ा की निर्धारित सीमा के तहत आने वाले अनुमानित 85,000 आवेदनों के आधार पर इस शुल्क से प्रतिवर्ष लगभग 8,80,00,000,000 अमरीकी डॉलर का राजस्व प्राप्त होगा। मौसम विभाग ने झारखंड में 27 अगस्त तक 10 जिलों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। एक रिपोर्ट।
3: IMD रांची के अनुसार पश्चिम बंगाल, उत्तरी ओडिशा और उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के आसपास निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके प्रभाव से झारखंड में मध्यम से भारी बारिश, मेघ गर्जन और वज्रपात की संभावना है। मौसम विभाग ने 27 अगस्त तक येलो अलर्ट जारी करते हुए रांची, लोहरदगा, हजारीबाग, कोडरमा, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, लातेहार, चतरा और गिरिडीह समेत 10 जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। इन जिलों में भारी बारिश के साथ मेघ गर्जन, वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। विभाग ने लोगों को मौसम की स्थिति को देखते हुए सतर्क रहने की सलाह दी है। पिछले 24 घंटे में राज्य के लगभग सभी हिस्सों में बारिश हुई, जबकि पश्चिमी सिंहभूम के कुमारडुंगी में सबसे अधिक 97 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
2: मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों पर आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में तेज बारिश के कारण दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। 18 उड़ानें आज रद्द करनी पड़ी, जबकि 146 उड़ानें देरी से चल रही हैं। क्रिकेट में कोलंबो में भारत के साथ दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन श्रीलंका ने अपनी दूसरी पारी में 7 विकेट पर 177 रन बना लिए थे। श्रीलंका भारत से 326 रन पीछे है। इससे पहले भारत ने अपनी पहली पारी में 9 विकेट पर 503 रन बनाए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई को भारत की डिजिटल भुगतान यात्रा में महत्वपूर्ण क्षण बताया।

11 देशों में शुरू होने के साथ यूपीआई को वैश्विक पहचान मिली। सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज पेचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ भारत चीन सीमा विवाद पर वार्ता करेंगे। अमेरिका ने तय सीमा के अंतर्गत सभी H-1B वीजा आवेदकों पर मौजूदा शुल्क के अतिरिक्त $1,03,000 का शुल्क लगाने का प्रस्ताव दिया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, TRM 810 किलोहर्ट्स पर दिन के 2:30 हो रहे हैं और ये वक्त है आपके पसंदीदा प्रोग्राम एक ही कलाकार का। तो स्वीकार कीजिए अपनी दोस्त राखी बैनर्जी का नमस्कार और स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का इस प्रोग्राम में। दोस्तों, कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जिनमें मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत सफ़र होता है। एक ऐसी लड़की जिसका जन्म भारत में नहीं हुआ, जिसने बॉलीवुड के किसी फिल्मी परिवार में आंखें नहीं खोली, लेकिन अपनी मेहनत, आत्मविश्वास और सीखने की इच्छा के दम पर हिंदी सिनेमा में अपनी अलग पहचान बनाई।

जी हाँ दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे आज हम किस कलाकार की बात कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं खूबसूरत जैकलिन फर्नांडिस की। इनकी कहानी कुछ ऐसी है कि जैकलिन का जन्म 11 अगस्त 1985 को बहरीन की राजधानी मनामा में हुआ। परिवार मल्टीकल्चरल बैकग्राउंड से जुड़ा था। पिता एल रॉय फर्नांडिस श्रीलंका मूल के थे, जबकि माँ किम की पारिवारिक जड़ें मलेशिया और कनाडा से जुड़ी थी। जैकलिन चार भाई बहनों में सबसे छोटी हैं। इनका बचपन बहरीन में बीता और वहीं से इनकी शुरुआती पढ़ाई हुई। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी में के मास कम्युनिकेशन किया और इसके बाद श्रीलंका में बहुत से टेलीविजन शोज किए और मॉडलिंग की दुनिया में भी कदम रखा। यही एक्सपीरियंस आगे चलकर एक्टिंग के करियर की नींव बना। 2006 में जैकलिन जीवन में 2006 जैकलिन के जीवन में एक बड़ा मोड़ लेकर आया। इन्होंने मिस श्रीलंका यूनिवर्स का खिताब जीता और उसी साल मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में अपने देश को रिप्रेजेंट किया। लेकिन जैकलिन की कहानी किसी ब्यूटी पेजेंट की जीत पर ख़त्म होने वाली नहीं थी। एक मॉडलिंग असाइनमेंट की वजह से इन्हें मुंबई लेकर आया गया। उसी समय शायद जैकलिन को भी अंदाज़ा नहीं था कि ये जर्नी इनके जीवन की दिशा बदल देगी। आगे हम बात करेंगे इनकी जर्नी की, पर अभी वक्त हो गया है इनकी फिल्म रॉय का ये सॉन्ग सुनने का।

दोस्तों, आकाशवाणी दिल्ली के इन द प्रेस चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार, और आज की जो हमारी कलाकार हैं वो हैं जैकलिन फर्नांडिस। दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है और बात करते हैं जैकलिन की। मॉडलिंग के सिलसिले में जैकलिन भारत आई और 2009 में डायरेक्टर सुजॉय घोष की फिल्म अलाउद्दीन में जैकलिन को काम मिला। ये जैकलिन का बॉलीवुड डेब्यू था। फिल्म में अमिताभ बच्चन, संजय दत्त और रितेश देशमुख जैसे अनुभवी कलाकार थे। फिर अगले साल इन्होंने जाने कहां से आई है फिल्म में काम किया और उसी साल हाउसफुल फिल्म में एक आइटम सॉन्ग ने इन्हें स्टार बना दिया। हालांकि इनके करियर का टर्निंग पॉइंट 2011 में आया जब वो मर्डर 2 में नज़र आईं। मर्डर 2 को इनके करियर का पहला बड़ा कमर्शियल हिट के रूप में देखा गया है। इसके बाद इनके पास फिल्मों के कई ऑफर आने लगे। फिल्म हाउसफुल 2 और रेस 2 में इन्होंने एक्शन और ग्लैमर से सिल्वर स्क्रीन को हिला कर रख दिया। ये दौर जैकलिन के लिए लगातार आगे बढ़ने का था। फिर आया 2014 जिसने जैकलिन फर्नांडिस के करियर को एक नई ऊंचाइयां दी। कौन सी थी वो फिल्म जिसने जैकलिन को और फेमस कर दिया था, बताएंगे। पर अभी सुनिए इनकी फिल्म मर्डर 2 का ये दिलकश सा गीत।

दोस्तों, आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से आप इस वक्त सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार। श्रोताओं, किसी कलाकार के करियर में कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो सिर्फ फिल्म नहीं रहती बल्कि उसकी पहचान का हिस्सा बन जाती है। जैकलिन फर्नांडिस के लिए किक ऐसी ही फिल्म साबित हुई। 2014 में रिलीज हुई किक में जैकलिन ने सलमान खान के साथ काम किया। फिल्म दर्शकों के बीच बेहद हिट हुई और जैकलिन की पहचान देश भर में और मजबूत हो गई। इनके डांस, एक्टिंग और स्क्रीन प्रेजेंस की भी खूब चर्चा हुई। किक की सफलता के बाद जैकलिन के करियर में सिर्फ फिल्में नहीं बल्कि बड़े ब्रांड्स, म्यूजिक वीडियोस, स्टेज शोज और इंटरटेनमेंट से जुड़े दूसरे मौके भी आने लगे। साथ ही फिल्म रॉय ब्रदर्स, हाउसफुल 3, धिशुम और जुड़वा 2 जैसी कई फिल्मों ने इनके सफ़र को आगे बढ़ाया। 2016 में जैकलिन डांस रियलिटी शो झलक दिखलाजा के 9वें सीजन में जज की भूमिका में भी नजर आई। दरअसल इनकी पॉपुलैरिटी का एक बहुत बड़ा कारण इनका डांस भी रहा। इसके अलावा भी जैकलिन में बहुत सी खूबियां हैं जिसके बारे में हम आपको बताएंगे, पर अभी सुनिए इनकी फिल्म रेस 2 का ये हिट सॉन्ग।

जी हाँ श्रोताओं, आज बात हो रही है बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन की। जैकलीन एक्टिंग के अलावा एक सफल बिजनेसमैन भी हैं। 2017 में इन्होंने बिजनेस की दुनिया में कदम रखा और एक भारतीय कंज्यूमर प्रोडक्ट कंपनी में निवेश किया। बिजनेस के साथ इन्होंने लगातार फिल्मों में भी काम किया। इतना ही नहीं, 2022 में कन्नड़ फिल्म विक्रांत रोना ने भी इनके करियर में एक नया अध्याय जोड़ा। हाल ही में जैकलीन हाउसफुल 5 और वेलकम टू द जंगल जैसी मल्टी स्टारर फिल्म का भी हिस्सा रही। एक विदेशी धरती पर जन्मी और अलग अलग संस्कृतियों के बीच पली बड़ी जैकलीन के लिए भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में अपना जगह बनाना अपने आप में एक काबिले तारीफ है। आगे जैकलीन से जुड़ी और भी बातें हम आपको बताएंगे, पर अभी सुनिए इनकी फिल्म

श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्र प्रेस चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार। और आज की जो हमारी कलाकार हैं वो है जैकलिन फर्नांडिस, और मैं आपके साथ हूँ आपकी दोस्त राखी बैनर्जी। दोस्तों, फिल्मों की चकाचौंध से दूर जैकलिन अपने सादगी भरे नेचर, फिटनेस के प्रति समर्पण और सोशल वर्क के लिए भी जानी जाती हैं। ये एनिमल्स के अधिकार की सपोर्टर हैं और पेटा जैसी संस्थाओं के साथ एक्टिव रही हैं। इसके अलावा ये श्रीलंका और भारत में कई सामाजिक कार्यों और एनजीओ के माध्यम से ज़रूरतमंदों की सहायता करती हैं। इन्होंने श्रीलंका के कोलंबो में अपना रेस्टोरेंट भी खोला हुआ है। 2013 में इन्होंने ऑकलैंड, पर्थ और सिडनी में शाहरुख खान, रानी मुखर्जी और माधुरी दीक्षित के साथ टेम्पटेशन रीलोडेड में परफॉर्म भी किया। अपने छोटे से करियर में जैकलिन ने काफ़ी कुछ हासिल किया और कुछ अवार्ड्स भी अपने नाम किए। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं के बड़े प्यारे प्यारे मेल आ गए हैं, उसे भी हम पढ़ लेते हैं। ये मेल आया है पश्चिम सिंहभूमि झारखंड से शिव गोपा, प्रेम गोपा, कपिल, शिवान, संगीता, लिपि और दीपाली, बिहारी कॉलोनी शादरा से तुलसी, वीना, आशीष, चैतन, पंचकुला, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना और केशु खुराना का। और ये हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेराज जहां आज़ाद।

नगर लक्सर हरिद्वार से, और ये लिखते हैं होस्ट राखी बैनर्जी जी, हेलो, आज जैकलिन मॉडल की एक ही कलाकार में याद किया जा रहा है। ये लिखते हैं तुलसी मस्कीन जी, सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर, सोनीपत से रेस्पेक्टेड राखी बैनर्जी जी, वेरी हैप्पी एंड हेल्दी ट्यूजडे, गुड आफ्टरनून, वी आर लिसनिंग प्रोग्राम एक ही कलाकार, टुडे यू आर डिस्कसिंग ऑन एक्ट्रेस जैकलीन, बेस्ट प्रेजेंटेशन एंड सॉन्ग, योर बिग थैंक्स एंड नाइस प्रोग्राम, थैंक यू सो मच यू टू, क्योंकि आप लोग कार्यक्रम इतने प्यार से सुनते जो हैं। गुरमीत सिंह मेहता साउथ एक्सटेंशन से, शालीमार बाग, अशोक कुमार सहगल, ये हैं भोपालगढ़ राजस्थान से, धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान छिपा और पूजा परिहार, संदीप जी, ज्योति, मन्नत, भारत सहानी, ये हैं जालंधर से, और जिला पटियाला पंजाब से हैं कैरव, ज्योति रानी, गुरमीत कौर और मनु, और छत्तीसगढ़ परियारी से प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा, यशस्वी वर्मा, यस्मीत, यशु, निरंजन, सौम्य, अविरल, सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से, वड़िंगा खेड़ा पंजाब से, मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा, मेरठ कैंट से, दिग्दर्शन और कविता गौड़, और फारूक अली खान जी भी साथ जुड़े हुए हैं। और आगे चलते हैं, ये आपके बहुत सारे मेल हमारे पास आ चुके हैं, लेकिन समय भी थोड़ा कम है और हमारे पास घड़ी भी इशारा कर रही है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, तो श्रोताओं आगे बढ़ते हैं। जैकलीन ने अपने फिल्मी करियर में एक्टिंग और डांस के लिए कई अवार्ड्स हासिल किए। अपनी पहली डेब्यू अलाउद्दीन के लिए इन्हें आईफा अवार्ड्स में स्टार डेब्यू ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था, जिसने बॉलीवुड में इनकी शुरुआती सफ़र को पहचान दी। फिर फिल्म किक के लिए इन्होंने 3 अवार्ड एक साथ लिया। आज जैकलीन फर्नांडिस केवल एक सफल एक्ट्रेस नहीं है, बल्कि एक ऐसी प्रेरणा है जो अपने सपनों को सच करने की चाह रखने वाले हर इंसान को उम्मीद की किरण दिखाती हैं।

श्रोताओ, ये सॉन्ग है किक फिल्म से और उम्मीद है आपको हमारा ये आज का शो पसंद आया होगा। फिलहाल अपनी दोस्त राखी बैनर्जी को अनुमति दीजिए और आप सुनिए प्रोग्राम का ये लास्ट सॉन्ग, प्यारा सा और खूबसूरत सा सॉन्ग।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त 3 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम मैटनी मेलोडीज। तो कार्यक्रम मैटनी मेलोडीज लेकर हाजिर हूँ मैं, आपकी होस्ट और दोस्त रिया। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको संगीत के उस दौर में ले चलेंगे जहां हर गीत कुछ कहता है। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म हसीना मान जाएगी से। आवाज़ें हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की, गीतकार हैं अख्तर रोमानी और संगीतकार कल्याण जी आनंद जी।

अगला गीत हमने लिया है 1965 में आई फिल्म गाइड से, जो लेखक आर के नारायण के उपन्यास द गाइड पर आधारित है। फिल्म देवानंद और वहीदा रहमान पर फिल्माया गया है और फिल्म के डायरेक्टर देवानंद के छोटे भाई विजय आनंद हैं। गीत जो हम आपको सुनवाने वाले हैं उसे आवाज़ें दी हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने।

एसटी बर्मन वॉज वेरी ग्रेट मास्टर एन इंस्पायर्ड मैन, ज़्यादा पिक्चर लेता नहीं था, धरती पे बैठ के कंपोज करता था। सुबह 8 बजे फ़ोन कर देता था, देव शाम को क्या कर रहे हो, आ जाओ, या मैं शाम को आ रहा हूँ। और कई बार ऐसा भी हुआ कि एक ही सिटी में 3-3 गाने फाइनलाइज हुए हैं।

अब आइए सुनते हैं कश्मीर की कली फिल्म का ये गीत। आवाजें हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की। गीतकार हैं SH बिहारी और संगीतकार OP नैयर।

आइए सुनते हैं 1969 में बनी फिल्म आराधना का ये गीत। इस फिल्म के निर्माता एवं निर्देशक शक्ति सामंत थे। फिल्म में एक से एक बेहतरीन गीत हैं जिसे सुनकर दिल झूम सा उठता है। तो आइए इस फिल्म का एक गीत हम आपको सुनवाते हैं जिसके गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार SD बर्मन। गायक कलाकार हैं किशोर कुमार।

अगला गीत है फिल्म मुगले आजम से। गायिका हैं लता मंगेशकर और शमशाद बेगम। गीत के बोल लिखे हैं शकील बदायूनी ने और संगीत से सवारा है नौशाद ने।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम मैटनी मेलोडीज। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 3:30 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम उर्दू मजलिस।

रद्द अमल को दबाने, जंग लगने के अमल को रोकने और साथ ही कैथोड पर ऑक्सीजन के रद्द अमल की कारकर्दगी को बेहतर बनाने में कामयाबी हासिल की और इस तरह कम लागत के एक ही हल के जरिए बैटरी के दोनों इलेक्ट्रोड से मुतालिक मसाइल पर काबू पाया गया।

World Test Championship final. And that is the end of this news bulletin. ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है. मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर. 4:10 हुए हैं. आइए आपको जानकारी देते हैं गुमशुदा व्यक्तियों के बारे में. खोई हुई युवती का पूरा नाम मुस्कान है. इन्हें अंतिम बार दिनांक 18 जून 2026 को देखा गया. इनकी आयु 19 वर्ष है. शरीर की बनावट औसत है एवं कद 5 फीट 2 इंच है. इनके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप प्रभारी निरीक्षक थाना फेज 2 जनपद गौतम बुद्ध नगर से संपर्क कर सकते हैं. लापता पुरुष का पूरा नाम सतीश चौहान है. इन्हें अंतिम बार दिनांक 27 जुलाई 2026 को शहादरा सेक्टर 142 में देखा गया. सतीश की आयु 27 वर्ष है. शरीर की बनावट सामान्य है एवं कद 5 फीट है. इन्होंने अंतिम बार सफ़ेद शर्ट एवं काले रंग की पैंट पहनी थी. इनके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप प्रभारी निरीक्षक थाना सेक्टर 142 कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर से संपर्क कर सकते हैं. गुमशुदा युवती का पूरा नाम अंजलि है. इन्हें अंतिम बार 1 अगस्त 2026 को देखा गया. अंजलि की आयु 19 वर्ष है. शरीर की बनावट औसत है एवं कद 5 फीट 2 इंच है. ये अपने घर से बिना बताए कहीं चली गई हैं. इनके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप प्रभारी निरीक्षक थाना फेज 2 जनपद गौतम बुद्ध नगर से संपर्क कर सकते हैं. खोई हुई युवती का पूरा नाम कुमारी पूजा है. ये श्री भूपेंद्र की पुत्री हैं. इन्हें अंतिम बार दिनांक 5 अगस्त 2026 को इनके घर पर देखा गया. इनकी आयु 21 वर्ष है. इखरा शरीर है एवं कद 5 फीट 1 इंच है. इनके बारे में जानकारी देने वाले को 2000 रुपये की शुल्क राशि पुरस्कार स्वरूप दी जाएगी. पूजा अपने घर से ब्यूटी पार्लर का कहकर निकली थी, फिर वापस नहीं लौटी. इनके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप प्रभारी निरीक्षक कोतवाली दनकौर गौतम बुद्ध नगर से संपर्क कर सकते हैं. लापता युवती का पूरा नाम सपना है. ये रामकिशन की पुत्री हैं. निवासी धर्मपुर, जिला फतेहपुर. इन्हें अंतिम बार दिनांक 30 जुलाई 2026 को फ्लैट नंबर 403 ATS 1 सेक्टर 104 नोएडा में देखा गया. इनकी आयु 20 वर्ष है. कद 5 फीट है. इखरा शरीर है एवं चेहरे का रंग सांवला है. ये अपने घर से बाजार का कहकर निकली थीं, फिर वापस नहीं लौटी. इनके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप प्रभारी निरीक्षक थाना सेक्टर 39 नोएडा गौतम बुद्ध नगर से संपर्क कर सकते हैं. गुमशुदा महिला का पूरा नाम श्रीमती गुड़िया देवी है. ये सौरव सिंह की पत्नी है. इन्हें अंतिम बार KD पब्लिक स्कूल के पास बरौला में रात्रि 8 बजे देखा गया. गुड़िया की आयु 22 वर्ष है. शरीर की बनावट सामान्य है एवं कद 5 फीट है. इनके दाहिने हाथ पर सौरव और काजल नाम का टैटू गुदा है और बाएं हाथ पर KA 3 स्टार का टैटू बना है. इनके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप प्रभारी निरीक्षक थाना सेक्टर 49 नोएडा कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर से संपर्क कर सकते हैं. लापता महिला का पूरा नाम श्रीमती मोहिनी पाल है. इन्हें अंतिम बार 17 जुलाई 2026 को ग्राम बिसरख में अपने घर में देखा गया. इनकी आयु 31 वर्ष है.

शरीर की बनावट औसत है एवं कद 5 फीट है। ये अपने घर से बिना बताए कहीं चली गई हैं। इनके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप प्रभारी निरीक्षक थाना बिसरख गौतम बुद्ध नगर से संपर्क कर सकते हैं। और अंत में गुमशुदा पुरुष का पूरा नाम आमिर है। ये जावीर के पुत्र हैं। इन्हें अंतिम बार इनके घर पर देखा गया। इनकी आयु 26 वर्ष है। शरीर की बनावट औसत है एवं कद 5 फीट है। ये अपने घर से बिना बताए कहीं चले गए हैं। इनके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप प्रभारी निरीक्षक थाना बिसरख गौतम बुद्ध नगर से संपर्क कर सकते हैं। गुमशुदा व्यक्तियों के बारे में सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 4:15 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम युववाणी।

0: ये वक्त क्या है, ये क्या है आखिर कि जो मुसलसल गुजर रहा है। ये जब ना गुजरा था तब कहाँ था, कहीं तो होगा। गुजर गया है तो अब कहाँ है, कहीं तो होगा। कहाँ से आया, किधर गया है, ये कब से कब तक का सिलसिला है, ये वक्त क्या है। वाह, क्या खूब लिखा है जावेद अख्तर साहब ने, ये वक्त क्या है। नमस्कार साथियों, फिलहाल वक्त हो चला है आकाशवाणी इंद्रप्रस्थ पर आपके फेवरेट यूथ प्रोग्राम युववाणी का, और आपके साथ मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट शैलजा, और मेरे साथ हैं
1: आपकी होस्ट शिप्रा। सभी युववाणी लिसनर्स का स्वागत करती हूं। शैलजा, आज मंगलवार है, यानी वीक का ऑफिशियल डे, जब सबको ये रियलाइज़ हो जाता है कि वीक की शुरुआत हो चुकी है। लोग फाइनली वर्क मोड में आ जाते हैं और वर्क मोड के साथ साथ पूरे वीक की प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं। वो क्या कहते हैं इसे शैलजा? हाँ, मंडे रीसेट।
0: बिल्कुल शिप्रा, ट्यूसडे मंडे रीसेट तो है ही, पर आज की जो थीम है यानी कि आर्ट एंड लिटरेचर, वो बनाती है इसे सही मायनों में क्लासिक ट्यूसडे। सो शिप्रा, आर यू रेडी टू गिव इट अ क्लासिक टच?
1: अरे जी हाँ, बिल्कुल। और इसीलिए तो हम अपने लिसनर्स के लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे फैक्ट्स, इन्फॉर्मेशन और रोचक बातें जो जुड़ी हैं आर्ट एंड लिटरेचर यानी कला और साहित्य की अनोखी दुनिया से।
0: तो दोस्तों, आज की बात में हम आपको ले चलेंगे स्टोरी टेलिंग एंड पोइट्री के नॉस्टैल्जिक सफ़र पर। मन से माइक्रोफोन में बात करेंगे यंग रीडर्स के बीच मशहूर राइटर दिव्य प्रकाश दुबे जी, और सुनेंगे हमारे ही युववाणी के एक साथी द्वारा लिया गया युगल जोशी जी का इंटरव्यू। इसके साथ ही जानेंगे साइंस, लिटरेचर और आर्ट्स की फील्ड से जुड़ी फेमस पर्सनालिटीज एंड फैक्ट्स के बारे में। और हाँ, आपके लिए कुछ एवरग्रीन सॉन्ग्स की प्लेलिस्ट भी है तैयार। तो शिप्रा, किया जाए इस खूबसूरत सफर का आगाज।
1: जी बिल्कुल।
0: शिप्रा, आर्ट को लेकर सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, आर्ट यानी कि कला आपके लिए क्या है?
1: शैलजा, मेरे लिए आर्ट यानी कला का मतलब सिर्फ पेंटिंग, डांस, म्यूजिक या स्टोरी टेल तक का नहीं है। मेरे लिए आर्ट एक तरीका है जीवन को देखने का, दुनिया को देखने का। ये खूबसूरत दुनिया जो अपने अंदर न जाने कितने जीवन और राज छुपाए, समय का दामन पकड़े बस आगे चलती जाती है और पीछे छूटे हुए लम्हों को यादों की माला में पिरोए जाती है। ये एहसास जो आपको हर पल याद दिलाता है कि जिंदा हो तुम, यही मेरे लिए असली आर्ट है।
0: वाह शिप्रा, क्या बात कही। और मेरे ख्याल से जो बातें या एक्सपीरियंसेस हम वर्बली एक्सप्रेस नहीं कर पाते, वो कभी किसी कैनवास पर लकीरों में उभर आते हैं, तो कभी स्कल्पचर्स की नक्काशी में, तो कभी नृत्य की मुद्राओं में बयां हो जाते हैं। वाकई में आर्ट एंड लिटरेचर इंडिया की कल्चरल आइडेंटिटी

को एक सॉफ्ट पावर के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। जरा सोचिए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत का हर कोना अपनी समृद्ध विरासत की एक अलग कहानी कहता है। कहीं मंदिरों का अद्भुत आर्किटेक्चर, कहीं लोक संगीत की मिठास, तो कहीं क्लासिकल डांस के ग्रेसफुल एक्सप्रेशंस, भीमबेटका की केव पेंटिंग्स हों, अजंता एलोरा की टाइमलेस लेगेसी, या फिर हमारा सदियों पुराना

0: और यही आपसी प्यार और मेल जोल ही हमें याद दिलाता है कि भले ही हमारे देश में विभिन्न प्रकार की बोली, वेशभूषा या खान पान के लोग क्यों ना हों, लेकिन दिल सबका एक जैसा ही धड़कता है।
1: तो दोस्तों, दिलों में प्यार का माहौल बरकरार रखते हैं और सुनते हैं कृष्णा कॉटेज मूवी का ये ब्यूटीफुल सॉन्ग इन द वॉइस ऑफ श्रेया घोषाल।

0: सच में शैलजा, कितना प्यारा गाना है और लिरिक्स तो और भी प्यारे हैं, बिल्कुल एक कविता की तरह।
1: शिप्रा, आप जानती हैं इस गाने के गीतकार कौन हैं?
0: कौन?
1: दोस्तों, ये हैं हमारे फेवरेट स्टोरी टेलर, जिनकी कहानियाँ कुछ अक्सर शुरू यूँ इस तरह से होती हैं। बात भी बात पर अपनी ही बात कहता है, मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा, कहानियाँ सुनाता हूँ।
0: अरे हाँ, नीलेश मिश्रा को कैसे भूल सकता है कोई। सच में हम जेंजी और मिलेनियल बच्चे तो उनकी ही कहानियां सुन के बड़े हुए हैं। शैलजा, मुझे आज भी याद है जब स्कूल के दिनों में हम रोज रात को उनका शो सुना करते थे, और फिर जब थोड़े बड़े होके होश संभाला तो उनकी वो कहानियां और वो अंदाज कब हमें रियलिटी से रूबरू कराने लगा हमें पता ही नहीं चला।
1: जी हाँ, बिल्कुल। और चाहे उनके स्लो मोशन इंटरव्यूज हों या यादों का ईटेड बॉक्स की वो स्टोरीज, उनकी आवाज़ में वो ठहराव है जो एक ऐसी यात्रा पर ले जाता है कि जहाँ वक्त का पता ही नहीं लगता।
0: सच में, और जिस तरीके से वो कहानियों का सिलसिला शुरू होता था, मानो आप खुद उन कहानियों के किरदार बनके उन्हें जी रहे हों। कुछ ऐसा है नीलेश मिश्रा जी का स्टोरी टेलिंग का अंदाज।
1: वो कहते हैं कि एक अच्छे क्रिएटर का खास गुण है एम्पैथी, यानी कि संवेदना, दूसरे के सुख दुख को ईमानदारी से महसूस कर पाने की क्षमता। और ये एम्पैथी आती है जिंदगी के ढेर सारे एक्सपीरियंसेस से। आपका क्या कहना है शुप्रा?
0: आई टोटली अग्री विद यू शैलजा। और एक्सपीरियंस इकट्ठा करने के लिए मेरे हिसाब से तो ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है। सिर्फ मदद का हाथ बढ़ाने से ही नहीं, बल्कि जब हम रैंडमली किसी को मदद करता देखते हैं तो हमारे चेहरे पे जो धीमी सी मुस्कान आ जाती है वो किसी थेरेपी से कम नहीं।
1: शिप्रा, आई फील लाइक एवरी फॉर्म ऑफ आर्ट इज जस्ट लाइक अ थेरेपी। जब लाइफ में कन्फ्यूजन हो या मन उदास हो, तब खुद को कुछ वक्त दीजिए, अपना पसंदीदा काम करिए, कोई अच्छा सॉन्ग या डायरी में अपने ख्याल, कोई स्केच या अपने फेवरेट सॉन्ग पर डांस, और देखिए स्ट्रेस कैसे छुमंतर होने लगता है।
0: अरे बिल्कुल सही कहा। अब चाहे वो पहाड़ों के बीच नेचर की गोद में सोलो ट्रैवलिंग करना हो, या 9 to 5 के बाद साइड हसल के नाम पे स्टैंड अप कॉमेडीज, या बस अपनी हॉबीज को नीश बना के सोशल मीडिया पे सबके साथ कंटेंट शेयर करना हो, आज के दौर में हर कोई कला की अहमियत जानता है और अपने अंदर के कलाकार को जीवित रखने की कोशिश करता है, और यही सब चीज़ें तो हमारे दिल को सुकून देती हैं।
1: और जब बात सुकून की है, तो मुझे अपनी लिखी कुछ पंक्तियाँ याद आ रही हैं, जिससे शायद सारी कम्युनिटी, जो कि बेसिकली राइटर्स हैं, वो रिलेट कर पाएंगी। तो आप कहो तो ज़रा अर्ज कर दूँ। तो
0: अरे बिल्कुल बिल्कुल, व्हाई नॉट।
1: कुछ इस तरह से है कि रोशनी रोशनी तो हर सुबह होती है, रोशनी तो हर सुबह होती है एक अंधेरी रात के बाद, पर आज आज रोशनी हुई मेरे दिल के गलियारे में एक अरसे बाद। आज रोशनी हुई जब स्याही ने चंद शब्द बिखेरे सीने में साथी कागज की, तब अंधियारी सी गलियों में दस्तक सी दी किरणों ने बनकर दीपक आशा के, जो दबा हुआ सा छिपा हुआ सा बोझ बना अंधियारे में, जो दबा हुआ सा छिपा हुआ सा बोझ बना अंधियारे में, जाना ही पड़ा उसे, हाँ जाना ही पड़ा उसे छोड़कर आशियाना, स्याही के कागज से मिल जाने से। और इस तरह रोशनी हुई आज अरसे बाद मेरे दिल के गलियारे में।
0: माय गॉड शैलजा, तुमने तो हमें उस लड़ाई से रूबरू करा दिया जो हम सब कहीं ना कहीं अपने आप से, अपने मन से रोज, हर दिन, हर पल लड़ते आए हैं, और इस खुद से खुद की लड़ाई को हर दिन जीत के आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो दोस्तों, इसी बात पे सुनते हैं ये सॉन्ग कुड़ी नू नचले दे, फिल्म अंग्रेजी मीडियम विशाल ददलानी की आवाज़ में।

0: दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युववाणी। इस प्यारे से गीत के बाद अब वक्त हो चला है हमारे नेक्स्ट सेगमेंट मन से माइक्रोफोन तक का। तो शिप्रा, क्या है लिसनर्स के लिए हमारे इस खास सेगमेंट में?
1: शैलजा, आज का सेगमेंट बहुत स्पेशल है क्योंकि आज हम बात करेंगे एक ऐसी पर्सनैलिटी के बारे में जो युवाओं से ही उठकर आए हैं और उनकी कोई बहुत हाई फाई या बहुत एक्सट्रीम स्ट्रगल वाली लाइफ नहीं रही है। एक सिंपल सा लड़का, एक सिंपल सी लाइफ, इंजीनियर और MBA जिसने कॉरपोरेट जॉब करते हुए कहानियाँ लिखी और फिर ऐसी हिंदी लिखी जो किताबों से निकल कर सीधे हमारे व्हाट्सएप चैट्स, कैफेज और घरों की बातचीत में आ गई। उनकी खास पहचान बनी नई वाली हिंदी, यानी ऐसी हिंदी जो बहुत साहित्यिक होने की कोशिश नहीं करती बल्कि वैसे ही बोली जाती है जैसे आज का भारतीय युवा सोचता है और बात करता है। आप समझ तो गए ना शैलजा, मैं किसकी बात कर रही हूँ?
0: हाँ हाँ शिप्रा, दोस्तों हम बात कर रहे हैं यंगस्टर्स के चहेते लेखक दिव्य प्रकाश दुबे की, जिनके लिखे किताबें जैसे मुसाफिर कैफे, मसाला चाय, यार पापा और टेंशन मत ले यार हमें सिंप्लिसिटी और अपने सपनों से जुड़ने वाले कैरेक्टर्स से मिलाती हैं। उनकी हिंदी आम बोलचाल की भाषा है जिससे उनके नरेशन और डायलॉग डिलीवरी से हम आसानी से कनेक्ट कर पाते हैं। इनकी कहानी ग्रामीण क्षेत्र की नहीं बल्कि मिडिल क्लास के सपनों और उनके चैलेंजेस की हैं। वैसे शिप्रा, एक बात सच सच बताना, क्या कभी किसी ने आपसे आपके सपनों के बारे में पूछा है और क्या आपने बिना झिझक या डर के उन्हें सब बताया है?
1: सच कहूँ तो पूछा तो हाँ काफ़ी बार गया, पर यार वो एक जजमेंट का डर ना हमेशा कहीं ना कहीं बना रहा और अपने ही सपनों के बारे में खुलकर बात ना कर पाने की कसक हर बार रह गई।
0: वैसे सच कहूँ तो मेरा हाल भी कुछ अलग नहीं है। यू नो वॉट, दिव्य प्रकाश दुबे की बुक मुसाफिर कैफे, इसमें जब सुधा चंदर से उसके ड्रीम्स के बारे में पूछती है तो वो हमारी ही तरह पहले तो झिझकता है और फिर कहता है, पता है मैं ना एक ऐसा कैफे खोलना चाहता हूँ जहाँ बहुत सारी किताबें हों, वहाँ लोग आएं, किताबों को पढ़ें, वाईफाई का पासवर्ड पूछने के बजाय एक दूसरे से ढेर सारी बातें करें, तेजी से भागती दौड़ती जिंदगी के बारे में इत्मीनान से बैठकर सोचें, और हाँ, मेरी एक सुंदर सी बेटी हो जिससे मैं खूब सारी बातें करूं, बच्चों को कहानियां सुनाऊं। पर सुधा यार ना, मुझे डर लगता है, मुझे अपने सपनों से इतना डर लगता है कि मैं उन्हें बताने से भी डरता हूँ।
1: वाओ, ये थी कुछ ब्यूटीफुल लाइंस दुबे जी की। दोस्तों, मन से माइक्रोफोन में चर्चा का सिलसिला

0: आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं लेखक युगल जोशी जी की, जिनकी किताब कहो कालिदास का आज विमोचन हो रहा है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं युगल जोशी जी का ये इंटरव्यू। बातचीत में शामिल है हमारे युवाणी के एक साथी निखिल भास्कर जी।
1: आज हमारे साथ जुड़े हैं एक ऐसी शख्सियत जिनकी ज़िंदगी खुद एक कहानी है। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव से आईआईटी दिल्ली और सिंगापुर तक का सफ़र तय करने वाले श्री युगल जोशी जी, एक तरफ जहां ये नीति आयोग में नीति निर्माण और जल संसाधन जैसे गंभीर विषयों पर काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इनकी कलम से अग्निकाल और विमेंस वॉरियर इन इंडियन हिस्ट्री जैसी किताबें निकलती हैं जो इतिहास और मिथकों को नए अंदाज में जीवित कर देती हैं। नमस्कार युगल जी, स्वागत है आपका युववाणी में।
2: नमस्कार निखिल जी, युववाणी कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: सर, सबसे पहले मैं आपकी नई पुस्तक कहो कालिदास के बारे में पूछना चाहूँगा, जिसका आज लोकार्पण भी होने जा रहा है। सर, आप इस पुस्तक के बारे में हमारे श्रोताओं को कुछ बताइए।
2: निखिल जी, कालिदास महाकवि के बारे में मेरा ख्याल है भारतवर्ष में ऐसे कम ही लोग होंगे जो नहीं जानते होंगे। फिर भी युवाओं में उनके साहित्य के बारे में, उन्होंने जो कुछ लिखा है, रचा है, खासकर उनके काव्य और नाटकों के बारे में कम जानकारी है। इतना ही नहीं, जिस कवि को हम कविता कामिनी कांत कहते हैं या कवि कुल कमल दिवाकर कहते हैं, और संभवतः जो भारतवर्ष के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से हैं, उनका जीवन कैसा रहा होगा, वो व्यक्तित्व उनका कैसा था, किस तरह की उनकी ज़िंदगी थी, वह किस समय पैदा हुए थे, उनका काल क्या था, इन सब के बारे में लगभग अज्ञात है, कोई जानकारी नहीं है। तो मुझे ये लगा कि यह उपयुक्त विषय है कि न सिर्फ कालिदास जी की रचनाओं से हम संसार को और खासकर नई पीढ़ी को अवगत कराएं एक बहुत रोचक कहानी के माध्यम से, बल्कि यह भी जानने का, झांकने का प्रयास करें कि इतने महान कवि का अंतर्मन कैसा रहा होगा।
1: जी, आपने काफ़ी दिलचस्प बात कही। युगल जी, आज का दौर सोशल मीडिया का है, आपको क्या लगता है आजकल किताब पढ़ने का रुझान किस तरह से बदल रहा है युवाओं में?
2: हर समय की साहित्य या कला को देखने की अपनी अलग मांग होती है। खासकर अगर आप देखें ना, गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखी, रामायण वाल्मीकि जी ने संस्कृत में लिखी थी, और गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवधि में रामचरितमानस लिखी, और अवधि की रामचरितमानस कितनी लोकप्रिय हुई। आज जन जन भारत का, खासकर उत्तर भारत का, तो शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो रामचरितमानस और इसके दोहे चौपाइयों से ज्ञात ना हो जिसको। तो हर काल में युवाओं को भी साहित्य की आवश्यकता है कि युवाओं की भाषा में उनसे संवाद किया जाए। और कालिदास को जब हम जानते हैं, कालिदास का साहित्य इतना श्रृंगार रस भावनाओं से ओतप्रोत है कि अगर उसे युवा की भाषा में, आज का युवा जिस भाषा में बात करता है उस भाषा में उस तक पहुंचाया जाए, तो युवा अवश्य ही इसमें रुचि लेगा। तो बात यह नहीं है कि युवाओं की रुचि कम हो रही है या युवा साहित्य की तरफ नहीं जा रहे हैं। चुनौती यह है कि युवाओं को उनकी भाषा, क्योंकि हर समय के हिसाब से भाषाओं के मापदंड बदलते हैं, भाषाओं का जो कलेवर है वो बदलता है, तो उसी भाषा में अगर साहित्य रचा जाएगा तो युवा अवश्य ही उस साहित्य को पढ़ेंगे।
1: जी सर, सर आपने बोला भाषा वैसी हो तो युवा वो पढ़ेंगे। सर, आपको क्या लगता है कि आजकल का युवा पौराणिक कहानियों को ज़्यादा पढ़ने में रुचि रख रहा है क्या?
2: मैं यहाँ पर दो उदाहरण दूंगा आपको। पहला उदाहरण, तो आजकल हम लोग इंस्टाग्राम यूज करते हैं, मैसेंजर यूज करते हैं, तो मैसेंजर या मैसेंजर यूज करने वाला, मैसेंजर का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? कालिदास। कालिदास ने बादल को अपना मैसेंजर बनाया। कालिदास का जो पात्र है यक्ष, वो बादल को अपना मैसेंजर बनाता है और अपनी प्रियतमा को अपना संदेश भेजता है। तो मुझे तो ये लगता है कि आज की पीढ़ी, और खासकर अगर अभिज्ञान शाकुंतलम लें कालिदास जी का, तो एक अंगूठी के गायब होने से कैसे शकुंतला का जीवन ही बदल जाता है और कैसे अंगूठी मिलने से राजा दुष्यंत को याद आ जाता है। तो ये जो विभिन्न तरह के संकेतार्थ हैं, विभिन्न तरह के संकेत हैं जो कालिदास ने दिए हैं, मुझे तो लगता है कि अगर आज कालिदास होते तो शायद सबसे पॉपुलर इंस्टाग्रामर या इन्फ्लुएंसर होते।
1: सर, युवा लेखकों को जो सरकारी नौकरी के साथ लेखन भी करना चाहते हैं, सर आप उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे?
2: देखिए, हमें तो बड़े बचपन से बताया गया कि एक हॉबी रखनी चाहिए, एक अच्छी हॉबी रखनी चाहिए, और लेखन से अच्छी हॉबी क्या हो सकती है। मेरा अपना अनुभव यह रहा है कि आप 10 घंटे 12 घंटे जो भी आपको सरकारी या किसी भी नौकरी के लिए तय हैं उस पर जमकर काम करिए, उससे हुई थकान अगर आपके पास एक अच्छी हॉबी है तो ये बिल्कुल आपका दूर कर देती है वो थकान और तनाव। तो

0: लेखन एक जरिया है उस थकान को दूर करने का और साथ ही समय का बहुत क्रिएटिव ढंग से सदुपयोग करने का।
1: सर, इस समय लाखों करोड़ों युवा श्रोता जो हमें सुन रहे हैं, जो लेखन के क्षेत्र में अपना पहला कदम रखना चाहते हैं, या फिर जो शौकिया तौर पे इसे आजमाना चाहते हैं, या फिर जो इसमें अपना करियर ढूंढना चाहते हैं, सर आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे?
0: ये बहुत अच्छा प्रश्न है निखिल। आपने तीन चीज़ें पूछी कि जो नया लेखन शुरू करना चाहते हैं, या जो शौकिया अंदाज या शौकिया तरीके से लेखन करना चाहते हैं, तीसरा जो लेखन को व्यवसाय बनाना चाहते हैं। मैं सबसे पहली बात तो ये बोलूँगा कि लेखन से अच्छा स्ट्रेस रिलीज करने का और कोई माध्यम नहीं है। ये मेरा अपना पिछले 20-30 साल का अनुभव है। आज की ज़िंदगी में तनाव बहुत है। जिस समय आप कलम उठाते हो या अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप पर बैठते हो, तो जो कुछ भी आप सोच के लिखते हो उससे अच्छा स्ट्रेस बस्टर और मेरा ख्याल है कोई नहीं होता। अगर आप शौकिया तौर पर शुरू करना चाहते हैं या व्यावसायिक तौर पर शुरू करना चाहते हैं, तो जितनी अपॉर्चुनिटीज आज हैं मेरा ख्याल है कभी पहले नहीं थी। पहले सोचिए ना, पहले एक ही माध्यम होता था कि आप ताड़पत्र पे लिखेंगे, किसी राजा को देंगे। फिर जब छापाखाना आया तो आपकी किताब छपेगी नहीं छपेगी, पब्लिशर कितने लोगों तक पहुंचा पाएगा। लेकिन आज आप टेलीविज़न के लिए लिखिए, आज आप फिल्मों के लिए लिखिए, आज आप सोशल मीडिया के लिए लिखिए, आज आप साहित्य किताबों के लिए लिखिए। तो आज जितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं मेरे को लगता है लेखकों के लिए पहले कभी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। तो मुझे तो लगता है कि जो भी लोग इस व्यवसाय में आना चाहते हैं उनका भविष्य बहुत ही उज्ज्वल है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर।
0: थैंक यू वेरी मच।
2: तो दोस्तों, अब सुनते हैं हमारे ये प्यारा सा गीत हेमा सरदेसाई की आवाज़ में, फिल्म चक दे इंडिया से, बादल पे पांव है।

0: दोस्तों, मन से माइक्रोफोन को अब यहीं विराम देते हैं और बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट व्हाट्स टुडे इन हिस्ट्री की ओर।
1: तो शिप्रा, आज ही के दिन यानी 25 अगस्त साल 2000 में भारत के माननीय राष्ट्रपति जी ने मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम को मंजूरी दी थी, जिससे 1 नवंबर 2000 को हमारा सांस्कृतिक रूप से समृद्ध प्रदेश यानी कि छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आया। दोस्तों, आपने नेशनल हैंडलूम डे पर रायपुर का वो वायरल रैंप वॉक का वीडियो तो देखा ही होगा, जो हाथ कभी बंदूकों को थामे होते थे, जिनसे जंगलों में खौफ का माहौल होता था, उन्हीं बस्तर और सुकमा क्षेत्र की सरेंडर कर चुकी माओवादी महिलाओं ने जब छत्तीसगढ़ के ट्रेडिशनल कोसा सिल्क के परिधान पहनकर प्रोफेशनल मॉडल्स के साथ रैंप वॉक किया, तो दुनिया ने देखा बदलते बस्तर का नया रूप और मुख्य धारा से जुड़ती कला की अद्भुत ताकत। और हाँ, इसी माटी की देन है पंडवानी लोक कला को पूरी दुनिया में अमर करने वाली पद्म विभूषण डॉक्टर तीजनबाई और हिंदी साहित्य के शीर्षस्थ सपूत विनोद कुमार शुक्ल जी, जिनका प्रसिद्ध उपन्यास दीवार में एक खिड़की रहती थी से शायद ही हम में से कोई वाकिफ ना हो।
0: और आज ही के दिन मध्य प्रदेश के छतरपुर बिजावर क्षेत्र से आने वाली महान ध्रुपद वोकलिस्ट असगारी बाई का जन्म 1918 को एक ऐसे परिवार में हुआ था जिसकी महिलाओं की कई पीढ़ियां राजदरबारों में गायिका रही थीं। उनका संबंध मेवाती ध्रुपद क्लासिकल ट्रेडिशन से था। उन्हें मिले प्रमुख सम्मानों में पद्मश्री, तानसेन सम्मान, अकेडमी और शिखर सम्मान जैसे पुरस्कार शामिल थे।
1: दोस्तों, आज ही के दिन सन 2012 को नील आर्मस्ट्रांग का निधन भी हुआ था। वही नील आर्मस्ट्रांग जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को जब अपोलो 11 मिशन के दौरान चांद पर अपना पहला कदम रखा, तो उनके शब्द इतिहास बन गए। यह एक इंसान का छोटा सा कदम है, लेकिन मानवता के लिए एक बहुत बड़ी छलांग। उन्होंने हमें ये मैसेज दिया है कि अगर हौसला ऊंचा हो तो चांद भी दूर नहीं।
0: 25 अगस्त 1957 भारतीय खेल इतिहास का एक गौरवशाली दिन था। इसी दिन भारतीय पोलो टीम ने फ्रांस में आयोजित विश्व पोलो चैंपियनशिप जीतकर देश का नाम रोशन किया। ये जीत उस दौर में भारतीय पोलो के अंतर्राष्ट्रीय दबदबे की शानदार मिसाल बनी। घोड़ों की रफ्तार, खिलाड़ियों के कौशल और टीम वर्क ने भारत को विश्व विजेता बनाया। तो आइए इस ऐतिहासिक उपलब्धि को याद करते हुए अपने उन खिलाड़ियों को सम्मान करें जिन्होंने दुनिया के पोलो मैदान पर भारतीय तिरंगा लहराया।
1: और आज ही दिग्गज संगीत निदेशक अशोक पटकी जी का जन्मदिन भी है। दोस्तों, आपने दूरदर्शन पर गूंजने वाला वो ऐतिहासिक और अमर गीत मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा तो जरूर ही सुना होगा। इस बेहद खूबसूरत गीत की धुन को उन्होंने ही कंपोज किया था। विज्ञापनों की दुनिया में तो वे जिंगल किंग माने जाते हैं, जिन्होंने 5000 से ज़्यादा विज्ञापनों के लिए जिंगल्स तैयार किए। उन्होंने संगीत की कोई औपचारिक शास्त्रीय शिक्षा नहीं ली थी, लेकिन अपने हुनर के दम पर उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, लता मंगेशकर पुरस्कार और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है।
0: दोस्तों, अगस्त की बात चल ही रही है तो अगस्त की शुरुआत तो फ्रेंडशिप डे से हुई और अब बहुत जल्द ही अगस्त को टाटा बाय बाय करेंगे रक्षाबंधन के पावन त्यौहार के साथ। घरों में पहले ही सिंधारे बटने शुरू हो गए हैं। सभी भाई अपनी बहनों से राखी बंधवाने को उत्सुक हैं और राखी के साथ साथ आने वाले फेस्टिवल सीजन के लिए भी बहुत एक्साइटेड हैं। लेकिन दोस्तों, ज़रा उन भाइयों के बारे में भी सोचिए जो आज भी सरहद पर दिन रात बिना रुके हमारी सुरक्षा में तैनात हैं। इस राखी अपने

0: वीर जवानों के लिए भी दिल से एक दुआ और ढेर सारा सम्मान जरूर भेजिए।
1: और रक्षाबंधन की इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब लिसनर्स के लिए लेकर आए हैं हम अपना ये प्यारा सा गीत।

ये था गाना तेरी मेरी कहानी फिल्म गब्बर इज बैक अरिजीत सिंह एंड पलक मुछल की आवाज़ में। शैलजा, अब वक्त हो चला है अपने कार्यक्रम को उसके आखिरी पड़ाव पे लाने का, यानी क्विक बस का।

0: तो जरा देखे तो आज क्या है हमारे क्विक बस के पिटारे में।
1: दोस्तों, अगर आप हैं थिएटर एंड ड्रामा के शौकीन, तो आपके लिए श्रीराम सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स लेकर आ रहा है एक बेहतरीन प्ले, अकबर द ग्रेट नहीं रहे। ये कॉमेडी ड्रामा परफॉर्म किया जाएगा 30 अगस्त से 13 सितंबर तक हर रोज शाम 7:15 बजे, जिसकी टिकट्स आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं।
0: दोस्तों, अगर आपको भी कव्वालियों, गजलों या रूहानी संगीत और शेरो शायरियों का शौक है तो 28 अगस्त को भारत मंडपम में महफिले मीर होने जा रहा है, जहां हमें ओस्मान मीर और आमिर मीर की खास जुगलबंदी देखने को मिलेगी। ये प्रोग्राम शाम 7 बजे से शुरू हो जाएगा और इसके एंट्री टिकट्स भी काफ़ी इजीली ऑनलाइन अवेलेबल हैं।
1: डियर लिसनर्स, अगर आपके घर में भी हैं 8 से 14 साल तक के बच्चे और उनमें हैं वो थिएटर आर्टिस्ट वाले ट्रेड्स, तो 30 अगस्त से नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के थिएटर इन एजुकेशन संडे क्लब 2026-27 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन हो रहे हैं शुरू, जिसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट है 3 सितंबर। अधिक जानकारी के लिए आप वेबसाइट nsd.gov.in विजिट कर सकते हैं।
0: दोस्तों, 26 अगस्त यानी बुधवार को इंडिया हैबिटेट सेंटर लोधी रोड पर नेशनल डांस एंड म्यूजिक फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा है। शो के प्रमुख आकर्षण हैं बांसुरी वादक पंडित रोनू मजूमदार, तबला वादक उस्ताद अकरम खां, त्रिधारा मंडली द्वारा ओडिसी नृत्य की प्रस्तुति और भी बहुत कुछ। लोगों के लिए ये कार्यक्रम में प्रवेश बिल्कुल मुफ्त है। कार्यक्रम शाम 7 बजे से शुरू किया जाएगा।
1: तो दोस्तों, उम्मीद है युववाणी का आज का ये एपिसोड आपने एंजॉय किया होगा। हमें हमेशा की तरह आपकी फीडबैक्स का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। आप अपने सुझाव और फीडबैक्स हमें ईमेल कर सकते हैं yuvvani.feedback@gmail.com पर। जी हाँ, yuvvani.feedback@gmail.com पर। कल फिर मुलाकात होगी नए जोश और नई चर्चाओं के साथ शाम 4:15 बजे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।
0: एंड दैट्स अ रैप दोस्तों। जाने का मन तो नहीं है, मगर ये वादा है कि आपसे जल्द ही मुलाकात होगी। मीन वाइल रिमेम्बर, लाइफ की प्लेलिस्ट को कभी बोरिंग मत होने देना। थोड़ा मिक्स म्यूजिक, किताबों की चर्चा और चंदर जैसे थोड़े बड़े सपने, बस यही तो है हमारी वाइब। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में सेम एनर्जी एंड नई स्टोरीज के साथ। टिल देन, कीप रीडिंग, कीप वाइबिंग एंड कीप शाइनिंग माय फ्रेंड्स।
1: मैं शैलजा
0: और मैं शिप्रा
1: लेते हैं आपसे विदा।
0: नमस्कार।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवाणी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। स्टूडियो की घड़ी में अब शाम के 5 बजने को है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI ने डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में बदलाव लाते हुए 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। आज ही के दिन 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी। भुगतान की डिजिटल प्रणाली UPI ने अभूतपूर्व व्यापकता और विश्वसनीयता के माध्यम से वैश्विक मान्यता प्राप्त की। ये प्रणाली अब 11 देशों में कार्यरत है। UPI भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के सबसे सफल स्तंभों में से एक

0: है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र की इस डिजिटल क्रांति पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूपीआई प्रणाली का शुरू होना भारत के डिजिटल भुगतान इतिहास का सबसे बड़ा निर्णायक क्षण रहा है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एक दशक पहले यूपीआई की शुरुआत हुई थी और ये भारत की डिजिटल भुगतान यात्रा में अब तक का सबसे निर्णायक फैसला साबित हुआ। गृहमंत्री अमित शाह ने यूपीआई के 10 वर्ष पूरे होने पर बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि डिजिटल इंडिया ने लोगों को तेज, आसान और सुरक्षित डिजिटल भुगतान की सुविधा दी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि यूपीआई के लेन देन की संख्या में लगभग 13,000 गुणा वृद्धि हुई है।
1: महज 10 वर्षों में यूपीआई ने भारत में डिजिटल भुगतान के तरीकों को पूरी तरह से बदल दिया है। यूपीआई की बड़े पैमाने पर तेज और भरोसेमंद सेवा को पूरी दुनिया में सराहा गया है, जिसके कारण आज यूपीआई प्रणाली को 11 देशों ने अपनाया है। इनमें फ्रांस, सिंगापुर, यूएई, श्रीलंका, भूटान और मॉरिशस जैसे देश शामिल हैं। आज दुनिया में होने वाले हर 2 रियल टाइम डिजिटल भुगतान लेन देन में से लगभग 1 भारत में होता है। दुनिया भर में होने वाले डिजिटल भुगतान लेन देन में यूपीआई की हिस्सेदारी लगभग 49% है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारत की डिजिटल कनेक्टिविटी यात्रा केवल लोगों को जोड़ने से परिभाषित नहीं होगी, बल्कि विश्वसनीय, सुरक्षित और लचीले नेटवर्क सुनिश्चित करने से भी परिभाषित होगी। उन्होंने आज नई दिल्ली में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स C.DOT के 43वें स्थापना दिवस पर देश के दूरसंचार परिवर्तन में C.DOT की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को देश के में उत्पादन के लिए भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन में वृद्धि करना है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशालाओं ने आज नई दिल्ली में 3 स्वदेशी माइक्रो और छोटे गैस टरबाइन इंजन प्रस्तुत किए। इनमें NJ-05, NJ-50 और NJ-100 शामिल हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार इन इंजनों को स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण जरूरतों को पूरा करने के लिए विकसित किया गया है। इनका इस्तेमाल सामरिक मानव रहित हवाई वाहनों, ड्रोन इंटरसेप्टर और छोटे मिसाइल सिस्टम में किया जा सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और भारत चीन सीमा मामलों पर विशेष प्रतिनिधि अजीत डोभाल ने आज चीन के उपराष्ट्रपति हान चेंग से मुलाकात की। पेचिंग स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पर बताया कि 25वें दौर की विशेष प्रतिनिधि वार्ता से पहले दोनों पक्षों ने सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के तरीकों पर चर्चा की। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दे दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने संबंध में एक राजपत्र अधिसूचना जारी की। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि लगभग 2,03,000 आवेदकों में से अब तक 23,000 लोगों को पात्र घोषित कर नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव निधि खरे ने बताया कि कांदा एक्सप्रेस दिल्ली में लगभग 800 मीट्रिक टन प्याज ला रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि ये प्याज भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड NCCF और केंद्रीय भंडार के स्टोरों में 35 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचे जाएंगे। कोलंबो में भारत के साथ दूसरे और आखिरी क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन श्रीलंका ने पहली पारी में 8 विकेट पर 265 रन बना लिए हैं। श्रीलंका भारत से 238 रन पीछे है। भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित कर दी थी। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बिहार और उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिनों के दौरान तेज वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय VC प्रमोद। National Security Advisor Ajit Doval today held special representative's talks with Chinese Foreign Minister Wang Yi in Beijing on the India-China boundary issue and improvement of relations between the two countries. Prior to the talks, Doval called on Chinese Vice President Hang Jiang In a social media post, Indian Embassy said the two leaders discussed ways to strengthen peace and tranquility in the border areas and further improve bilateral

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। शाम के 5:10 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम लोक रंजनी।

0: लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम लोकरंजनी में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस कार्यक्रम में जी हाँ, हम लेकर आते हैं बहुत सुंदर सुंदर लोकगीत। जी हाँ, ये लोकगीत भी होते हैं, उपदेश भी होता है, रागनी भी होता है और भजन भी होते हैं।
1: बिल्कुल श्रोता, सही कहा आपने। तो अपने सभी श्रोताओं को, लोकरंजनी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: और आज जो है वो सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे मंजू शर्मा से, लेकिन हम अपने श्रोताओं को कहेंगे कि जिस तरह का मौसम है आज, कभी भी बारिश हो जाती है, कभी धूप निकल आती है, तो इसमें अपना तो आप ज़रूर देखभाल करें, अपने बच्चों का, परिवार का देखभाल भी ज़रूरी है।
0: बिल्कुल।
1: और साथ में जो भी आप काम कर रहे हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले फिट रहें, और उसके बाद तो बाकी काम होता रहेगा, लेकिन साथ में मनोरंजन भी उतना ही ज़रूरी है।
0: जी
1: तो
0: हाँ,
1: शुरुआत मंजू शर्मा क्या कह रही हैं कि रंगीला मेरा बालम, तो सुनते हैं पहले उनसे।

0: अभी आप सुन रहे थे मंजू शर्मा से ये लोकगीत।
1: हाँ
0: और राजेश कहते हैं ना कि लोकगीत जो है ये गीत नहीं होते, बल्कि इसमें हमारे सुख दुख, प्रेम रिश्ते, त्योहार, खेती किसानी और जीवन के अनुभव बसते हैं। जन्म से लेकर विवाह तक और सावन से लेकर फसल कटाई तक, जीवन के हर अवसर पर लोकगीतों की अपनी खास भूमिका रही है।
1: बिल्कुल। और लोकगीत के बारे में अगर कहें तो ये एक तरीके से जो आपको अपनी मिट्टी की महक है उसका ये एहसास भी कराता है। तो ये एक तरीके से जो भारत के लोक गीत लोक संगीत के जो वो जादू है जिससे आप जो है वो अलग नहीं रह सकते हैं उससे। और यही वजह है कि आप कहीं भी रहें लेकिन लोकगीत जो है उसको उतने ही चाव से उतनी ही सुंदरता से सुना जाता है। और अब सुनते हैं कि रेणु बर्मन क्या कह रही हैं पायल को लेकर के, क्योंकि पायल एक सौंदर्य श्रृंगार में आता है और उसको लेकर के क्या कह रहे हैं, पायल टूटने पर क्या कुछ होता है। तो आइए रेणु बर्मन से सुनते हैं।

0: जी हाँ, अभी आप सुन रहे थे रेणु बर्मन से ये लोकगीत। और भाई इस लोकगीत में क्या, अगर हम चर्चा करें तो सारी लोकगीतों में ना जो सुंदर ढोलक की थाप सुनने को हमें मिलती है, साथ ही मंजीरे की आवाज़ सुनने को मिलती है, तो इसका एक अपना ही आनंद है। क्यों
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और यही जो है लोग गीतों को लेकर के जो लोगों में दीवानगी है वो इसी वजह से है। और अब हम अगला सुनाते हैं कि किस तरीके से बबीता चौधरी कह रही हैं काले रंग की साड़ी को लेकर के, तो ये क्या है आइए सुनते हैं।

अभी आप सुन रहे थे बबीता चौधरी से ये लोक गीत, और कार्यक्रम के अंत में हम राजेश सुनेंगे रेनू बर्मन की आवाज़ में ये लोक गीत।

0: के साथ लोकरंजनी कार्यक्रम यहीं पर संपन्न करते हैं। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पाराशर और संयोजक शिवनंदन लाल। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम खेल खिलाड़ी।
1: खेलों का आईना।
2: नमस्कार खेल प्रेमियों, मैदान कोई भी हो, मुकाबला कितना भी कड़ा हो, असली रोमांच तब पैदा होता है जब खिलाड़ी अपनी पूरी ताकत, जुनून और जज्बे के साथ जीत के लिए उतरते हैं। और आज के खेल खिलाड़ी में ऐसे ही कई रोमांचक मुकाबलों और बड़ी खेल खबरों का पूरा लेखा जोखा लेकर हम आपके साथ हैं।
3: हॉकी वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय पुरुष टीम का अर्जेंटीना से मुकाबला, महिला और पुरुष वर्ग के प्लेऑफ मुकाबले का प्रीव्यू और सेमीफाइनल में पहुंचने वाली सभी टीमों की पूरी जानकारी, साथ है भारत श्रीलंका टेस्ट के तीसरे दिन का ताजा अपडेट, ग्रैंड चेस टूर फाइनल्स का रोमांच और सुब्रतो कप 2026 के सेमीफाइनल मुकाबलों के नतीजे।
2: इसके अलावा बात करेंगे डीओपीटी स्पोर्ट्स मीट की, दिल्ली प्रीमियर लीग 2026 और खेल जगत की तमाम दूसरी अहम खबरें भी होंगी आज के कार्यक्रम का हिस्सा।
3: यानी खेल के मैदान से जुड़ी कोई भी बड़ी खबर नहीं रहेगी आपसे दूर।
2: तो बढ़ाइए आवाज
3: और बढ़ाइए खेल का रोमांच।
2: मैं हूं अभिनव
3: और मैं हूं आकाश।

0: सुन रहे हैं खेल खिलाड़ी, और चलिए सीधे रुख करते हैं हॉकी के मैदान का, जहां भारत के सामने है अर्जेंटीना की चुनौती।
1: FIH हॉकी वर्ल्ड कप 2026 के स्टेज टू में अपने आखिरी पूल ई मुकाबले में भारतीय पुरुष हॉकी टीम को अर्जेंटीना के हाथों 3-5 से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ ही भारत की सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें समाप्त हो गई। एम्स्टेलविन के वेगेनर हॉकी स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में अर्जेंटीना ने बेहद आक्रामक शुरुआत की। मैच के पहले ही मिनट में ज्वाकिन टोस्कानी ने फील्ड गोल कर अर्जेंटीना को बढ़त दिलाई। इसके बाद 6 मिनट में निकोलस डेला टोरे ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदल कर स्कोर 2-0 कर दिया। भारत की ओर से 10वें मिनट में सुखजीत सिंह ने शानदार फील्ड गोल कर भारत का खाता खोला और स्कोर 2-1 कर दिया। दूसरे क्वार्टर में दोनों टीमों ने गोल के कई प्रयास किए, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। पहले हाफ के अंत तक अर्जेंटीना 2-1 से आगे रहा। तीसरे क्वार्टर में अर्जेंटीना ने फिर दबाव बढ़ाया। 33वें मिनट में टोमस डोमेन ने फील्ड गोल कर बढ़त 3-1 कर दी। इसके बाद भारतीय टीम ने कई पेनल्टी कॉर्नर हासिल किए, लेकिन कप्तान हरमनप्रीत सिंह और टीम अर्जेंटीना के मजबूत डिफेंस को भेद नहीं सकी। क्वार्टर के आखिरी समय में डोमेन ने पेनल्टी स्ट्रोक पर अपना दूसरा गोल कर स्कोर 4-1 कर दिया। चौथे क्वार्टर में लुकास टोस्कानी ने 53वें मिनट में गोल कर अर्जेंटीना की बढ़त 5-1 कर दी। मैच के अंतिम मिनटों में भारत ने जोरदार वापसी की कोशिश की। 58वें मिनट में सुखजीत सिंह ने मनदीप सिंह के क्रॉस पर शानदार डिफ्लेक्शन से अपना दूसरा गोल किया। इसके बाद हार्दिक सिंह ने पेनल्टी स्ट्रोक को गोल में बदलकर स्कोर 3-5 कर दिया। हूटर बजने से ठीक पहले भारत को पेनल्टी कॉर्नर से एक आखिरी मौका मिला, लेकिन अर्जेंटीना के गोलकीपर टॉमस सैंटियागो ने शानदार बचाव करते हुए भारत की उम्मीदें खत्म कर दी। इस हार के साथ भारत पूल ई में बिना कोई अंक के चौथे स्थान पर बना रहा। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 1975 में यानी कि आज से 51 साल पहले अपना आखिरी हॉकी विश्व कप जीता था। अब भारतीय टीम 28 अगस्त को भारतीय समय अनुसार रात्रि 8:30 पर 7वें और 8वें स्थान के मुकाबले में मेजबान बेल्जियम का सामना करेगी। अर्जेंटीना के खिलाफ भारतीय हॉकी टीम के प्रदर्शन पर चीफ कोच क्रेग फुल्टन ने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
2: Disappointing, I think we didn't want to have the start we had, but it happened. I'm glad we got back into the game 2-1. Half time came at a good time, we regrouped, and unfortunately third quarter was a little bit hard to manage. We didn't play our normal fast attacking hockey, but come the last 8 minutes we started to find our stride and score 3 goals, or 2 goals, and could have been a third goal, and yeah, we finished 5-3 down in a big game, and
1: पुरुष वर्ग में 28 अगस्त को सेमीफाइनल मुकाबले में दुनिया की 4 मजबूत टीमें आमने सामने होंगी। पहले सेमीफाइनल में जर्मनी का सामना अर्जेंटीना से होगा, दूसरे सेमीफाइनल में नीदरलैंड्स और स्पेन की टीमें आमने सामने होंगी। वहीं महिला वर्ग में 24 अगस्त को पूल एफ के 2 अहम मुकाबले खेले गए, और इन मुकाबलों के साथ ही सेमीफाइनल की तस्वीर भी पूरी तरह साफ हो गई। पहले मुकाबले में स्पेन का सामना जर्मनी से हुआ। जर्मनी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्पेन को 4-1 से मात दी। जर्मनी ने मुकाबले की शुरुआत से ही अपना दबदबा बनाए रखा, लेकिन क्रिंक्स ने 5वें मिनट में गोल कर टीम को 1-0 की बढ़त दिलाई। इसके बाद 14वें मिनट में सारा स्ट्रॉस ने गोल दाग कर जर्मनी की बढ़त को 2-0 कर दिया। तीसरे क्वार्टर में स्पेन ने वापसी की कोशिश की। 41वें मिनट में जेंटल गिने ने पेनल्टी स्ट्रोक को गोल में बदल कर स्कोर 2-1 कर दिया, लेकिन जर्मनी ने इसके तुरंत बाद 2 गोल दाग कर मैच पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। 42वें मिनट में जेट फ्लैश चूज ने गोल किया, जबकि इसके बाद लेना मिशेल ने गोल दागते हुए जर्मनी को 4-1 की निर्णायक बढ़त दिला दी। हालांकि इस शानदार जीत के बावजूद जर्मनी सेमीफाइनल में जगह नहीं बना सका, वहीं स्पेन का सपना भी टूर्नामेंट के सफर में समाप्त हो गया। और दिन के दूसरे मुकाबले में जहां मेजबान बेल्जियम और अर्जेंटीना आमने सामने थी, दोनों टीमों के बीच मुकाबला बेहद रोमांचक और कड़ा रहा, लेकिन पूरे मैच में कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी। आखिरकार ये मुकाबला 0-0 की बराबरी पर समाप्त हुआ। इस ड्रॉ के बाद अर्जेंटीना ने पूल एफ में 6 अंकों के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया, जबकि बेल्जियम 4 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रही, जर्मनी 3 अंकों के साथ तीसरे और स्पेन 1 अंक के साथ चौथे स्थान पर रहा। इस तरह अर्जेंटीना और बेल्जियम ने पूल एफ से सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली, और वहीं पूल ई से नीदरलैंड्स और ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में अपना स्थान पक्का किया। 27 अगस्त को खेले जाने वाले पहले सेमीफाइनल में नीदरलैंड्स का सामना बेल्जियम से होगा, और दूसरे सेमीफाइनल में अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने होंगी। और भारतीय महिला हॉकी टीम अब 5वें स्थान के प्लेऑफ में जर्मनी के खिलाफ मैदान

0: में उतरेंगी। दोनों टीमों के बीच ये अहम मुकाबला 27 अगस्त को खेला जाएगा। भारत ने टूर्नामेंट में अब तक शानदार जुझारूपन दिखाया है। हालांकि सेमीफाइनल में जगह बनाने से चूकने के बाद अब टीम की नजरें टूर्नामेंट का मजबूत अंत करने पर है। भारतीय खिलाड़ियों के लिए ये मुकाबला अपनी रैंकिंग बेहतर करने के साथ साथ आत्मविश्वास बढ़ाने का भी बड़ा मौका होगा। दूसरी ओर जर्मनी भी 5वें स्थान पर कब्जा जमाने के इरादे से मैदान पर उतरेगा। ऐसे में दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। भारत की कोशिश होगी कि आक्रमण में बेहतर तालमेल के साथ मिले मौकों को गोल में बदला जाए और मजबूत डिफेंस के दम पर जर्मनी को रोका जाए। अब देखना होगा 27 अगस्त को होने वाली इस भिड़ंत में बाजी भारत के हाथ आती है या जर्मनी 5वें स्थान पर कब्जा करता है।
1: अब बात करते हैं क्रिकेट की। कोलंबो के सिंघले स्पोर्ट्स क्लब में भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन भारतीय गेंदबाजों का दबदबा देखने को मिला। भारत की पहली पारी की बात करें तो जो 9 विकेट पर 503 रन भारत ने बनाए थे, उसके जवाब में श्रीलंका ने तीसरे दिन की शुरुआत 2 विकेट पर 8 रन से की थी। श्रीलंकाई बल्लेबाज पसिंदु सूर्या बंदारा जिन्होंने 80 रन बनाए और कमिंडू मेंडिस जिन्होंने 32 रन की पारी खेली, इन्होंने अपनी पारियों से भारत के विशाल स्कोर का मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन नियमित अंतराल पर भारतीय गेंदबाजों की सफलता ने श्रीलंका की मुश्किलें बढ़ा दी। किंतु श्रोताओं, अभी दीवार बनकर खड़े हैं श्रीलंका के बल्लेबाज सोनल तिनुषा, जो तीसरे दिन के समाप्ति तक 85 रन बनाकर मैदान पर डटे हुए हैं और उनके साथ डटे हुए हैं लहिरू कुमारा जिन्होंने 8 रन की पारी खेली है। लेकिन श्रीलंका 265 रन बना चुकी है 8 विकेट के नुकसान पे और तीसरे दिन का खेल समाप्त हो चुका है। और ये 8 विकेट जो भारत के गेंदबाजों ने चटके, उसमें से 3 प्रसिद्ध कृष्णा ने, 3 मानव सुथार ने लिए, 1 मोहम्मद सिराज की झोली में गया और 1 रविंद्र जडेजा की झोली में। श्रीलंका के बल्लेबाजों ने बैटिंग बखूबी निभाई, लेकिन बीच बीच के अंतराल में जो भारतीय गेंदबाजों ने जो विकेट चटकाए, उसका असर दिख रहा है कि 265 रन पे 8 विकेट पे श्रीलंकाई टीम है। अब इससे आगे कल श्रीलंकाई टीम अपना बल्लेबाजी कंटिन्यू करेगी, आगे खेलेगी। अब देखना ये होगा कि भारतीय टीम कितने रनों की लीड लेती है या फिर सोनल दिनुषा कुछ कमाल करके दिखाते हैं। अब बात करते हैं शतरंज की। शतरंज की बिसात पर हर चाल अपने आप में कहानी होती है और जब सामने हो दुनिया के दिग्गज खिलाड़ी तो रोमांच और भी बढ़ जाता है। ग्रैंड चेस टूर फाइनल्स 2026 में रणनीति, धैर्य और दिमागी बाजी का शानदार संगम देखने को मिल रहा है। आइए जानते हैं फाइनल्स के अब तक के रोमांचक मुकाबलों और नतीजों की पूरी तस्वीर।
0: शतरंज की बिसात पर मुकाबला अब अपने निर्णायक दौर में पहुंच चुका है और ग्रैंड चेस टूर फाइनल्स में फाइनल की तस्वीर पूरी तरह साफ हो गई। सेंट लुइस में खेले जा रहे इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट के तीसरे दिन 2 बड़े मुकाबलों के बाद अब खिताब के लिए आमना सामना होगा भारत के युवा स्टार आर प्रज्ञानानंदा और दुनिया के नंबर 2 खिलाड़ी फैबियानो कारुआना के बीच। प्रज्ञानानंदा ने जर्मनी के विंसेंट केमर को 19-9 से हराकर फाइनल में जगह बनाई, जबकि कारुआना ने वेस्ली सो को 18-12 से मात दी। प्रज्ञानानंदा बनाम केमर मुकाबले में भारतीय ग्रैंड मास्टर ने दिन की शुरुआत ही शानदार अंदाज में की। रैपिड के दोनों मुकाबलों में प्रज्ञानानंदा का दबदबा देखने को मिला और उन्होंने लगातार 4 गेम जीतकर मुकाबले पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। खास बात ये रही कि पहले रैपिड गेम में प्रज्ञानानंदा ने बेहद सटीक और नियंत्रित खेल दिखाया। इसके बाद दूसरे रैपिड मुकाबले में भी उन्होंने ब्लैक मोहरों से शानदार स्थिति हासिल की और केमर की क्वीन को फंसा दिया। प्रज्ञानानंदा ने मैच 3 गेम बाकी रहते ही अपने नाम कर लिया था। इसके बावजूद चारों ब्लिट्ज गेम खेले गए, जहां केमर ने आखिर में 3 लगातार जीत दर्ज कर अपने आत्मविश्वास को जरूर वापस हासिल किया। अंतिम स्कोर रहा प्रज्ञानानंदा 19, केमर 9। दूसरे सेमीफाइनल में फैबियानो कारुआना और वेस्ली सो के बीच मुकाबला काफी करीबी रहा। कारुआना 2 क्लासिकल गेम्स के बाद पहले ही 2 अंकों की बढ़त के साथ मैदान में उतरे थे। रैपिड के दोनों मुकाबले ड्रॉ रहे, लेकिन ब्लिट्ज में कारुआना ने अपना स्तर बढ़ाया। पहले ब्लिट्ज गेम में वेस्ली सो की एक बड़ी गलती का फायदा उठाते हुए कारुआना ने बाजी मार ली और अपनी बढ़त 4 अंकों तक पहुंचा दी। इसके बाद कारुआना ने एक बेहद मुश्किल स्थिति से वापसी करते हुए ड्रॉ हासिल किया और अगले ब्लिट्ज मुकाबले में शानदार

0: तकनीक दिखाते हुए मैच अपने नाम कर लिया। अंतिम स्कोर रहा कारवाना 18 वेस्ली 112। और अब सबसे बड़ा मुकाबला प्रज्ञानानंदा बनाम कारवाना। एक तरफ हैं युवा भारतीय ग्रैंड मास्टर प्रज्ञानानंदा जो अपने पहले ग्रैंड चेस टूर खिताब की तलाश में हैं, और दूसरी तरफ हैं मौजूदा चैंपियन फैबियानो कारवाना जिनके पास लगातार दूसरी बार ये खिताब जीतने का मौका है। यानी बिसात पर होगी नई पीढ़ी बनाम अनुभवी चैंपियन का मुकाबला। फाइनल में दोनों खिलाड़ी बिल्कुल नए सिरे से शुरुआत करेंगे। 25 अगस्त यानी आज फाइनल का पहला क्लासिकल गेम खेला जाएगा और आज ही तीसरे स्थान के लिए भी मुकाबला होगा जिसमें वेस्ली सो और विंसेंट केमर आमने सामने होंगे।
1: फुटबॉल के मैदान पर जोश, जुनून और जीत की भूख, यही पहचान है सुब्रतो कप की। देशभर के युवा खिलाड़ी अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए मैदान में डटे हैं और अब मुकाबला पहुंच चुका है निर्णायक मोड़ पर। सेमीफाइनल के रोमांचक नतीजों के बाद फाइनल की तस्वीर भी साफ हो चुकी है। आइए जानते हैं क्या है पूरी रिपोर्ट।
0: देश के सबसे प्रतिष्ठित स्कूली फुटबॉल टूर्नामेंट 61वें सुब्रतो कप 2026 का रोमांच अब अपने चरम पर पहुंच चुका है। नई दिल्ली के डॉक्टर बी आर अम्बेडकर स्टेडियम में खेले गए जूनियर वर्ग के सेमीफाइनल मुकाबलों में खिलाड़ियों ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया और अब खिताब के लिए दो टीमें आमने सामने होंगी। पहले सेमीफाइनल में छत्तीसगढ़ की माता रुक्मणी हायर सेकेंडरी स्कूल का सामना मिजोरम की एनसीसी टीम स्प्रिंगफील्ड हायर सेकेंडरी स्कूल आइजोल से हुआ। दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली, लेकिन मिजोरम की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मुकाबला 2-1 से अपने नाम किया और फाइनल में प्रवेश कर लिया। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में झारखंड के सेंट पैट्रिक्स हाई स्कूल गुमला और पंजाब की CISCI टीम संत बाबा हरि सिंह मॉडल स्कूल महिंदपुर आमने सामने थी। इस मुकाबले में झारखंड की टीम ने बेहतरीन खेल दिखाया और पंजाब को 2-0 से हरा कर फाइनल का टिकट पक्का कर लिया। अब निगाहें टिकी है 27 अगस्त को होने वाले खिताबी मुकाबले पर, जहां मिजोरम की एनसीसी टीम स्प्रिंग फील्ड हायर सेकेंडरी स्कूल आइजोल और झारखंड के सेंट पैट्रिक्स हाई स्कूल गुमला के बीच चैंपियन बनने की जंग होगी। ये फाइनल मुकाबला 27 अगस्त 2026 को शाम 5:30 से नई दिल्ली के डॉक्टर बी आर अम्बेडकर स्टेडियम में खेला जाएगा।

0: तालियों की गड़गड़ाहट, मैदान की चमक और खिलाड़ियों का टूट संकल्प। राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित यह कार्यक्रम इन्हीं शानदार दृश्यों का साक्षी बना। फिट इंडिया प्लेज के साथ शुरू हुए इस आयोजन ने हर उपस्थित व्यक्ति में खेल भावना और टीम वर्क की एक नई लहर दौड़ा दी। शुरुआती मिनटों से ही मैदान में जो उत्साह देखने को मिला, उसने पूरे दिन के रोमांच की नींव रख दी। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस हफ्ते 29 अगस्त को हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले भारत रत्न मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पर पूरा देश नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाता है। उसी के उपलक्ष्य में आज तड़के सेंट्रल सिविल सर्विस कल्चरल एंड स्पोर्ट्स बोर्ड ने, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग का एक डिवीजन है, उन्होंने भारत सरकार के सभी सिविलियन एम्प्लॉयज जो दिल्ली में पोस्टेड हैं, उन सब के लिए खेल कार्यक्रम का आयोजन रखा था। और कार्यक्रम को धरातल पर सुचारू रूप से संपन्न कराने का जिम्मा सेंट्रल सिविल सर्विस कल्चरल एंड स्पोर्ट्स बोर्ड के अंडर सेक्रेटरी सतेंद्र सिंह ने उठाया हुआ था, जिन्होंने हमें बातचीत के दौरान कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा बताई।
1: डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग के अंदर हमारी एक डिवीजन है, सेंट्रल सिविल सर्विस कल्चर एंड स्पोर्ट्स बोर्ड, जो कि मेनली इसका ऑब्जेक्टिव है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए फिटनेस और उसमें स्पोर्ट्स कल्चर को प्रमोट करना। सीरीज में हमारा नेशनल स्पोर्ट डे भी हम हर साल ऑर्गेनाइज करते हैं और ये हमारा फिफ्थ टाइम हम इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन को हम लोग सेलिब्रेट करने के लिए नेशनल स्कोर डे को आयोजन करते हैं, तो चूंकि इस बार सैटरडे को 29 तारीख आ रही थी, तो हमने इसको 25 अगस्त आज के दिन इसको मना रहे हैं हम लोग। ये अपना विनयमार स्पोर्ट्स ग्राउंड है जिस पर सभी हमारी एक्टिविटी मोस्टली यहाँ पर होती है, जिसमें सभी पार्टिसिपेंट्स मैन वुमेन सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं वो सभी पार्टिसिपेट करते हैं और इसमें हम इंडिविजुअल्स और हमारे टीम इवेंट्स मिक्स गेम्स भी इसमें हमने किए हैं, जिसमें 100 मीटर रेस, ट्रैक रेस, हेड कॉन बैलेंस रेस और

0: team event के अंदर हमने hit the cricket stump, penalty shootout, tug of war, इस तरह के इवेंट किए हैं। साथ ही साथ हमने इस बार पहली बार जो हमारे दिव्यांग जन है उनके लिए भी हमने एक इवेंट ऐड किया है hit the cricket stump, वो इस इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर और इवेंट्स में उनके साथ करना कर सकते हैं, करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। ये वाला जो गेम हमने एक्सक्लूसिवली इस बार उनके लिए रखा।
1: और इस कार्यक्रम में शामिल होने विश्वख्यात इंडियन आर्चर अर्जुन अवार्डी अभिषेक वर्मा भी आए थे, जिन्होंने ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन की बढ़ चढ़ कर सराहना की।
2: देखिए, बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन, ये हमारे लिए मेन डे माना जाता है स्पोर्ट्स डे, और हर ऑर्गेनाइजेशन बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रही है, बहुत अच्छी बात है, और खेल के प्रति जागरूक हो रही है। और खेल सिर्फ मेडल नहीं दिलाता, एक शारीरिक आपके लिए आज की डेट में एक बहुत गहन का मुद्दा है, उस चीज़ के लिए आपको प्रमोट करना, एक गवर्नमेंट की तरफ से चीज़ें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना, आपके बूस्ट करना, वो एक हेल्थ के लिए भी एक अच्छी चीज़ है। और यहाँ पे प्रोग्राम एक वेल ऑर्गेनाइज प्रोग्राम है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स यहाँ पे काफ़ी सारे हैं, और एक स्पोर्ट्स सिर्फ खेलना, जीतना हारना नहीं, एक बॉन्डिंग बनाना भी होता है। शायद यहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट मिल करके जो आपस में बॉन्डिंग बना रहे हैं, आई गेस वो भी एक अपने आप में सराहनीय बात है, और ऐसे प्रोग्राम स्पोर्ट्स के माध्यम से बार बार होते रहने चाहिए।
1: आगे बातचीत में जब हमने उनसे पूछा कि क्या ऐसे कार्यक्रमों के जरिए लोगों के अंदर खेल के प्रति रुझान और जागरूकता और बढ़ेगी, तो उन्होंने कहा,
2: गवर्नमेंट की तरफ से प्रोटोकॉल, सब चीजें, फैसिलिटी, सब कुछ दे रहे हैं आज की डेट में, और पहले वाला स्पोर्ट्स नहीं रहा, आपको नए गैजेट्स के साथ, नई स्कीम्स के साथ बहुत सारी सपोर्ट दी जा रही है, चाहे वो कैश हो, जॉब हो, एजुकेशन हो, सभी जगह में गवर्नमेंट आपकी हेल्प आउट कर रही है। और ऐसे ऐसे डिपार्टमेंटल प्रोग्राम अगर करा रहे हैं, स्पोर्ट्स के ऑर्गेनाइजेशन करा रही हैं, चीज़ें करा रही हैं, तो शायद बच्चों को भी बूस्ट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पेरेंट्स आए हुए खेलने के लिए, उन्हीं के पेरेंट्स अपने बच्चों को भी बूस्ट करेंगे, चीज़ें करेंगे, तो बढ़ रहा है। अब
1: कार्यक्रम में आगे जाकर एक अनूठी पहल देखने को मिली, और जो थी दिव्यांगजनों के लिए एक स्पेसिफिक खेल का आयोजन करना, और वो खेल था हिट द क्रिकेट स्टंप, यानी दिव्यांगजनों को बॉल के जरिए क्रिकेट के स्टंप पे निशाना साधना था, और जिसने सबसे ज्यादा निशाना साधा वो बना इस खेल का विजेता। हमने खास बातचीत की उसमें पार्टिसिपेट करने वाले खिलाड़ियों से भी।
3: मेरा नाम भवानी शंकर कोठारी है, मैं अंडर सेक्रेटरी हूँ स्किल डेवलपमेंट में, और मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस बार एक यूनिक रूप में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है दिव्यांगजनों का भी इसमें समावेश हो, सहभागिता हो, तो उसी क्रम में आज यहाँ पहली बार हिट द बॉल टूर्नामेंट हुआ, और बहुत ही एक्साइटमेंट से कई लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, तो मैं जितने भी पार्टिसिपेट हैं उन सबको दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं, और साथ ही DOPT का जिसने इस तरह का एक बेहतरीन इनिशिएटिव लिया, और बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में एक टूर्नामेंट हुआ और बड़ा स्टिफ कॉम्पिटिशन था।
4: मैं अशोक कुमार जी, मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट साइंस से, तो मैं सबसे पहले DOPT का धन्यवाद देना चाहूँगा इस पहल के लिए, उन्होंने हमारे लिए गेम आयोजित किया, और मैं दूसरा ये सजेशन देना चाहूँगा कि हमारा रिप्रेजेंटेटिव भी DOPT जो भी स्पोर्ट्स है उसमें एक सेल के रूप में, एक हैंडीकैप सेल, एक दिव्यांगजन सेल उसमें बनाया जाए, ताकि हम लोगों के बारे में भी एक रिप्रेजेंटेटिव, और वो इस तरह से गेम की संख्या भी बढ़ाई जाए, पार्टिसिपेशन लोगों का बढ़े।
1: आगे चलकर हमने बात की 2026 ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में जूडो के -81 किलोग्राम वेट कैटेगरी में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले हर्ष टोकस से, जो खुद इस कार्यक्रम में प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन करने आए थे।
5: सुबह उठा मैं ये देख रहा था कि बारिश हो रही है भाई, आज तो प्रोग्राम कैंसिल हो गया, लेकिन फिर मैं चल जाके देखते हैं क्या है, लेकिन यहाँ आए तो इतनी भीड़ हो रही है, तो देख के थोड़ी हैरानी हुई कि बारिश के मौसम में, ऐसे खराब मौसम में भी सब मतलब इतने एक्साइटेड हैं गेम्स के लिए। हमारे प्रधानमंत्री है, उनके फिट इंडिया की जो स्कीम चल रही है, मतलब उससे तो बहुत ही सब प्रभावित है, और यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है कि बच्चे से लेके बूढ़े तक सबको ये पार्टिसिपेट कर रहा है, तो अपने बच्चों को वही सिखाएंगे कि बेटा हम खेल रहे थे तुम भी खेलो ना, तो वो भी ऑटोमेटिकली जाएंगे उस फील्ड में, तो ये
6: तो आगे फ्यूचर और ब्राइट होगा।
5: फ्यूचर तो बहुत ब्राइट है इंडिया का, आने वाले 10 साल में तो छा जाएंगे।
1: राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर आयोजित इस भव्य खेल कार्यक्रम ने अनुशासन, ऊर्जा और खेल भावना की एक अनूठी मिसाल कायम की। इस विशेष दिवस का मुख्य उद्देश्य न केवल महान हॉकी जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती को नमन करना था, बल्कि सभी में शारीरिक फिटनेस और टीम वर्क की भावना को प्रोत्साहित करना भी था। मैदान में उपस्थित खिलाड़ियों के उत्साह, दर्शकों की तालियों की गड़गड़ाहट और प्रतिस्पर्धाओं की सकारात्मक ऊर्जा ने इस पूरे आयोजन को अत्यंत यादगार और प्रेरणादायक बना दिया। इसी के साथ मुझे यानी अभिनव कुमार झा को प्रोड्यूसर शहनवाज खान के साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: और अब आकाश बात कर लेते हैं वापस से क्रिकेट की। क्रिकेट के मैदान पर बल्ले की धमक और गेंद की रफ्तार के बीच रोमांच लगातार बढ़ता जा रहा है। मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली प्रीमियर लीग 2026 में हर मुकाबले के साथ कहानी नया मोड़ ले रही है और टीमों के बीच जीत की जंग और भी दिलचस्प होती जा रही है। तो चलिए जानते हैं DPL 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरें और अहम अपडेट।
1: दिल्ली प्रीमियर लीग 2026 में सोमवार को खेले गए 39वें मुकाबले में साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स ने न्यू दिल्ली टाइगर्स को 5 विकेट से हराकर शानदार जीत दर्ज की। नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में न्यू दिल्ली टाइगर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट पर 168 रन बनाए। जवाब में लक्ष्य का पीछा करने उतरी साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स ने शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया और 18.3 ओवर में 5 विकेट खोकर 171 रन बनाते हुए मुकाबला अपने नाम कर लिया। साउथ दिल्ली की जीत में अनमोल शर्मा की शानदार पारी अहम रही। उन्होंने 44 गेंदों पर 57 रन बनाए और इस बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। हालांकि मुकाबले के आखिरी ओवरों में साउथ दिल्ली के बल्लेबाजों ने जिस अंदाज में तेजी दिखाई उसने मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया। 17वें ओवर में अनिकेत डबास ने लगातार 3 छक्के लगाकर टीम की जीत की राह आसान कर दी। उन्होंने सिर्फ 5 गेंदों पर 18 रन बनाए। इसके बाद 18वें ओवर में भी साउथ दिल्ली के बल्लेबाजों ने आक्रामक अंदाज जारी रखा और 168 रन के लक्ष्य को 18.3 ओवर में हासिल कर लिया। गेंदबाजी में न्यू दिल्ली टाइगर्स के पार्थ बाली सबसे प्रभावशाली रहे। उन्होंने 3 विकेट हासिल किए लेकिन उनकी ये शानदार गेंदबाजी टीम को जीत नहीं दिला सकी। इस जीत के साथ साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स ने 39वें मुकाबले में अपनी ताकत का शानदार प्रदर्शन किया और अब DPL 2026 का रोमांच अगले मुकाबले की ओर बढ़ चुका है। आज यानी 25 अगस्त को टूर्नामेंट के 40वें मुकाबले में पुरानी दिल्ली 6 और ईस्ट दिल्ली राइडर्स आमने सामने होंगे। मुकाबला शाम 7 बजे से नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों टीमों के लिए ये मुकाबला बेहद अहम है। पुरानी दिल्ली 6 की कमान अनुज रावत के हाथों में है जबकि ईस्ट दिल्ली राइडर्स की कप्तानी सिमरजीत सिंह कर रहे हैं। पुरानी दिल्ली 6 के पास आर्यन गौर, समर्थ सेठ, देव लाकड़ा, ललित यादव, रोहन राठी, उद्धव मोहन और दिग्वेश सिंह राठी जैसे खिलाड़ी हैं। वहीं ईस्ट दिल्ली राइडर्स के खेमे में हैं सूर्यांश रैना, काव्या गुप्ता, हार्दिक शर्मा, मयंक रावत, वैभव बैसला और मयंक यादव जैसे खिलाड़ी। ऐसे में मुकाबला दिलचस्प होने की पूरी उम्मीद है। पुरानी दिल्ली 6 जहां अपनी लय और मजबूत स्थिति को बरकरार रखना चाहेगी, वहीं ईस्ट दिल्ली राइडर्स की कोशिश जीत के साथ अपनी स्थिति को और बेहतर करने की होगी।
2: टेनिस कोर्ट से भारत के लिए आई एक और शानदार खुशखबरी। मैक्सिको में खेले गए कैनकन काउंट्री ओपन 2026 में भारतीय जोड़ी एन श्री राम बालाजी और अनिरुद्ध चंद्रशेखर ने पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। फाइनल्स में दमदार प्रदर्शन के साथ मिली इस जीत ने भारतीय टेनिस का परचम एक बार फिर विदेशों में लहराया। आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट।
0: बिल्कुल आकाश, एन श्री राम बालाजी और अनिरुद्ध चंद्रशेखर ने फाइनल में मैक्सिकन बेलारूसी जोड़ी मिगुएल एंजल रेयस वरेला और इवान ल्यूटारेविच को 6-3, 7-6 से हराकर कैनकन कंट्री ओपन के दूसरे संस्करण के चैंपियन का ताज पहना। कैनकन कंट्री ओपन की वेबसाइट के अनुसार रेयस वरेला और ल्यूटारेविच की हार में मामूली अंतर निर्णायक साबित हुआ, जिन्होंने पूरे मैच में केवल एक बार अपनी सर्विस गंवाई लेकिन अपने एकमात्र ब्रेक पॉइंट अवसर को भुनाने में असमर्थ रहे। कैनकन का खिताब चंद्रशेखर का सर्किट पर 11वां और इस साल का दूसरा खिताब है। इससे पहले उन्होंने अपने जापानी साथी ताकेरू युजुकी के साथ बुसान ATP चैलेंजर 125 भी जीता था। आकाश, ये बालाजी का इस साल का 5वां चैलेंजर खिताब है और इससे पहले की 4 जीत उन्होंने नील ओबरलेटनर के साथ मिलकर हासिल की थी। श्रोताओं, इस जीत के साथ ही चैलेंजर सर्किट पर उनका 15वां करियर खिताब भी पूरा हो गया है। भारतीय जोड़ी ने शानदार प्रदर्शन किया लेकिन रेयस वरेला और ल्यूटारेविच ने शुरुआती सेट के अधिकांश हिस्से में उनका कड़ा मुकाबला किया था। निर्णायक क्षण 8वें गेम में आया जब बालाजी और चंद्रशेखर ने एकमात्र ब्रेक ऑफ सर्व हासिल करके मैच पर नियंत्रण कर लिया और अंततः सेट को 6-3 से जीत लिया। उन्होंने अपनी पहली सर्व के दम पर

शतरंज के मैदान से एक और खबर आ रही है हमारे पास। भारतीय ग्रैंड मास्टर प्रणेश एम ने अंतिम दौर में जर्मनी के वादिम पर रोमांचक जीत से कनिजा ओपन शतरंज का खिताब जीत लिया है। भारत के 19 वर्षीय खिलाड़ी ने 9वें और अंतिम दौर में सफेद मुहरों से जीत दर्ज की। तमिलनाडु के कराईकुड़ी के प्रणेश ने 9 राउंड में 7 अंक हासिल करके खिताब जीता। प्रणेश की रेटिंग 2673 है और वो फिडे विश्व रैंकिंग में 44वें स्थान पर हैं। हंगरी स्थित भारतीय दूतावास ने प्रणेश को टूर्नामेंट जीतने की बधाई भी दी है।

0: अब बारी इंग्लैंड के तेज गेंदबाज ब्रायन कोर्स को पाकिस्तान के खिलाफ गुरुवार को होने वाले दूसरे टेस्ट के लिए सोमवार को क्रिकेट टीम से बाहर कर दिया गया है। ये कार्रवाई मैदान से बाहर की घटना से जुड़ी है। सोशल मीडिया पर आई तस्वीरों में कोर्स को शनिवार रात डर्बी के एक क्लब के बाहर पुलिस की हथकड़ी में दिखाई दिया गया। ये घटना करीब क्लब टीम डर्बन की है। अगले मैच के बाद ये घटना ऐसे समय में हुई जब पुरुष टीम पर लगाया गया कर्फ्यू हाल में नए कप्तान जो रूट के आने के बाद हटा दिया गया। इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि सोनी वॉकर को टीम में शामिल किया गया है।
1: और अब बात करते हैं बैडमिंटन की, जहां स्टार शटलर पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी चाइना मास्टर्स सुपर 750 से हट गए हैं, जो 1 सितंबर से शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट एशियाई खेलों से पहले एकमात्र बड़ा BWF वर्ल्ड टूर इवेंट होगा। आयुष के हटने के बाद लक्ष्य सेन और किदांबी श्रीकांत पर दारोमदार होगा। महिला एकल में सिंधु के साथ ही मालविका बसोड़ और आकर्षी कश्यप भी हट गई हैं। इससे महिला एकल में उन्नति हुड्डा, देविका सिहाग और तन्वी शर्मा भारत की चुनौती संभालेंगी। पुरुष युगल में सात्विक चिराग, हरिहर अर्जुन दावेदारी पेश करेंगे और महिला युगल में कोई जोड़ी नहीं होगी, जबकि मिश्रित युगल में ध्रुव कपिला और तनिषा कैस्ट्रो रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी के साथ पदक के लिए चुनौती देंगे।
2: और श्रोताओं, खबरें और भी हैं, काफ़ी खबरें हैं हमारे पास, लेकिन अब घड़ी की सुई हमें इशारा कर रही है कि समय खत्म होता जा रहा है। तो प्रोड्यूसर शहनवाज खान के साथ मुझे अभिनव कुमार झा को और मेरे सहयोगी
0: आकाश कुमार को
2: दीजिए अनुमति। नमस्कार।
3: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई ने डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में बदलाव लाते हुए 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। आज ही के दिन वर्ष 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी। भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूपीआई ने अभूतपूर्व व्यापकता और विश्वसनीयता के माध्यम से वैश्विक मान्यता प्राप्त की है। ये प्रणाली अब 11 देशों में कार्यरत है। यूपीआई भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के सबसे सफल स्तंभों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र की इस डिजिटल क्रांति पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूपीआई प्रणाली का शुरू होना भारत के डिजिटल भुगतान इतिहास का सबसे बड़ा निर्णायक क्षण रहा है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एक दशक पहले यूपीआई की शुरुआत हुई थी और ये भारत की डिजिटल भुगतान यात्रा में अब तक का सबसे निर्णायक फैसला साबित हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यूपीआई के लेन देन की संख्या में लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई है।
1: महज 10 वर्षों में यूपीआई ने भारत में

0: डिजिटल भुगतान के तरीकों को पूरी तरह से बदल दिया है। यूपीआई की बड़े पैमाने पर तेज और भरोसेमंद सेवा को पूरी दुनिया में सराहा गया है, जिसके कारण आज यूपीआई प्रणाली को 11 देशों ने अपनाया है। इनमें फ्रांस, सिंगापुर, यूएई, श्रीलंका, भूटान और मॉरिशस जैसे देश शामिल हैं। आज दुनिया में होने वाले हर 2 रियल टाइम डिजिटल भुगतान लेन देन में से लगभग 1 भारत में होता है। दुनिया भर में होने वाले डिजिटल भुगतान लेन देन में यूपीआई की हिस्सेदारी लगभग 49% है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को देश में उत्पादन के लिए भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन करना है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय एयरोस्पेस प्रयोगशालाओं ने आज नई दिल्ली में 3 स्वदेशी माइक्रो और छोटे गैस टरबाइन इंजन प्रस्तुत किए। इनमें NJ-05, NJ-50 और NJ-100 शामिल हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार इन इंजनों को स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकियों की महत्वपूर्ण जरूरतों को पूरा करने के लिए विकसित किया गया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल रात मॉस्को में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोफ के साथ बातचीत की। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि द्विपक्षीय सहयोग, क्षेत्रीय संकटों, वैश्विक चुनौतियों और बहुपक्षीय मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने यूक्रेन, ईरान और अफगानिस्तान के वर्तमान हालात पर भी विचार विमर्श किया। इससे पहले डॉक्टर जयशंकर ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि डिग्री कार्यक्रमों के माध्यम से युवा छात्रों को प्रशिक्षित करने के महत्व पर बल दिया है। नई दिल्ली में ICAR संस्थानों के कुलपतियों और निदेशकों के सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री चौहान ने कहा कि कृषि शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI को शामिल करना समय की मांग है। कृषि शिक्षा के बारे में उन्होंने कहा कि ऐसी शिक्षा कक्षा में नहीं बल्कि खेतों में तथा किसानों के बीच दी जानी चाहिए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि बूथ स्तरीय अधिकारी भारत के लोकतंत्र की नींव है। श्री ज्ञानेश कुमार उत्तर प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर हैं। इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ने लखनऊ में लगभग 500 बूथ स्तरीय अधिकारियों के साथ संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को अधिक प्रभावी, पारदर्शी, सुलभ और नागरिक केंद्रित बनाना था। पश्चिम बंगाल में 2 बांग्लादेशी नागरिकों को सिलीगुड़ी के विधान नगर स्थित एक हिरासत केंद्र में भेजा गया है। इन्हें कल सिलीगुड़ी के पास भारत नेपाल सीमा के निकट पुलिस ने हिरासत में लिया था। पूछताछ के दौरान उन्होंने भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने की बात स्वीकार की। उपभोक्ता कार्य विभाग की सचिव निधि खरे ने बताया है कि कांदा एक्सप्रेस दिल्ली में लगभग 800 मीट्रिक टन प्याज ला रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि ये प्याज भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड NCCF और केंद्रीय भंडार के स्टोर में 35 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाएगा। कोलंबो में भारत के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका ने तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक पहली पारी में 8 विकेट पर 265 रन बना लिए हैं। श्रीलंका भारत से 238 रन पीछे है। भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की थी। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय VC प्रमोद। The Unified Payments Interface UPI has completed 10 years of transforming digital payments and has emerged as the backbone of India's digital payments ecosystem. The UPI, which was launched on this day in 2016, has surged almost 13,000-fold in transaction volume. Prime Minister Narendra Modi hailed the decade-long success of service of Unified Payment Interface. In a social media post, Mr. Modi called the countrymen to share their UPI experience, and he stated that the sheer scale and reach of UPI is something every Indian must be proud of. The unprecedented scale and reliability achieved by UPI have earned global recognition, with the system now operational across 11 countries. The Finance Ministry said that the annual transaction volume increased from just 1.78 crore transactions in 2016-17 to over 24,162 crore transactions in 2025-26. National Security Advisor Ajit Doval today held special representative talks with Chinese Foreign Minister Wang Yi in

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। 6:30 हो चुके हैं। अब सुनिए कार्यक्रम ग्राम संसार।

0: ग्राम संसार सुनने वाले सभी भाई बहनों को राम
1: राम
0: राम।
1: राम।
0: राजेश भाई, ये जो हमारा कार्यक्रम होता है, बहुत सारी जानकारी के साथ कुछ खास दिन जो होता है उसके बारे में भी हम चर्चा जरूर करते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो सबसे पहले आज जो हमारे चर्चा का विषय रहेगा वो रहेगा कि भाई अभी जो चल रहा है पखवाड़ा, वो नेत्रदान पखवाड़ा चल रहा है। 25 अगस्त से ये जो पखवाड़ा है,
1: 8 सितंबर तक मनाया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका उद्देश्य जो ये राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा हर साल जो 25 अगस्त से 8 सितंबर तक मनाया जाता है, उद्देश्य है लोगों को मृत्यु के बाद नेत्रदान के बारे में महत्व समझाना। और देखिए सरिता बहन, नेत्रदान महादान है। मतलब ये कि जब आप इस दुनिया से चले जाते हैं तो उसके बाद आपकी जो नेत्र है, आँख है, वो उस व्यक्ति को अगर किसी

0: रोशनी दे सकती है वो आँख।
1: जी
0: तो इसमें जो है वो मुझे लगता है कि इससे बड़ा दान और कुछ नहीं हो सकता है।
1: बिल्कुल, कहते हैं कि जिस आंखों से हमने अपने परिवार को देखा, प्रकृति की सुंदरता को निहारा, अपने सपनों को सजाया, वही आंखें हमारे जाने के बाद किसी ऐसे व्यक्ति के जीवन में उजाला ला सकती है जिसे शायद वर्षों से दुनिया देखी ही नहीं है। तो
0: तो
1: राजेश भाई, हाँ ये
0: पखवाड़ा मनाने का एक मकसद ये भी है कि समाज में जो नेत्रदान से जुड़े मिथक और डर है उसको खत्म करना है, साथ ही ये संकल्प लेना है कि अधिक से अधिक लोगों को जीवन काल में नेत्रदान संकल्प लेने के लिए प्रेरित करना है। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है इसमें सरिता बहन की, एक व्यक्ति के नेत्रदान करने से दो दृष्टिहीन लोगों को दुनिया देखने के लिए नई रोशनी मिल सकती है।
1: और कहते हैं ना राजेश भाई कि ये जो नेत्रदान केवल आंखों का दान नहीं है, ये आशा का दान है, रोशनी का दान है और एक नए जीवन का उपहार है।
0: हाँ बिल्कुल। और मृत्यु के करीब 6 घंटे के भीतर आंखें जो है कॉर्निया उसको दान करना जरूरी होता है अगर कोई नेत्रदान करना चाहता है। और इसमें भारत में लाखों लोग जो कॉर्निया खराब होने की वजह से देख नहीं पाते हैं और हर साल जरूरत के मुकाबले बहुत कम कॉर्निया दान मिल पाते हैं। ऐसे में यदि किसी व्यक्ति ने जीते जी नेत्रदान का संकल्प नहीं भी लिया तब भी उसकी मृत्यु के बाद उसके परिवार वाले सहमति देकर नेत्रदान करा सकते हैं। तो
1: जी
0: ये
1: हाँ,
0: जागरूकता बहुत ज़रूरी है कि अगर पहले से किसी ने अब संकल्प नहीं लिया है तो परिवार वाले अगर बाद में चाहें तो वो कर सकते
1: कर
0: हैं।
1: सकते हैं। और बहुत अच्छी बात राजेश भाई, ये भी एक बात है कि अगर हम नेत्रदान करते हैं तो किसी की अंधेरी दुनिया को रोशन हम कर रहे हैं, और इससे ज़्यादा पुण्य और क्या हो सकता है। तो
0: बिल्कुल
1: भाई इस पखवाड़ा का उद्देश्य भी यही है, और हम तो कहेंगे आप नेत्रदान करें और आसपास अपने जानने वालों को भी जागरूक करें।
0: क्योंकि इसमें आप देखिए, अब जब आप किसी को अपना अंग कोई दान कर रहे हैं तो समझिए आप किसी को एक नई जिंदगी दे रहे हैं। वो जिंदगी जो उसके जीवन में अंधेरा को दूर कर रहा है, वो दुनिया को देखने के लिए आपने उसको दिया और ताउम्र जो है, तो इससे बड़ा जो एक तरीके से आप पुण्य की बात अगर करें तो इससे बड़ा पुण्य और कुछ नहीं हो सकता।
1: जी हाँ, और कहते हैं ना कि एक परिवार अपने प्रियजन को खोता है, लेकिन उसी दुख की घड़ी में लिया गया नेत्रदान का जो निर्णय होता है ना, किसी दूसरे परिवार के लिए खुशी और उम्मीद की नई किरण बन जाती है। तो भाई हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करना चाहिए कि भाई नेत्रदान जो है बहुत महादान है, आप ज़रूर नेत्रदान के लिए खुद भी प्रेरित हों और दूसरों को भी प्रेरित करें।
0: बिल्कुल सत्ता बहन। दूसरा क्या है कि जब हम पशु पक्षी की बात करते हैं तो देखिए आदमी भी एक तरीके से पक्षी की तरह ही है, आज यहाँ कल कहाँ
1: कल
0: परसों
1: कहाँ,
0: कहाँ।
1: बिल्कुल
0: तो इसी में राजेंद्र जाटव जी क्या कह रहे हैं, चल उड़ जा रहे पंछी, तो एक बार सुनते हैं।

होंगे भवानी शकथनी शंकर भैरवी शिकहरे होंगे व्याजे में निर नारद के संग।

0: राजेंद्र जाटव से सुन रहे थे ये उपदेश, और बात हमारी हो रही थी नेत्रदान पखवाड़ा की। तो भाई हम राजेश भाई यही कहेंगे कि नेत्रदान तो वहाँ पुण्य का दान है। कई बार देखा गया है ना कि कुछ लोग जनजात जो है नेत्रविहीन होते हैं, देखिए कई बार हमारी जो लापरवाही होती है ना राजेश भाई, उसकी वजह से भी आंखें चली जाती है। अब हम बात करते हैं कि मोबाइल और डिजिटल स्क्रीन अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो इसमें हमारे आँखों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर भी हम ज़रूर बात करेंगे। अगर देखा जाए तो मोबाइल और डिजिटल उपकरण हमारे दुश्मन तो नहीं है, लेकिन इससे हमें जहाँ तक शिक्षा, बैंकिंग, मनोरंजन, संचार और कामकाज में जो सुविधा मिलती है वो तो मिलती है, लेकिन कई बार देखा गया कि हम लगातार इसका उपयोग कर रहे हैं और उस उपयोग करने से हमारी आँखों पर उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है, साथ ही साथ हमारे दिमाग में भी उसका असर देखने को मिल रहा है। और जहाँ तक अगर शारीरिक बात करें तो आपको कई तरह की मांसपेशियों से संबंधित समस्याएं भी देखने को मिल रही है।
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने कि आज के समय में अगर कोई ये कहे कि हम मोबाइल और लैपटॉप से अलग रहेंगे तो संभव नहीं है, क्योंकि आपके कामकाजी लोग हैं तो आपके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, उसके बिना नहीं रह सकते, काम ही नहीं चलेगा। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर मोबाइल से भी हमें काम करना है, लैपटॉप के साथ भी काम करना है और अपनी आँखों को भी बचाना है, तो फिर कैसे होगा? क्योंकि इसके जो असर है मोबाइल और डिजिटल स्क्रीन का, वो आँखों पर बहुत नकारात्मक इसका प्रभाव है। इसको ऐसे आप समझ सकते हैं कि मोबाइल और डिजिटल स्क्रीन का ज़्यादा इस्तेमाल करने से आँखों पर इस तरह का बुरा असर होता है कि डिजिटल आई स्ट्रेन यानी कंप्यूटर विजन सिंड्रोम कहा जाता है, वो हो जाता है। और इसके जो समस्याएं और लक्षण क्या हैं वो समझ लीजिए एक बार। अब आँखों में सूखापन आता है, यानी स्क्रीन देखते समय पलकें कम झपकती है, जिससे आँखों में सूखने लगती आँख। दूसरा, आँखों में थकान और दर्द होता है, लगातार पास देखने से आँखों की मांसपेशियाँ थक जाती है, धुंधला दिखता है, छोटे अक्षर को देर तक देखने से फोकस करने में रोशनी परेशानी आती है। दूसरा, आँखों पर ज़्यादा जोर पड़ने से सिर दर्द होने लगता है। बच्चों द्वारा ज़्यादा देर स्क्रीन देखने से निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया तेज़ी से बढ़ सकता है। और आज कल हम देख रहे हैं, गांव हो शहर हो, बच्चा अगर थोड़ा सा रोया तो हम फ़ोन पकड़ा देते हैं, ले गेम खेल ले। लेकिन आपको ये सोचना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि अगर हम फ़ोन दे रहे हैं तो कितनी देर के लिए दे रहे हैं और बच्चों को दें या नहीं दें।
0: और एक बात राजेश भाई, मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगी कि मोबाइल जो है ना हमारे जीवन का एक बहुत अहम हिस्सा बन चुका है, लेकिन देखा जाता है कि सुबह उठते ही मोबाइल देखना, दिन भर काम के लिए कंप्यूटर और लैपटॉप का आप इस्तेमाल कर ही रहे हैं, खाली समय में सोशल मीडिया चलाना और रात को सोने से पहले मोबाइल और पर आप वीडियो देख रहे हैं, तो ये दिनचर्या का आपने हिस्सा बना लिया है। और इस तरह का हिस्सा बनाने से जिस तरह की आपने बीमारी बताई है, जिस तरह की समस्याएं बताई, वो तो होना ही लाजमी है, तो इसके
1: बिल्कुल।
0: लिए तो हमें स्क्रीन टाइम फिक्स करना ही
1: तो लेकिन
0: पड़ेगा।
1: इसके लिए स्क्रीन टाइम फिक्स करने के अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप अपनी आँखों को बचा सकते हैं, जो डिजिटल प्रभाव है वो आपकी आँखों पर थोड़ा कम हो। तो ये हर उन लोगों के लिए है जो मोबाइल और कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, तो उनके लिए ये चीज़ है कि वो 20 20 20 मिनट, मतलब 20 20 20 20 का नियम अपनाएं। इसका मतलब यह है कि हर 20 मिनट के बाद 20 सेकंड का ब्रेक लें और 20 फीट दूर किसी वस्तु को देखें, अगर आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं तो। दूसरा, पलकें झपकाएं काम के दौरान, बीच बीच में जानबूझकर पलकें पूरी तरीके से झपकाएं ताकि आंखें नरम रहे। उचित दूरी रखें, मतलब मोबाइल या लैपटॉप को आंखों से कम 20 से 28 इंच की दूरी पर रखें। तीसरी बात यह है कि अंधेरे में फ़ोन नहीं चलाएं, रात में अंधेरे में स्क्रीन देखने से बचें, क्योंकि यह आंखों के लिए ज़्यादा नुकसानदायक होता है। और इस तरीके से जो डिजिटल स्क्रीन के प्रभाव है, जो मोबाइल और लैपटॉप से लगातार आपके आंखों पर पड़ रहा है, तो उससे आप बचें।
0: और अगर बात बच्चों की करें ना, तो बच्चों को डिजिटल उपकरणों से दूर करना हमेशा संभव तो नहीं है राजेश भाई। देखा गया कि आजकल जो है स्कूल के काम भी देखा जाता है, ऑनलाइन क्लास, मोबाइल, टैबलेट और कंप्यूटर शिक्षा का हिस्सा एक बन चुका है। ऐसे में तो हम पूरी तरह से उनको दूर नहीं कर सकते, लेकिन माता पिता को ये ज़रूर सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चे लगातार स्क्रीन पर ना रहे और इन्हें बीच बीच में ब्रेक लेने की आदत डालनी चाहिए, जिससे खेलने के लिए बाहर समय बिताए और अन्य जो एक्टिविटी है उसके लिए भी उनको समय पूरा देने के लिए आदत देनी चाहिए। और बच्चों की आंखों में अगर कोई परेशानी देखने को मिल रही है तो नेत्र विशेषज्ञ से जांच आप ज़रूर कराएं। और बात अगर हम

0: की भी करें तो उनको भी आजकल ना मोबाइल बहुत ही उपयोगी हो गया है। जैसे खाली समय उनको अपना निकालना है तो वीडियो कॉल से परिवार से वो जुड़े रहते हैं, डिजिटल भुगतान करना या समाचार पढ़ना, ये सब चीज़ें उनके लिए बहुत आसान बन जाता है। लेकिन ऐसे में बढ़ती उम्र में ना धुंधला दिखाई देना, आँखों में दर्द, रोशनी में परेशानी, ये सारी चीज़ें समस्याएं उनको भी देखने को उन पर भी देखने को मिल रही है। तो ऐसे में उनको भी अपनी आँखों की जाँच समय समय पर करवानी चाहिए। और भाई आंखों के स्वास्थ्य के लिए अच्छी आदतें आप रखिए, जैसा कि राजेश भाई ने बताया कि स्क्रीन टाइम आपको सीमित करना चाहिए और किस तरह से आपको डिस्टेंस रखना चाहिए। हरी सब्जियां, फल, पोषक चीज़ें आप लें ताकि आपकी आँखें जो है स्वस्थ रहे। आँखों से संबंधित जो एक्सरसाइज है आप वो करें। और आपको कहीं पे भी लगता है कि आपको धुंधला दिखाई दे रहा है, आँखों में किसी तरह की परेशानी है, आँखों में जलन है या पानी आ रहा है, तो आप नेत्र विशेषज्ञ से ज़रूर मिले और ये सारी चीज़ें समस्याएं उनको आप बताएं। तो भाई हम तो यही कहेंगे राजेश भाई कि मोबाइल का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन मोबाइल को अपनी आदत का मालिक मत बनने दीजिए। और 20 मिनट में स्क्रीन से आप ज़रूर नज़र हटाइए, आंखों को आराम दीजिए और रोशनी में स्क्रीन का इस्तेमाल कीजिए। मतलब ये सारी चीज़ें अगर आप ध्यान रखेंगे ना तो आप अपनी आंखों को काफ़ी स्वस्थ रख सकते हैं लंबे समय तक। और हम तो यही कहेंगे स्वस्थ रहिए, सजग रहिए और अपनी आंखों का ख्याल रखिए।
1: बिल्कुल। और सत्तावन जानकारी की बातें हम कुछ और भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले भाइयों को कराते हैं मनोरंजन, और अनुराधा शर्मा से सुनते हैं।
0: रागिनी

रोब दिखाए, रोब दिखाए नौकरी बिगड़े, मेल बिना सरदारी, धोखा देने ते बिगड़े दोस्ती।

जुबान रहना, झूठ बके ते जुबान रहना, चाहे हो लाख आसामी, गद्दारी में देश छूट जा, भोगनी पड़े गुलामी। लुच्चे गुंडों के मिलने ते तो

अभी आप अनुराधा शर्मा से सुन रहे थे उपदेश, और भाई जाते जाते हम ज़रूर बात करेंगे मेक इन इंडिया के बारे में। मेक इन इंडिया की जो शुरुआत हुई थी ना, 25 सितंबर 2014 में शुरू हुआ था ये अभियान, और इसका उद्देश्य था भारत में विनिर्माण, निवेश, नवाचार और रोज़गार को बढ़ावा देना। आज अगर हम बात करें तो मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, दवाइयाँ, रक्षा उपकरणों और कई अन्य क्षेत्रों में भारत में जो

0: उत्पादन है ना तेजी से बढ़ रहा है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। जो भारत सरकार की एक तरीके से महत्वाकांक्षी जो एक तरीके से स्कीम है, योजना, वो मेक इन इंडिया है, जिसका उद्देश्य ये है कि देश की जो एक बड़ी आबादी है, जो एक लेबर प्रधानता अगर है हमारे पास, श्रम है, तो उसके लिए एक कोशिश थी सरकार की तरफ से कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियाँ हमारे देश में आए, यहाँ आके प्रोडक्शन बनाए और हम फिर वो कंपनियाँ यहाँ से उन चीज़ों को एक्सपोर्ट करें, और इस तरीके से मेक इन इंडिया हब के तौर पर लोगों को यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, नौकरियाँ मिले, अवसर हो, और इस तरीके से कहीं ना कहीं जो देश का जो विज़न है विकसित भारत 2047 का, तो उसमें मेक इन इंडिया एक महत्वपूर्ण फैक्टर के तौर पर भूमिका निभाए।
0: जी
1: तो
0: हाँ, अगर मेक इन इंडिया का मतलब सिर्फ केवल देश में सामान बनाना नहीं बल्कि भारतीय प्रतिभा, तकनीक और मेहनत को दुनिया तक पहुंचाना भी है।
1: नहीं, सामान बनाने के साथ में ये देखिए, इसमें कई चीज़ें हैं। मेक इन इंडिया में भारत में जो विदेशी निवेश है वो आएगा, क्योंकि उसके आकर्षित करने पर FDI पर बहुत ज़्यादा जोर है।
0: बिल्कुल।
1: दूसरा, युवाओं को रोज़गार की बात की हमने, तो वो अवसर है वो मिलेगा। साथ में जो एक तरीके से मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में मेक इन इंडिया एक तुरुप का पत्ता साबित हुआ है। घरेलू उद्योग, उद्यमों को बढ़ावा देने पर जोर, इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल, रक्षा, फार्मा, टेक्नोलॉजी जैसे सेक्टर में इसको लगातार इसे बढ़ावा दिया जा रहा है। दूसरी अगर बात करें इसमें सरिता, तो स्थानीय स्तर पर जो प्रोडक्शन है, उत्पादन बढ़ने से आयात पर निर्भरता कम करने में हमें मदद मिलेगी, जिससे जो हम यहाँ से बाहर डॉलर में जो हम भेज रहे हैं, भुगतान कर रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं रुपये में जो गिरावट आती है, तो उससे हमें बेनिफिट मिलेगा, हमारे उद्योग को, हमारे देश को, इकोनॉमी को। तो ये कहीं ना कहीं मेक इंडिया के तौर पर कई सारे बेनिफिट एक साथ
0: जी
1: हैं।
0: हाँ, इससे युवाओं के लिए रोजगार, उद्यमिता के अवसर बढ़ते हैं और छोटे उद्योगों को भी प्रोत्साहन मिलता है और भारत को विश्व में पहचान मजबूत होती है। तो भाई, हम सब भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता को बढ़ावा दें और एक ऐसे भारत के निर्माण में योगदान दें जो आत्मनिर्भर भी हो और विश्व के लिए भरोसेमंद निर्माता भी हो। तो भाई, ये बात थी मेक इन इंडिया की
1: और
0: और
1: घड़ी कह रही है कि अब कार्यक्रम को हम यहीं पे संपन्न करेंगे, तो ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले सभी भाई बहनों को राम
0: राम
1: राम।
0: राम।
1: कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तुषार पराशर और संयोजक शिवनंदन लाल।

0: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। 7 बजने को है, कुछ ही पलों में सुनिए हिंदी में समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत में भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई को आज 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। 2016 में शुरू भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूपीआई ने अभूतपूर्व व्यापकता और विश्वसनीयता के माध्यम से वैश्विक मान्यता प्राप्त की है। ये प्रणाली अब 11 देशों में कार्यरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई की एक दशक लंबी सफलता की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने यूपीआई को भारत के डिजिटल भुगतान सफर का एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया। उन्होंने देशवासियों से अपने यूपीआई अनुभव साझा करने का आह्वान करते हुए कहा कि यूपीआई की व्यापक पहुंच और विस्तार पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यूपीआई के लेन देन की संख्या में लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई है।
2: महज 10 वर्षों में यूपीआई ने भारत में डिजिटल भुगतान के तरीकों को पूरी तरह से बदल दिया है। यूपीआई की बड़े पैमाने पर तेज और भरोसेमंद सेवा को पूरी दुनिया में सराहा गया है, जिसके कारण आज यूपीआई प्रणाली को 11 देशों ने अपनाया है। इनमें फ्रांस, सिंगापुर, यूएई, श्रीलंका, भूटान और मॉरिशस जैसे देश शामिल हैं। आज दुनिया में होने वाले हर 2 रियल टाइम डिजिटल भुगतान लेन देन में से लगभग 1 भारत में होता है। दुनिया भर में होने वाले डिजिटल भुगतान लेन देन में यूपीआई की हिस्सेदारी लगभग 49% है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को देश में उत्पादन के लिए भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। इस पहल

0: का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन करना है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशालाओं ने आज नई दिल्ली में 3 स्वदेशी माइक्रो और छोटे गैस टर्बाइन इंजन प्रस्तुत किए। इनमें NG5, NG50 और NG100 शामिल है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार इन इंजनों को स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण जरूरतों को पूरा करने के लिए विकसित किया गया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल रात मॉस्को में रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव के साथ बातचीत की। डॉ. जयशंकर ने बताया कि द्विपक्षीय सहयोग, क्षेत्रीय संकटों, वैश्विक चुनौतियों और बहुपक्षीय मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने यूक्रेन, ईरान और अफगानिस्तान के वर्तमान हालात पर भी विचार विमर्श किया। इससे पहले डॉ. जयशंकर ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि डिग्री कार्यक्रमों के माध्यम से युवा छात्रों को प्रशिक्षित करने के महत्व पर बल दिया है। नई दिल्ली में ICAR संस्थानों के कुलपतियों और निदेशकों के सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री चौहान ने कहा कि कृषि शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI को शामिल करना समय की मांग है। कृषि शिक्षा के बारे में उन्होंने कहा कि ऐसी शिक्षा कक्षा में नहीं बल्कि खेतों में तथा किसानों के बीच दी जानी चाहिए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि बूथ स्तरीय अधिकारी भारत के लोकतंत्र की नींव हैं। श्री कुमार उत्तर प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर हैं। इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ने लखनऊ में लगभग 500 बूथ स्तरीय अधिकारियों के साथ एक संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया को अधिक प्रभावी, पारदर्शी, सुलभ और नागरिक केंद्रित बनाना था। पश्चिम बंगाल में 2 बांग्लादेशी नागरिकों को सिलीगुड़ी के बिधान नगर स्थित एक हिरासत केंद्र में भेजा गया है। इन्हें कल सिलीगुड़ी के पास भारत नेपाल सीमा के निकट पुलिस ने हिरासत में लिया था। पूछताछ के दौरान उन्होंने भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने की बात स्वीकार की। उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव निधि खरे ने बताया है कि कांदा एक्सप्रेस दिल्ली में लगभग 800 मीट्रिक टन प्याज ला रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि ये प्याज भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड NCCF और केंद्रीय भंडार की स्टोरों में 35 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाएगा। कोलंबो में भारत के साथ दूसरे और आखिरी क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका ने तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक पहली पारी में 8 विकेट पर 265 रन बना लिए हैं। श्रीलंका भारत से 268 रन पीछे है। भारतीय टीम ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित कर दी थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। 7:05 हो चुके हैं। अब सुनिए कार्यक्रम किसान वाणी।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जनसेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: द्वारा जनहित में जारी।
1: किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को नमस्कार। अश्वनी,
2: हाँ जी,
1: देखिए बरसात बहुत ही अच्छी हो रही है और बारिश का पानी हमारी फसलों के लिए, पेड़ पौधों के लिए अमृत से कम नहीं है। और देखिए साथ ही अगर हम पानी संरक्षित करें तो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बहुत ही आसान हो जाएगा हमारे पानी का उपयोग।
2: देखिए, जल संरक्षण के जरिए जरूरत पड़ने पर हमारे पास पर्याप्त जल की व्यवस्था बनी रहती है और हम समय समय पर इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, साथ ही मैं तो ये भी कहूंगी कि खेती आज केवल अनाज और पारंपरिक फसलों तक सीमित नहीं है। अब देखिए ना, बदलते समय के साथ औषधीय एवं सुगंधित फसलों की खेती किसानों के लिए आय और रोजगार का एक नया रास्ता भी बन रही है। आज का हमारा विषय होगा औषधीय पौधों की खेती से रोजगार की संभावनाएं, विषय पर बातचीत करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे राष्ट्रीय गोकुल मिशन की और बताएंगे आजादपुर मंडी से प्राप्त फल और सब्जियों के ताजा भाव, मौसम की जानकारी और कृषि सलाह भी होगी
2: और साथ साथ हम अपने साथियों को लोकगीत भी सुनवाएंगे।
1: तो अश्वनी, बात करते हैं राष्ट्रीय गोकुल मिशन की। राष्ट्रीय गोकुल मिशन देसी गोवंश के संरक्षण, संवर्धन, नस्ल सुधार को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना है और इसका उद्देश्य है देसी नस्लों की उत्पादकता बढ़ाना, वैज्ञानिक तरीके से पशु प्रजनन को बढ़ावा देना और किसानों की आय में वृद्धि करना।
2: और इस मिशन से न केवल दूध उत्पादन बढ़ा है बल्कि किसानों की आय, ग्रामीण रोजगार और साथ साथ जो महिला सशक्तिकरण है, यानी कि जो पशुपालन में 70% तक महिलाओं को कार्य करने का मौका मिला है।
1: और अश्वनी, इस मिशन के अंतर्गत कृत्रिम गर्भाधान, उच्च गुणवत्ता वाले प्रजनन संसाधनों का उपयोग, नस्ल सुधार और देसी गौवंश के संरक्षण पर विशेष तौर पर जोर दिया जाता है। किसानों के लिए इसका सीधा लाभ ये है कि बेहतर नस्ल और बेहतर पशुपालन प्रबंधन के माध्यम से दूध उत्पादन और पशुधन की गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है।
2: हाँ, और जो गोकुल ग्राम है जिसमें कि देसी मवेशियों के वैज्ञानिक पालन और नस्ल सुधार के लिए देश भर में गोकुल ग्राम की स्थापना हुई है, साथ ही साथ जो आधुनिक तकनीक है इसमें नस्ल सुधार के लिए IVF की लैब, सेक्स सॉर्टन सीमेन तकनीक का उपयोग पशुओं में किया जा रहा है। इसके अलावा जो वित्तीय सहायता है वो तो सरकार की तरफ से हमारे किसान भाइयों को मिलती ही है।
1: तो अश्वनी, राष्ट्रीय गोकुल मिशन है उसमें हमारी सरकार जो भी गौ पालन करते हैं या बड़े बड़े फार्म हाउस खोलते हैं, हाँ, उनके लिए सब्सिडी भी मिलती है।
2: और इसके साथ साथ कृषि और जो पशुपालन क्षेत्र में डिजिटल क्रांति की बात करते हैं तो गोकुल मिशन के अंतर्गत ई पशु हाट बनाए गए हैं। ये ऐसा मंच है जहाँ से उत्तम नस्ल के जो पशु हैं उनकी खरीद और बिक्री कहीं से भी की जा सकती है।
1: किसान भाई और बहनों के लिए इसका सीधा लाभ, ज्यादा से ज्यादा गायों को पालें, उनका संरक्षण करें और रोजगार के अवसर बढ़ाएं।
2: और अगर कोई भी किसान भाई इस योजना का लाभ लेना चाहता है तो जो भी पशुपालक है, जो डेयरी किसान है या किसान समूह से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति है वो इसका पात्र है। साथ ही साथ इसको लाभ लेने का तरीका है कि आप नजदीकी पशुपालन विभाग में जा सकते हैं या पशु चिकित्सालय या कोई डेयरी सहकारी समिति आपके अगर नजदीक है तो आप वहां जाके संपर्क कर सकते हैं। और सबसे जरूरी बात यह है कि जो राज्य स्तरीय RGM कार्यक्रम होते हैं इसमें पंजीकरण आप जरूर कराएं।
1: बिल्कुल कराएं, और साथ ही हमारी सरकार भी पूरा सहयोग करती है पशुपालन को लेकर। और देखिए, आकाशवाणी के जरिए भी पशुपालन विषय पर बहुत सारी बातचीत होती है तो उसे सुने हमारे किसान भाई बहन और उसका पूरा पूरा लाभ उठा सकते हैं।
2: अगर पशुओं में दूध उत्पादन क्षमता बढ़ाने की बात करते हैं तो सबसे जरूरी होता है कि जो संतुलित और वैज्ञानिक आहार है उसका हमारे पशुओं को सेवन कराना चाहिए। हरा चारा, सूखा चारा और साथ ही साथ जो मिनरल्स वगैरह है उनका भी उसमें सही हिस्सा होना चाहिए।
1: और साथ ही साथ वैज्ञानिक तरीके से उनकी सलाह को माने और ज्यादा से ज्यादा दूध का उत्पादन लें और गौओं का संरक्षण। जैसा कि हम सब जानते हैं, खेती आज केवल अनाज और पारंपरिक फसलों तक सीमित नहीं है। बदलते समय के साथ औषधीय और सुगंधित फसलों की खेती किसानों के लिए आय और रोजगार का बहुत बड़ा अवसर प्रदान कर रही है। तो आज हम इसी विषय पर बातचीत करेंगे, औषधीय पौधों की खेती से रोजगार की संभावनाएं। हमारे साथ हैं डॉक्टर मूलचंद सिंह, प्रधान वैज्ञानिक NBPGR पूसा नई दिल्ली से।
3: डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन।
2: धन्यवाद
3: डॉक्टर साहब। जैसा आज का विषय है, हमारे श्रोता जो दिन प्रतिदिन अपने खेतों में कार्य करते हैं, हम देखते हैं कि आज हम बागवानी व्यवसायिक प्रत्येक फसल को उगा रहे हैं, वैज्ञानिकों की सोच और अनुसंधान खेतों तक पहुंच रहे हैं। लेकिन आज भी जब हम औषधीय फसलों की बात करते हैं, औषधीय फसलें किसे कहते हैं और इनकी खेती से रोजगार की क्या संभावनाएं हैं?
2: जी जी, देखिए, औषधीय फसलों का मतलब एक ऐसी फसल से है जो औषधीय गुणों से युक्त होती हैं। ये ऐसी फसलें होती हैं जिसका उपयोग पारंपरिक चिकित्सा में दवाइयाँ बनाने या स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। जहाँ तक इनकी खेती में रोजगार की संभावनाओं का प्रश्न है, तो क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या

0: दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और जो हमारी खेत हैं बहुत छोटे हो गए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हमारे जो युवा किसान हैं वो या तो शहरों की तरह पलायन करते हैं या वो जो पारंपरिक खेती है वो करते हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगा, अगर हमारे युवा किसान पारंपरिक खेती की बजाय औषधीय फसलों की खेती करें तो उन्हें उससे ज़्यादा आमदनी प्राप्त हो सकती है और उन्हें शहरों की तरफ पलायन भी नहीं करना पड़ेगा। और हमारे देश में तथा विदेश में औषधीय फसलों की अत्यधिक मांग है और मैं समझता हूँ कि जैसा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि किसानों की आय को दोगुनी किया जाए, तो औषधीय फसलों की खेती करके इसको दोगुना किया जा सकता है।
1: जी डॉक्टर साहब, आपने बताया कि औषधीय फसलें हैं जिनमें वो गुण हैं जो हमारे स्वास्थ्य को कहीं ना कहीं स्वास्थ्य रहने की ओर अग्रसर करती हैं। तो बात आती है कि भारत में कौन कौन सी ऐसी प्रमुख फसलें हैं जिनकी हम बुवाई कर सकते हैं या जिनको हम लगा सकते हैं और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं।
0: देखिए, भारत के अधिकांश किसान औषधीय फसलों में सर्पगंधा, अश्वगंधा, ब्रह्मी, कालमेघ, कौंच, तुलसी, एलोवेरा, लेमन ग्रास, मेंथा, अकरकरा, शतावरी प्रमुख रूप से करते हैं।
1: जी
0: और इनमें जैसे एलोवेरा है और अश्वगंधा है तो इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि अश्वगंधा मानसिक स्वास्थ्य वाली दवाइयों को बनाने में किया जाता है, उसकी बहुत अधिक मांग है। और जो एलोवेरा है उसका सौंदर्य प्रसाधन, औषधि और बहुत सारे उसके उपयोग हैं, तो इनकी अत्यधिक मांग है। और जब मांग अधिक होती है तो उनका दाम भी ज़्यादा मिलता है। इसलिए किसान भाइयों को मैं सलाह दूंगा कि उनको अश्वगंधा, एलोवेरा या गिलोय की खेती करनी चाहिए।
1: जी डॉक्टर साहब, खेती करनी चाहिए, किसान भाई कहीं ना कहीं इससे प्रेरणा लेंगे और जब
0: जी
1: खेती करने की ओर बढ़ेंगे तो मन में प्रश्न आएगा कि जब हम नया कार्य कर रहे हैं तो हम
0: जी
1: पुरानी पारंपरिक खेती को छोड़ करके नया कार्य क्यों अपनाएं।
0: देखिए, औषधीय फसलों की खेती किसानों के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकती है, क्योंकि पारंपरिक फसलों की खेती की तुलना में औषधीय फसलों की खेती से प्रति एकड़ किसानों को अधिक आमदनी प्राप्त होती है। दूसरा, औषधीय फसलों की खेती में अन्य फसलों की तुलना में कम लागत लगती है, क्योंकि
1: जी
0: इनको कम उर्वरक शक्ति वाली भूमि में उगाया जा सकता है। इनमें कीट और बीमारियां कम लगती हैं और इनमें कोई खाद या उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं होती। इनमें क्योंकि रोग और कीट कम लगते हैं इसलिए किसी पेस्टिसाइड को भी इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा औषधीय फसलें प्राकृतिक आपदाओं, रोगों व कीटों से कम प्रभावित होती हैं और औषधीय फसलों की खेती से मिट्टी की उर्वरता में भी सुधार होता है और जो बेकार पड़ी भूमियां हैं उसमें भी औषधीय फसलों को उगाया जा सकता है।
1: डॉक्टर साहब, अभी आपने जब औषधीय फसलों की बात की तो आपने एलोवेरा है, अश्वगंधा, तुलसी, गिलोय की बात की, तो इसमें कौन सी ऐसी औषधीय फसल हैं जिन्हें उगाकर किसान भाई अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
0: मैं किसान भाइयों को ये सलाह देना चाहूँगा कि जब भी वो औषधीय फसलों की खेती की योजना बना रहे हैं तो उनको जो दवाई बनाने वाली कंपनियां हैं उनसे मिलना चाहिए और उनके साथ एक करार कर लेना चाहिए कि वो उनकी जो फसल है उसको खरीदेंगे।
1: जी
0: इसके अलावा जो दवाई बनाने वाली कंपनियां हैं वो किसानों को कई तरह की सुविधाएं भी देती हैं, जैसे अच्छी किस्म का बीज और पादप सामग्री उपलब्ध कराती हैं और उनके खेतों से ही जाकर वो उसको खरीद लेती हैं। और जहाँ तक फसलों का प्रश्न है तो किसान भाइयों को अश्वगंधा, ब्रह्मी, सर्पगंधा, कालमेघ, एलोवेरा, सतावर और मेंथा तथा लेमन ग्रास इनको ज़्यादा उगाना चाहिए, क्योंकि इनकी ज़्यादा मांग है और जब मांग ज़्यादा होती है तो उसका प्राइस भी ज़्यादा मिलता है।
1: डॉक्टर साहब, ये बात रही जब हम बड़े पैमाने पर औषधीय फसलों की खेती की बात करते हैं,
0: जी
1: भाई कंपनी से करार हम तब करेंगे कि तब हमने एक बड़े स्तर पे ये काम करना है। लेकिन
0: जी
1: जो हमारे किसान भाई बहन हैं, सीमांत किसान हम देखते हैं कि भारत में ज्यादा, और वो
0: जी
1: अपने प्रयोग के लिए अपने आसपास गांव स्तर पर, कस्बे स्तर पर इस खेती को करना चाहते हैं, तो इसके लिए वो कहाँ से इन फसलों के बीज प्राप्त कर सकते हैं या जानकारी ले सकते हैं।
0: देखिए, किसान भाई औषधीय फसलों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं सेंट्रल मेडिसिन प्लांट बोर्ड, जो दिल्ली में भी है और प्रदेशों में भी उसकी शाखाएं हैं। दूसरा, हर जिले में एक कृषि विज्ञान केंद्र है और जो ज़्यादा बड़े जिले हैं उनमें दो दो कृषि विज्ञान केंद्र हैं, तो वो कृषि विज्ञान केंद्र में जाकर औषधीय फसलों के बारे में पूरी जानकारी और प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा लखनऊ है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट, तो वहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं, विशेष रूप से जो उत्तर प्रदेश के किसान हैं। इसके अलावा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का एक संस्थान है आनंद गुजरात में, की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
1: डॉक्टर साहब, हमारे क्षेत्र के या कहीं भी कह सकते हैं कि कुछ किसानों के लिए औषधीय फसल उगाना बिल्कुल नया होगा,
0: जी,
1: जो कर रहे हैं या जिन्हें पता है या जिन्हें अनुभव हो चुका है, लेकिन हमारे कई ऐसे किसान भाई बहन होते हैं कि जो एक पारंपरिक खेती को छोड़ के जब नई खेती अपनाने की बात आती है तो बहुत डर जाते हैं, चाहे वो धन के अभाव के कारण कहें या कहीं एक भय रहता है कि हम जो कृषि उत्पाद है वो उसकी मार्केटिंग कैसे होगी, उत्पादन होगा या नहीं होगा, कहीं खेत वर्ष भर के लिए ना घिर जाए या अन्य कोई ऐसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो ऐसे में जो औषधीय फसल हैं इनके बढ़ावे को संरक्षित करते हुए सरकार कौन कौन सी योजनाएं चला रही है, या सरकार ने ऐसा क्या कुछ किसान भाइयों के

0: सोचा है कि जिससे वो इसकी ओर अग्रसर हों और प्रेरित होकर के इसकी ओर बढ़ें।
1: देखिए, आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत सरकार ने किसानों को औषधीय फसलों को उगाने के लिए 4,000 करोड़ रुपए की एक योजना बनाई है। इसमें 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र में औषधीय फसलों की खेती की जाएगी और इससे हमारे किसानों को लगभग 5,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आमदनी होगी। इसके अलावा गंगा के किनारे जो जमीन है उसमें हर्बल कॉरिडोर बनाया जाएगा और उससे हमारे देश में जन औषधि को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा सरकार सेंट्रल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड के द्वारा तथा राज्य सरकार के कृषि और उद्यान विभागों के माध्यम से 30% अनुदान भी देती है। तो जो किसान भाई औषधीय फसलों की खेती करना चाहते हैं उनमें जो खर्चा आएगा उसका 30% सरकार वहन करेगी।
0: तो ये तो बात रही सरकार की योजना की, लेकिन जब हमारे किसान भाई बहन सोचते हैं और कहीं ना कहीं हम भी कोशिश करते हैं कि हमारे युवाओं को अपने गांव के आसपास ही रोजगार मिले, ना केवल
1: बिल्कुल
0: स्वयं के लिए अपितु तो जो पलायन कर रहे हैं और उनके साथी हैं, या आज एक ग्रामीण स्तर पर बड़ा श्रम वर्ग शहरों की ओर भाग रहा है,
1: जी
0: तो ऐसे में औषधीय फसलों की जो खेती है ये ना स्वयं के रोजगार के लिए अपितु तो सभी के रोजगार की संभावनाओं को देखते हुए कितनी उपयोगी है।
1: देखिए, जैसे मैंने बताया कि औषधीय फसलों की हमारे देश और विदेश में अत्यधिक मांग है, तो किसान भाई इसको उगाएं और जब वो उगाएं तो जो FPO हैं उसके साथ जुड़ें या जो दवाई बनाने वाली कंपनी है उनके साथ करार करें ताकि उनको मार्केटिंग की कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा और हमारे किसान भाई खुद भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं अगर वो बड़े स्तर पर। इसके अलावा एपिडा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो उनको एक्सपोर्ट करने में मदद करता है और एपिडा उसके ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं, और अगर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं गोडाउन की व्यवस्था होती है और उनको एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ भी चार्ज नहीं किया जाता।
0: बिल्कुल, जब इतने बड़े स्तर पर कृषि करेंगे तो रोजगार के जो साधन हैं वो स्वयं खड़े होंगे, कहीं अवसर मिलेंगे। और बात आती है कि इस समय बरसात का मौसम चल रहा है, तो क्या इस समय हमारे किसान भाई बहन कौन कौन सी औषधीय फसल लगा सकते हैं?
1: देखिए, एक तो ग्लो लगा सकते हैं, कहीं से भी अगर उसकी जड़ मिल जाती है तो इस समय ग्लो की बढ़वार बहुत तेजी के साथ होती है। अगर उनके खेत खाली हैं और वो चाहते हैं कि अपनी रबी फसल की बुआई से पहले इसको उगाना चाहें तो अपने खेत में इसको लगा सकते हैं। ये ऐसे भी फैल जाती है, या ये है कि जैसे ढैंचा की फसल लगा दें या जो बांस की छड़ी होती है
0: जी
1: उनको हर पौधे के साथ लगाएं तो इस पर चढ़ जाएगी, या जो किसान भाई इसको परमानेंटली करना चाहते हैं तो वो एंगल आयरन भी लगा सकते हैं खेतों में जिस पर ये चढ़ जाएगी। तो ये बहुत तेजी से बढ़ती है और उनको नवंबर के महीने तक बड़ी अच्छी फसल प्राप्त हो जाएगी।
0: डॉक्टर साहब, तुलसी की बात करें, क्योंकि
1: जी
0: तुलसी एक ऐसा पौधा है जो कहीं ना कहीं प्रत्येक घर में मिल ही जाएगा,
1: जी
0: और जब खांसी हो जुकाम हो तो तुलसी का प्रयोग जरूर होता
1: जी
0: है। तो एक बड़े पैमाने पर ना करके यदि कोई भी परिवार में तुलसी जैसे गमले में लगाते हैं,
1: जी जी
0: तो वो जो तुलसी का पौधा है, जैसे एक हरे कलर की पत्ती होती है, एक
1: जी जी
0: थोड़ी अलग गहरे रंग की होती
1: जी
0: है,
1: जी
0: इनमें क्या सामान्य अंतर है, कौन सी उपयोगी रहेगी और किस प्रकार हम उसका रख रखाव एक छोटे से परिसर में कर सकते हैं?
1: देखिए, काली तुलसी का भी औषधीय महत्व है और एक दूसरी तुलसी होती है, तो किसान भाई जैसे घर में लगाते हैं तो वो हरी वाली तुलसी ही
0: जी
1: लगाते हैं,
0: बिल्कुल
1: काली भी लगा सकते हैं, और उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि उनके ऊपर जो इन्फ्लोरिसेंस आता है ना, पता है, तो
0: जी
1: उसको तोड़ते रहें। अगर उसको नहीं तोड़ेंगे तो उसकी बढ़वार कम हो जाती है और उसके जो बीज हैं वो कई बार गमले में ही गिर जाते हैं तो उससे उसके सीडलिंग बन जाते हैं और उन सीडलिंग्स को वो फिर दूसरे गमलों में लगा सकते हैं।
0: एलोवेरा की बात करें, जैसे अब बरसात का मौसम चल रहा है तो कहीं ना कहीं जल भराव जैसी समस्याएं देखने में आती हैं,
1: जी
0: तो एलोवेरा का किसान क्या करे और नए किसान को क्या करना चाहिए?
1: देखिए, एलोवेरा जहाँ पर पानी भरने की समस्या है तो उनको मेड बनाकर एलोवेरा की खेती करनी चाहिए। एलोवेरा की जड़ें कहीं से भी मिल जाएं, उसको लगभग 50 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी और 30 सेंटीमीटर लाइन से लाइन की दूरी में लगाएं, और किसान भाई जो बीच में स्पेस मिलता है उसमें कुछ दूसरी फसल लगा सकते हैं, जैसे भिंडी लगा सकते हैं, इसके अलावा और दूसरी मेथी है, पालक है, सौंफ है, जीरा है, धनिया है, ये भी लगा सकते हैं, तो उससे उनको अतिरिक्त आमदनी होगी और इसके साथ साथ बीच में जो खाली जगह होती है ना उसमें खरपतवार भी नहीं हो पाएंगे।
0: अभी आपने बात की थी मेंथा की, सरकार की भी योजना है कि हम तिलहन में आत्मनिर्भर हों, और इसमें मेंथा ऑयल का बड़ा योगदान है।
1: जी
0: तो मेंथा ऑयल है, उसमें आप किसान भाइयों को क्या सलाह देंगे कि किस प्रकार हम उसका उत्पादन करें और सरकारी योजनाओं का लाभ लेते हुए हम कैसे आगे बढ़ सकें?
1: जैसे मैंने बताया कि मेंथा की खेती में भी सरकार 30% का अनुदान देती है और मेंथा की दो फसल उसकी ले सकते हैं एक साल में, तो जो किसान भाई खरीफ में दूसरी फसल लगाना चाहते हैं तो उनको कम से कम 2 कटाई मिल जाती हैं
0: जी
1: और जो एनुअल करना चाहते हैं उनको लगभग 4 कटाई मिल जाती हैं। और मेंथा के तेल की भी देश विदेश में अत्यधिक मांग है और उसमें जो डिस्टिलेशन प्लांट लगाते हैं उसमें भी सरकार अनुदान देती है, तो किसान भाई अपने जो सेंट्रल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड से अनुदान प्राप्त करें और दवाई बनाने वाली या सौंदर्य प्रसाधन बनाने वाली कंपनियों के साथ करार करें।
0: जो हमारे किसान भाई पारंपरिक खेती कर रहे हैं वो पारंपरिक खेती के

0: साथ भी क्या औषधीय फसल उगा सकते हैं?
1: जी बिल्कुल, जैसे कोई फसल लगाइए है तो उसके बीच में एक फसल उसकी लगा सकते
0: जी
1: हैं, जैसे आप मक्का लगा रहे हैं तो उसके बीच में कोई एक औषधीय फसल लगा सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि औषधीय फसल जब उसके बीच में लगाएंगे तो उससे कुछ केमिकल रिलीज होते हैं, एक्जुडेट्स रिलीज होते हैं कि जिससे कीट पतंगे भी उसमें नहीं लगेंगे।
0: हम कह सकते हैं कि कीट और रोगाणुओं से भी

0: सावधानियां हमें बरतनी चाहिए।
1: जब भी हम कटाई करने जा रहे हैं तो जो आसमान है वो साफ होना चाहिए, धूप निकली हुई होनी चाहिए, क्योंकि अगर काटने के बाद बारिश में भीग गई तो उसमें सड़न पैदा हो जाती है, फफूंदी वगैरह लग जाती है। इसके अलावा किसान भाई उसकी ग्रेडिंग करके बेचें, अगर वो ऐसे ही बेचेंगे तो उनको ज़्यादा मूल्य नहीं मिलेगा, तो उसकी ग्रेडिंग करके बेचेंगे तो ज़्यादा मूल्य मिलेगा। और किसान भाई अगर उसको स्टोरेज करना चाहते हैं, क्योंकि जनरली किसान क्या करते हैं कि जैसे ही उनकी फसल आती है वो तुरंत बेच देते हैं, जिसमें उनको उसका दाम बहुत कम मिलता है, तो वो उसको स्टोर करें या FPO के साथ बाजार में ज़्यादा भाव होता है तब उसको बेचते हैं।
0: बिल्कुल डॉक्टर मूलचंद सिंह, आप कार्यक्रम में उपस्थित हुए और इतनी अच्छी जानकारी आपने हमारे सभी श्रोताओं को दी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।
2: तो अश्विनी, ये थी जानकारी औषधीय पौधों की खेती से रोजगार की संभावनाएं विषय पर। सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में हम लेकर आए हैं एक सावन गीत, आइए सुनते हैं।

0: अभी हमने सुना सावन गीत।
1: बिल्कुल, बहुत ही सुंदर गीत था। और अश्वनी अपने किसान भाइयों के लिए मौसम की जानकारी देते हैं। भारत मौसम विज्ञान के अनुसार कल दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और हल्की बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अश्वनी, हमारे जो कृषि वैज्ञानिक होते हैं
0: जी।
1: तमाम सलाह लेकर आते हैं जिससे कि किसान भाइयों के लिए बड़ी उपयोगी साबित होती हैं। हम किसान भाइयों को बताना चाहेंगे कि सब्जियों में टमाटर, बैंगन, फूलगोभी, पत्ता गोभी, फल छेदक, शीर्ष छेदक एवं फूलगोभी व पत्ता गोभी में डायमंड बैक मोथ की निगरानी हेतु फिरोमोन प्रपंच 3 से 4 एकड़ लगाएं। साथ ही मिर्च के खेत में विषाणु रोग से ग्रसित पौधों को उखाड़कर जमीन में गाड़ दें।
0: साथ ही कीटों की रोकथाम के लिए प्रकाश प्रपंच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए एक प्लास्टिक के टब में या किसी बड़े बर्तन में पानी और थोड़ा कीटनाशी मिलाकर एक बल्ब जलाकर रात में खेत के बीच में रख दें। प्रकाश से कीट आकर्षित होकर उसी घोल पर गिरकर मर जाएंगे। इससे प्रपंच से अनेक प्रकार के हानिकारक कीटों का नाश होगा। साथ ही फल जैसे आम, नींबू, अमरूद के नए बाग लगाने के लिए अच्छी गुणवत्ता के पौधों का प्रबंध करके इनकी जल्दी से जल्दी रोपाई कर दें।
1: बहुत ही बढ़िया कृषि सलाह थी। और साथ ही साथ अब किसान भाइयों को आजादपुर मंडी के फल एवं सब्जियों के ताजा भाव भी बता देते हैं। आलू का मूल्य रहा लगभग 15 रुपए प्रति किलो, और अगर हम प्याज की बात करें तो प्याज रही लगभग 25 रुपए प्रति किलो, टमाटर 25 रुपए प्रति किलो, और बीन्स रही हमारी 30 रुपए प्रति किलो, और बैंगन 15 रुपए प्रति किलो।
0: अब फलों की बात करते हैं। आजादपुर मंडी में सेब की बिकवाली दर रही लगभग 150 रुपए प्रति किलोग्राम, केले की दर रही करीब 25 रुपए प्रति किलोग्राम, अमरूद लगभग 60 रुपए प्रति किलोग्राम, मौसम्बी की बात करें तो इसका मूल्य रहा लगभग 35 रुपए प्रति किलोग्राम, और पपीते की बिकवाली दर रही लगभग 25 रुपए प्रति किलोग्राम।
1: तो किसान भाई बहनों, आजादपुर मंडी से प्राप्त फल और सब्जियों के ये थे ताजा भाव। तो किसान भाई बहनों, आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है? आप अपने सुझाव, अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने फीडबैक के जरिए हमें बता सकते हैं, क्योंकि आपका फीडबैक ही हमारी कार्यक्रम को और सुंदर बनाने में सहायता करेगा।
0: सही का, क्योंकि जो हमारे किसान भाई हैं उनके सुझाव और उनकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बेहद जरूरी होती है। तो किसान भाइयों, इसके लिए हम ईमेल का पता बता देते हैं, feedback@gmail.com, यानी कि feedback@gmail.com। तो आप इस पर हमें ईमेल कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें रहेगा

0: इंतजार, और चलते चलते ये कहेंगे कि हमारे किसान भाई बहन कम लागत में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करें और हमेशा मुस्कुराते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ लेते हैं अनुमति, नमस्कार।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा,
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी,
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच।
6: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। 7:35 हो चुके हैं। अब सुनिए गज़ल। इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ पूजा भारती। शुरुआत करते हैं गज़ल। आवाज़ है राधिका चोपड़ा और गज़लों का समा कुछ ऐसा ही है, कुछ ख़ास है, क्योंकि ये वक्त ही कुछ ख़ास है। समय इंसान को उस वक्त तक, उस मोड़ तक ले आता है जब इंसान अपने आप पर, अपने अंदर झांकने की कोशिश करता है, और जब उस मुकाम पर पहुंच जाते हैं तो गज़ल हमारा साथी हो जाता है। आइए झांकते हैं और सुनते हैं इस गज़ल में क्या कुछ ख़ास है।

0: गजल का कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। मुझे पूजा भारती को दीजिए अनुमति।
1: मैं हूं आपका जलदाता ग्रैंड वाटर। कैसे हैं आप सब? आपकी मशीनें यहाँ धरती में इतने नीचे भी मुझे चैन से नहीं रहने देते। हर साल मेरा ठिकाना धरती में और नीचे हो जाता है। इस वर्ष 2040 में धरती में कितना और नीचे आ गया हूँ मैं। क्या लिखूँ अपना दर्द, अब तो कलम में बस बूंदे ही बची है। अपनी फोटो भेज रहा हूँ, खुद ही देख लीजिए।
0: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। 7:45 होने को है। अब सुनिए प्रादेशिक समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं वैष्णवी। मुख्य समाचार। दिल्ली सरकार ने कहा राजधानी में फिलहाल प्याज और चीनी की कोई कमी नहीं है। दिल्ली सरकार ने H1N1 इन्फ्लुएंजा के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया दिल्ली जल बोर्ड को एशियाई विकास बैंक से 2,500 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी मिली। दिल्ली सरकार कल दिल्ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 4,000 पात्र महिलाओं को स्वीकृति पत्र प्रदान करेगी। और रक्षाबंधन के दौरान राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर पर एक दिन में 47 अतिरिक्त नमो भारत ट्रेन ट्रिप्स बढ़ाने की घोषणा की। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली सरकार ने स्पष्ट किया है कि राजधानी में फिलहाल प्याज और चीनी की कोई कमी नहीं है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में आज प्याज और चीनी की उपलब्धता और इनके दामों को लेकर एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि कीमतों में आगे बढ़ोतरी की स्थिति में दिल्ली सरकार दिल्ली वासियों पर इसका अतिरिक्त भोजन नहीं पड़ने देगी। ऐसी स्थिति में दिल्ली सरकार केंद्र सरकार की संस्था नेफेड से प्याज व चीनी की खरीद कर उसे राजधानी के विभिन्न स्थानों पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगी। इन वस्तुओं की बिक्री नेफेड से प्राप्त कीमत के आधार पर की जाएगी, जबकि परिवहन आदि का खर्च दिल्ली सरकार वहन करेगी। इसके साथ ही श्रीमती गुप्ता ने प्याज व चीनी की कीमतों में और वृद्धि की आशंका को देखते हुए विभाग को विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। इसके अंतर्गत राजधानी के विभिन्न स्थानों पर शिविर लगाकर लोगों को सस्ता प्याज उपलब्ध कराने की व्यवस्था पर विचार किया जाएगा। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने आज H1N1 इन्फ्लुएंजा के बढ़ते मामलों और वेक्टर जनित बीमारियों से निपटने के लिए दिल्ली स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों की समीक्षा बैठक की। बैठक में डॉक्टर सिंह ने राजधानी में बीमारियों की स्थिति, सर्विलांस, अस्पतालों की तैयारियों, दवाइयों, टेस्टिंग सुविधाओं की उपलब्धता और जागरूकता तथा रोकथाम के लिए किए जा

0: रहे उपायों की समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
1: राजधानी दिल्ली में अब तक H1N1 के 2,308 मामले सामने आए हैं, जबकि वर्ष 2026 में इन्फ्लुएंजा A+B के अब तक लगभग 3,000 मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने सभी संबंधित विभागों को सार्वजनिक स्थलों और अधिक भीड़ वाले क्षेत्रों में जागरूकता गतिविधियों को और अधिक मजबूत करने के निर्देश दिए। उन्होंने परिवहन विभाग, दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद, दिल्ली कैंटोनमेंट और दिल्ली मेट्रो रेल निगम समेत सभी संबंधित एजेंसियों के माध्यम से जन जागरूकता अभियान चलाने पर भी विशेष जोर दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जारी स्वास्थ्य एडवाइजरी को पूरी दिल्ली में भी लागू किया जा रहा है, जिससे जरूरी अनुपालन और समन्वित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। इस बैठक में दिल्ली में डेंगू और मलेरिया की वर्तमान स्थिति की भी समीक्षा की गई। स्वास्थ्य मंत्री ने दिल्ली वासियों से अपील की है कि वे स्वास्थ्य संबंधी सावधानियों और स्वच्छता के उपायों का कड़ाई से पालन करें, अस्वस्थ होने पर बेवजह दूसरों के संपर्क से बचें और बीमारी के लक्षण बने रहने या फिर गंभीर होने की स्थिति में तुरंत समय पर डॉक्टरों से सलाह और इलाज कराएं। सौम्या की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए शक्ति सिंह।
0: दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज विधानसभा की प्रमुख युवा संपर्क पहल के अंतर्गत आयोजित संवादात्मक सत्र के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों से संवाद किया। इस अवसर पर श्री गुप्ता ने कहा कि एक सशक्त लोकतंत्र का निर्माण तब होता है जब इसके युवा नागरिक उसकी संस्थाओं, उसके विचारों और प्रक्रियाओं से सक्रिय रूप से जुड़ते हैं। दिल्ली विधानसभा सचिवालय द्वारा संचालित ये सुव्यवस्थित पहल विधायी प्रक्रियाओं को सरल और सुगम बनाने तथा जेन जी के बीच गहरी नागरिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करने का प्रयास है। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने आज मॉडल टाउन स्थित नैनी झील में ड्रोन के माध्यम से कीटनाशक छिड़काव कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री वाही ने कहा कि ड्रोन तकनीक के माध्यम से कीटनाशक का छिड़काव एक आधुनिक और कारगर उपाय है। उन्होंने कहा कि दिल्ली नगर निगम द्वारा दिल्ली को मच्छर जनित बीमारियों से मुक्त रखने के लिए फील्ड स्तर पर लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। दिल्ली के विद्युत मंत्री आशीष सूद ने आज दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड के अधिकारियों के साथ बैठक की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सूद ने कहा कि बैठक के दौरान राजधानी के पावर ट्रांसमिशन ग्रिड को मजबूत करने तथा प्रत्येक घर में बिना रुकावट बिजली की सप्लाई सुनिश्चित करने के प्रयासों पर चर्चा की गई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज बताया कि दिल्ली जल बोर्ड को एशियाई विकास बैंक से 2,500 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी दी गई है। एक प्रेस वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इस स्वीकृत राशि का उपयोग करते हुए जल बोर्ड ने वजीराबाद जल शोधन संयंत्र में जल आपूर्ति सुधार परियोजना के पैकेज 1 के लिए लगभग 800 करोड़ रुपए और पैकेज 2 के लिए 900 करोड़ रुपए से अधिक के कार्यों को मंजूरी दी गई। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली के लिए लगभग 11,400 करोड़ रुपए के निवेश को आगे बढ़ाया गया है, जिससे 36 लाख से ज्यादा दिल्ली वासियों को बेहतर जल आपूर्ति इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ मिलेगा।
2: अर्बन चैलेंज फंड के माध्यम से दिल्ली शहर में UGRs को बनाना, वाटर लाइन नेटवर्क को खड़ा करना और DMA मीटरिंग की पूरी प्रक्रिया दिल्ली में शुरू करना, इन कामों को किया जाएगा। और इसके लिए दो जोन विशेष रूप से आइडेंटिफाइड किए गए हैं, वेस्ट जोन और साउथ वेस्ट जोन, जिसमें वेस्ट जोन में ट्रांसफॉर्मिंग वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्टेट ऑफ आर्ट वाटर मैनेजमेंट, इसके लिए 4,330 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
0: इसके साथ ही अनधिकृत पानी कनेक्शनों को नियमित करने की योजना भी 31 मार्च 2027 तक बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज निर्माण उद्योग बचाव मोर्चा के सदस्यों और निर्माण क्षेत्र के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान श्रीमती गुप्ता ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के निर्माण गतिविधियों से जुड़ी समस्याओं और सुझावों को सुना। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छ पर्यावरण और सतत विकास दोनों ही दिल्ली की आवश्यकताएं हैं। उन्होंने कहा कि सरकार और उद्योग जगत मिलकर ऐसे व्यावहारिक समाधान पर कार्य करेंगे जिससे प्रदूषण नियंत्रण के प्रयास प्रभावी हो और रोजगार तथा विकास की गति भी बनी रहे। दिल्ली सरकार ने प्रशासनिक डेटा को व्यवस्थित, भरोसेमंद और AI के इस्तेमाल के लिए तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल शुरुआत की है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में आज एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें डेटा के बेहतर इस्तेमाल के जरिए दिल्ली में तथ्यों के आधार

0: पर फैसले लेने, लोगों की जरूरत के अनुसार पहले से सेवाएं उपलब्ध कराने और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं देने वाली सरकारी व्यवस्था को मजबूत करने पर चर्चा की गई। इस अवसर पर श्रीमती गुप्ता ने कहा कि एआई का लाभ उन लोगों तक पहुंचना चाहिए जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि डिग्री कार्यक्रमों के माध्यम से युवा छात्रों को प्रशिक्षित करने के महत्व पर बल दिया है। आज नई दिल्ली में ICAR संस्थानों के कुलपतियों और निदेशकों के सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री चौहान ने कहा है कि कृषि शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI को शामिल करना समय की मांग है।
1: आज की परिस्थितियों के हिसाब से एग्री एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, आज की चुनौतियां हैं, क्लाइमेट चेंज की हो, ग्लोबल वार्मिंग की हो, बदलती हुई टेक्नोलॉजी हो, नए नए रोगों का प्रकोप हो, मिट्टी का खराब स्वास्थ्य हो, उन सब का समाधान भी ढूंढना है। कृषि शिक्षा प्राप्त करके जो विद्यार्थी निकलते हैं उनका कैसे भविष्य बेहतर हो और वो कृषि को कैसे बेहतर करें, किसानों को उससे कैसे फायदा हो, इस पर विस्तार से चर्चा हो रही है।
0: कृषि शिक्षा के बारे में श्री चौहान ने कहा कि ऐसी शिक्षा कक्षा में नहीं बल्कि खेतों में अन्य किसानों के बीच दी जानी चाहिए। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारत के डिजिटल कनेक्टिविटी का मतलब केवल लोगों को जोड़ना नहीं बल्कि भरोसेमंद, सुरक्षित और मजबूत नेटवर्क तैयार करना भी है। नई दिल्ली में आज सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स C.K के 43वें स्थापना दिवस पर श्री सिंधिया ने दूरसंचार क्षेत्र में C.K की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की।
2: It will be defined by ensuring that connectivity and the networks that we evolve.
3: यह सुनिश्चित किया जाएगा कि हमारे द्वारा विकसित की जाने वाली कनेक्टिविटी और नेटवर्क विश्वसनीय, मजबूत और सबसे महत्वपूर्ण रूप से सुरक्षित हों। आज भारत अपनी विकास यात्रा पर आगे बढ़ रहा है और साथ ही सी डॉट प्रयोगशाला से बाजार तक, अनुसंधान से विकास तक और फिर अपने विकसित उत्पादों के वैश्विक विपणन की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है।
0: श्री सिंधिया ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर सुरक्षा और आपदा प्रतिरोधी संचार नेटवर्क में C.K के नवाचारों पर भी प्रकाश डाला। केंद्रीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज दिल्ली विद्यालयों के लिए 58वें युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 के पुरस्कार वितरित किए। इस प्रतियोगिता में बाल भारती स्कूल प्रीतमपुरा ने पहला स्थान प्राप्त किया। इस प्रतियोगिता में कुल 40 स्कूल के विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस अवसर पर श्री मेघवाल ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं में नेतृत्व क्षमता विकसित होती है। हमारे संवाददाता ने कुछ पुरस्कार विजेताओं से बात की जिन्होंने अपने अनुभव साझा किए।
4: मेरा नाम ऋषि त्रिखी है और मैंने प्रधानमंत्री की जो भूमिका है तो मैं बस ये चाहता था कि जितनी कॉन्फिडेंस से और जितनी एक लीडरशिप क्वालिटी जो हमारे प्रधानमंत्री में है वो मेरे में भी आए और वो स्टेज पर भी दिखे।
5: नमस्कार, तो मेरा नाम यशी यादव है और मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। हमारे स्कूल ने पहली बार यूथ पार्लियामेंट के इस अवसर पर पार्टिसिपेट किया है एंड हम रनिंग पार्लियामेंट्री शील्ड एंड द ट्रॉफी फॉर न्यू एंट्रेंस स्कूल जीता है। मैंने यूथ पार्लियामेंट में एज अ सांसद की भूमिका निभाई थी और मैंने क्वेश्चन आवर में एक सवाल पूछा था। इस भूमिका से मुझे पार्लियामेंट की वर्किंग के बारे में तो पता चला ही है और प्लस जो ऑपोजिशन का जो भूमिका है पार्लियामेंट वो कितनी अहम है इसका भी पता चला है।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली सरकार ने बताया है कि कल दिल्ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 4,000 पात्र महिलाओं को स्वीकृति पत्र प्रदान किए जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत 1 सितंबर से प्रति माह 2,500 रुपये सीधे पात्र महिलाओं के बैंक खातों में पहुँचाए जाएंगे। दिल्ली सरकार ने बताया कि इस योजना में अब तक लगभग 9,13,000 महिलाओं ने अपना पंजीकरण करवाया है और 6,50,000 से अधिक आवेदन अंतिम रूप से जमा किए जा चुके हैं। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा और आत्मनिर्भर बनाना है। रक्षाबंधन के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC 27 और 28 अगस्त को दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर पर एक दिन में 47 अतिरिक्त नमो भारत ट्रेन ट्रिप्स बढ़ाएगी। ये अतिरिक्त ट्रिप्स त्योहार के दौरान यात्रियों की संख्या में होने वाली बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए चलाई जाएंगी। एक रिपोर्ट।
6: यह निर्णय रक्षाबंधन के दौरान लोगों की यात्रा को और सुगम तथा आरामदायक बनाने के लिए लिया गया है। एनसीआरटीसी ने बताया कि इन अतिरिक्त ट्रिप्स के साथ दोनों दिन नमो भारत ट्रेनें हर 8 मिनट में उपलब्ध होंगी। इन्हें पूरे नमो भारत कॉरिडोर यानी

0: रायकाले खां से मोदीपुरम स्टेशन के बीच परिचालित किया जाएगा, जिससे त्योहार के समय लोगों के लिए यात्रा के अधिक विकल्प उपलब्ध हो सकेंगे। अपने भाइयों को राखी बांधने जा रही महिलाओं को इन अतिरिक्त ट्रेन ट्रिप से विशेषकर लाभ होगा। इससे उनका प्रतीक्षा समय कम होगा, सीट की उपलब्धता बढ़ेगी और उनका समग्र यात्रा अनुभव बेहतर होगा। प्रादेशिक समाचार के लिए सौम्या शरण।
1: दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने आज सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर के शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन पर निर्माण कार्य का आरंभ किया। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने इस निर्माण कार्य की नींव रखी। ये निर्माण फेज 5A के अंतर्गत जनकपुरी पश्चिम से आरके आश्रम मार्ग तक मौजूदा मेजेंटा लाइन के विस्तार के एक भाग के रूप में किया जा रहा है। दिल्ली मेट्रो ने बताया कि ये मेट्रो स्टेशन एक भूमिगत स्टेशन होगा और महत्वपूर्ण इंटरचेंज सुविधा प्रदान करेगा। इस स्टेशन को भूमिगत सबवे के माध्यम से मौजूदा शिवाजी स्टेडियम, एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन स्टेशन और राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के साथ निर्बाध रूप से जोड़ा जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ईद मिलाद उन नबी की पूर्व संध्या पर लोगों को बधाई दी है। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ईद मिलाद उन नबी पैगम्बर मोहम्मद साहब के उपदेशों को याद करने का अवसर है। राजधानी दिल्ली में आज तेज बारिश हुई और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने बताया है कि कल बादल छाए रहने और सुबह से दोपहर के बीच कुछ स्थानों पर बहुत हल्की से हल्की वर्षा होने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली सरकार ने कहा, राजधानी में फिलहाल प्याज और चीनी की कोई कमी नहीं है। दिल्ली सरकार ने H1N1 इन्फ्लुएंजा के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया, दिल्ली जल बोर्ड को एशियाई विकास बैंक से 2,500 करोड़ रुपए के ऋण की मंजूरी मिली। दिल्ली सरकार कल दिल्ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 4,000 पात्र महिलाओं को स्वीकृति पत्र प्रदान करेगी। और रक्षाबंधन के दौरान राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर पर एक दिन में 47 अतिरिक्त नमो भारत ट्रेन ट्रिप्स बढ़ाने की घोषणा की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8 बज चुके हैं। समय है कार्यक्रम गीत मालिका का। आइए श्रोताओं, सुनते हैं कार्यक्रम गीत मालिका। कार्यक्रम गीत मालिका में आपके साथ मैं हूँ पूजा भारती। गीत मालिका यानी कि ऐसे ऐसे धागों में पिड़े हुए गीत जो आपके दिल को छू जाए। जी हाँ, कार्यक्रम में एक ही समय है जब मैं आपके साथ उन गीतों को साझा करूँगी जो आपके दिल के करीब हो। जी हाँ, एक दशक ऐसा भी आया था जब गीत जितने भी बनते थे उस फिल्म में, अगर फिल्म हिट हो या ना हो, लेकिन उनके गीत हिट हो जाते थे। और उन्हीं गीतों के साथ आज मैं इस कार्यक्रम गीत मालिका में आपके सामने हाजिर हूँ। फिलहाल कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले सुनते हैं इस कार्यक्रम का वो मोती भरा गीत, यानी कि वो मालिका का गीत जो धागों में पिरोया हुआ है, जो आपके दिल के अत्यधिक करीब है। आइए सुनते हैं कौन सा गीत है।

सभी तो दर्द ही देते हैं, हम दर्द कोई कोई ही होता है। हम सफ़र चुनने के लिए यूं ही चलते जाते हैं, लेकिन ऐसे नहीं हम सफ़र मिलता है। अपना दर्द, अपनी मुश्किलें जिसके साथ हम बांट पाते हैं, जो हमारे दिल के बहुत करीब होता है, शायद वही हम सफ़र होता है। सुन रहे हैं आप कार्यक्रम गीत मालिका मेरे यानी कि पूजा भारती के साथ।

जिंदगी में शामिल जब कोई होता है तो समझिए आपका हमदर्द है। नहीं तो यूं कहा जाता है कि दुनिया में

यूं ही चाहतों का सिलसिला बढ़ता जाता है, दुनिया में हर कोई बेगाना होता जाता है, दिल के करीब बस वही रहता है जो अपना हीरो लगता है। और कई गीतों में प्यार को इतनी खूबसूरती से, इतने अच्छे तरीके से, इतने खूबसूरत शब्दों के साथ भी रोया गया कि वो गाना भी हिट हुआ और उस गीत के साथ वो प्यार भी, वो मोहब्बत भी हिट हो गया। जी हाँ, कई जगहों पर जब दिल की बात चलती है तो इस गाने को ज़रूर सुनते हैं। आइए सुनते हैं वो कौन सा गीत है।

संगीत सुन रहे हैं आप गीत मालिका मेरे यानी कि पूजा भारती के साथ, और गीत मालिका में वही गीत जो आपके दिल के करीब है। फिलहाल तो गीतों का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन एक बात तो ज़रूर है कि दिल के करीब कोई ख़ास ही होता है, और जब गीत दिल के करीब हो तो कोई ख़ास आपके करीब है, यानी कि कोई आपके पास ज़रूर है। फिलहाल तो ये ज़रूर कहेंगे कि किसी ने बहुत खूब लिखा है कि जब पहली बार पहली नज़र, वो प्यार का तोहफा, वो दिल के करीब आना। कहते हैं कि वो दिल की बेकरारी कोई क्या ही समझे, हर एक व्यक्ति फिर दूर होता जाता है और वो मोहब्बत करीब हो जाता है।

फिल्म संगीत गीत मालिका सुन रहे हैं आप मेरे यानी कि पूजा भारती के साथ, और मोहब्बत के वो नगमे जो हमारे दिल के बहुत करीब हैं आज आप वही सुन रहे हैं। और कहते हैं ना कि कोई ख़ास हमें कब लगता है, जब उसमें कुछ ऐसी अदा होती है जो हमें पसंद आती है और उन्हीं अदा पर कई दिल कई जान निछावर हो जाते हैं। उन्हीं अदा की अगर बात करें तो इस अदाओं पर भी कई सारे गीत बने हैं, और अगर 80s और 90s की बात करें यानी 80 और 90 के दशक की बात करें तो उस वक्त भी इन अदाओं पर गीत इतने खूबसूरत बने थे कि हर किसी के दिल को भा रहा था। और जब अदा की बात हो तो कोई कैसे ही उस गाने को नकार सकता है। खूबसूरत गीत, खूबसूरत लफ्ज़ और आवाज़ भी बहुत ही बेहतरीन। आइए सुनते हैं उस गीत को कि कौन सा ऐसा गीत है जो हमारे दिल के करीब आ गया।

आप सुन रहे हैं गीत मालिका मेरे यानी कि पूजा भारती के साथ। और गीत मालिका में वो फेवरेट आपका गीत है, वो आपका खूबसूरत गीत जो एक समय में आपका बिल्कुल फेवरेट हुआ करता था। जी हाँ, और उन्हीं गीतों के साथ आगे जब बढ़ रहे हैं तो फिर कहते हैं ना कि कई सारे ऐसे सवाल सामने आ जाते हैं जिसका जवाब हमें नहीं मिलता। और जब हम इन बातों को याद करते हैं तो कुछ ऐसे एक दो गीत हैं जो अचानक से जवाब पर आ जाते हैं कि कौन सा ऐसा गीत बना जिसमें ऐसे पूछा जाता है कि जवाब नहीं मिल पा रहा है उस सवाल का। तो एक दो गीत हैं जो अचानक से आ तो जाते हैं, लेकिन एक गीत ऐसा है जो अचानक से आपके जुबान पर तो नहीं आएगा लेकिन सुनते ही आपको बहुत ही खूबसूरत लगेगा। जी हाँ, उस दशक में ऐसा भी एक गीत बना था जो बहुत ही हिट हुआ था, लेकिन अगर अचानक से याद करें तो शायद वो ना आए। लेकिन आज मैं आपको याद दिलाऊंगी वो गीत, बहुत ही खूबसूरत सा है। फिल्म कौन सा है ये आप खुद ही समझ जाएंगे। फिलहाल सुनते हैं और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जवाब में क्या मिलता है, या फिर जवाब ढूंढते ही रह जाते हैं।

पसंद आया ना, मैंने कहा था ना दिल के बहुत करीब है ऐसे ऐसे गीत। फिलहाल आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत मालिका मेरे यानी कि पूजा भारती के साथ। और वो दिल के करीब वाले गीत जब हम सुनते हैं तो अच्छा तो बहुत लगता है, लेकिन वक्त यही कहता है कि समय के हिसाब से ही काम होना चाहिए, यानी कि वक्त अब ख़त्म होने को है। लेकिन अगर मोहब्बत की बात होती है तो ये ज़रूर कहेंगे सभी से कि मोहब्बत हमेशा ऐसे ही खूबसूरत सा बना रहे और उसकी उम्र बहुत ही लंबी हो। फिलहाल मुझे इस कार्यक्रम से, पूजा भारती को इस कार्यक्रम से दीजिए अनुमति। नमस्कार, लेकिन आप ये आखिरी गीत सुनना ना भूलें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। यूपीआई का एक दशक पूरा। दुनिया के सबसे बड़े रियल टाइम पेमेंट सिस्टम के साथ डिजिटल भुगतान में भारत विश्व में सबसे आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई प्लेटफॉर्म की उल्लेखनीय पहुंच और व्यापकता को हर भारतीय के लिए गर्व का विषय बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए डीआरडीओ की विकसित सभी मिसाइल प्रौद्योगिकी भारतीय कंपनियों को हस्तांतरित करने की घोषणा की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने पेइचिंग में सीमा मुद्दे और संबंधों में सुधार पर विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत को वैश्विक डेटा सेंटर हब बताया। वैश्विक हाइपर स्केलर से 200 अरब डॉलर की निवेश प्रतिबद्धताओं का उल्लेख किया और कोलंबो क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन मेजबान श्रीलंका पहली पारी में भारत से 238 रन पीछे। अब समाचार विस्तार से। भारत में भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई को आज 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। 2016 में शुरू भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूपीआई ने अभूतपूर्व व्यापकता और विश्वसनीयता के माध्यम से वैश्विक मान्यता प्राप्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई की एक दशक लंबी सफलता की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने यूपीआई को भारत के डिजिटल भुगतान सफर का एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया। उन्होंने देशवासियों से अपने यूपीआई अनुभव साझा करने का आह्वान करते हुए कहा कि यूपीआई की व्यापक पहुंच और विस्तार पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। यूपीआई से लेन देन की मात्रा में लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि डिजिटल विभाजन के अंतर को समाप्त करने, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और डिजिटल वित्तीय सेवाओं तक पहुंच का विस्तार करके यूपीआई ने देश भर में व्यक्तियों और समुदायों को सशक्त बनाया है, साथ ही व्यापक आर्थिक भागीदारी को भी बढ़ावा दिया है।
1: दुनिया के दो डिजिटल भुगतान लेन देन में से एक भारत में होता है। पिछले वर्ष दुनिया में भुगतान लेन देन की कुल मात्रा में यूपीआई की हिस्सेदारी लगभग 49% रही। पिछले महीने देश भर में यूपीआई के जरिए 23 अरब से अधिक लेन देन दर्ज किए गए। यूपीआई की अभूतपूर्व पहुंच और विश्वसनीयता को वैश्विक स्तर पर भी मान्यता मिली है। यूपीआई अब फ्रांस, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात यूएई, श्रीलंका, भूटान और मॉरिशस सहित 11 देशों में संचालित हो रहा है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में दिल्ली के दुकानदार योगेश ने कहा कि यूपीआई ने भुगतान को सुविधाजनक और परेशानी मुक्त बना दिया है।
2: मुझे 10 साल हो गए यूज करते हुए यूपीआई को, और सबसे बड़ी बात है बंदे की बात, अगर वॉलेट में पैसे हो ना हो यूपीआई तो होता ही है, अपने यूपीआई मोबाइल से कर, ये बेनिफिट मिला है।
1: बिहार निवासी सानू भारती ने कहा कि वर्ष 2016 में शुरू किए गए यूपीआई ने लोगों के लिए एक दूसरे को और व्यापारियों को भुगतान करना आसान बना दिया है।
3: यूपीआई के द्वारा जो यूपीआई लाया गया 2016 में 11 अप्रैल को, जो 21 बैंकों में लागू किया गया, जिससे हमारे देश में एक डिजिटल सुविधा के माध्यम से हम लोग आसानी से बैंकों में या फिर किसी भी व्यक्ति को पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं।
1: महज एक दशक में ही यूपीआई ने देश में डिजिटल भुगतान के स्वरूप और पैमाने को पूरी तरह बदल दिया है। दीपेंद्र और ऋषु के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
0: देश में यूपीआई सेवा के 10 वर्ष पूरे होने के साथ ही अब पूरे झारखंड में डिजिटल भुगतान बेहद आसान, तेज और सुरक्षित हो गया है। हजारीबाग में झारखंड वाणिज्य परिसंघ के सचिव राकेश कुमार ने बताया कि इस डिजिटल भुगतान व्यवस्था ने व्यापार को और अधिक पारदर्शी बनाया है।
4: चैम्बर ऑफ कॉमर्स भारत सरकार के इस नियम का बहुत स्वागत करती है। इससे बहुत ज्यादा फायदा व्यापारियों को हुआ है और सुगमता से ग्राहक भी इससे काम करते हैं।

0: यूपीआई का एक दशक पूरा होने पर हजारीबाग के स्थानीय लोगों ने इस सेवा को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया।
1: फोन पे हो, गूगल पे हो, इससे हम लोग को बहुत आसानी हो गया। अब पैसा किसी को ले जाने का भी जरूरत नहीं है, अपना फोन पे में ट्रांजेक्शन हो रहा है। और ये एक तरह का ये सब पक्का हो गया, जैसे छोटे दुकानदार, जैसे सब्जी वाले या पान दुकान या किसी तरह का भी छोटा व्यवसायी लोग है, उन लोग भी अपना अकाउंट है सो खुलवा रहे हैं।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकी को देश में उत्पादन के लिए भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन करना है।
2: तकनीक का हस्तांतरण घरेलू उद्योगों की अधिक भागीदारी को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इससे घरेलू उद्योगों को योग्यताओं, प्रमाणों और नियामक आवश्यकताओं के अनुरूप स्वदेशी उत्पादन करने में सक्षम बनाया जा सकेगा। ये प्रावधान मिसाइल प्रणाली के विकास से औद्योगिक उत्पादन को संभव बनाएगा। ये उन्नत रक्षा प्रणालियों के विकास और निर्माण के लिए भारतीय उद्योग की क्षमताओं का लाभ उठाने के लिए DRDO के निरंतर प्रयासों को दर्शाता है। इसका उद्देश्य घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाना, रक्षा औद्योगिक आधार को मजबूत करना तथा भारतीय MSMEs और अन्य प्रौद्योगिकी साझेदारों के लिए आपूर्ति श्रृंखला में भागीदारी के अवसर पैदा करना है। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकार जापान सहित उच्च तकनीक क्षेत्र की अन्य कंपनियों को भारतीय मानक ब्यूरो के अनिवार्य प्रमाणन से छूट देने के लिए नियमों की एक विशेष रूपरेखा पर काम कर रही है। टोक्यो में सेमीकंडक्टर और AI क्षेत्रों की जापानी कंपनियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ये छूट आवश्यकता के आधार पर कंपनी, उद्योग, उत्पाद या परियोजना स्तर पर दी जा सकती है। श्री गोयल ने भारत को वैश्विक डेटा सेंटर का हब बताते हुए कहा कि वर्ष 2032 तक देश में सेमीकंडक्टर की मांग 150 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। उन्होंने वैश्विक हाई स्केलर्स के 200 अरब डॉलर की निवेश प्रतिबद्धताओं का भी उल्लेख किया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज पेचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता की। दोनों नेताओं ने भारत चीन सीमा मुद्दे और दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार पर चर्चा की। 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग की संभावित यात्रा से पहले ये वार्ता महत्वपूर्ण मानी जा रही है। 2 दिन की यात्रा पर कल पेचिंग पहुंचे श्री डोभाल ने चीन के उपराष्ट्रपति हान झिंग से भी मुलाकात की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल रात मॉस्को में रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोफ के साथ बातचीत की। डॉ जयशंकर ने बताया कि द्विपक्षीय सहयोग, क्षेत्रीय संकटों, वैश्विक चुनौतियों और बहुपक्षीय मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने यूक्रेन, ईरान और अफगानिस्तान के वर्तमान हालात पर भी विचार विमर्श किया। इससे पहले डॉ जयशंकर ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी। भारत और न्यूजीलैंड ने कल न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में आयोजित दूसरी रक्षा रणनीतिक वार्ता में हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र, खुला और समावेशी बनाए रखने की प्रतिबद्धता जताई। इस उच्च स्तरीय बैठक में दोनों देशों ने रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए नए समझौतों और भविष्य की सैन्य योजनाओं पर गहन चर्चा की।
3: भारत और न्यूजीलैंड ने दोनों देशों की सेनाओं के बीच सहयोग बढ़ाने और रोडमैप 2030 के लक्ष्यों को तेजी से लागू करने पर सहमति जताई है। वेलिंगटन में आयोजित दूसरी रक्षा रणनीतिक वार्ता में दोनों पक्षों ने थल, वायु और नौसेनाओं के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास और स्टाफ कॉलेज साझेदारी बढ़ाने की व्यापक समीक्षा की। इस वार्ता की सह अध्यक्षता भारत के संयुक्त रक्षा सचिव अमिताभ प्रसाद और न्यूजीलैंड के उपरक्षा सचिव रिचर्ड श्मिट ने की। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने न्यूजीलैंड के रक्षा बल के उप प्रमुख और संयुक्त बलों के कमांडर सहित कई शीर्ष नेताओं से उच्च स्तरीय मुलाकात की। इन बैठकों का मुख्य उद्देश्य संयुक्त सैन्य खरीद, परिचालन ढांचों का मिलान और आगामी रक्षा परियोजनाओं के लिए सुचारू समन्वय को सुनिश्चित करना है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुनीश शर्मा।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि डिग्री कार्यक्रमों के माध्यम से युवा छात्रों को प्रशिक्षित करने के महत्व पर बल दिया है। नई दिल्ली में ICAR संस्थानों के कुलपतियों और निदेशकों के सम्मेलन में श्री चौहान ने कहा कि कृषि शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल करना समय की मांग है। कृषि शिक्षा के बारे में उन्होंने कहा कि ऐसी शिक्षा कक्षा में नहीं बल्कि खेतों में तथा किसानों के बीच दी जानी चाहिए।
4: आज की

0: परिस्थितियों के हिसाब से एग्री एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, आज की चुनौतियां हैं, क्लाइमेट चेंज की हो, ग्लोबल वार्मिंग की हो, बदलती हुई टेक्नोलॉजी हो, नए नए रोगों का प्रकोप हो, मिट्टी का खराब स्वास्थ्य हो, उन सब का समाधान भी ढूंढना है। कृषि शिक्षा प्राप्त करके जो विद्यार्थी निकलते हैं उनका कैसे भविष्य बेहतर हो और वो कृषि को कैसे बेहतर करें, किसानों को उससे कैसे फायदा हो, इस पर विस्तार से चर्चा हो रही है।
1: मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि बूथ स्तरीय अधिकारी भारत की लोकतंत्र की नींव है। श्री कुमार उत्तर प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर हैं। इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ने लखनऊ में लगभग 500 बूथ स्तरीय अधिकारियों के साथ एक संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पश्चिम बंगाल में 2 बांग्लादेशी नागरिकों को सिलीगुड़ी के विधान नगर स्थित एक हिरासत केंद्र में भेजा गया है। इन्हें कल सिलीगुड़ी के पास भारत नेपाल सीमा के निकट पुलिस ने हिरासत में लिया था। पूछताछ के दौरान उन्होंने भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने की बात स्वीकार की। उपभोक्ता कार्य विभाग की सचिव निधि खरे ने बताया है कि कांदा एक्सप्रेस दिल्ली में लगभग 800 मीट्रिक टन प्याज लेकर आ रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि ये प्याज भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड और केंद्रीय भंडार के स्टोरों में 35 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आज अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी क्रीमी लेयर के मानदंड से संबंधित केंद्र की याचिका पर सुनवाई के लिए विशेष पीठ गठित करने पर विचार करने की सहमति दे दी। केंद्र सरकार ने सिविल सेवा परीक्षा 2025 के उम्मीदवारों पर न्यायालय के 11 मार्च के फैसले के लागू होने को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने सर्वोच्च न्यायालय से संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित 958 उम्मीदवारों के सेवा आवंटन की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की अनुमति देने का अनुरोध किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज तहलका पत्रिका के पूर्व प्रधान संपादक तरुण तेजपाल को 3 सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने और 22 सितंबर से पहले आत्मसमर्पण प्रमाण पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने कहा कि इसके बाद उनकी अपील पर गुण दोष के आधार पर सुनवाई की जाएगी। न्यायालय की पीठ ने तेजपाल की आत्मसमर्पण से छूट देने की याचिका खारिज कर दी थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ईद मिलाद उन नबी की पूर्व संध्या पर लोगों को बधाई दी है। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ईद मिलाद उन नबी पैगंबर मोहम्मद के उपदेशों को याद करने का अवसर है। राष्ट्रपति ने कहा कि पैगंबर की शिक्षाएं नागरिकों को धार्मिक आचरण और कर्तव्य निष्ठा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि पैगंबर मोहम्मद के महान आदर्श नागरिकों को एक समावेशी और विकसित देश के निर्माण में सक्रिय योगदान देने के लिए प्रेरित करते हैं। सरकार देश में मौसमी श्वसन संबंधी बीमारियों की स्थिति पर पूरे देश में मजबूत निगरानी तंत्र के जरिए लगातार नजर रख रही है। सरकार ने कहा है कि घबराने या चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। नई दिल्ली में स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर राजीव बहल ने कहा कि देश में इस समय फैल रहे इन्फ्लुएंजा वायरस हाल के वर्षों में देखे गए मौसमी पैटर्न के अनुरूप हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में किसी नए इन्फ्लुएंजा खतरे का संकेत नहीं है और ये मौसमी इन्फ्लुएंजा वायरस के सामान्य व्यवहार के अनुरूप है। मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और पूर्वी राजस्थान में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। झारखंड, केरलम, माहे, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र तथा सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच दिल्ली NCR के कुछ हिस्सों में आज दिनभर हल्की से मध्यम वर्षा हुई। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक राजधानी दिल्ली में बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना बनी रहेगी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है निखिल कुमार।
2: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 287 अंक ऊपर चढ़कर 77,656 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 116 अंक की तेजी के साथ 24,335 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 के तुलना में 33 पैसे मजबूत होकर 95.41 रुपए पर बंद हुआ।
1: और अब खेल खबरें। कोलंबो में भारत के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका ने तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक पहली पारी में 8 विकेट पर 265 रन बना लिए हैं। श्रीलंका भारत से पहली पारी में 238 रन पीछे है। भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की थी। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है।

0: pride for every Indian. Defence Minister Rajnath Singh says missile technologies developed by DRDO to be used by Indian companies to boost domestic production. National Security Advisor Ajit Doval and Chinese Foreign Minister Wang Yi hold special representative talks in Beijing on boundary issues and improvement of ties. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal pitches the country as a global data center hub, highlights $200 billion investment commitments from global hyperscalers. And in men's cricket, host Sri Lanka trailed by 238 runs against India. And that's all in the news at 9. Good night.
1: आदा, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। अदायगियों के मरबूत निज़ाम UPI को 10 बरस मुकम्मल हो गए हैं। भारत बरवक्त अदायगियों के साथ डिजिटल लेन देन में दुनिया में एक आलमी लीडर के तौर पर उभरा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस प्लेटफॉर्म की रसाई और वसअत हर भारतीय के लिए बायसे फ़ख्र है। दिफाई तहकीक व तरक्की की तंजीम DRDO ने भारतीय कंपनियों को मुंतकिल की जाने वाली मिज़ाइल टेक्नोलॉजी तैयार की है ताकि घरेलू पैदावार को फ़रोग दिया जा सके। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल और चीन के वजीर खारजा वांग यी ने सरहदी मामले और ताल्लुकात को बेहतर बनाने के सिलसिले में बीजिंग में खसूसी नुमाइंदों की बातचीत की। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने भारत को आलमी डेटा सेंटर हब करार दिया है। उन्होंने आलमी कंपनियों की जानिब से 200 अरब अमरीकी डॉलर की सरमायाकारी के वादों को उजागर किया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने ईद मिलादुन्नबी और ओनम के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। और मर्दों के क्रिकेट में कोलंबो टेस्ट मैच में मेज़बान श्रीलंका अपनी पहली इनिंग्स में भारत से 238 रन पीछे है। अब खबरें तफसील से। अदायगियों के मरबूत निज़ाम UPI का आज ही के दिन 2016 में आगाज़ हुआ था और इसने मुल्क और बैरून मुल्क डिजिटल अदायगियों की यकसर तब्दीली के 10 बरस मुकम्मल कर लिए हैं। UPI की गैरमामूली रसाई, तादाद और भरोसे को आलमी सतह पर तस्लीम किया गया और आज ये निज़ाम 11 मुल्कों में नाफिज है। ये मुल्क के डिजिटल अवामी बुनियादी ढांचे के सबसे कामयाब सतून के तौर पर उभरा है जो बरवक्त अदायगी से मुतालिक प्लेटफॉर्म मुहैया करता है। UPI लेन देन में तकरीबन 13,000 गुना इजाफा हुआ है। वजारत खजाना ने कहा है कि सालाना लेन देन 2016-17 में महज 1.78 करोड़ से बढ़कर 2025-26 में 24,162 करोड़ से ज्यादा तक पहुंच गई। इसी अरसे के दौरान लेन देन की कदर में भी 7,000 करोड़ रुपए से तकरीबन 314 लाख करोड़ रुपए का काबिल कदर इजाफा हुआ है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अदायगी के मरबूत निज़ाम की एक दहाई तवील कामयाब खिदमात की सताइश की है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब मोदी ने भारत के डिजिटल अदायगियों के सफ़र में UPI को यकसर तब्दीली का एक अहम लम्हा करार दिया। हम वतनों से UPI के अपने तजुर्बात शेयर करने पर जोर देते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि इसमें खातिरख्वाह इजाफे और UPI की पहुँच पर हर भारतीय को फ़ख्र होना चाहिए। हमारे नामो निगार ने खबर दी है कि डिजिटल फ़र्क को ख़त्म करने, इक्तसादी शमूलियत को बढ़ाने और डिजिटल इक्तसादी खिदमात तक रसाई को वसअत देने के मामले में UPI ने मुल्क भर के लोगों और बिरादरियों को बाइख्तियार किया है। मज़ीद तफसील हमारे नामो निगार से।
2: आज दुनिया भर में बरवक्त डिजिटल अदायगी के हर दो लेन देन में से एक भारत में होता है। 2025 में UPI के जरिए दुनिया भर में बरवक्त अदायगी की तादाद तकरीबन 49% रही। गुज़श्ता महीने मुल्क भर में UPI के जरिए 23 अरब से ज़्यादा लेन देन दर्ज किए गए। UPI भारत के डिजिटल अदायगी इको निज़ाम की असल बुनियाद और इक्तसादी शमूलियत के अहम जुज़्व के तौर पर उभरा है। UPI को आलमी सतह पर भी तस्लीम किया गया और अब ये फ्रांस, सिंगापुर, मुत्तहदा अरब अमारात, श्रीलंका, भूटान और मॉरिशस समेत 11 मुल्कों में खिदमत अंजाम दे रहा है। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए दिल्ली के एक दुकानदार योगेश ने कहा कि UPI ने अदायगियों में सहूलत पैदा की है। उन्होंने कहा कि ये सभी के लिए दस्तियाब है और इससे लोगों को फायदा हुआ है।
3: ये 10 साल हो गए PTM को यूज करते हुए, UPI को चेंज की कोई दिक्कत नहीं होती है और सबसे बड़ी बात है वॉलेट में पैसे हो ना हो, UPI तो होता ही है। ये बेनिफिट मिला है, अच्छी चीज जो डिस्कवर हुई है।
2: बिहार के एक बाशिंदे सोनू भारती ने कहा कि 2016 में शुरू हुए UPI

0: ने फर्द से फर्द और फर्ज से कारोबारी तक लेन देन में हर किसी के लिए सहूलत पैदा की है।
1: NPCI के द्वारा जो UPI लाया गया 2016 में, जिससे हमारे देश में एक डिजिटल सुविधा के माध्यम से हम लोग आसानी से बैंकों में या फिर किसी भी व्यक्ति को पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, जिसके मदद से एक आम व्यक्ति हो या फिर सब्जी वाले, ठेला वाले, उनके द्वारा भी पेमेंट आसानी से दिया जा सकता है।
0: सिर्फ एक दहाई में UPI ने मुल्क भर में डिजिटल अदायगियों के मामले में यकसर तब्दीली पैदा की है और लेन देन को तेज, सहल और ज्यादा काबिल रसाई बनाया है। नई दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
2: वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने स्वदेशी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के मकसद से DRDO के जरिए तैयार की गई मिसाइल सिस्टम टेक्नोलॉजीज को मुल्क की प्राइवेट दिफाई सनत को मुंतकिल करने की मंजूरी दी है। टेक्नोलॉजी मुंतकली का अमल घरेलू सनतों को स्वदेशी पैदावार के काबिल बनाते हुए उनकी ज्यादा शराकतदारी को फरोग देने की राह में अहम संगे मील है। पेश है एक रिपोर्ट।
0: टेक्नोलॉजी की मुंतकली का ये अमल जदीद दिफाई निज़ामों के डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारतीय सनतों की अहलियत को फरोग देने की खातिर DRDO की जारी कोशिशों की अक्कासी करता है। इस कदम का मकसद सप्लाई चेन में भारतीय MSMEs और दीगर टेक्नोलॉजी शराकत दारों की शमूलियत की खातिर मौके पैदा करना और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग अहलियतों को बढ़ावा देते हुए दिफाई सनती बुनियाद को मुस्तहकम करना है। इस पहल का मकसद कार्रवाई जाती सलाहियत में इजाफा करना, दरामदात पर इन्हेसार कम करना और घरेलू कदर में इजाफा करना है। DRDO ने जदीद दिफाई टेक्नोलॉजियों की मुंतकली और उन्हें अपनाने को आसान बनाने के लिए भारतीय सनत के साथ मिलकर काम करने और मुल्क की स्वदेशी दिफाई अहलियत को मजीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इजहार किया है। नई दिल्ली से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
2: कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने आज बीजिंग में भारत चीन सरहदी मामलात और दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर बनाने के सिलसिले में चीन के वजीर खारजा वांग यी के साथ खसूसी नुमाइंदों की बातचीत की। सितंबर की 12 और 13 तारीख को ब्रिक्स समिट में शिरकत के लिए चीन के सदर शी जिनपिंग के इम्कानी दौरे से कबल हुई ये बातचीत अहमियत की हामिल है। जनाब डोभाल और जनाब वांग यी सरहद से मुतालिक बातचीत के तरीक़ेकार के लिए नामजद खसूसी नुमाइंदे हैं, जिसका क़याम 3,400 किलोमीटर से ज़्यादा भारत चीन सरहद पर तनाज़े के जामे तौर पर इजाले की खातिर 2003 में हुआ था। बातचीत से पहले जनाब डोभाल ने, जो कल दो रोज़ा दौरे पर बीजिंग पहुंचे हैं, चीन के नायब सदर हान जिंग से मुलाकात की। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर भारतीय सिफारतखाने ने कहा कि दोनों रहनुमाओं ने सरहदी इलाकों में अमन सुकून को मुस्तहकम करने और दोनों मुल्कों के रहनुमाओं के दरमियान हुए इत्तफाक राय के मुताबिक इक्तसादी, सियासी और कसीर रुखी बाहमी ताल्लुकात को मजीद बेहतर करने के तौर तरीकों पर तबादला ख्याल किया। मीटिंग के दौरान चीन के नायब सदर ने कहा कि चीन और भारत को दोतरफा ताल्लुकात को कलीदी और तवील मुद्दती नुक्ते नज़र से देखना चाहिए और अपने रहनुमाओं में हुए अहम इत्तफाक राय के सिलसिले में मिलकर काम करना चाहिए। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। कॉमर्स और सनतों के वजीर पीयूष गोयल ने डेटा सेंटर्स के लिए भारत को पुरकशिश मुकाम करार देते हुए कहा कि भारत इस शोबे को डेवलप करने के लिए जापानी कंपनियों के साथ काम कर सकता है और भारत ने इस शोबे की बड़ी आलमी कंपनियों के जरिए 200 अरब डॉलर की सरमायाकारी की अहदबस्तगी हासिल कर ली है। आज टोक्यो में मईशत, तिजारत और सनत के जापानी वजीर अकाजावा रुसई से मुलाकात के दौरान जनाब गोयल ने यह बात कही।

0: रुखी मामलात पर तबादला ख्याल किया। रूस की सरकारी न्यूज़ एजेंसी तास ने कहा है कि दोनों वज़राए खारजा ने यूक्रेन, ईरान और अफगानिस्तान से मुतालिक मौजूदा सूरत हाल पर भी बातचीत की। इससे कबल डॉक्टर जयशंकर ने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की और तरफेन ने तिजारत, तवानाई, खाद और न्यूक्लियाई इश्तराक जैसे अहम शोबों और इक्तसादी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। चीफ इंतखाबी कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि बूथ सतह के अफसर BLO भारतीय जमहूरियत की बुनियाद हैं। चीफ इंतखाबी कमिश्नर उत्तर प्रदेश के दो रोज़ा दौरे पर हैं और उन्होंने आज लखनऊ में तकरीबन 500 बूथ सतह के अफसरों के साथ एक राब्ता प्रोग्राम में शिरकत की। इस प्रोग्राम में इंतखाबी अमल को ज़्यादा मौसर, शफाफ, काबिल रसाई और शहरियों पर मरकूज़ बनाने पर तवज्जो दी गई। जनाब कुमार ने कहा कि हर बूथ सतह के अफसर को वोटर काम के लिए खुद को वक्फ करने और शफाफियत के लिए जानते हैं।
1: बूथ लेवल ऑफिसर्स भारत के लोकतंत्र की आधारशिला। हर बूथ लेवल ऑफिसर अपनी पारदर्शिता और कर्मठता के लिए न केवल अपने बूथ के मतदाताओं के बीच में जाना जाता है बल्कि पूरे भारत में और पूरे विश्व में जाना और माना भी जाता है।
0: चीफ इंतखाबी कमिश्नर ने बूथ सतह के अफसरों से उत्तर प्रदेश में आइंदा असेंबली इंतखाबात के दौरान वोटिंग फीसद बढ़ाने और हर अहल वोटर तक पहुंचने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत में इंतखाबात आईन, कानून और इंतखाबी कमीशन की हिदायत के मुताबिक मुकम्मल तौर पर शफाफ तरीके से अंजाम दिए जाते हैं। चीफ इंतखाबी कमिश्नर ने इस बात को उजागर किया कि भारत में तकरीबन 97 करोड़ वोटर हैं जो कई मुल्कों में वोटरों की मजमू तादाद से भी ज्यादा हैं। उन्होंने कहा कि इंतखाबी कमीशन ने लोकसभा इंतखाबात के दौरान तकरीबन 1.5 करोड़ अहलकारों को तैनात किया था जिससे ये दुनिया भर में सबसे बड़ी इंतखाबी तंजीम बन गई। भारत और न्यूजीलैंड ने कल वेलिंगटन में मुनक़िदा दिफाई स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात के दूसरे एडिशन के दौरान खुले, आज़ाद और शमूलियाती भारत बहरुल काहिल खत्ते की अहदबस्तगी के तई अपने अज़्म की तौसीक़ की है। इस आला सतही मुज़ाकरात के दौरान बहरी सलामती में इजाफा करने, मुश्तरक फौजी तरबियत और मजमूई दिफाई इश्तराक पर तवज्जो मरकूज की गई। वज़ारत दिफा ने एक बयान में कहा कि दोनों वफूद ने हाल ही में तश्कील दी गई स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को आगे बढ़ाने से मुतालिक जामे बातचीत की। इस दौरान भारत न्यूजीलैंड स्ट्रेटेजिक शराकतदारी रोडमैप 2030 में वजह किए गए स्ट्रेटेजिक अहदाफ के नफाज से मुतालिक कलीदी निकात पर गौरवखोज किया गया। ज़राअत और किसानों की बहबूद के वज़ीर शिवराज सिंह चौहान ने नौजवान तलबा को ज़रई डिग्री प्रोग्रामों की तरबियत से लैस करने की अहमियत पर जोर दिया है। जनाब चौहान नई दिल्ली में ICAR इंस्टीट्यूट्स के वाइस चांसलर और डायरेक्टरों की कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताह के बाद इजहार ख्याल कर रहे थे। ज़रई तालीम के बारे में बोलते हुए जनाब चौहान ने कहा कि इस तरह की तालीम क्लासरूम में नहीं दी जा सकती और ये दीगर किसानों के खेतों में दी जानी चाहिए। जनाब चौहान ने यूनिवर्सिटियों पर जोर दिया कि वो मौजूदा वक्त की बढ़ती ज़रूरतों से हम आहंग रहने के लिए AI पर मबनी टूल्स का इस्तेमाल करते हुए अपने तरीक़े तालीम में तब्दीली लाएं। जनाब चौहान ने वाइस चांसलर से अपील की कि वो अपने तलबा के साथ गैर रस्मी ताल्लुकात कायम करें ताकि वो उनसे ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो सकें। सारिफीन के उमूर के महकमे की सेक्रेटरी निधि खरे ने कहा है कि कांदा एक्सप्रेस के जरिए 800 मेट्रिक टन प्याज दिल्ली पहुंच रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में सेक्रेटरी ने बताया कि नेफेड, NCCF और केंद्रीय भंडार के स्टोर्स में ये प्याज 35 किलोग्राम के हिसाब से फरोख्त होगी। मुतरमा खरे ने मजीद बताया कि कांदा एक्सप्रेस पहले चेन्नई, एर्नाकुलम, मदुरई और गुवाहाटी पहुँचेगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने ओनम और ईद मिलादुन्नबी के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम में सदर जमहूरिया ने कहा कि ओनम फसल की कटाई पर फितरत के तई तशक्कुर के इजहार का मौका होता है। उन्होंने कहा कि कश्तियों की दौड़, लोक रक्स, मौसीकी और खेलों के मुकाबले इस त्यौहार की अहम रिवायात में शामिल हैं जिससे केरलम की सकाफत और अकदार की अक्कासी होती है। उन्होंने कहा कि यह त्यौहार लोगों को मुल्क की तरक्की में तआवुन करने के लिए तहरीक देगा। ईद मिलादुन्नबी के मौके पर अपने पैगाम में सदर जमहूरिया ने कहा कि ईद मिलादुन्नबी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को याद करने का मौका है और उन्होंने कहा कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़रियात हम वतनों को सबकी शमूलियत वाले और एक तरक्की याफ्ता मुल्क की तामीर की खातिर सरगर्मी से हिस्सा लेने की तहरीक देते हैं। मर्दों के क्रिकेट में कोलंबो टेस्ट के तीसरे दिन मेज़बान श्रीलंका ने भारत के खिलाफ अपनी पहली इनिंग्स में 8 विकेट के नुकसान पर 265 रन बना लिए। इसके बाद बारिश की वजह से खेल रोक दिया गया। श्रीलंका

238 रन से पीछे है श्रीलंका के सोनल दिनुषा 85 रन और लाहिरु कुमारा 8 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। अदायगियों के मरबूत निज़ाम UPI को 10 बरस मुकम्मल हो गए हैं। भारत बर वक्त अदायगियों के साथ डिजिटल लेन देन में दुनिया में एक आलमी लीडर के तौर पर उभरा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस प्लेटफॉर्म की रसाई और वसअत हर भारतीय के लिए बायस फ़ख्र है। दिफाई तहकीक व तरक्की की तंजीम DRDO ने भारतीय कंपनियों को मुंतकिल की जाने वाली मिज़ाइल टेक्नोलॉजी तैयार की है ताकि घरेलू पैदावार को फ़रोग दिया जा सके। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल और चीन के वजीर खारजा वांग यी ने सरहदी मामले और ताल्लुकात को बेहतर बनाने के सिलसिले में बीजिंग में खसूसी नुमाइंदों की बातचीत की। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने भारत को आलमी डेटा सेंटर हब मरकज करार दिया है। और सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने ईद मिलाद उन नबी और ओनम के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: 많단.
1: 예, 아카시바니 해. प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए सूखे से निपटने के लिए भारत के दृष्टिकोण और विभिन्न प्रयासों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग में पूर्व अपर महानिदेशक आनंद शर्मा, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
2: आनंद शर्मा जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद
2: आनंद जी। अगर हम सूखे की बात करते हैं तो इसे हर बार की आने वाली आपदा को मानकर राहत देने के बजाय एक ऐसे जोखिम के रूप में देखें जिसके पहले से तैयारी की जा सकती है, तो हमारी रणनीति में किस तरह से बदलाव आना आवश्यक है और भारत इस सोच को वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ाने की कोशिश क्यों कर रहा है?
3: जितने भी हमारे जिसे कहते हैं जोखिम है, चाहे वो बाढ़ हो, अत्यधिक बारिश हो या फिर कम बारिश, सूखा, तो ये सूखा एक तरह का जोखिम है। और हम ये देखें तो ये अक्सर हमारे यहाँ कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रदेश में मॉनसून सीजन में देखने को मिलता है, या सूखा हो या फिर एक लॉन्ग ड्राई स्पेल, यानी जब कभी लंबे समय से 3 हफ्ते या 4 हफ्ते बारिश ना हो, तो वो उस फॉर्म में देखने को मिलता है। और यदि उसकी तैयारी हो तो हम उसको झेल सकते हैं। तो इसीलिए जो है ओवर द ईयर्स तैयारी ये की गई है कि हम जो है, पहले होता क्या था कि वर्षा की फोरकास्ट शायद अच्छी नहीं थी या फिर किसान को पता नहीं चलता था और पता चला सूखा हुआ आया और उनकी फसल खराब हो गई। पर अब ऐसा नहीं है। अब क्या, एक पूरा तंत्र बना हुआ है, रेनफॉल की मॉनिटरिंग हो रही है और समय समय पे उसका पूर्वानुमान दिया जा रहा है। और पूर्वानुमान भी लगा है कि जैसे कि इस बार एलनीनो है तो मॉनसून की वर्षा सामान्य से कम होगी 10%, जैसा मौसम विभाग ने कह दिया। अब एग्रीकल्चर मिनिस्टर को मालूम है कि वर्षा कम होने वाली है इस समय और कौन से क्षेत्र हैं जिनमें वर्षा डिलेड है, देर से ऑनसेट होगा मॉनसून में, तो वहां पे किस तरह की फसल लगेगी, किस तरह की तैयारी होगी। तो यदि आपकी तैयारी है, प्रिपेयर्डनेस फोकस जो है, जो हमारा नया सिस्टम, उसमें प्रिपेयर्डनेस पे फोकस है पहला। दूसरा फोकस है न्यूनीकरण पे, मिटिगेशन पे, कोई भी जोखिम है उसको न्यूनीकरण करना, उसको कम करना है। और तीसरा है आपका अर्ली वार्निंग तो है ही प्रिपेयर्डनेस में, और साथ में सिस्टम को रेजिलिएंट बनाना है। और इसमें हमारा जो इंडिया है उसमें हमने खास कर सूखे के ऊपर ड्राउट मैनुअल बनी है, बहुत अच्छी मैनुअल, और एक SOP बनी है किस तरह से कि जैसे ही मॉनसून शुरू होता है तो किन पैरामीटर्स को हमने फॉलो करना है। और समय समय पर क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप है जो मिनिस्ट्री में बना हुआ है, जहां के सारे एक्सपर्ट मिलते हैं और स्टेट के ऑफिशियल्स भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े रहते हैं, तो उनको हर हफ्ते बताया जाता है कि भी बारिश अब कम हो रही है या ज्यादा हो रही है, तो उससे तैयारी रहती है। और ये तैयारी जो है हम बाकी लोगों से भी शेयर कर सकते हैं।
2: आनंद जी, आज सूखे का जो असर है सिर्फ पानी की कमी तक सीमित नहीं बल्कि खाद्य सुरक्षा पर उसका असर पड़ता है, खेती, जैव विविधता, अर्थव्यवस्था, आपने भी वो बात कही है। तो आपको लगता है कि आने वाले वर्षों में सूखा दुनिया के सामने है, सिर्फ हमारी बात नहीं पूरी दुनिया के सामने एक बड़ी विकास चुनौती बन सकता है या बन चुका है?
3: नहीं, देखिए सूखा तो हर समय से हमारे लिए चैलेंज रहा है, पर हमने उस चुनौती को काफी हद तक टैकल कर लिया है, यानी कि हमने इरिगेशन को भी बढ़ावा दिया है। हालांकि और इरिगेशन जो हमारे को यदि हम सुधार कर लेते हैं, सबसे बड़ी है कि ज्यादातर किसान जो है हमारे जो सिंचाई पे निर्भर है, सिंचाई है उनके पास, तो उनके यहाँ कोई समस्या नहीं है। आप देखेंगे पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी, इवन राजस्थान का कुछ हिस्सा, जब से इरिगेशन उनके पास है तो बारिश कम भी हो जाए तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर हाँ, बहुत एक बड़ा हिस्सा है जो कहते हैं वर्षा आधारित खेती करते हैं, जहाँ पे रेनफेड एग्रीकल्चर होता है, वहां पे सरकारों को इरिगेशन पहुंचाने की जरूरत है। एक दूसरा, वहां पर किस तरह की फसलें लगाए जाएं, क्रॉपिंग पैटर्न अकॉर्डिंग टू द एग्रो क्लाइमेट। और तीसरा जो है वहां पर लाइफ सेविंग इरिगेशन, जैसे कि आप देखेंगे सदर्न इंडिया में पहले पॉन्ड इरिगेशन बड़ा कॉमन था, हर जगह तरह तरह के पॉन्ड होते थे, तो हमारे एक सिस्टम था कि कैसे तालाब बनाए जाते थे और उनको रखरखाव किया जाता था और उनसे ही ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता था और खेती के लिए भी पानी लिया जाता था। तो आज पॉन्ड्स को रिवाइव करने की जरूरत है, उन नदियों को रिवाइव करना, तो जो हमारी पुरानी नदी है उनको रिस्टोर करना है, तालाबों को रिस्टोर करना है। तो ये यदि हम सब चीजें करते हैं और एग्रो क्लाइमेट आधारित खेती करते हैं और समय समय पे जो मौसम विभाग मौसम आधारित कृषि सलाह देता है वो किसानों तक पहुंचाते हैं, तो ये हम सारी चीजों को चुनौती रहेगी, मगर हम टैकल कर रहे हैं
2: बिल्कुल
3: और अच्छे से कर रहे हैं, और जैसे जैसे तकनीक और बढ़ती जाएगी हम और अच्छा करेंगे।
2: आनंद जी, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने कहा ये है कि अब हमारा लक्ष्य राहत के बाद प्रतिक्रिया नहीं बल्कि तैयारी और रोकथाम होना चाहिए। तो आपके हिसाब से हमारे देश की अगर हम बात करते हैं तो इस बदलाव को जमीनी स्तर पर लागू करना कितना आवश्यक है, क्या क्या इसके लिए हमें चीजें चाहिए और कैसे कोशिश की जाती है, और इसमें भी अगर कोई चुनौती है तो कैसी है?
3: देखिए, ये बहुत अच्छी बात कही उन्होंने, मैंने भी उनके पढ़ रहा था स्पीच का, तो बहुत अच्छे पॉइंट्स उन्होंने रखे हैं उसमें। सही सीधी सी बात यह है कि देखिए आपके पास तैयारी अच्छी है, तो सबसे बढ़िया बात है। पहले क्या होता था, रिलीफ पे जोर होता था, रिएक्शन करते थे, रिएक्टिव था, अब हम हो गए प्रोएक्टिव, यानी कि पूरा फोकस है प्रिपेयर्डनेस पे। प्रिपेयर्डनेस वो मौसम विभाग से चालू हो गई है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को पता है कौन से बीज लगाने हैं। तो जब सारी तैयारी आपकी है, आपने समय समय ये भी बता दिया कि भी अगले 15 दिन बारिश नहीं होने वाली, किसान को अब पता है कि मुझे क्या करना है, सिंचाई है उसके पास तो वो सिंचाई करेगा, और सिंचाई नहीं तो वो क्या करेगा, मल्चिंग करेगा, जो नमी बची है सॉइल उसको बचाएगा अपने आप को, और प्लस इसलिए भी कौन सी लगाएगा जो कि ड्राउट रेजिलिएंट है। तो हमारे यहाँ पे निकरा एक प्रोजेक्ट है ICR के अंदर, जिसके तहत में इस तरह की ड्राउट रेजिस्टेंट फसलें तैयार की गई हैं। तो वो तरह की वैरायटी किसानों उन क्षेत्रों में जो कि वर्षा आधारित खेती करते हैं, तो उनको वो वाली फसलें और वैरायटीज लगानी है। साथ साथ में पॉन्ड इरिगेशन है, तो जहां जहां सरकारों को लगता है कि यहां पॉन्ड्स थे, आप टोपो शीट से देखिए, जहां भर दिए मिट्टी से तो खुलवाइए, और यदि है तो उनकी कैपेसिटी बढ़ाइए, और इरिगेशन यदि कैनाल्स आप बनवा सकते हैं तो वो बनाइए। ये सब करते हैं अर्ली वार्निंग सिस्टम, और जो मौसम विभाग जो आपको समय समय पर वार्निंग दे रहा है वो और सुदृढ़ होता जा रहा है। तो ये सब चीजें तो होंगी, अब ये हो गई, मगर कई बार ऐसा भी होता है मौसम तो खराब होगा
2: जी।
3: ऐसा नहीं है कि मौसम हमेशा अच्छा रहेगा और हमेशा ही ठीक रहेगा, तो वो खराब होगा तो ऐसे में क्या होगा, किसान की फसल खराब हो सकती है, तो क्रॉप इंश्योरेंस है उसके लिए। ये सब हम करेंगे, अर्ली वार्निंग भी है, एश्योर्ड इरिगेशन भी है, अच्छी वैरायटीज हैं, ड्राउट रेजिस्टेंट वैरायटी हैं, क्रॉप इंश्योरेंस है, ये सब है, और अच्छा प्राइस मिल रहा है उनको, सही फर्टिलाइजर, सही पेस्टिसाइड, सब चीजें मिलती हैं जो कि किया जा सकता है। तो उसके लिए क्या जरूरत है, गुड गवर्नेंस की।
2: बिल्कुल,
3: तो हमें गवर्नेंस बढ़ाना होगा।
2: आनंद जी, अगर हमें लंबे समय तक जल सुरक्षा सुनिश्चित करनी है तो हमें जंगलों को बचाना होगा, जल ग्रहण क्षेत्रों को बचाना होगा, और भूजल स्रोतों को भी बचाना होगा, यानी कि नए जल स्रोत बनाना भी आवश्यक, और साथ ही पुराने प्राकृतिक जल तंत्र को पुनर्जीवित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण। और खासकर हमारे देश में तो नदियों को बड़े ही सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। एक दौर कहते हैं कि ऐसा भी रहा है जब हर गांव में तालाब वगैरह भी हुआ करते। तो आपको लगता है कि पुराने तालाब, झीलें और अन्य पारंपरिक जल स्रोत जो हमारे पास रहे हैं, उनका सही से अगर इस्तेमाल किया जाए तो वो भी हमारे लिए काफी प्रभावी समाधान हो सकते हैं समस्याओं के लिए?
3: बिल्कुल, मैंने एक स्टडी भी की थी रिसर्च, यदि आप उत्तराखंड में और हिमाचल में पेड़ कटेंगे तो दिल्ली में ज्यादा फ्लड आएगा, यमुना में। सिमिलरली जम्मू कश्मीर ऊंचे पहाड़ों में आप कहते हैं पेड़ काटोगे तो श्रीनगर में फ्लड आएगा। तो ये जो फ्लड्स आपके हैं कैचमेंट एरिया के अंदर, ये आपके जंगल अच्छे हैं सुनिश्चित, तो वो क्या कर रहे हैं, एक तो आपको फ्लड रोकेंगे आपका आना, दूसरा जो सॉयल इरोजन होता है उसको बचाएंगे, और तीसरा ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करेंगे। तो इसलिए हमें जितने भी कैचमेंट एरियाज हैं उसमें जंगलों को बचाना है, बल्कि और बढ़ावा देना है। और जैसे आपने कहा कि हमारी नदियां जो हैं उनको हमारे यहाँ तो वर्शिप किया जाता है, चाहे वो गंगा हो, यमुना, सभी नदियों को, मगर एक तरफ तो हम वहां उनको वर्शिप कर रहे हैं, दूसरी तरफ उस गंद भी उसमें डाल रहे हैं। तो गंद डालना बंद करना पड़ेगा हमें, अदरवाइज नदियों का अपने आप को साफ करना आता है। तो यदि वो करते हैं, उसमें जो एनक्रोचमेंट है नदियों के अंदर उसको हटा देते हैं, और जो तालाब है हमारे, आप देख लीजिए बेंगलोर में एक समय में 1700 तालाब होते थे, दिल्ली में मेरा ख्याल 900 तालाब होते थे, आप जाएंगे तो वो तालाब नहीं दिखेंगे आपको। तो वो तालाब आप टोपो शूट से ढूंढिए कहां कहां थे तालाब, और मुझे लग रहा है कहीं शहरों में ये शुरू हो चुका है, दिल्ली में भी मैं सुन रहा था, तो उन तालाबों को खोज रहे हैं, और उनको जो यदि खराब हो चुके हैं तो उनको रिवाइव कर रहे हैं। तो ये सब रिवाइव करेंगे तो आपका ग्राउंड वाटर रिचार्ज बढ़ेगा, तो आपके तालाब से पानी भी मिल जाएगा आपको, जब खेती के लिए भी मिलेगा, आपको ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज होगा। तो ये सब करने की जरूरत है बिल्कुल, और डेफिनेटली इसके साथ साथ जैसे मतलब वाटर हार्वेस्टिंग, यदि आप वाटर हार्वेस्टिंग भी करते हैं तो वो भी एक आपके लिए बड़ा अच्छा होगा। और ये सब प्रयास जो है यदि हम उसको सही ढंग से और सही मंशा से करते हैं तो डेफिनेटली इट विल गो ए लॉन्ग वे। हमारी जो वाटर सिक्योरिटी है उसको तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, वाटर सिक्योरिटी होगी तो ही फूड सिक्योरिटी होगी आपकी, और पेड़ पौधे और वो भी बचेंगे, अन्य जानवर, तो बायोडाइवर्सिटी भी बचेगी आपकी, एनवायरमेंट सिक्योरिटी भी बढ़ेगी। तो ये सारी चीजें आपस में लिंक है, यदि हमें वाटर सिक्योरिटी को बचा लेते हैं तो फूड सिक्योरिटी को भी हम बचा लेंगे, एनवायरमेंट सिक्योरिटी को भी।

0: दुरुस्त कर लेंगे और हमारे खासकर बायोडाइवर्सिटी को भी बचा लेंगे।
1: आनंद जी, सरकार की ये सोच रही है कि सूखे की जो स्थिति होती है उससे निपटने के लिए स्थानीय समुदायों की भागीदारी भी काफी महत्वपूर्ण हो सकती है, और सरकार की योजनाओं में हम ये देखते भी हैं कि स्थानीय लोगों की सीधी भागीदारी को महत्व दिया जाता है। एक तरफ जहां सरकार जल संरक्षण को महत्व दे रही है, वनीकरण को बढ़ावा दे रही है, भूजल रिचार्ज पर भी बात हो रही है, तो दूसरी तरफ इमरजेंसी वाटर सप्लाई या फिर रोजगार जैसी राहत भी इसमें शामिल हो जाती है, कई सारी चीजें हैं, तो इनका संतुलन अगर बना करके हम देखें तो क्या लगता है कि कैसे परिस्थितियां बदल सकती हैं?
0: नहीं देखिए, सबसे बड़ी बात है क्योंकि ये ध्यान रखिए कि चाहे हम किसी गांव में जा रहे हैं, पहाड़ पे कहीं जा रहे हैं, तो लोकल लोग जो हैं उनको तो कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना बड़ा जरूरी है। अब वो पेड़ बचे हैं तो पहाड़ बचे हैं, यदि पेड़ नहीं बचेंगे तो पहाड़ नहीं बचेंगे। तो सबसे पहले हमेशा जरूरी है कि हमें ग्राउंड लेवल पे जो लोग हैं उनको तो कम्युनिटी को सुदृढ़ करना पड़ेगा, उनमें अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी, कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़ेगी उनकी, और यदि हम ये कर पाते हैं तो नेचुरली हम काफी हद तक बहुत सारे इश्यूज को सॉर्ट आउट कर लेंगे। हाँ, उसके साथ साथ ऐसी परिस्थितियां हमेशा आती है नेचर में, जब कभी कभी बारिश कम हो जाएगी, जब नेचुरली सूखा पड़ेगा तो उस समय क्या होगा, आपको फॉडर की कमी हो जाएगी, पीने की पानी की समस्या आ सकती है, तो ऐसे में उस समय सरकारों को तैयार रहना है, चाहे आपको टैंकर से पानी प्रोवाइड करना है, जानवरों के लिए फॉडर उपलब्ध कराना है, तो वो आप कर सकते हैं। मगर हाँ, ध्यान रखना है, जैसे कि फॉरेस्ट है, पहले जब तक आम जनता का, वहां के जो किसान लोग थे या जंगल के आसपास रहते, उनको एक्सेस थी जंगल में जाने के लिए, तो उनको फॉडर की कभी कमी नहीं रहती थी। बाद में किस तरह के कुछ नियम ऐसे आए कि उनको जंगलों से दूर रख दिया गया, फिर बाद में फिर पहल हुई ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट की, नहीं आसपास के लोगों को भी इन्वॉल्व करना है, तो उनको जरूर इन्वॉल्व करके रखना पड़ेगा, जिससे कि उनको घास फोडर वगैरह ये मिलता रहे, जिससे कि वो अपने जानवर भी ठीक रख सकें। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि फसल तो आपकी खराब हो गई, मगर यदि आपके पास जानवर है, उसको फोडर मिल रहा है, तो आपको चलो दूध दही मिल जाएगा, उससे आप सर्वाइव तो कर सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: वो बहुत जरूरी है।
1: आनंद जी, सूखे का संकट किसी एक देश की सीमा तक सीमित नहीं, ऐसे में भारत जिस तरह से अपने अर्ली वार्निंग सिस्टम्स और अपने अनुभव दूसरे देशों के साथ साझा करने की बात कर रहा है, तो इससे एक मजबूत वैश्विक ड्रॉट रेजिलियंस नेटवर्क बनाया जा सकता है।
0: बिल्कुल, आपके सामने एग्जांपल है कि इस बार जो एलनीनो फिनोमेना है, अप्रैल के आसपास ही बोल दिया गया था कि भी एलनीनो इस बार आने वाला है और हो सकता है कि सुपर एलनीनो हो, और इसकी जो मॉनिटरिंग है पूरे वर्ल्ड लेवल पे चल रही है, तो वो जो मॉनिटरिंग चल रही है, हमारे पास भी रिसर्च का जो डेटा आ रहा है, ऑब्जर्वेशन आ रहा है, तो हमारी भी तैयारी ऐसी है, और खासकर जो ये WMO जो है, वर्ल्ड मीटोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, FAO है, यूनाइटेड नेशंस है, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है मिलजुल के काम करती हैं, और उनकी जो रिसर्च निकलती है, उनकी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस निकलती हैं या कोई अर्ली वार्निंग है, वो सारे देशों में शेयर की जाती हैं। और जैसा कि पता है, एलनीनो हमें ही नहीं प्रभावित कर रहा है, वो पेरू को भी प्रभावित कर रहा है, वहां पे ज्यादा इस समय इफेक्ट दिख रहा है, वो ऑस्ट्रेलिया को भी प्रभावित कर रहा है, वो इंडोनेशिया को भी प्रभावित कर रहा है, तो इसीलिए ये एक तंत्र बनाया गया है कि ऐसा एक अर्ली वार्निंग सिस्टम बना दिया जाए जो WMO इस तरह से बना रहा है और वो बाकी कंट्रीज के साथ शेयर कर रहा है, जिससे कि हर कंट्री के पास यदि अर्ली वार्निंग सिस्टम होता है, हालांकि अभी बहुत सारी ऐसी कंट्रीज डेवलपिंग है जिनके हर खतरे के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम नहीं है, तो इस अर्ली वार्निंग सिस्टम को इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टी हजार अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाना पड़ेगा और लोकल्स को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो हमारे पास हैं वो बाकी कंट्रीज के साथ शेयर करें, जो उनके पास है वो हम उनसे लें, और यदि हम ये सब करते हैं तो किसी भी खतरे से हम निपट सकते हैं। और आज मैंने जैसे बताया कि टेक्नोलॉजी इतनी इंप्रूव हो चुकी है, हमारे पास सैटेलाइट है, हमारे पास रडार है, हमारे पास ग्लोबल टेलीकम्युनिकेशन की हब्स हैं, कम्युनिकेशन लाइंस हैं, तो फटाफट जानकारी एक जगह से दूसरी जगह भेजी जा सकती है कम्युनिटी के आखिरी लोगों तक। हाँ, ये सुनिश्चित करना है कि ये जो ये जानकारी है उसमें लास्ट माइल कनेक्टिविटी, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं कहूँ तो क्रूशल माइल कनेक्टिविटी, कि कौन सा वाला एरिया है जहाँ पे अर्ली वार्निंग की जरूरत है, तो वहां तक उस कम्युनिकेशन के लिए आप चाहे कैसा भी करें, चाहे उसको टेलीविजन से, रेडियो से, यदि बिजली नहीं है तो कैसे करेंगे, तो आप कम्युनिटी रेडियो से कर सकते हैं। टोन अलर्ट हैंड वाइंडिंग रेडियो आ गए हैं जिसमें बिजली की जरूरत नहीं है, बैटरी की जरूरत नहीं है, आप उसको पीछे 100 बार वाइंड करिए, वो आप 1-1.5 घंटा चलेगा।
1: आनंद जी, एक आखिरी प्रश्न आपसे और पूछना चाहता हूँ। जैसे आपने कई बार पहाड़ी इलाकों का जिक्र किया, वहां से धाराएं निकलती हैं, और भूजल को बचाने के लिए भी मैदानी क्षेत्रों में कई सारे प्रयास किए जा रहे हैं। एक सामान्य व्यक्ति अगर सूखे की स्थिति से बचने के लिए प्रयास करना चाहे तो उसे क्या करना चाहिए?
0: देखिए, इसमें सबसे पहला काम तो ये है कि हमारे जो आसपास जो है, चाहे वो स्ट्रीम्स हैं, धाराएं हैं, नाले हैं, फ्लड स्टॉर्म जो ड्रेन्स होते हैं वो हैं, नदियां हैं, तालाब हैं, इन सबको हमें कंजर्व करना है, बचा के रखना है, और उनकी जिसे कहते हैं ना, तो पहले एक सिस्टम था हमारे पास किस तरह के तालाब को बनाया जाना है और कैसे उसकी मेंटेनेंस होनी है, तो उसमें हमें लोकल लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा। हर यदि क्षेत्र में हमारे पास तालाब हो तो आपका पानी उसमें भरा रहेगा, तो जब कभी वर्षा कम होगी तो तालाब से पानी यूज कर लिया आपने, चाहे वो पीने का पानी हो या फिर सिंचाई के लिए हो, और उसी से पानी से आपका ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज होगा, और नदियों को प्रदूषित ना करें बिल्कुल भी, क्योंकि वही पानी हमें काम आता है और वो भी हमारा ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है। पूरी चीज आपस में कनेक्टेड है। यदि पहाड़ों को हम नष्ट करेंगे तो उसका

0: प्रभाव प्लेन्स में पड़ेगा। तो
1: बिल्कुल
0: ये ध्यान रखना है कि हमें प्रकृति को बचाना है, और यदि हम इसमें लोकल आदमी को इन्वॉल्व करेंगे तो मुझे लगता है, क्योंकि उनको उससे लगाव है, उनकी रोजी रोटी उसी से चलती है, लाइवलीहुड उसको उसी से मिलती है, वो उसको खराब नहीं करेगा।
1: जी
0: तो उसको इन्वॉल्व करना है उसके साथ
1: जी
0: साथ।
1: आनंद जी, इस चर्चा में भाग लेने के लिए, तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे सूखे से निपटने के लिए भारत के दृष्टिकोण और विभिन्न प्रयासों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारत मौसम विज्ञान विभाग में पूर्व अपर महानिदेशक आनंद शर्मा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: मंथन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सेवा तीर्थ में प्रगति मंच की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि बड़ी परिवहन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाते समय जहां संभव हो बिजली, पानी और अन्य सेवाओं के लिए साझा गलियारे विकसित किए जाने चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के साथ गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। उन्होंने आधुनिक तकनीक, बेहतर निगरानी और केंद्र राज्यों के बीच मजबूत समन्वय पर जोर दिया। बैठक में 9 राज्यों से जुड़ी हुई रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्र की 6 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई, जिनकी कुल लागत 30,000 करोड़ रुपए से अधिक की है। प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र के डिजिटल डेटा प्लेटफॉर्म एग्रीस्टेक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीक के बेहतर इस्तेमाल की बात कही, ताकि किसानों को बेहतर सेवाएं मिल सकें। भारत में भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई को आज 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। 2016 में शुरू की गई भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूपीआई ने अभूतपूर्व व्यापकता और विश्वसनीयता के माध्यम से वैश्विक मान्यता प्राप्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई की एक दशक लंबी सफलता की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने यूपीआई को भारत के डिजिटल भुगतान सफर का एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया। उन्होंने देशवासियों से अपने यूपीआई अनुभव साझा करने का आह्वान करते हुए कहा कि यूपीआई की व्यापक पहुंच और विस्तार पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को देश में उत्पादन के लिए भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन संवर्धन करना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकार जापान सहित उच्च तकनीकी क्षेत्र की अन्य कंपनियों को भारतीय मानक ब्यूरो के अनिवार्य प्रमाणन से छूट देने के लिए नियमों की एक विशेष रूपरेखा पर काम कर रही है। टोक्यो में सेमीकंडक्टर और एआई क्षेत्रों की जापानी कंपनियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह छूट आवश्यकता के आधार पर कंपनी, उद्योग, उत्पाद या परियोजना स्तर पर दी जा सकती है। श्री गोयल ने भारत को वैश्विक डेटा सेंटर का हब बताते हुए कहा कि वर्ष 2032 तक देश में सेमीकंडक्टर की मांग 150 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल रात मॉस्को में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लवरोव के साथ बातचीत की। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि द्विपक्षीय सहयोग, क्षेत्रीय संकटों, वैश्विक चुनौतियों और बहुपक्षीय मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने यूक्रेन, ईरान और अफगानिस्तान के वर्तमान हालात पर भी विचार विमर्श किया। इससे पहले डॉक्टर जयशंकर ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज पेंचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग जी के साथ विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता की। दोनों नेताओं ने भारत चीन सीमा मुद्दे और दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार पर चर्चा की। 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की संभावित यात्रा से पहले ये वार्ता महत्वपूर्ण मानी जा रही है। 2 दिन की यात्रा पर कल पेंचिंग पहुंचे श्री डोभाल ने चीन के उपराष्ट्रपति हान झिंग से भी मुलाकात की। सर्वोच्च न्यायालय ने आज अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी क्रीमी लेयर के मानदंड से संबंधित केंद्र की याचिका पर सुनवाई के लिए विशेष पीठ गठित करने के विचार को सहमति दी। केंद्र सरकार ने सिविल सेवा परीक्षा 2025 के उम्मीदवारों पर न्यायालय के 11 मार्च के फैसले के लागू होने को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मिलाद उन नबी की पूर्व संध्या पर लोगों को बधाई दी है। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ईद ए मिलाद उन नबी पैगंबर मोहम्मद के उपदेशों को याद करने का अवसर है। राष्ट्रपति ने कहा कि पैगंबर की शिक्षाएं नागरिकों को धार्मिक आचरण और कर्तव्य निष्ठा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by VC Pramod. The Unified Payments Interface UPI has completed 10 years of transforming digital payments in the country and abroad. The unprecedented scale and reliability achieved by UPI have earned global recognition as world's largest real-time payment system, with the system now operational across 11 countries. It has emerged as one of the most successful pillars of India's digital public infrastructure, providing an interoperable and real-time payments platform. The UPI, which was launched on this day in 2016, has surged almost 13,000-fold in transaction volume. The Finance Ministry said that the annual transaction volume increased from just 1.78 crore transactions in 2016-17 to over 24,162 crore transactions in 2025-26. The transaction value also rose sharply from 7,000 crores rupees to nearly 314 lakh crore rupees during the same time period. Prime Minister Modi has hailed the decade-long success of the UPI service. In a social media post, Mr. Modi marked UPI as a major turning point in India's digital payments journey. Calling upon the countrymen to share their UPI experience, the Prime Minister stated that the sheer scale and reach of UPI is something every Indian must be proud of. Defence Minister Rajnath Singh has approved transfer of DRDO-developed technologies of missile systems to the country's private defence industry to bolster indigenous manufacturing. This step marks an important milestone in promoting greater participation of the domestic industries in the defence ecosystem by enabling them to undertake indigenous production. National Security Advisor Ajit Doval today held special representative talks with Chinese Foreign Minister Wang Yi in Beijing on the India-China boundary issue and improvement of relations between the two countries. The talks assume significance as they are being held ahead of Chinese President Xi Jinping's anticipated visit to New Delhi to attend the BRICS summit on the 12th and 13th of September. Both Doval and Wang are the designated special representatives for the Boundary Talks mechanism, which was established in 2003 to comprehensively address the dispute of the India-China border spanning over 3,400 kilometers. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar held wide-ranging talks with his Russian counterpart Sergei Lavrov in Moscow last night. In a social media post, Dr. Jayashankar said they discussed bilateral and global issues. The state-run TASS news agency said the current situation surrounding Ukraine, Iran and Afghanistan was also discussed by the two foreign ministers. Earlier, Dr. Jayashankar called on Russian President Vladimir Putin as the two sides discussed economic ties, focusing on key areas such as trade, energy, fertilizers and nuclear cooperation. The government is closely monitoring the prevailing seasonal respiratory illness trends across the country through a robust pan-India surveillance network. It stressed that there is no cause for panic or alarm. Secretary of Department of Health Research and Director General of Indian Council of Medical Research, Dr. Rajiv Bahl, was addressing the media in New Delhi today. He said the influenza virus currently circulating in the country

कार्यक्रम माटी के रंग के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे दयाराम एंड पार्टी की आवाज़ में राजस्थानी लोकगीत। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडिया वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। रात्रि के 10:30 हुए हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रंजन में आज हम आपको सुनवा रहे हैं भव्य सरस्वत का राग केदार में। ध्रुपद गायन संगत कलाकार है सारंगी पर गुलाम मोहम्मद और पखावज पर हरीश चंद्रपति।

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रंजन में अभी आप सुन रहे थे भव्य सरस्वत का राग केदार में ध्रुपद गायन। संगत कलाकार थे सारंगी पर गुलाम मोहम्मद और बखावज पर हरीश चंद्रपति। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडिया वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। रात्रि के 11 बजने को है। आइए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सेवा तीर्थ में प्रगति मंच की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि बड़ी परिवहन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाते समय जहां संभव हो बिजली, पानी और अन्य सेवाओं के लिए साझा गलियारे विकसित किए जाने चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के साथ गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। उन्होंने आधुनिक तकनीक, बेहतर निगरानी और केंद्र राज्य के बीच मजबूत समन्वय पर जोर दिया। बैठक में 9 राज्यों से जुड़ी हुई रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्र की 6 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई, इनकी कुल लागत 30,000 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र के डिजिटल डेटा प्लेटफॉर्म एग्रिस्टेक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीक के बेहतर इस्तेमाल की बात कही ताकि किसानों को बेहतर सेवाएं मिल सकें। भारत में भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI को आज 10 वर्ष पूरे हो गए। 2016 में शुरू की गई भुगतान की डिजिटल प्रणाली UPI ने अभूतपूर्व व्यापकता और विश्वसनीयता के माध्यम से वैश्विक मान्यता प्राप्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने UPI की एक दशक लंबी सफलता की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने UPI को भारत के डिजिटल भुगतान सफर का एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया। उन्होंने देशवासियों से अपने UPI अनुभव साझा करने का आह्वान करते हुए कहा कि UPI की व्यापक पहुंच और विस्तार पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को देश में उत्पादन के लिए भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन करना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल रात मॉस्को में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ बातचीत की। डॉ. जयशंकर ने बताया कि द्विपक्षीय सहयोग, क्षेत्रीय संकटों, वैश्विक चुनौतियों और बहुपक्षीय मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने यूक्रेन, ईरान और अफगानिस्तान की वर्तमान स्थिति पर भी विचार विमर्श किया। इससे पहले डॉ. जयशंकर ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज पेचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता की। दोनों नेताओं ने भारत चीन सीमा मुद्दे और दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार पर चर्चा की। 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की संभावित यात्रा से पहले ये वार्ता महत्वपूर्ण मानी जा रही है। भारत और मोरक्को ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने, निवेश बढ़ाने और औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह भारत मोरक्को साझेदारी को और अधिक मजबूत तथा गतिशील बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 7वीं भारत मोरक्को संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्ष वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद और मोरक्को के उद्योग और व्यापार मंत्रालय में विदेश व्यापार प्रभारी राज्य सचिव उमर हेजिरा ने की। भारत और न्यूजीलैंड ने कल न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में आयोजित दूसरी रक्षा रणनीतिक वार्ता में हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र, खुला और समावेशी बनाए रखने की प्रतिबद्धता जताई है। इस उच्च स्तरीय बैठक में दोनों देशों ने रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए नए समझौतों और भविष्य की सैन्य योजनाओं पर गहन चर्चा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओणम की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति

0: India Meteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall over Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Uttar Pradesh, Uttarakhand, Bihar, Chhattisgarh and East Rajasthan tomorrow. Meanwhile, parts of Delhi NCR witnessed light to moderate rain during the day. IMD has said that cloudy sky conditions will continue to prevail over Delhi with spells of light to very light rainfall for the next 2 days. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडिया वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर रात्रि के 11:10 हुए हैं। दोस्तों, आज दिल्ली की फिजाओं में बारिश की बूंदों ने जैसे मौसम को इतना सुहाना बना दिया ना, ऐसे मौसम में अगर साथ हो कुछ खूबसूरत नगमे तो शाम और भी यादगार बन जाती है। मैं हूं आपकी दोस्त प्रिया और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत आपकी फरमाइश पर। आज की इस सुहानी बारिश में सुनेंगे 90s के सुपरहिट गीत, करेंगे पुरानी यादों को ताज़ा और संगीत के साथ बनाएंगे इस रात को और भी सुहाना। तो शुरू करते हैं कार्यक्रम के पहले गीत से।

दोस्तों, सावन की रिमझिम फुहारे जब दिल को छू जाती है ना, तो पुरानी यादें भी चुपके से लौट आती है। आप सुन रहे थे अभी ये गीत हरिहरन की आवाज़ में, फिल्म दहक से। इस गीत की फरमाइश की थी चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा, श्री गंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति भूमिका, और दिल्ली से इस गीत की फरमाइश की है एसपी सिंह, मनीष गीतांजलि, प्रियाशी, तनिष्का, रणवीर और बीबी विदांशी ने।

दोस्तों, आज की रात मौसम भी कुछ कह रहा है। बाहर रिमझिम बारिश और दिल में कुछ पुरानी सी यादें। कहते हैं बारिश और संगीत का रिश्ता बहुत पुराना होता है। एक बूंद गिरती है और कोई भूला हुआ गीत याद आ जाता है। कविता कृष्णा मूर्ति और कुमार सानू की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये खूबसूरत गीत फिल्म 1942 और लव स्टोरी से। इस गीत की फरमाइश की थी इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश खर्चे, कार्तिक, संजना और परी ने साथ ही इस गीत की फरमाइश की है। शास्त्री नगर भेड़ शहर से किशन सपाल, आशा सपाल, सोनिया, साईराज, विशाल सपाल ने, और दिल्ली से पहाड़गंज से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू और मधु नायक ने।

तो ये था प्यारा सा चुलबुला नगमा, जिसमें माहौल थोड़ी सी शरारत और ढेर सारी मुस्कान घोल दी। कुछ गीत सच में ऐसे होते हैं जिन्हें सुनकर दिल कहता है बस थोड़ा सा यूं ही झूम लूं। आशा भोसले और उदित नारायण की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये खूबसूरत गीत फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से। इस गीत की फरमाइश की थी गांव लोहागढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप गुरनूर, गुरलाल अविराज। अस्तुपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक, और गाजीपुर से आज़ाद अली अनवर, रिजवान परवीन, अब्दुल्ला आज़ाद। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, अमनदीप।

0: भीमाबम भोले का पुजारी किसी नारी से नजर न मिलाए। नारी बड़ी प्यारी पर दिल की बीमारी काहे रोग कोई दिल को लगाए।
1: गोरी है कलाई।

सावन का महीना हुआ और हाथों में खनकती चूड़ियाँ, तो खुशियाँ अपने आप ही चेहरे पर उतर जाती है दोस्तों। चूड़ियों की खनक जैसे सावन की हर पुहार में एक मिठास घोली हो, और तीज के रंग में सजा हर पल एक खूबसूरत एहसास बन जाता है। लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये खूबसूरत गीत फिल्म आज का अर्जुन से। इस गीत की फरमाइश की थी संबल से छोटे अंसारी, आलम अंसारी, असद अंसारी, उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश, पंजाब से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्य मल्होत्रा, सुच्चा सिंह पाठक ने।

जी हाँ दोस्तों, कभी कभी घर से निकलते हैं अक्सर कोई ना कोई याद साथ चल पड़ती है। कभी उसका चेहरा, कभी कोई उसका अधूरी सी कहानी, ये हमारे दिल में जो छुपी हुई है वो हम एहसास हमेशा दिल में लेके चल पड़ते हैं। अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण की आवाज़ में ये गीत फिल्म पापा कहते थे। इस गीत की फरमाइश की है फातिमा कलोनी महाराज से नासिर शेख नाजिया ना

नसीर, साजिद शाहिद और अहमदनगर से जुनेद मुजाफर, सबिहा माइकल जनेब ने। एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नावेद हसन, सुहेल हसन, अनम यशफ रसीद। और पंचकूला से आशु चुग और अश्वनी चुग, गोविंदा गोविंद चुग ने।

उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये खूबसूरत गीत फिल्म दिल से। इस गीत की फरमाइश की थी गांव हिसार से राजकुमार डुड्डी, प्रमोद कुमार, पुष्पेंद्र कुमार, संबलपुर से फागू राम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव, दिल्ली से अनिल मोहन, उषा टिल्लू, मधु नायक, गांव लोहागढ़ ठाकुरा वाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप गुरनूर और गुरलाल अविराज सिंह ने।

0: इस गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। मैं आपकी दोस्त प्रिया अब आपसे विदा लेती हूँ। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडिया वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। 12 बजने को है, इन मीटरों पर हमारे प्रसारण संपन्न होते हैं। सुबह 4:50 पर आपकी सेवा में हम फिर उपस्थित होंगे। AIR लाइव न्यूज़ 24/7 पर हमारे प्रसारण जारी है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी समाचार।
1: नमस्कार,

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा तीर्थ में प्रगति मंच की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि बड़ी परिवहन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाते समय जहां संभव हो बिजली, पानी और अन्य सेवाओं के लिए साझा गलियारे विकसित किए जाने चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के साथ गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। उन्होंने आधुनिक तकनीक, बेहतर निगरानी और केंद्र राज्य के बीच मजबूत समन्वय पर जोर दिया। बैठक में 9 राज्यों से जुड़ी हुई रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्र की 6 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई, जिनकी कुल लागत 30,000 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र के डिजिटल डेटा प्लेटफॉर्म एग्रिस्टेक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीक के बेहतर इस्तेमाल की बात कही, ताकि किसानों को बेहतर सेवाएं मिल सके। भारत में भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई को कल 10 वर्ष पूरे हो गए। 2016 में शुरू की गई भुगतान की डिजिटल प्रणाली ने अभूतपूर्व व्यापकता और विश्वसनीयता के माध्यम से वैश्विक मान्यता प्राप्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई की एक दशक लंबी सफलता की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री को भारत के डिजिटल भुगतान सफर का एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया। उन्होंने कहा कि यूपीआई की व्यापक पहुंच और विस्तार पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए।
1: दुनिया के 2 डिजिटल भुगतान लेन देन में से एक भारत में होता है। पिछले वर्ष दुनिया में भुगतान लेन देन की कुल मात्रा में यूपीआई की हिस्सेदारी लगभग 49% रही। पिछले महीने देश भर में यूपीआई के जरिए 23 अरब से अधिक लेन देन दर्ज किए गए। यूपीआई की अभूतपूर्व पहुंच और विश्वसनीयता को वैश्विक स्तर पर भी मान्यता मिली है। यूपीआई अब फ्रांस, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात यूएई, श्रीलंका, भूटान और मॉरिशस सहित 11 देशों में संचालित हो रहा है। दीपेंद्र और ऋषु के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को देश में उत्पादन के लिए भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन करना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने मॉस्को में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ बातचीत की। डॉ. जयशंकर ने बताया कि द्विपक्षीय सहयोग, क्षेत्रीय संकट, वैश्विक चुनौतियों और बहुपक्षीय मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने यूक्रेन, ईरान और अफगानिस्तान की वर्तमान स्थिति पर भी विचार विमर्श किया। इससे पहले डॉ. जयशंकर ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात की। भारत ने कल भारत चीन सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया। पेचिंग में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने भारत चीन सीमा विवाद पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वीं दौर की वार्ता की सह अध्यक्षता की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों के बीच सीमा मुद्दों पर गहन विचार विमर्श हुआ, साथ ही सीमा विवाद के राजनीतिक समाधान की दिशा में काम जारी रखने पर सहमति जताई। दोनों पक्षों ने कैलाश मानसरोवर यात्रा और 3 निर्धारित सीमा व्यापार मार्गों के जरिए सीमा व्यापार सहित लोगों के बीच बढ़ते संपर्क पर संतोष व्यक्त किया। इससे पहले 2 दिवसीय चीन यात्रा के दौरान श्री डोभाल ने चीन के उपराष्ट्रपति हान झेंग से भी मुलाकात की। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने H1N1 इन्फ्लुएंजा, डेंगू और मलेरिया की स्थिति को लेकर अंतरविभागीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में बीमारी की स्थिति, निगरानी, अस्पतालों की तैयारियों, दवाओं और जांच सुविधाओं की समीक्षा की गई। स्वास्थ्य मंत्री ने MCD, NDMC और दिल्ली छावनी को स्कूलों, अस्पतालों और सार्वजनिक स्थानों के आसपास एंटी लार्वा अभियान छिड़काव और छिड़काव तेज करने के निर्देश दिए। भारत के साथ दूसरे और आखिरी क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका ने तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक पहली पारी में 8 विकेट पर 265 रन बना लिए हैं। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी।

रहे AIR लाइव न्यूज 24x7। 12:10 हो चुके हैं, समय है कार्यक्रम सुरों का सफरनामा। कार्यक्रम सुरों का सफरनामा में मैं हूं आपके साथ पूजा भारती। आप सभी का स्वागत है इस कार्यक्रम में। कार्यक्रम का कुछ ऐसा तरीका होता है कि इसमें हम ऐसे लोगों को, ऐसे कलाकार को लेते हैं जो अपने जीवन में या अपने कर्मों से, अपने कामों से लोगों को इतना प्रभावित कर देते हैं कि लोग उन्हें हमेशा याद रखते हैं और उनकी बातें किया करते हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे उस शख्स की जिसने हमें सिखाया कि प्यार सिर्फ 3 शब्द में नहीं, एक पूरी गजल है। वो शख्स जिसने लिखा, दिल है कि मानता नहीं, मुश्किल बड़ी है, और या फिर यूं कहें, आओगे जब तुम ओ साजना, अंगना फूल खिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज के हीरो हैं 90 के दशक के रोमांस के बादशाह फैज अनवर साहब, जिनके शब्दों ने हम सभी का दिल जीत लिया।

श्रोताओं, आप सुन रहे कार्यक्रम सुरों का सफरनामा और बात हो रही है गीतकार फैज अनवर की। फिल्मी गीत सिर्फ शब्दों का मेल नहीं होते, एक गीत कभी किसी पहली मोहब्बत होते हैं तो कभी किसी के बिछड़ने का दर्द होते हैं, कभी किसी का इंतजार तो कभी जिंदगी के नए नजरिए को देखने की कोशिश। फैज अनवर की गीत लेखनी, शैली, शख्सियत, भावनाओं का जो मेल है वो उन्हीं की भाषा में व्यक्त किया जा सकता है। उनके गीतों में प्रेम और विरह की भावनाएं बार बार दिखाई देती हैं। उनके लिखे गीतों को लोकप्रिय बनाने में हिंदी सिनेमा के संगीतकारों और गायकों की भी बड़ी भूमिका रही। यही फिल्मी संगीत की खूबसूरती है कि गीतकार शब्द देता है, संगीतकार उन शब्दों को धुन देता है और गायक उनमें जान डाल देता है।

खत्म हो जाता है, लेकिन उसका कोई एक शब्द अक्सर हमारे साथ रह जाता है। दोस्तों, सुरों का सफरनामा में आज हम सफर कर रहे हैं गीतकार फैज अनवर के साथ। कहते हैं अच्छे गीत की पहचान यही है कि वो फिल्म के पर्दे से निकलकर श्रोता की अपनी जिंदगी का हिस्सा बन जाए। फैज अनवर ने कई ऐसे गीतों में अपनी झलक दिखाई है जो आज भी हम सबके दिलों पर राज करते हैं। वो एहसास दिलाते हैं कि गीत इतना खूबसूरत होता है कि आप उसकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है, आपके दिल पर एक ऐसी छाप छोड़ जाता है जिसकी पहचान सदियों तक कायम रहती है।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरों का सफ़रनामा और हम बात कर रहे हैं आज गीतकार फैज़ अनवर की, जिनके फिल्मी सफ़र को समझने का सबसे अच्छा तरीका है उनके गीतों को सुनना, क्योंकि हर गीत अपने साथ एक दौर, एक फिल्म और एक भाव लेकर आता है। फिल्मी गीतकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है कहानी और किरदार के अनुरूप शब्द लिखना। रोमांटिक दृश्य हो तो भाषा में नरमी चाहिए, विरह हो तो शब्दों में खालीपन महसूस होना चाहिए, और खुशी का अवसर हो तो गीत में उत्सव की चमक दिखाई देनी चाहिए। फैज़ अनवर के अलग अलग गीतों में अलग अलग परिस्थितियों के लिए गीत लिखे और उनकी रचनाओं में प्रेम और मानवीय भावनाओं की छाप विशेष रूप से देखने को मिलती है, और वही झलक देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है, महसूस करने को मिलती है जब हम उनके गीतों को सुनते हैं। एक ऐसा एहसास पाते हैं जो सिर्फ और सिर्फ फैज़ अनवर के गीतों में दिखाई देता है।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरों का सफरनामा और ये है आकाशवाणी दिल्ली का यायार लाइव न्यूज 24/7 चैनल। श्रोताओं, फिल्मी गीत सिर्फ शब्दों का मेल नहीं होते, और जब बात एक ऐसे गीतकार की हो जो शब्दों को एक अच्छी सी माला में पिरोना जानता हो तो बात ही क्या है। श्रोताओं, आज जब फैज अनवर की हम बात करते हैं तो एक उस मुकाम की बात करते हैं जिसका सपना हर रचनाकार देखता है, सम्मान और पहचान। फिल्मी दुनिया में किसी गीतकार के लिए सबसे बड़ा सम्मान सिर्फ पुरस्कार नहीं बल्कि दर्शकों और श्रोताओं का प्यार भी है। पुरस्कार किसी रचना को औपचारिक पहचान देते हैं, लेकिन सालों बाद भी लोगों का उस गीत को याद रखना उसकी सबसे बड़ी सफलता होती है। फैज अनवर के रचनात्मक सफर को भी उनके लोकप्रिय गीतों और फिल्म संगीत में योगदान के लिए याद किया जाता है, जिसका आधार है उनके शब्द। बार बार मैं अपने शो में जब भी फैज अनवर की बात कर रहा हूँ, उनके गीतों की बात कर रहा हूँ, उनकी रचनाओं की बात कर रहा हूँ, तो स्पेशल बात कर रहा हूँ उनके शब्दों की। जिस तरह से वो शब्दों को चुनते थे, उन्हें पिरोते थे और आपके सामने, हम सब के सामने जिस म्यूज़िक के साथ वो हमें सजाते थे, वो एक अपने आप में ऐसा एहसास है जो हम कभी नहीं भूल पाएंगे। आइए सुनते हैं उन्हीं की शब्दों की माला का एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत। बने रहे हमारे साथ और सुनते रहिए कार्यक्रम सुरों का सफरनामा।

श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं फैज़ अनवर खान की कार्यक्रम सुरों का सफ़रनामा में। और जब बात इस तरह की होती है, गीत की होती है, संगीत की होती है, उसकी दीवानगी की होती है, तो उन गीतों की, उन शब्दों की बात ज़रूर होती है। श्रोताओं, बात है असल भावनाओं की, जो हर इंसान के जीवन में कहीं ना कहीं मौजूद है। मोहब्बत, इंतज़ार, मुलाकात, दूरी और याद। फैज़ अनवर की गीतों को सुनते हुए हमें ये एहसास होता है कि फिल्में

गीतों की उम्र सिर्फ कुछ मिनटों की नहीं होती। एक अच्छा गीत कभी कभी सालों तक हमारे साथ चलता है। किसी पुराने गीत की पहली धुन सुनते ही हमें कोई चेहरा याद आता है, कोई शहर याद आता है, कोई शाम याद आती है, और शायद यही है गीत की असली ताकत।

बात कर रहे हैं फैज अनवर की और ये कार्यक्रम था सुरों का सफरनामा। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में बस इतना ही। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं एक बहुत ही खूबसूरत से गीत के साथ फैज अनवर के, और ये एहसास दिलाता है, जो हमें याद दिलाता है बार बार, वो महसूस कराता है कि जब शब्दों की एक माला हमारे सामने होती है, चाहे वो गीत के रूप में हो चाहे वो पोएम के रूप में हो, हमारे दिलों को हमेशा छू जाती है, और यही बात फैज अनवर के गीतों में दिखती है। तो आइए आपको सुनवाते हैं एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत कार्यक्रम के अंत में। मुझे दीजिए अनुमति।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सेवा तीर्थ में प्रगति मंच की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि बड़ी परिवहन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाते समय जहां संभव हो बिजली, पानी और अन्य सेवाओं के लिए साझा गलियारे विकसित किए जाने चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के साथ गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। उन्होंने आधुनिक तकनीक,

0: बेहतर निगरानी और केंद्र राज्य के बीच मजबूत समन्वय पर जोर दिया। बैठक में 9 राज्यों से जुड़ी रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्र की 6 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई, जिनकी कुल लागत 30,000 करोड़ रुपये से अधिक है। प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र के डिजिटल डेटा प्लेटफॉर्म एग्रीस्टेक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीक के बेहतर इस्तेमाल की बात कही, ताकि किसानों को बेहतर सेवाएं मिल सकें। भारत में भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई को कल 10 वर्ष पूरे हो गए। 2016 में शुरू की गई भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूपीआई ने अभूतपूर्व व्यापकता और विश्वसनीयता के माध्यम से वैश्विक मान्यता प्राप्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई की एक दशक लंबी सफलता की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने यूपीआई को भारत के डिजिटल भुगतान सफर का एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया। उन्होंने कहा कि यूपीआई की व्यापक पहुंच और विस्तार पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए।
1: आज दुनिया के 2 डिजिटल भुगतान लेन देन में से एक भारत में होता है। पिछले वर्ष दुनिया में भुगतान लेन देन की कुल मात्रा में यूपीआई की हिस्सेदारी लगभग 49% रही। पिछले महीने देश भर में यूपीआई के जरिए 23 अरब से अधिक लेन देन दर्ज किए गए। यूपीआई की अभूतपूर्व पहुंच और विश्वसनीयता को वैश्विक स्तर पर भी मान्यता मिली है। यूपीआई अब फ्रांस, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात यूएई, श्रीलंका, भूटान और मॉरिशस सहित 11 देशों में संचालित हो रहा है। दीपेंद्र और ऋषु के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को देश में उत्पादन के लिए भारतीय रक्षा सहयोग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन करना है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए भारत को अपनी आंतरिक सुरक्षा और मजबूत करनी होगी। नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन के समापन सत्र में उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मजबूत आंतरिक सुरक्षा जरूरी है। श्री शाह ने कहा कि अगले 15 से 20 वर्षों की संभावित चुनौतियों की पहचान कर उन्हें समय रहते रोकने की रणनीति बनाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य सुरक्षित, घुसपैठ मुक्त और नशा मुक्त भारत बनाना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधारों से जुड़ी मसौदा रिपोर्ट को संसदीय समिति ने सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है। शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल मामलों की संसदीय समिति की बैठक में एजेंसी को वैधानिक दर्जा देने के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच मतभेद रहे। बाद में रिपोर्ट की भाषा पर सहमति बनने के बाद समिति ने एजेंसी में सुधार और उसे मजबूत करने से जुड़ी मसौदा रिपोर्ट को मंजूरी दे दी। कांग्रेस सांसद मुकुल वासनिक की अध्यक्षता वाली समिति की ये इस मुद्दे पर 6ठी बैठक थी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका नौसेना ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में मौजूद सभी समुद्री बारूदी सुरंगों को हटा दिया या निष्क्रिय कर दिया है। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान को चेतावनी दी गई है कि नई बारूदी सुरंगें बिछाने वाले किसी भी जहाज या नाव को तुरंत नष्ट कर दिया जाएगा। ईरान की ओर से इस पर अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। सर्वोच्च न्यायालय ने अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी क्रीमी लेयर के मानदंड से संबंधित केंद्र की याचिका पर सुनवाई के लिए विशेष पीठ गठित करने पर विचार करने की सहमति दे दी है। केंद्र सरकार ने सिविल सेवा परीक्षा 2025 के उम्मीदवारों पर न्यायालय के 11 मार्च के फैसले के लागू होने को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा तीर्थ में प्रगति मंच की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि बड़ी परिवहन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाते समय जहां संभव हो बिजली, पानी और अन्य सेवाओं के लिए साझा गलियारे विकसित किए जाने चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि परियोजना को तेजी से पूरा करने के साथ गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। उन्होंने आधुनिक तकनीक, बेहतर निगरानी और केंद्र राज्य के बीच मजबूत समन्वय पर जोर दिया। बैठक में 9 राज्यों से जुड़ी हुई रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्र की 6 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई, जिनकी कुल लागत 30,000 करोड़ रुपये से अधिक है। प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र के डिजिटल डेटा प्लेटफॉर्म एग्री एस्टेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीक के बेहतर इस्तेमाल की बात कही ताकि किसान

0: को बेहतर सेवाएं मिल सकें। भारत में भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई को 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। 2016 में शुरू की गई भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूपीआई ने अभूतपूर्व व्यापकता और विश्वसनीयता के माध्यम से वैश्विक मान्यता प्राप्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई की एक दशक लंबी सफलता की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने यूपीआई को भारत के डिजिटल भुगतान सफर का एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया। उन्होंने कहा कि यूपीआई की व्यापक पहुंच और विस्तार पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए।
1: आज दुनिया के दो डिजिटल भुगतान लेन देन में से एक भारत में होता है। पिछले वर्ष दुनिया में भुगतान लेन देन की कुल मात्रा में यूपीआई की हिस्सेदारी लगभग 49% रही। पिछले महीने देश भर में यूपीआई के जरिए 23 अरब से अधिक लेन देन दर्ज किए गए। यूपीआई की अभूतपूर्व पहुंच और विश्वसनीयता को वैश्विक स्तर पर भी मान्यता मिली है। यूपीआई अब फ्रांस, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात यूएई, श्रीलंका, भूटान और मॉरिशस सहित 11 देशों में संचालित हो रहा है। दीपेंद्र और ऋषु के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को देश में उत्पादन के लिए भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन करना है। अमित शाह ने कहा है कि हर क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए भारत को अपनी आंतरिक सुरक्षा और मजबूत करनी होगी। नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन के समापन सत्र में उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मजबूत आंतरिक सुरक्षा जरूरी है। श्री शाह ने कहा कि नशीले पदार्थ, नक्सलवाद और पूर्वोत्तर की सुरक्षा चुनौतियों पर सरकार ने प्रभावी कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि अगले 15 से 20 वर्षों की संभावित चुनौतियों की पहचान कर उन्हें समय रहते रोकने की रणनीति बनाई जाने चाहिए। श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य सुरक्षित, घुसपैठ मुक्त और नशा मुक्त भारत बनाना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधारों से जुड़ी मसौदा रिपोर्ट को संसदीय समिति ने सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है। शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल मामलों की संसदीय समिति की बैठक में एजेंसी को वैधानिक दर्जा देने के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच मतभेद रहे। बाद में रिपोर्ट की भाषा पर सहमति बनने के बाद समिति ने एजेंसी में सुधार और उसे मजबूत करने से जुड़ी मसौदा रिपोर्ट को मंजूरी दे दी। कांग्रेस सांसद मुकुल वासनिक की अध्यक्षता वाली समिति की यह इस मुद्दे पर छठी बैठक थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने गुजरात के भावनगर जिले में जहरीली शराब पीने से 9 लोगों की मौत के मामले में गुजरात के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी किया है। आयोग ने मीडिया रिपोर्टों पर स्वतः संज्ञान लेते हुए 2 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट के अनुसार अवैध शराब में बड़ी मात्रा में मेथनॉल मिलाया गया था और इसे एक लोकप्रिय ब्रांड के नकली लेबल वाली बोतलों में बेचा जा रहा था। भारतीय एथलेटिक्स सीरीज 2026 के 14वें चरण में विक्रांत पांचाल ने पुरुषों की 400 मीटर दौड़ का खिताब जीत लिया है। एथलेटिक्स सीरीज का अगला चरण 2 सितंबर को उत्तर प्रदेश के मेरठ में होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस राघु। Prime Minister Narendra Modi has stressed the need to explore common utility corridors for infrastructure services wherever feasible, particularly while planning major transport and infrastructure projects. Chairing the 53rd meeting of Pragati at Siva Tirth, Mr. Modi called upon ministries and states to examine such integrated approaches at the planning stage itself, keeping in view their technical and economic feasibility. He said that speed of execution must be accompanied by uncompromising quality. Call upon ministry, states and implementing agencies to adopt modern technologies and strengthen quality assurance and supervision at every stage. During the meeting, Mr. Modi reviewed 6 key infrastructure projects across the railway, road and power sectors, spanning 9 states with a cumulative cost of more than 30,000 crore rupees. India highlighted the importance of maintaining peace and tranquility in the India-China border areas

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा तीर्थ में प्रगति मंच की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि बड़ी परिवहन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाते समय जहां संभव हो बिजली, पानी और अन्य सेवाओं के लिए साझा गलियारे विकसित किए जाने चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के साथ गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। उन्होंने आधुनिक तकनीक, बेहतर निगरानी और केंद्र राज्य के बीच मजबूत समन्वय पर जोर दिया। बैठक में 9 राज्यों से जुड़ी हुई रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्र की 6 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई, जिनकी कुल लागत 30,000 करोड़ रुपये से अधिक है। प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र के डिजिटल डेटा प्लेटफॉर्म एग्रिस्टेक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीक के बेहतर इस्तेमाल की बात कही, ताकि किसानों को बेहतर सेवाएँ मिल सके। भारत में भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई को 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। 2016 में शुरू की गई भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूपीआई ने अभूतपूर्व व्यापकता और विश्वसनीयता के माध्यम से वैश्विक मान्यता प्राप्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई की एक दशक लंबी सफलता की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने यूपीआई को भारत के डिजिटल भुगतान सफर का एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया। उन्होंने कहा कि यूपीआई की व्यापक पहुंच और विस्तार

0: पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए।
1: दुनिया के दो डिजिटल भुगतान लेन देन में से एक भारत में होता है। पिछले वर्ष दुनिया में भुगतान लेन देन की कुल मात्रा में यूपीआई की हिस्सेदारी लगभग 49% रही। पिछले महीने देश भर में यूपीआई के जरिए 23 अरब से अधिक लेन देन दर्ज किए गए। यूपीआई की अभूतपूर्व पहुंच और विश्वसनीयता को वैश्विक स्तर पर भी मान्यता मिली है। यूपीआई अब फ्रांस, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात यूएई, श्रीलंका, भूटान और मॉरिशस सहित 11 देशों में संचालित हो रहा है। दीपेंद्र और ऋषु के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को देश में उत्पादन के लिए भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन करना है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए भारत को अपनी आंतरिक सुरक्षा और मजबूत करनी होगी। नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन के समापन सत्र में उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मजबूत आंतरिक सुरक्षा जरूरी है। श्री शाह ने कहा कि नशीले पदार्थ, नक्सलवाद और पूर्वोत्तर की सुरक्षा चुनौतियों पर सरकार ने प्रभावी कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि अगले 15 से 20 वर्षों की संभावित चुनौतियों की पहचान कर उन्हें समय रहते रोकने की रणनीति बनाई जानी चाहिए। श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य सुरक्षित, घुसपैठ मुक्त और नशा मुक्त भारत बनाना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधारों से जुड़ी मसौदा रिपोर्ट को संसदीय समिति ने सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है। शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल मामलों की संसदीय समिति की बैठक में एजेंसी को वैधानिक दर्जा देने के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच मतभेद रहे। बाद में रिपोर्ट की भाषा पर सहमति बनने के बाद समिति ने एजेंसी में सुधार और उसे मजबूत करने से जुड़ी मसौदा रिपोर्ट को मंजूरी दे दी। कांग्रेस सांसद मुकुल वासनिक की अध्यक्षता वाली समिति की ये इस मुद्दे पर छठी बैठक थी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिकी नौसेना ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य में मौजूद सभी समुद्री बारूदी सुरंगों को हटा दिया है या निष्क्रिय कर दिया है। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान को चेतावनी दी गई है कि नई बारूदी सुरंग बिछाने वाले किसी भी जहाज या नाव को तुरंत नष्ट कर दिया जाएगा। ईरान की ओर से इस पर अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञान नंदा ग्रैंड चेस टूर के फाइनल में पहुंच गए हैं। अमेरिका के सेंट लुइस में प्रज्ञान नंदा ने सेमीफाइनल में जर्मनी के विंसेंट कीमर को 19-9 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। Prime Minister Narendra Modi has stressed the need to explore common utility corridors for infrastructure services wherever feasible, particularly while planning major transport and infrastructure projects. During the 53rd meeting of Pragati at Seva Teerth, Mr. Modi called upon ministries and states to examine such integrated approaches at the planning stage itself, keeping in view their technical and economic feasibility. He said that speed of execution must be accompanied by uncompromising quality. He called upon ministers, ministries, states and implementing agencies to adopt modern technologies and strengthen quality assurance and supervision at every stage. During the meeting, Mr. Modi reviewed 6 key infrastructure projects across the railway, road and power sectors, spanning 9 states with a cumulative cost of more than 30,000 crore rupees. India highlighted the importance of maintaining peace and tranquility in the India-China border areas for the continued development and progress of bilateral relations between the two countries. National Security Advisor Ajit Doval co-chaired the 25th round of the Special Representative's talks on the India-China boundary question with Chinese Foreign Affairs Minister Wang Yi in Beijing. The External Affairs Ministry said in a statement that the two representatives agreed to continue their efforts to seek a political settlement of the boundary question, keeping in view their overall and long-term interests. The two sides noted the progress made in implementing the

एक तो ये कि भूपेन्द्र दा के गीतों में वहां के आवाम की तस्वीर नजर आती है, वो तस्वीर मजमुई भी है, इनफरादी भी, यानी कलेक्टिव भी है, इंडिविजुअल भी। एक पूरा लैंडस्केप है और उसमें एक अकेला रिप्रेजेंटेटिव मजदूर।

उनका मुहावरा और बयान आज के दौर में भी मॉडर्न लगता है, इसलिए गायकों के लिए गालिब सदाबहार हैं। वो किसी भी लिबास में सज जाते हैं। जगजीत ने उन्हें मॉडर्न ऑर्केस्ट्रा के साथ रिकॉर्ड किया।

0: इसी के साथ ही कार्यक्रम गीत गज़ल यहीं पर ख़त्म होता है। आइए श्रोताओं, अब सुनिए कार्यक्रम अर्चना।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

0: अब आज का अर्चना कार्यक्रम संपन्न होता है।
1: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम अर्चना। आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24x7। 4:20 होने को है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे कर्नाटक संगीत कार्यक्रम। इसके अंतर्गत आप सुनेंगे बांसुरी वादन, ताल आदि, राग कंभोजी आप सुनेंगे। कलाकार हैं सिकील माला चंद्र शेखर। घटम पर साथ दे रहे हैं बी पद्मनाभन। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम को।

अभी आप सुन रहे थे कर्नाटक संगीत कार्यक्रम नाद ब्रह्मा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आपने सुना बांसुरी वादन, आदि ताल में राग कंबोरी आपने सुना। कलाकार थे सिकिल मालाचंद्र शेखर। गटकंबर साथ दे रहे थे बी पद्मनाभन। आप सुन रहे हैं AIR 24x7।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, DRM 810 किलो हर्ट्ज पर। आज बुधवार है, शक संबद 1948 के भाद्रपद मास की चौथी तिथि, तदनुसार 26 अगस्त 2026। सुबह के 4:54 हो चुके हैं, हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए श्रोताओं, आपको जानकारी दे दें आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। प्रातःकालीन 5:10 पर आप सुनेंगे स्वास्थ्य संबंधित कार्यक्रम आओ योग करें। इसके अंतर्गत आप सुनेंगे और सीखेंगे कंधे का मूवमेंट यानी शोल्डर मूवमेंट और ताड़ासन। 5:20 का वक्त रहेगा देशभक्ति गीत का कार्यक्रम। सुबह के 5:30 पर आप सुनेंगे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम। 6:10 का कार्यक्रम रहेगा भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम वंदना का। कार्यक्रम चिंतन आप सुनेंगे सुबह के 6:40 पर। 6:45 का वक्त रहेगा कार्यक्रम रामचरितमानस का। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे अयोध्या कांड का भाग 27।

7:10 का वक्त रहेगा संगीत संगीतित कार्यक्रम, जिसमें आप सुनेंगे इंद्रेश मिश्रा के स्वर में भजन। सुबह के 7:30 का वक्त रहेगा गीतों भरी गुड मॉर्निंग कार्यक्रम का, जिसमें आप फिल्म संगीत का आनंद ले सकेंगे। शास्त्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम

स्वर गंगा आप सुनेंगे प्रातःकालीन 8:45 पर। साइंस मैगजीन का वक्त रहेगा 9:15 का।

कार्यक्रम मिट्टी दी महक आप सुनेंगे प्रातःकालीन 9:30 पर। सुबह के दस बजकर दस मिनट का वक्त रहेगा कार्यक्रम आपकी पसंद। ग्यारह बजकर दस मिनट का वक्त रहेगा कार्यक्रम सबरस का। सुबह के 11:30 का वक्त रहेगा कार्यक्रम सुरमंजरी, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पर आधारित ये कार्यक्रम रहेगा। 8:00 बजने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के साथ गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। श्री मोदी ने कल सेवा तीर्थ में प्रगति मंच की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि बड़ी परिवहन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाते समय बिजली, पानी और अन्य सेवाओं के लिए साझा गलियारे विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। श्री मोदी ने आधुनिक तकनीक, बेहतर निगरानी और केंद्र राज्य के बीच मजबूत समन्वय पर बल दिया। बैठक में 9 राज्यों से जुड़ी रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्र की 6 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई। इनकी कुल लागत 30,000 करोड़ रुपये से अधिक है। भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली यूपीआई को 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। 2016 में शुरू की गई यूपीआई ने अभूतपूर्व व्यापकता और विश्वसनीयता के साथ वैश्विक मान्यता प्राप्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई की एक दशक लंबी सफलता की सराहना की है।
1: दुनिया के 2 डिजिटल भुगतान लेन देन में से एक भारत में होता है। पिछले वर्ष दुनिया में भुगतान लेन देन की कुल मात्रा में यूपीआई की हिस्सेदारी लगभग 49% रही। पिछले महीने देश भर में यूपीआई के जरिए 23 अरब से अधिक लेन देन दर्ज किए गए। यूपीआई की अभूतपूर्व पहुंच और विश्वसनीयता को वैश्विक स्तर पर भी मान्यता मिली है। यूपीआई अब फ्रांस, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात यूएई, श्रीलंका, भूटान और मॉरिशस सहित 11 देशों में संचालित हो रहा है। दीपेंद्र और ऋषु के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन करना है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए भारत को अपनी आंतरिक सुरक्षा और मजबूत करनी होगी। नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन के समापन सत्र में कल उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए मजबूत आंतरिक सुरक्षा जरूरी है। श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य सुरक्षित, घुसपैठ मुक्त और नशा मुक्त भारत बनाना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 4 दिन की यात्रा पर कनाडा के टोरंटो पहुंच गई हैं। इस दौरान श्रीमती सीतारामन कनाडा के वित्त मंत्री फ्रांसवा फिलिप शैंपेन के साथ पहली भारत कनाडा आर्थिक और वित्तीय वार्ता में हिस्सा लेंगी। इसके बाद वित्त मंत्री G20 वित्त मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए अमरीका रवाना होंगी। भारत ने भारत चीन सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व पर

0: दिया है। पेचिंग में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने भारत चीन सीमा विवाद पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वीं दौर की वार्ता की सह अध्यक्षता की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों के बीच सीमा मुद्दे पर गहन विचार विमर्श हुआ, साथ ही सीमा विवाद के राजनीतिक समाधान की दिशा में काम जारी रखने पर सहमति व्यक्त की गई। दिल्ली सरकार आज दिल्ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 4000 पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपेंगी। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सहायता देकर उन्हें सशक्त बनाना है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि राजधानी में प्याज और चीनी की कोई कमी नहीं है। सरकार ने कहा कि कीमतें बढ़ने पर नेफेड से प्याज और चीनी खरीदकर लोगों को उचित दरों पर उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने प्याज की सस्ती बिक्री के लिए विभिन्न स्थानों पर कैंप लगाने और नेफेड से खरीद की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधारों से जुड़ी मसौदा रिपोर्ट को संसदीय समिति ने सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है। शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल कार्य मंत्री की संसदीय समिति ने बैठक में एजेंसी को वैधानिक दर्जा देने के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच मतभेद रहे। भारतीय नौसेना 31 अगस्त को मुंबई में नौसेना डॉकयार्ड में निस्तार श्रेणी के दूसरे गोताखोर सहायता पोत निपुण को नौसेना में शामिल करेगी। स्वदेशी रूप से विकसित ये पोत भारत की रक्षा जहाज निर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारत के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच के चौथे दिन आज श्रीलंका 8 विकेट पर 265 रन से आगे खेलेगा। श्रीलंका भारत से अभी 238 रन पीछे है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। Prime Minister Narendra Modi has stressed the need to explore common utility corridors for infrastructure services wherever feasible, particularly while planning major transport and infrastructure projects. Chairing the 53rd meeting of Pragati at Seva Teerth, Mr. Modi called upon ministries and states to examine such integrated approaches at the planning stage itself, keeping in view their technical and economic feasibility. He said that speed of execution must be accompanied by uncompromising quality. Call upon ministry, states and implementing agencies to adopt modern technologies and strengthen quality assurance and supervision at every stage. During the meeting, Mr. Modi reviewed 6 key infrastructure projects across the railway, road and power sectors, spanning 9 states with a cumulative cost of more than 30,000 crore rupees. India highlighted the importance of maintaining peace and tranquility in the India-China border areas for the continued development and progress of bilateral relations between the two countries. National Security Advisor Ajit Doval co-chaired the 25th round of the special representative talks on the India-China boundary question with Chinese Foreign Affairs Minister Wang Yi in Beijing. The External Affairs Ministry in a statement said that the two representatives agreed to continue their efforts to seek a political settlement of the boundary question, keeping in view their overall and long-term interests. The two sides noted the progress made in implementing the important consensus reached between the leaders in Kazan in October 2024 and Tianjin in August last year. Home Minister Amit Shah said that to emerge as a leader in every sector, India must further strengthen its internal security. Addressing the concluding session of National Security Strategies Conference in New Delhi, Mr. Shah said, strong internal security is essential to achieving Prime Minister Narendra Modi's vision of Viksit Bharat by 2047. The minister said, government has successfully eliminated issues of narcotics, naxalism and the challenges in the Northeast. He credited state police, central agencies and CAPFs for these achievements. The government is closely monitoring the prevailing seasonal respiratory illness trends across the country through a robust pan-India surveillance network. It stressed that there is no cause for panic or alarm. Secretary of the Department of Health Research and Director General of the Indian Council of Medical Research, Dr. Rajiv Behl, said that the influenza viruses currently circulating in the country are consistent with the seasonal patterns observed in recent years. The Delhi government will hand over the approval letters to 4,000 eligible women beneficiaries under the Delhi Lakshmi Yojana today. Under the scheme, eligible women will receive financial assistance of 2,500 rupees every month. The Delhi government has informed that more than 9,13,000 women have registered for the scheme so far and over 6,52,000 applications.

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। 5:10 हो चुके हैं। आइए श्रोताओं, सुनते हैं कार्यक्रम आओ योग करें। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सीखेंगे योग, शोल्डर मूवमेंट यानी कंधे का मूवमेंट और ताड़ासन। आइए सुनते हैं स्वास्थ्य संबंधित कार्यक्रम आओ योग करें।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हिमानी चौखन, आपके योग विशेषज्ञ। आज हम चर्चा करेंगे शोल्डर जॉइंट्स प्रॉब्लम पर। शोल्डर जॉइंट एक ऐसा जॉइंट है जो बहुत ही मोबाइल जॉइंट है और सबसे ज्यादा मूवमेंट इसी जॉइंट में पाई जाती है। इसकी मोबिलिटी के साथ साथ शोल्डर जॉइंट की स्टेबिलिटी का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है, और इसके लिए शोल्डर जॉइंट की मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए हमें प्रतिदिन क्या जरूरी है, योग करना जरूरी है। शोल्डर जॉइंट की समस्या जैसे शोल्डर पेन, फ्रोजन शोल्डर और बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट्स में भी शोल्डर प्रॉब्लम्स पाई जाती हैं। शोल्डर जॉइंट की सर्जरी होने के बाद भी शोल्डर जॉइंट मूवमेंट में कई बार रुकावट आ जाती है। इन समस्याओं से निदान पाने के लिए आप योग में शोल्डर जॉइंट के लिए सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास कर सकते हैं। आज मैं आपको एक सूक्ष्म क्रिया का अभ्यास बताऊंगी। उसके लिए सबसे पहले सीधे खड़े हो जाएं। बाएं हाथ की उंगलियों को बाएं कंधे पर और दाएं हाथ की उंगलियों को दाएं कंधे पर रखें। श्वास छोड़ते हुए यानी ब्रीथ आउट करते हुए दोनों कोहनियों को वक्षस्थल के सामने मिलाएं। अब श्वास भरते हुए यानी ब्रीद इन करते हुए दोनों कोहनियों को पूरी तरह चक्र आकार घुमाएं।

ब्रीद इन करते हुए दोनों कोहनियों को ऊपर की ओर लेकर जाएं और ब्रीद आउट करते हुए नीचे की ओर लेकर आएं। दोनों कोहनियों को चेस्ट रीजन के सामने स्पर्श करने की कोशिश करें। पीछे की ओर भी कोहनियों को खींच कर घुमाएं। इस प्रकार पूर्ण रूप से दोनों कोहनियों को पहले 4 से 5 बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएं, यानी घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएं। उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में भी 4 से 5 बार घुमाएं। श्वास भरते हुए दोनों कोहनियों को ऊपर ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर लेकर आएं। इस योगिक क्रिया के अभ्यास में शोल्डर जॉइंट की मांसपेशियों में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और उसमें होने वाले रक्त संचालन भी बढ़ता है। अगर आप यह अभ्यास प्रतिदिन मॉर्निंग में करते हैं तो आपके शोल्डर जॉइंट हेल्दी रहता है और उसमें होने वाली रुकावट से भी छुटकारा पाया जा सकता है। तो आज हमने शोल्डर जॉइंट की मोबिलिटी को, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को, उसकी मांसपेशियों को आप किस प्रकार मजबूती प्रदान कर सकते हैं एक सिंपल छोटी सूक्ष्म व्यायाम क्रिया के साथ, जिसको हम शोल्डर मूवमेंट्स कहते हैं। तो आज के लिए हमारी सूक्ष्म व्यायाम क्रिया थी शोल्डर मूवमेंट्स। नमस्कार।

नमस्कार, मैं योगाचार्य सुनील गौतम हापुड़िया। आज हम करेंगे सबसे सरल व सुखद आसन ताड़ासन, जिसे कहीं भी ऑफिस में, घर में, किसी भी प्रकार के कार्यस्थल पर सावधानी से किया जा सकता है, जिसको करने से पैर के तलवे से लेकर सर की चोटी तक समस्त मांसपेशियां स्वस्थ होती हैं, विशेष रूप से हमारी पसलियां एवं विष्ठ की मांसपेशियां। जानते हैं इसे करने का तरीका। दोनों पैरों को मिलाकर सीधे खड़े हो जाएं, दोनों हाथ की हथेलियों को साथल से जंघा से मिलाकर रखें, धीरे से श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथ की हथेलियों को आपस में फंसाएं और श्वास भरते हुए सामने की ओर से ऊपर की ओर ले जाएं, ऊपर की ओर थोड़ा खिंचाव दें, धीरे धीरे एड़ियों को ऊपर उठाएं, समस्त भार अपने पैर के पंजों पर ले आएं। तीन लंबे गहरे श्वास लें और प्रत्येक श्वास के साथ शरीर में और ऊपर और ऊपर और ऊपर स्ट्रेच करें, खिंचाव दें। फिर श्वास छोड़ते हुए वापस पुरानी स्थिति में आ जाएं। दोबारा इस आसन को करने के लिए अपनी उंगलियों को आपस में फंसाएं, श्वास भरते हुए पुनः ऊपर की ओर ले जाएं। इस बार एड़ियों को ना उठाएं, पूरा ऊपर की ओर खिंचाव दें। श्वास छोड़ते हुए शरीर को दाहिनी ओर झुकाएं, कुछ देर रुकें, श्वास भरते हुए फिर ऊपर की ओर खिंचाव दें और श्वास छोड़ते हुए शरीर को बाईं ओर झुकाएं। पूरे शरीर में खिंचाव अनुभव करें, श्वास भरते हुए फिर बीच में आएं और श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे लाएं, पुरानी स्थिति में वापस आ जाएं। इस आसन को दो या तीन आवृत्ति दोहराएं, रिलैक्स अनुभव करेंगे। कहीं भी इस आसन को कर सकते हैं।

अपने शरीर के तनाव को दूर करने के लिए, अपने को स्वस्थ अनुभव करने के लिए तनाव अथवा थकान की अवस्था में। धन्यवाद। और विशेष रूप से यह आसन बच्चों के लिए और भी ज्यादा लाभकारी है उनकी लंबाई बढ़ाने में। विशेष रूप से 25 वर्ष तक की उम्र के लोग इस आसन को रोजाना 2-3 बार करेंगे तो निश्चित रूप से उनकी लंबाई भी बढ़ने की संभावना है। धन्यवाद।

0: आपका जलदाता ग्रैंड वाटर। कैसे हैं आप सब? आपकी मशीनें यहाँ धरती में इतने नीचे भी मुझे चैन से नहीं रहने देते। हर साल मेरा ठिकाना धरती में और नीचे हो जाता है। इस वर्ष 2040 में धरती में कितना और नीचे आ गया हूं मैं। क्या लिखूं अपना दर्द, अब तो कलम में बस बूंदे ही बची हैं। अपनी फोटो भेज रहा हूं, खुद ही देख लीजिए मेरी सेहत। क्या पता अगली चिट्ठी लिख भी पाऊंगा या नहीं। आप कर सकते हैं मेरी सहायता, बस दो शब्द याद रखिए, कंट्रोल और सेव। और हाँ, अपना ख्याल रखिएगा।
1: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। 5:20 हो चुके हैं। आइए श्रोताओं, सुनते हैं कार्यक्रम देशभक्ति गीत।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, DRM 810 किलोहर्ट्ज पर। 5:30 होने को है। आइए श्रोताओं, सुनते हैं कार्यक्रम स्वर रंजनी। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम, इसके अंतर्गत आप सुनेंगे गायन राग अहीर भैरव। आप सुनेंगे कलाकार हैं डॉक्टर शरभरी बैनर्जी। आइए श्रोताओं, सुनते हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम।